मीडियम वेव 188.32 मीटर्स यानी 1593 किलोहर्ट्स के साथ डीटीएच के ऑडियो चैनल, न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल एप्लीकेशन और वेव्स ओटीटी ऐप पर ये आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। आज रविवार है, शक संवत 1948 के ज्येष्ठ मास की 24वीं तिथि, तदनुसार 14 जून सन 2026। सुबह के 5:56 हुए हैं। अब हमारी आज की सभा आरंभ होती है।

ये आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। सुबह के 8 बजने को है। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार, जिन्हें हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे।

0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दो देशों फ्रांस और स्लोवाकिया की यात्रा के पहले चरण में फ्रांस के शहर नीस पहुंच गए हैं। G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के अलावा श्री मोदी फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। नीस पहुंचने पर प्रधानमंत्री का भव्य स्वागत किया गया। हमारे संवाददाता ने बताया है कि भारतीय समुदाय के लोगों ने होटल नेग्रेस्को में श्री मोदी का गर्मजोशी से स्वागत सत्कार किया।
1: नीस में प्रधानमंत्री के स्वागत में फ्रांसीसी और इतालवी कलाकारों ने कथक, ओडिसी और भारतनाट्यम जैसे शास्त्रीय नृत्य प्रस्तुत किए। आज दोपहर प्रधानमंत्री मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति एमैनुअल मैक्रों संयुक्त रूप से इनोवेशन और स्टार्टअप इकोसिस्टम को प्रदर्शित करने वाले प्लेटफॉर्म भारत इनोवेट्स लॉन्च करेंगे। भारत फ्रांस इनोवेशन वर्ष के दौरान आयोजित इस कार्यक्रम में 120 से ज्यादा भारतीय स्टार्टअप के साथ साथ वैश्विक निवेशक, सीईओ और टेक्नोलॉजी लीडर्स हिस्सा लेंगे। शैलेश मेनन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से श्रीराम शर्मा।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रांस के नीस में चल रहे प्रवासी भारतीयों का आभार व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने उनके स्वागत सत्कार को अविस्मरणीय बताया। उन्होंने कहा कि भारत से मीलों दूर होने के बावजूद स्वदेश के प्रति प्रवासियों के संबंध में मजबूती आई है। संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने हिमाचल प्रदेश में डाक विभाग द्वारा ड्रोन आधारित डाक सेवा शुरू करने की घोषणा की है। ये सेवा राज्य में मंडी के प्रधान डाकघर और रेहरधर शाखा के बीच शुरू की गई है। मंडी प्रधान डाकघर से लगभग 12 किलोमीटर दूर रेहरधर शाखा तक पहुंचने में 2 घंटे से अधिक का समय लगता है। ड्रोन सेवा से ये समय घटकर मात्र 60 मिनट हो जाएगा। संचार मंत्रालय ने बताया कि विभाग ने अगले 2 से 3 महीने में हिमाचल प्रदेश और असम में लगभग 150 स्थानों पर ड्रोन आधारित डाक सेवा शुरू करने की योजना बनाई है। मध्य प्रदेश के इंदौर में 5 दिन का ब्रिक्स कृषि सम्मेलन सम्पन्न हो गया है। सदस्य देशों ने इंदौर घोषणा पत्र में खाद्य सुरक्षा और कृषि में स्मार्ट तकनीक के उपयोग को सर्वसम्मति से स्वीकार किया। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि सम्मेलन में 4 नई संस्थागत पहलों की घोषणा की गई। इसरो के चेयरमैन वी नारायणन ने बताया कि उन्होंने परमाणु ऊर्जा विभाग के साथ मिलकर एक एडवांस आर्टिफिशियल हीटिंग सिस्टम विकसित किया है जो लूनर लैंडर को चंद्रमा के बेहद ठंडे मौसम से बचा सकता है। बेंगलुरु में इसरो प्रमुख ने बताया कि अब इसरो परमाणु ऊर्जा विभाग के साथ मिलकर ऐसा लूनर लैंडर विकसित करने पर काम करेगा जो चंद्रमा पर 200 दिन तक काम कर सके। आर्टिफिशियल हीटर वाला ये लैंडर चंद्रमा के कठोर मौसम में भी काम कर सकेगा। उन्होंने कहा कि इससे भविष्य के मिशनों में लंबे समय तक सहायता मिलेगी। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से पहले आयुष मंत्रालय आज मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान और हैबिल्ड के सहयोग से वैश्विक ऑनलाइन योग कार्यक्रम आयोजित कर रहा है। ये सत्र सुबह 6:15 बजे से 7:35 तक चलेगा। 130 से अधिक देशों के इस कार्यक्रम में भाग लेने की आशा है। आयुष मंत्रालय ने कहा कि कार्यक्रम का उद्देश्य योग में रुचि रखने वाले विश्व भर के लोगों को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर साथ लाकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना है। इच्छुक लोग 1-800-315-7008 पर मिस कॉल देकर कार्यक्रम के लिए पंजीकरण करा सकते हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ युद्ध समाप्त करने के समझौते पर आज हस्ताक्षर हो जाने की आशा व्यक्त की है। इसके तुरंत बाद होर्मुज जलडमरू मध्य सबके लिए खुल जाएगा। श्री ट्रंप ने सोशल मीडिया पोस्ट में आशा व्यक्त की कि वार्ता सफल रहेगी, यदि ऐसा नहीं होता तो अंतिम विकल्प भी है। इस बीच ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बाघेई ने कहा है कि तुरंत किसी समझौते पर हस्ताक्षर की उम्मीद नहीं है। उन्होंने कहा कि ये समझौता आज नहीं होगा, हो सकता है कि अगले कुछ दिनों में ऐसा संभव हो। भारत ने कल रात हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में 3 एकदिवसीय मैचों की क्रिकेट श्रृंखला के पहले मैच में अफगानिस्तान को 7 विकेट से हरा दिया। भारत ने 22 ओवर और 5 गेंद में ही 195 रन का लक्ष्य हासिल कर लिया। श्रृंखला का दूसरा मैच 17 जून को लखनऊ में खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त।

0: toi.
1: ये आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना।
2: प्रातः बेला की आराधना वंदना।

अनेकता में एकता ही भारत की पहचान है। जहाँ प्रकृति ने पूरी उदारता से सौंदर्य बिखेरा है, यहाँ की विविधता अनुपम है, परंपरा अनुकरणीय है और इससे उपजा हमारा जीवन अपनी मातृभूमि के लिए सदा समर्पित।

जीवन पथ की इन राहों में कहीं मंजिल की प्रेरणा है, कहीं आकर्षण के मेले, कहीं माया के जाल तो कहीं निराश मन की वेदना। बढ़ते कदम किस ओर जाएं, कैसे दिशा पाएं, राह दिखा ही रघुवर।

हे करुणा कर, तेरी कृपा के अभिलाषी हैं हम। दुखों के भंवर में तू ही किनारा है, मन के अंधकार में रोशनी बन, हे दीनदयाल राह दे।

कर्ता भी वही, कर्म भी, कारक भी वही, परिणाम भी। फिर भी मन की गति, उसकी चाहत, उसकी अभिलाषा, हमारी अपनी लालसा हमें बांधे है। मैं और मेरे के घेरे ने हमारी क्षमताओं को संकुचित कर दिया है। प्रार्थना है प्रभु ज्ञान की रोशनी से सत को देख सकें, उसे पहचान सकें।

0: सब कुछ उसी महान।
1: वंदना में अभी आपने जगजीत सिंह, हरिओम शरण और महेंद्र कपूर के स्वर में ये भक्ति गीत सुने। अभी आप सुन रहे थे भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। हम आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से बोल रहे हैं। हमारा अगला प्रसारण इस छोटे से अंतराल के बाद।
2: भोर की चौखट पर भक्ति की धारा,
3: ऑफिस जाने की जल्दी मगर देश दुनिया की खबर भी जरूरी।
4: ये आकाशवाणी है, अब आप समाचार सुनिए।
5: ऑफिस या घर से निकलते ही उफ, ये ट्रैफिक।
3: आकाशवाणी है ना,
6: बातों ही बातों में हर सुबह 10 से 11 बना लो पूरी दुनिया को अपना दोस्त।
3: ऑफिस में थोड़ा रिलैक्सिंग म्यूजिकल ब्रेक,
5: शाम सुहानी हो,
3: आकाशवाणी के साथ जुड़िए ना। घर पहुंचते ही थकान, कैसे हो मनोरंजन,
5: आकाशवाणी है ना। चैन की नींद से पहले कुछ भूले बिसरे पल, हर पल
3: सफर में
5: आपके साथ
3: आकाशवाणी।

ये आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। लीजिए सुनिए श्री रामचरित मानस गान, स्वर अनुराधा पौडवाल का है, संगीत संयोजन सतीश भाटिया का।

श्री राम का नाम भजने वाले अर्थार्थी चार प्रकार के बताए गए हैं। धन संपत्ति की चाह वाले, संकट से मुक्ति पाने की चाह रखने वाले, परम ब्रह्म का ज्ञान प्राप्त करने के जिज्ञासु तथा ज्ञानी अर्थात भगवान के तत्व से परिचित सहज प्रेम मात्र प्रेम से भजने वाले, ये सभी पुण्यात्मा की संज्ञा के अधिकारी हैं। राम शब्द के दो अक्षर वर्षा ऋतु के सावन भादो महीनों की तरह मधुर और मनोहर हैं। ये वर्णमाला रूपी शरीर के दो नेत्र हैं, कहने सुनने और स्मरण करने में अत्यंत सहज सरल और सुंदर नर नारायण की भांति सुंदर भाई, जो जगत का पालन और विशेष रूप से भक्तों की रक्षा करने वाले हैं। गोस्वामी तुलसीदास ने इन दो अक्षरों की तुलना भक्ति रूपिणी सुंदर कामिनी के कानों के आकर्षक आभूषण कर्णफूल से की है।

0: कभी रुलाकर, कभी कहानी बनकर तो कभी कविता बनकर, कभी कोई तराना तो कभी जिंदगी नामा, कभी खबरें हमारी जिंदगी में रंग भरे, मन की बात जन जन की बात, 1936 से आकाशवाणी आपके साथ।
1: ये आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। लीजिए सुनिए आज का चिंतन। आलेख है नारायण भक्त का।
2: मनुष्य अपने आप में ही सारी शक्तियों का पुंज है। प्रश्न यह है कि हम शक्ति के इस समूह का उपयोग अपने व्यक्तित्व के निर्माण में किस प्रकार करते हैं। शक्ति के माध्यम से हम अपनी अनेक समस्याओं का समाधान ढूंढ निकालने में समर्थ होते हैं, किंतु आज के चिंतन में हमारा विशेष तात्पर्य है कि उस शक्ति के एक अंश से आत्म समीक्षा कैसे की जाए। आपकी और हमारे ऐसे अनेक परिचित और आत्मीय जन हैं जो अपने संबंध में सदैव ऐसा कहा करते हैं, मैंने जीवन भर दूसरों के लिए होम किया है और मेरे हाथ जलते रहे हैं, मेरा नक्षत्र ही कुछ ऐसा है कि जिसका उपकार करता हूं वही मेरा अपकार कर बैठता है। शिष्टतावश हमारा ये साहस नहीं होता कि हम उनसे पूछें, भले आदमी अपने हृदय पर हाथ रखकर सच सच बतलाओ, क्या तुम्हारे द्वारा कभी किसी का अपकार नहीं हुआ है? और अब तक तुमने जिन जिन लोगों के उपकार किए हैं क्या सचमुच निस्वार्थ भाव से? ये एक दो प्रश्न सामान्य से जान पड़ते हैं, किंतु वास्तव में इन प्रश्नों की गरिमा की क्या महिमा है वही व्यक्ति अनुभव कर सकता है जिसने आत्म समीक्षा का सुदीर्घ अभ्यास किया हो और जिसने निष्ठापूर्वक आत्म समीक्षा के बाद पाए गए निष्कर्ष को अपना मार्गदर्शक समझा हो। आप हम सभी दिन रात अपनी समस्याओं के साथ व्यस्त रहते हैं और हमें समय नहीं मिलता कि हम अपने बारे में सोच सकें कि जिन लोगों से हमारा संबंध है या हम जिनके संपर्क में रहकर जीवन व्यतीत करते हैं उनके साथ कभी हमने कोई ऐसा व्यवहार तो नहीं किया है जो उनकी भावना को ठेस पहुंचा गया हो। यदि कोई व्यक्ति हमारे प्रेम का प्रतिदान नहीं दे पाता तो हम उसे स्वार्थी घोषित करने में तनिक भी नहीं हिचकते और तब उस व्यक्ति के प्रति हमारे मन में ऐसी ही भावनाएं उछलने लगती हैं जो हमारा ही पक्ष लेती हैं। भाग दौड़ के इस युग में जबकि हम सभी अपने को अपनी ही समस्याओं से घिरा पाते हैं तो स्वाभाविक है कि हम तनाव का अनुभव करेंगे और यदि ऐसे वातावरण में हम आत्म समीक्षा ना करें तो हमारा मानसिक तनाव और भी बढ़ता जाएगा। आधुनिक युग के मनोवैज्ञानिकों का ऐसा कथन है कि रोगों की वृद्धि में मानसिक तनाव का प्रमुख हाथ होता है। अतः आत्म समीक्षा के द्वारा न केवल हम अपने आत्मीय जनों के प्रति न्याय ही बरत सकते हैं बल्कि बहुत अंशों में मानसिक तनाव से मुक्ति भी पा सकते हैं। वैसे अभ्यास न होने के कारण ये काम हमें स्वयं ही कठिन और तनावपूर्ण जान पड़ेगा, किंतु धीरे धीरे यदि हम अपने दोष ढूंढने और उन्हें दूर करने की आदत डालना सीखें तो निश्चय ही हम एक नैसर्गिक आनंद का अनुभव करेंगे और साथ ही हम जिनके संपर्क में रहकर जीवन को जीते हैं उनसे हमें वैसा प्रेम प्राप्त होगा जिसकी कल्पना हम सामान्यतः नहीं कर पाए हैं। लोकाचार को देखते हुए दान तो बहुत से लोग देते हैं, किंतु जो दान किसी को बताया ना जाए उसमें अकथनीय आनंद की अनुभूति होती है। आत्म समीक्षा का आनंद कुछ ऐसा ही आनंद है।
1: ये था आज का चिंतन। हम आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए सुनिए कृषि चर्चा। वार्ताकार हैं डॉक्टर दिनेश कुमार सोलंकी। वार्ता

अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरित मानस गान। ये प्रसारण आपकी सेवा में आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से किया जा रहा था।

0: का विषय है खेती के लिए फायदेमंद जैविक खाद।
1: किसान भाइयों, आज की कृषि चर्चा में हम बात करेंगे खेती के लिए फायदेमंद जैविक खाद के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं, वर्तमान समय में जो बढ़ती हुई जनसंख्या की खाद्यान्न की पूर्ति के लिए किसान भाई खेती में लगातार सघन पद्धति से खेती कर रहे हैं, यानी एक ही खेत में लगातार दो दो तीन तीन फसलें वो लगातार उगा रहे हैं, जिसकी वजह से न सिर्फ जमीन में से पोषक तत्वों का अवशोषण ज़्यादा हो रहा है, साथ साथ जो मिट्टी में कार्बनिक पदार्थ की मात्रा है वो भी लगातार कम होती जा रही है, जिससे मिट्टी की संरचना और उर्वरता शक्ति पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है। जैविक खादों के उपयोग से खेतों को सबसे अधिक लाभ जैविक कार्बन से होता है। इस जैविक कार्बन को किसी भी औद्योगिक उत्पाद के रूप में तैयार नहीं किया जा सकता, अतः गोबर या वर्मी कंपोस्ट खाद के माध्यम से इस जैविक कार्बन को हम अपने खेत की मिट्टी में पहुंचा सकते हैं और ये बहुत सस्ता और सुलभ साधन है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि मृदा में जैविक कार्बन की उपस्थिति से पौधे को नत्रजन एवं संपूर्ण पोषक तत्व जो फसल के उत्पादन के लिए आवश्यक हैं मिल जाते हैं, और ज़मीन के अंदर जो अघुलनशील रूप में जो पौष्टिक पोषक तत्व होते हैं वो भी घुलनशील रूप में हमको मिल जाते हैं। लेकिन जैविक कार्बन की न्यूनता के कारण ये जीवाणु जो हमारे लगातार ज़मीन में हमारे रहते हैं वो पनप नहीं पाते और ठीक प्रकार से काम नहीं कर पाते, अतः जैविक कार्बन कृषि योग्य मिट्टियों के लिए सबसे महत्वपूर्ण तत्व माना गया है। जैविक खादों को भूमि में फसल बोने से पहले या खड़ी फसल में देने पर आवश्यक पोषक तत्व जमीन में मिल जाते हैं, साथ साथ कार्बन अंश की मात्रा में भी वृद्धि हो जाती है। जैविक खाद का उद्देश्य न केवल अधिक उत्पादन लेना है बल्कि मिट्टी के स्वास्थ्य का संरक्षण करना भी होता है। मिट्टी में कार्बन पदार्थ को स्थिर करने के लिए जैविक खादों का उपयोग अत्यंत आवश्यक है। साथ ही साथ जैविक खाद मिट्टी की संरचना, वायु, तापमान, जल धारण क्षमता, जीवाणु संख्या तथा उनकी अभिक्रियाओं के लिए और जो मिट्टी का जो कटाव होता है पानी की वजह से उसको बचाने में भी ये अच्छा प्रभाव डालती है। तो इसलिए किसान भाइयों को अपने खेतों में जैविक खादों का उपयोग लगातार करते रहना चाहिए, जिससे न सिर्फ मिट्टी का स्वास्थ्य सुधरता है, साथ साथ जो हम उत्पादन ले रहे हैं उस उत्पादन में भी वृद्धि होती है और जो उत्पादन की जो गुणवत्ता है उसमें भी लगातार सुधार हो रहा है। तो किसान भाइयों को अपने खेती में अपनी मिट्टी को लंबे समय तक टिकाऊपन बनाए रखने के लिए अपने खेतों में रासायनिक खादों का प्रयोग कम करके उसकी पूर्ति करने के लिए हमें जैविक खादों का उपयोग बढ़ाना चाहिए, जिससे कि हमारे जो ज़मीन है वो लंबे समय तक अपना उत्पादन हमारे किसान भाइयों को दे सके। क्योंकि वैसे भी आप लोगों को जैसे पता है हमारे देश में लगातार जनसंख्या बढ़ रही है, जिसका हमारी ज़मीन के ऊपर उसके जो खाद्यान्न की पूर्ति के लिए लगातार दबाव बढ़ता जा रहा है, और अब किसान भाई प्रत्येकाई क्षेत्रफल से ज़्यादा उत्पादन लेने का प्रयास करते हैं। इस प्रयास की कड़ी में वो मिट्टी की स्वास्थ्य को भूल जाते हैं कि इसकी वजह से हमारा मिट्टी का स्वास्थ्य लगातार खराब हो रहा है। मिट्टी के स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए हमको जैविक खादों का उपयोग करना चाहिए। जैविक खादों में जैसे आपको पता है कि हमारे पास आज बहुत सारे इस तरह के साधन हैं कि जो जैसे फसल अवशेष हैं, जब फसल कट जाती है तो कटने के बाद बहुत से किसान भाई फसल में अवशेषों में आग लगा देते हैं। अब उसकी वजह से क्या होता है कि हमारी ज़मीन में जो लाभदायक बैक्टीरिया हैं, जो केंचुआ हो, जो मित्र कीट कहा जाता है, वो भी जलकर उसमें नष्ट हो जाते हैं। तो इस तरह की प्रक्रिया को भी हमको बचना होगा। साथ साथ जैसे हमारे पास नाडेप है, हमारे गोबर की खाद है, या दूसरी कई सारी विधियों के माध्यम से हम इन खादों का बनाने पर प्रयोग कर सकते हैं, और तो जब हम इनका उपयोग करते हैं तो मिट्टी में हमारे जो जैविक अंश जैसे जैविक कार्बन जिनको हम कहते हैं उसकी मात्रा बढ़ती है, और जैविक कार्बन की वजह से हमारी मिट्टी की जो तीनों दशाएँ कही जाती हैं, जैसे भौतिक दशा है या जैसे रासायनिक दशा है और साथ जैविक दशा है, तीनों दशाओं में सुधार होता है। तो अतः किसान भाइयों को अपने खेतों में जैविक खादों के उपयोग को बढ़ावा देना चाहिए। कृषि चर्चा में आज के लिए बस इतना ही।
0: अभी आप सुन रहे थे कृषि चर्चा, हम आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से बोल रहे हैं। हमारा अगला प्रसारण इस छोटे से अंतराल के बाद।

0: सुनिए NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे आकाशवाणी भोपाल पर।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
3: नमस्कार, मैं राजीव वर्मा, स्वच्छता ही सेवा अभियान से जुड़ा हुआ हूं और आप सभी से गुजारिश करता हूं, प्रार्थना करता हूं कि आप भी इससे जुड़ें और अपने कार्यालय, घर, कॉलोनी, मोहल्लों को स्वच्छ रखें। धन्यवाद। जय हिंद।
4: कवि हेमंत देवलेकर।
5: आकाशवाणी की दुनिया जहां संगीत है, नाटक हैं, समाचार हैं, समाज सुधार और शिक्षा के कार्यक्रमों का प्रसारण है, हम सब रचनाकार, अलग अलग क्षेत्रों के सर्जक आकाशवाणी के प्रति हार्दिक आभारी हैं कि आकाशवाणी ने हम सबको ये मौका दिया कि हम अपनी अपनी आवाज़ें आकाशवाणी के माध्यम से देश में, समाज जनों के बीच में प्रसारित कर पाएं। आकाशवाणी आकाश की तरह अजर रहे, अमर रहे। बहुत बहुत शुभकामनाएं और मंगल कामनाएं।
6: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की बुरी बुरी प्रशंसा कर रही है।
1: हो चुनौती कोई भी कैसी भी मुश्किल, हर जगह

ये आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे संस्कृत समाचार, जिन्हें हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे।

0: अफगानिस्तानम् अफगानिस्तानदलं पराजितम्। हिमाचलप्रदेशस्य धर्मशालानगरे प्रथम एकदिवसीय क्रिकेट स्पर्धायां भारतेन अफगानिस्तानदलं सप्तक्रीडक पुरस्सरं पराजितम् इति वार्ताः।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस और स्लोवाकिया की यात्रा के पहले चरण में फ्रांस के नीस पहुंच गए हैं। श्री मोदी G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के अलावा फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि नीस पहुंचने पर प्रधानमंत्री का भव्य स्वागत किया गया।
2: नीस में प्रधानमंत्री के स्वागत में फ्रांसीसी और इतालवी कलाकारों ने कथक, ओडिसी और भरतनाट्यम जैसे शास्त्रीय नृत्य प्रस्तुत किए। आज दोपहर प्रधानमंत्री मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों संयुक्त रूप से इनोवेशन और स्टार्टअप इकोसिस्टम को प्रदर्शित करने वाले प्लेटफॉर्म भारत इनोवेट्स लॉन्च करेंगे। भारत फ्रांस इनोवेशन वर्ष के दौरान आयोजित इस कार्यक्रम में 120 से ज्यादा भारतीय स्टार्टअप के साथ साथ वैश्विक निवेशक, सीईओ और टेक्नोलॉजी लीडर्स हिस्सा लेंगे। शैलेश मेनन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से श्रीराम शर्मा।
1: प्रधानमंत्री मोदी ने नीस के प्रवासी भारतीयों का आभार व्यक्त किया। श्री मोदी ने उनके स्वागत को अविस्मरणीय बताया। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के अध्यक्ष वी नारायणन ने बताया है कि परमाणु ऊर्जा विभाग के साथ मिलकर एक एडवांस आर्टिफिशियल हीटिंग सिस्टम विकसित किया गया है। यह लूनर लैंडर को चंद्रमा के बहुत ठंडे मौसम से बचा सकता है। बेंगलुरु में श्री नारायणन ने बताया कि इसरो परमाणु ऊर्जा विभाग के साथ मिलकर ऐसा लूनर लैंडर विकसित करने का काम करेगा जो चंद्रमा पर 200 दिन तक काम कर सके। उन्होंने कहा कि इससे भविष्य के मिशनों में लंबे समय तक सहायता मिलेगी। केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने हिमाचल प्रदेश में डाक विभाग की ड्रोन आधारित डाक सेवा शुरू करने की घोषणा की है। ये सेवा राज्य में मंडी के प्रधान डाकघर और रेहरधर की शाखा के बीच शुरू की गई है। मंडी प्रधान डाकघर से रेहरधर लगभग 12 किलोमीटर दूर है। ड्रोन सेवा से 2 घंटे से अधिक का समय घटकर केवल 7 मिनट रह जाएगा। संचार मंत्रालय ने बताया कि विभाग ने अगले 2 से 3 महीने में हिमाचल प्रदेश और असम में लगभग 150 स्थानों पर ड्रोन आधारित डाक सेवा शुरू करने की योजना बनाई है। लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ नए थलसेना प्रमुख होंगे। वर्तमान में वे थलसेना उप प्रमुख के रूप में कार्यरत हैं। लेफ्टिनेंट जनरल सेठ 30 जून को सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी के अवकाश ग्रहण करने के बाद कार्यभार संभालेंगे। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ युद्ध समाप्त करने के समझौते पर आज हस्ताक्षर होने की संभावना व्यक्त की है। इसके तुरंत बाद होर्मुज जलडमरू मध्य सबके लिए खुल जाएगा। श्री ट्रंप ने सोशल मीडिया पोस्ट में आशा व्यक्त की कि वार्ता सफल रहेगी। यदि ऐसा नहीं होता है तो अंतिम विकल्प भी उपलब्ध है। उधर ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बाघेई ने कहा कि तुरंत किसी समझौते पर हस्ताक्षर की संभावना नहीं है। उन्होंने कहा कि समझौता आज नहीं होगा, हो सकता है कि अगले कुछ दिन में ऐसा संभव हो। दक्षिण पश्चिम मानसून कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में पहुंच गया है। इसके अगले 3-4 दिन में ओडिशा और दक्षिण छत्तीसगढ़ के कुछ इलाकों में पहुंचने की संभावना है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह, केरलम, माहे, ओडिशा, तमिलनाडु, पुदुचेरी और पूर्वोत्तर के कुछ हिस्सों में अत्यधिक वर्षा का अनुमान है। अगले 3-4 दिन तक आंध्र प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, झारखंड, मध्य प्रदेश, कराईकाल, तेलंगाना, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल में गरज चमक के साथ तेज हवा और बारिश की संभावना है। आईसीसी महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में आज भारत ग्रुप ए में अपने अभियान की शुरुआत पाकिस्तान के साथ मैच से करेगा। मैच बर्मिंघम के एजबेस्टन में भारतीय समय के अनुसार शाम 7 बजे से शुरू होगा। महिला T20 अंतर्राष्ट्रीय मैचों में भारत अब तक पाकिस्तान के साथ हुए 16 में से 13 मुकाबले जीत चुका है। भारत ने कल रात हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में 3 एकदिवसीय मैचों की क्रिकेट श्रृंखला के पहले मैच में अफगानिस्तान को 7 विकेट से हरा दिया। भारत ने 22 ओवर और 5 गेंद में ही 195 रन का लक्ष्य हासिल कर लिया। लगातार वर्षा के कारण मैच की शुरुआत में देरी हुई और इसे 25-25 ओवर का कर दिया गया।

ये आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। प्रस्तुत है हमारे केंद्र से आज दिन भर प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का विवरण। सुबह 7:20 पर आप सुनेंगे दैनिक सूचना परक कार्यक्रम नमस्कार भोपाल। इस कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवाएंगे विश्व रक्तदान दिवस पर रेड क्रॉस अस्पताल ब्लड बैंक की कैंप समन्वयक दीपिका श्रीमाली से चर्चा। बुजुर्गों के लिए सुरक्षित योग पर योग विशेषज्ञ सुनीता सिंह से बातचीत होगी। लिटिल रीडर्स क्लब के बारे में क्लब समन्वयक तुलिका श्री से जानकारी हम आपके लिए उपलब्ध कराएंगे। सुबह 8:30 पर आप सुनेंगे फिल्म संगीत का कार्यक्रम सुरमई सवेरा।

सुबह 9:15 पर आप सुनेंगे लोक संगीत कार्यक्रम। आज के इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवाएंगे अभिलाषा मिश्रा के गाए बघेली लोकगीत। सुबह 9:30 का समय है सिंधी कार्यक्रम सिंधियत जी सुरहाण का। आज के इस कार्यक्रम में आप सुन सकेंगे अनीता लाला का काव्य पाठ। रोजाना की तरह जिले की चिट्ठी सुनिएगा सुबह 10:00। 10:05 पर आपको सुनवाएंगे सामुदायिक गान शिक्षण पाठ। 10:30 पर फिल्म संगीत का आनंद लीजिएगा। 11:00 फोन इन कार्यक्रम होगा फोन करें गीत सुने। 12:00 फरमाइशी पत्रों पर आधारित फिल्मी गीतों का कार्यक्रम होगा आपकी फरमाइश। 12:30 पर संग्रहालय से कार्यक्रम में आप सुनेंगे जंग लगी तलवार श्रृंखला की 9वीं कड़ी। 1:00 महिला कार्यक्रम, 1:30 पर लोक संगीत, 1:45 पर सुगम संगीत और 5:02 पर युवा साथियों का कार्यक्रम होगा युववाणी। इन चारों कार्यक्रमों में प्रस्तुति आकाशवाणी के शिवपुरी केंद्र की होगी। 2:00 5:33 पर 6:00 आप सुनेंगे फिल्म संगीत। 2:30 पर बच्चों का अपना कार्यक्रम होगा बाल सभा, प्रस्तुति आकाशवाणी के इंदौर केंद्र की होगी। 6:30 से आप सुनेंगे आईसीसी महिला T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2026 के अंतर्गत भारत और पाकिस्तान के मध्य बर्मिंघम में खेले जा रहे T20 क्रिकेट मैच का आंखों देखा हाल, जिसे हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे। 8:00 आप सुनेंगे समाचार सेवा प्रभाग आकाशवाणी द्वारा विशेष श्रृंखला सरकार के 12 वर्ष सशक्त भारत। 8:35 से एक बार पुनः आप सुन सकेंगे आईसीसी महिला T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2026 के अंतर्गत भारत और पाकिस्तान के मध्य बर्मिंघम में खेले जा रहे T20 मैच का आंखों देखा हाल हमारे दिल्ली केंद्र से। ये थे आकाशवाणी भोपाल और आकाशवाणी मध्य प्रदेश से आज दिन भर प्रसारित होने वाले कार्यक्रम। इसी के साथ कार्यक्रम विवरण अब संपन्न।

0: ये आकाशवाणी भोपाल है। प्रादेशिक समाचार बस कुछ ही पलों में होंगे।
1: आकाशवाणी का साकार हुआ सपना, जन जन सब गाएं मिल मधुर गा।

0: पहुंचाएं हम जन जन तक, सपनों को दें हम आकार।
1: आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं अभिषेक कटियार। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस और स्लोवाकिया के दो देशों की यात्रा के पहले चरण में फ्रांस पहुंचे, G7 शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज लाडली बहना योजना के तहत 1,25,00,000 महिलाओं के खातों में 1,835 करोड़ रुपये अंतरित करेंगे। 21 जून को होने वाली नीट परीक्षा के लिए प्रदेश के 30 जिलों के 283 केंद्रों पर व्यापक तैयारियां। और प्रदेश के कई जिलों में बारिश से तापमान में आई गिरावट, आज भी राज्य में अनेक जगहों पर आंधी और बारिश का अनुमान। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्लोवाकिया के दो देशों की यात्रा के पहले चरण में आज फ्रांस के नीस शहर पहुंच गए हैं। वे यहां पर G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के अलावा फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। पेश है एक रिपोर्ट।
2: आज दोपहर प्रधानमंत्री मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति एमैनुअल मैक्रों संयुक्त रूप से इनोवेशन और स्टार्टअप इकोसिस्टम को प्रदर्शित करने वाले प्लेटफॉर्म भारत इनोवेट्स लॉन्च करेंगे। भारत फ्रांस इनोवेशन वर्ष के दौरान आयोजित इस कार्यक्रम में 120 से ज्यादा भारतीय स्टार्टअप के साथ साथ वैश्विक निवेशक, सीईओ और टेक्नोलॉजी लीडर्स हिस्सा लेंगे। शैलेश मेनन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से श्रीराम शर्मा।
1: इसके पूर्व नीस पहुंचने पर भारतीय समुदाय के लोगों ने प्रधानमंत्री श्री मोदी का गर्मजोशी और उत्साह के साथ स्वागत किया। एक सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने फ्रांस के नीस में रह रहे प्रवासी भारतीयों का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि उनका स्वागत सत्कार अविस्मरणीय था। उन्होंने कहा कि भारत से मीलों दूर होने के बावजूद स्वदेश के साथ प्रवासियों के संबंध मजबूत बने हुए हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज सागर जिले के केसली में राज्य स्तरीय कार्यक्रम में लाडली बहना योजना की 37वीं किस्त लाडली बहनों के खातों में अंतरित करेंगे। इसमें 1,25,00,000 बहनों के खातों में 1,835 करोड़ रुपये जमा होंगे। इसके साथ ही मुख्यमंत्री देवरी विधानसभा को लगभग 190 करोड़ रुपये की लागत के 53 विकास कार्यों की सौगात भी देंगे। इनमें 122 करोड़ रुपये की लागत के 28 कार्यों का भूमि पूजन और करीब 69 करोड़ रुपये की लागत के 25 कार्यों का लोकार्पण होगा। वहीं मुख्यमंत्री भोपाल में MSME उद्यमियों, स्टार्टअप्स तथा अन्य योजनाओं के हितग्राहियों को सिंगल क्लिक के माध्यम से प्रोत्साहन राशि का वितरण भी करेंगे। इंदौर में आयोजित ब्रिक्स देशों की कृषि मंत्री स्तरीय और अधिकारी स्तरीय बैठकों का समापन कल एक सर्वसम्मत इंदौर घोषणा के साथ हुआ, जिसमें खाद्य सुरक्षा, किसान कल्याण, जलवायु सहनीय खेती, कृषि, व्यापार और डिजिटल एग्रीकल्चर को नई दिशा देने वाले कई ऐतिहासिक निर्णय लिए गए। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि वैश्विक संकट और अनिश्चितताओं के बीच ब्रिक्स देशों की यह बैठक पूरी दुनिया के लिए आशा, विश्वास और सामूहिक जिम्मेदारी का सशक्त संदेश लेकर आई है। ब्रिक्स कृषि सम्मेलन के अंतिम दिन कल मेघदूत उपवन में विकसित ब्रिक्स वाटिका में ब्रिक्स देशों के प्रतिनिधियों ने फलदार पौधे रोपकर हरित विकास का संकल्प भी दोहराया। अब समाचारों में वक्त है एक ब्रेक का।
3: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और फेसबुक के साथ ही एक्स प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर या न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
1: समाचारों में पुनः आपका स्वागत है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि केंद्र और राज्य सरकार के संयुक्त प्रयासों से नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में सुरक्षा व्यवस्था मजबूत हुई है और विकास कार्यों को भी नई गति मिली है।

0: मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार पुलिस विभाग में भर्ती के लिए युवाओं को प्रोत्साहित कर रही है।
1: हमारी सरकार भर्ती में भी प्रोत्साहन दे रही है, सब इंस्पेक्टरों की भर्ती की गई है। बीते समय से लगाकर लगातार 22,000 पदों की भर्ती का अभियान चला है। हर साल नई भर्ती निकालने के लिए हम सारा प्रबंधन कर रहे हैं, जिसके कारण से पुलिस के स्वीकृत पदों पर कोई स्थिति वेकेंट न रहे, ये हमारा प्रयास रहेगा।
0: मुख्यमंत्री ने प्रदेश की कानून व्यवस्था, नक्सल उन्मूलन, साइबर अपराध नियंत्रण और पुलिस बल की मजबूती जैसे विषयों पर विस्तार से समीक्षा भी की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांतों के अंतर्गत पिछले 12 वर्षों में देश में उल्लेखनीय बदलाव हुए हैं। आकाशवाणी समाचार प्रमुख क्षेत्र में सरकार के प्रयासों पर विशेष कार्यक्रम प्रसारित कर रहा है। आज बात है देश की सांस्कृतिक विरासत को मजबूत करने की दिशा में किए गए प्रयासों की।
2: पिछले 12 वर्षों में भारत की सांस्कृतिक यात्रा ने नई ऊंचाइयां हासिल की हैं। देश की संस्कृति अपनी परंपराओं से जुड़ी हुई है और साथ ही पूरी दुनिया के लिए खुली भी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, महाकाल लोक परियोजना, मां कामाख्या मंदिर का पुनर्विकास, जूना सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण और अयोध्या में राम मंदिर की स्थापना जैसे ऐतिहासिक कार्य किए गए हैं। आध्यात्मिक पर्यटन सर्किट और आधुनिक तीर्थयात्री सुविधाओं के माध्यम से भारत की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक पहचान को फिर से सशक्त बनाया जा रहा है। इस बदलाव में संग्रहालय अनुदान योजना और सांस्कृतिक कार्यक्रम की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। इन योजनाओं ने भारत की सांस्कृतिक धरोहर को सुरक्षित रखने के साथ साथ सांस्कृतिक रचनात्मकता और स्थानीय स्तर पर लोगों की भागीदारी को भी बढ़ावा दिया है। संग्रहालय अनुदान योजना के तहत देश भर में 21 नए संग्रहालय स्थापित किए गए हैं और 23 पुराने संग्रहालयों का आधुनिकीकरण किया गया है। यह योजना नागालैंड जैसे राज्यों में भी काफी लाभकारी साबित हुई है। सांस्कृतिक कार्यक्रम और उत्पादन अनुदान योजना भी देश भर में सांस्कृतिक गतिविधियों को बढ़ावा देने का एक महत्वपूर्ण माध्यम बनकर उभरी है। मणिपुर की सबसे पुरानी रंगमंच संस्था मणिपुर ड्रामेटिक यूनियन को हाल ही में वित्तीय सहायता मिली है, जिसके बाद वह नए नाट्य प्रस्तुतियों की तैयारी कर रही है। भारत ने अपनी संस्कृति को संरक्षित और दुनिया तक पहुंचाने के लिए बड़े कदम उठाए हैं। प्राचीन मंदिरों का जीर्णोद्धार किया है, तीर्थ स्थलों का विकास हुआ है और पुरानी परंपराओं को नया जीवन मिला है। साथ ही बेहतर सड़कें, स्वच्छ सुविधाएं और आधुनिक सेवाएं लोगों के लिए इन स्थानों तक पहुंचना अधिक आसान बना रही है। आज पूरी दुनिया भारत की संस्कृति, परंपराओं और जीवनशैली में रुचि दिखा रही है। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कल भोपाल में कहा कि नीट की 21 जून को होने वाली पुनर्परीक्षा पारदर्शी तरीके से होगी। उन्होंने विद्यार्थियों को अफवाहों से बचने और अपनी तैयारी पर ध्यान केंद्रित करने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति में खेल और शारीरिक शिक्षा को एक महत्वपूर्ण हिस्सा बनाया गया है। उन्होंने ये भी घोषणा की कि खिलाड़ियों के शैक्षिक रिकॉर्ड और खेल उपलब्धियों को उनकी कार्य निष्पादन रिपोर्ट से जोड़ा जाएगा। श्री प्रधान ने बताया कि पहली बार भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में खेल कोटा भी लागू किया गया है। वहीं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने 21 जून को होने वाली नीट परीक्षा के सुव्यवस्थित संचालन के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि पुलिस प्रशासन परीक्षार्थियों के साथ सकारात्मक भाव से हर संभव सहयोग प्रदान करे। जिला स्तर पर सोशल मीडिया पर नजर रखी जाए तथा अफवाह फैलने की स्थिति में तत्काल वस्तु स्थिति से लोगों को अवगत कराया जाए। सभी परीक्षा केंद्रों पर पेयजल सहित सभी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं। बैठक में बताया गया कि प्रदेश के 30 जिलों में नीट परीक्षा के लिए 283 केंद्र बनाए गए हैं। सर्वाधिक 57 केंद्र इंदौर में हैं। अब बात करते हैं मौसम की। प्रदेश में दक्षिण पश्चिम मानसून की रफ्तार फिर से बढ़ गई है और मौसम विभाग ने प्रदेश में 15 से 18 जून के बीच मानसून के प्रवेश की संभावना जताई है। इससे पहले प्रदेश भर में प्री मानसून गतिविधियां तेज बनी हुई हैं। कई जिलों में बारिश, तेज आंधी और ओलावृष्टि का दौर जारी है। कल राजधानी भोपाल में दिनभर उमस भरी गर्मी के बाद शाम के समय तेज हवाओं के साथ बारिश हुई, जिससे तापमान में गिरावट दर्ज की गई। वहीं मौसम विभाग ने आज भिंड, दतिया, छतरपुर, पन्ना और सागर जिलों में तेज आंधी और बारिश का अलर्ट जारी किया है। इसके अलावा भी प्रदेश में व्यापक रूप से तेज हवाएं चलने का अनुमान जाहिर किया गया है। मध्य प्रदेश राज्य बॉक्सिंग अकादमी भोपाल की प्रतिभावान मुक्केबाज माही लामा का चयन चीन में आयोजित होने वाले वर्ल्ड कप ऑफ बॉक्सिंग 2026 के लिए भारतीय टीम में किया गया है। माही लामा 60 किलोग्राम भार वर्ग में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगी। यह प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता 15 से 20 जून तक चीन में आयोजित की जाएगी। ICC महिला T20 विश्व कप में आज भारत अपने अभियान की शुरुआत पाकिस्तान के मैच के साथ करेगा। ये मैच बर्मिंघम के एजबेस्टन में भारतीय समय के अनुसार शाम 7 बजे से शुरू होगा। महिला T20 अंतर्राष्ट्रीय मैचों में भारत अब तक पाकिस्तान के साथ हुए 16 में से 13 मुकाबले जीत चुका है। वहीं शुक्रवार को मैनचेस्टर के ओल्ड ट्रेफर्ड में ग्रुप बी के मैच में स्कॉटलैंड ने आयरलैंड को हराया। वहीं भारत ने कल रात हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में 3 एक दिवसीय मैचों की श्रृंखला के पहले मैच में अफगानिस्तान को 7 विकेट से हरा दिया। शुभमन गिल को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। भारत और अफगानिस्तान का दूसरा वनडे 17 जून को लखनऊ में खेला जाएगा। अब कुछ समाचार संक्षेप में। शिवपुरी कलेक्टर ने कल

शासकीय अनुसूचित जाति कन्या पोस्ट मैट्रिक छात्रावास के निरीक्षण के दौरान छात्राओं से संवाद किया। धार कलेक्टर की अध्यक्षता में जिला स्तरीय शांति समिति की बैठक कल आयोजित की गई। बाल संप्रेषण गृह झाबुआ में बच्चों के मानसिक और आध्यात्मिक विकास के लिए एक विशेष सत्र का आयोजन किया गया और भारत ज्ञान मंडपम मिशन के अंतर्गत कल आगरमालवा जिले के सुसनेर स्थित दिगंबर जैन मंदिर के संग्रहित लगभग 30 पांडुलिपियों का सर्वे कर उन्हें चिन्हांकित किया गया। इस बुलेटिन में इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए दोपहर 2:10 पर। नमस्कार।

ये आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। हमारा अगला प्रसारण बस कुछ ही पलों में होगा। हम आकाशवाणी भोपाल से बोल रहे हैं। पेश है दैनिक सूचना परक कार्यक्रम नमस्कार भोपाल।

सभी सुनने वालों को विकास तिवारी का प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आज के नमस्कार भोपाल में। और आज का ये सफ़र आप तय करेंगे अपने रेडियो मित्र विकास तिवारी के साथ।

श्रोताओं, गर्मी से राहत देने वाली बारिश अपने साथ ताजगी और खुशियां लेकर आती हैं, लेकिन यदि सावधानी ना बरती जाए तो यही मौसम कई तरह की बीमारियों का कारण भी बन सकता है। इसलिए बारिश के मौसम में सेहत का विशेष ध्यान रखना बेहद ज़रूरी है।

बरसात के दौरान दूषित पानी, भोजन से डायरिया, टाइफाइड, हैजा, पीलिया जैसी बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। इसलिए हमेशा उबला या फिल्टर किया हुआ पानी ही पिएं और ताज़ा और स्वच्छ भोजन करें। खुले में बिकने वाले कटे फल, चाट पकौड़ी और बासे खाद्य पदार्थों से बचें। बारिश के मौसम में मच्छरों का प्रकोप भी बढ़ जाता है, जिससे डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया जैसी बीमारियां फैल सकती हैं। घर और आसपास पानी जमा ना होने दें, आवश्यकतानुसार मच्छर रोधी क्रीम या स्प्रे का उपयोग करें और सोते समय मच्छरदानी का उपयोग जरूर करें। लंबे समय तक गीले कपड़े जूतों में रहने से सर्दी, जुकाम, त्वचा संक्रमण और फंगल इन्फेक्शन का खतरा बढ़ जाता है। बच्चों और बुजुर्गों की विशेष देखभाल करें, क्योंकि उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता अपेक्षाकृत कम होती है। बारिश के दिनों में संतुलित आहार, पर्याप्त नींद और नियमित व्यायाम से शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत बनाकर रखा जा सकता है। हरी सब्जियां, मौसमी फल, दालें और विटामिन सी युक्त खाद्य पदार्थ अपने भोजन में अवश्य शामिल करें। याद रखिए, थोड़ी सी सावधानी आपको और आपके परिवार को बरसात में स्वस्थ और सुरक्षित रख सकती है।

0: सत श्री अकाल, नमस्कार, सलाम वेलकम। हेलो एवरीवन, मैं हूं अंबिका सिंह और आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का लोकप्रिय कार्यक्रम नमस्कार भोपाल।
1: और श्रोताओं, आज के नमस्कार भोपाल में क्या कुछ हम आपको सुनवाने वाले हैं, आइए आपको जानकारी दे दें। आज विश्व रक्तदान दिवस है, इस मौके पर हम बातचीत करेंगे रेडक्रॉस अस्पताल की रक्तदान शिविर समन्वयक दीपशिखा श्रीमाली से। और विवेकानंद लाइब्रेरी में लिटिल रीडर्स क्लब आज से शुरू होने जा रहा है, तो इस क्लब के बारे में हम बातचीत करेंगे क्लब समन्वयक तुलिका श्री से। और श्रोताओं, बुजुर्गों के लिए सुरक्षित योग विषय पर आज हम बातचीत करेंगे योग विशेषज्ञ सुनीता सिंह भदौरिया से। आपके पसंद के नए पुराने फिल्मी तराने तो होंगे ही, समाचार पत्रों पर होगा हमारा क्रम सुर्खियां। तो आइए सबसे पहले नज़र डाल लेते हैं अखबारों की कुछ खास खबरों पर सुर्खियों में।

केंद्रीय विद्यालय संगठन ने वर्ष 2026-27 सत्र से सभी केंद्रीय विद्यालयों में कक्षा 6वीं और 9वीं में कम से कम एक संस्कृत सेक्शन रखना अनिवार्य कर दिया है। और भोपाल सहित पूरे प्रदेश में अब पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल पीयूसी सर्टिफिकेट बनवाने के लिए वाहन मालिक के मोबाइल पर आने वाले ओटीपी का सत्यापन अनिवार्य कर दिया गया है। बिना ओटीपी सत्यापन के कोई भी पीयूसी सर्टिफिकेट जारी नहीं होगा। एक और खबर है, यात्रियों की सुविधा और रेल सेवाओं को अधिक सरल और डिजिटल बनाने के लिए भारतीय रेलवे ने रेलवन ऐप को एकीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म के रूप में शुरू किया है। रेलवन ऐप पर यात्री आरक्षित और अनारक्षित टिकट बुकिंग, प्लेटफॉर्म टिकट, लाइव ट्रेन स्टेटस, आरक्षण विवरण, टिकट निरस्तीकरण एवं रिफंड, रेल मदद सेवाएं, शिकायत दर्ज करने और ट्रेन में भोजन बुकिंग जैसी सुविधाओं का लाभ अब यात्री ले सकेंगे।

और एक और खबर है, जिसे मुख्य पृष्ठ पर स्थान मिला है, अब ICBM मिसाइलों को भी मार गिराएगा भारत, बना पांचवा देश। भारत अब 5000 किलोमीटर से भी ज़्यादा दूर से आने वाली दुश्मन की अंतर महाद्वीपी बैलिस्टिक मिसाइल को इंटरसेप्ट करने और उसे नष्ट करने की क्षमता वाला देश बन गया है। DRDO ने स्वदेशी तकनीक पर आधारित बहुस्तरीय बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस प्रणाली का सफल प्रक्षेपण कर रक्षा क्षेत्र में बड़ी उपलब्धि हासिल की है। और सरकार ने सेना के वाइस चीफ ऑफ आर्मी लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ को अगला चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ नियुक्त किया है। वे 30 जून को रिटायर हो रहे जनरल उपेंद्र द्विवेदी की जगह लेंगे। और खबर मानसून की, मानसून 400 किलोमीटर दूर तीसरे सप्ताह के अंत तक पहुंचेगा। 2-3 दिनों में मानसून के आगे बढ़ने की परिस्थितियां अनुकूल, अभी महाराष्ट्र से सोलापुर तक आया मानसून मध्य प्रदेश से महज 400 किलोमीटर की दूरी पर है। मौसम विभाग के मुताबिक मानसून की उत्तरी सीमा प्रदेश के दक्षिणी छोर के ठीक दक्षिण में महाराष्ट्र के सोलापुर तक पहुँच गई है। अगले 2-3 दिनों में मानसून के आगे बढ़ने की परिस्थितियां अनुकूल है। मौसम विशेषज्ञों के मुताबिक मानसून तीसरे सप्ताह के अंत तक मध्य प्रदेश में दस्तक दे सकता है। और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज 125 करोड़ लाडली बहनों के बैंक खातों में 1,835 करोड़ रुपए का अंतरण करेंगे। वे सागर जिले के केसली में विकास कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण भी करेंगे।

और राष्ट्रपति 21 को कोनो में, 20 से 22 तक का पूरा इलाका नो फ्लाई जोन। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के 21 जून को प्रस्तावित कोनो नेशनल पार्क के दौरे को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी शीला दाहिमा ने कराहल और विजयपुर अनुभाग क्षेत्र को 20 से 22 जून तक नो फ्लाई जोन घोषित किया है। इसके पहले राष्ट्रपति 20 जून को जबलपुर पहुंचेंगी। 21 जून को वे गैरिसन ग्राउंड में योग दिवस के कार्यक्रम में शामिल होंगी। इसके बाद रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय के 36वें दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि रहेंगी। और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 को पावर योग से राजयोग तक होगा अभ्यास। 150 से ज़्यादा स्थानों पर प्राणायाम, सूर्य नमस्कार और ध्यान सत्र होंगे। केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय भी योग दिवस का आयोजन कर रहा है। विश्वविद्यालय के परिसर में 13 राज्यों से स्टूडेंट और टीचर शामिल होंगे। वहीं शहर के अलग अलग स्थानों पर मीनाल स्थित 10 हास्य योग क्लब के जो संयोजक हैं वे भी हास्य योग के माध्यम से जीने का अंदाज सिखाएंगे। अंतर्राष्ट्रीय योग गुरु कृष्णा मिश्रा शहर के विभिन्न स्थानों पर विशेष योग सत्र आयोजित करेंगे। सहज योग परिवार भी 3 स्थानों पर योग के आयोजन करेगा। गायत्री शक्तिपीठ में भी प्राणायाम और ध्यान के कार्यक्रम होंगे। और मध्य प्रदेश राज्य बॉक्सिंग अकादमी की प्रतिभावान मुक्केबाज माही लामा का चयन चीन में आयोजित होने वाले भारतीय विश्व कप टीम में किया गया है। माही लामा 60 किलोग्राम वर्ग में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगी। तो इसी के साथ यहीं समेटते हैं सुर्खियों को और अब वक्त है आपको एक प्यारा सा गीत सुनवाने का। तो लीजिए, पेश है ये प्यारा सा नगमा।

0: श्रोताओं, आज विश्व रक्तदान दिवस है। थैलेसीमिया जैसी बीमारी से पीड़ित व्यक्तियों को काफ़ी रक्त की ज़रूरत होती है। याद रखिए, आपका दान किया हुआ रक्त किसी का जीवन बचा सकता है। रक्तदान के लिए लोगों को जागरूक करने आज दुनिया भर में विश्व रक्तदान दिवस मनाया जाता है। आज के दिन के महत्व के बारे में आइए जानते हैं रेडक्रॉस हॉस्पिटल के ब्लड बैंक की रक्तदान शिविर समन्वयक दीप शिखा श्रीमाली से।
1: ये दिवस इसलिए मनाया जाता है कि कई सारे ऐसे रक्तदाता होते हैं जो बिना किसी स्वार्थ के ब्लड डोनेशन करते हैं, तो उनको सम्मान देने के लिए, उनको धन्यवाद देने के लिए रक्तदाता दिवस जो है वो मनाया जाता है।
0: रक्तदान महादान कहलाता है, और ये इतना ज़रूरी क्यों है?
1: रक्तदान महादान कहलाता है, ये तो सभी जानते हैं। ज़रूरी इसलिए है कि एक जो रक्तदान है वो 3 जिंदगियां बचाता है। जैसे कोई भी एक व्यक्ति एक बार ब्लड डोनेशन करता है, उससे हम 3 चीज़ें जो है वो बनाते हैं, प्लाज्मा, प्लेटलेट और PRBC। अलग अलग सिचुएशन या अलग अलग कंडीशन में जिस कंपोनेंट की आवश्यकता होती है वो मरीज़ को दिया जाता है।
0: कौन रक्तदान कर सकता है और कौन रक्तदान नहीं कर सकता है?
1: रक्तदान करने के लिए सबसे पहले आवश्यक होता है 18 से 65 वर्ष की जो आयु है वो निश्चित की गई है, और कोई भी स्वस्थ व्यक्ति रक्तदान कर सकता है। इसके अलावा उनका जो हीमोग्लोबिन है वो 12.5 है, तो वो आराम से रक्तदान कर सकते हैं। बाकी जब भी कैंप होता है उसमें भी कुछ चीज़ें फिक्स की जाती है। हम लोग जो डोनर होते हैं उनका देखते हैं हीमोग्लोबिन कितना है, वेट उनका 45 किलो से ऊपर होना चाहिए।
0: और किसी प्रकार की कोई बीमारी हो जो रक्तदान के लिए प्रतिबंधित होती है?
1: जी, जब भी कोई भी रक्तदाता आता है तो उनसे एक फॉर्म होता है, वो भरवाया जाता है, उसमें सारी डिटेल दी हुई रहती है, उनको वो पढ़ना होता है। उसके पहले उनकी काउंसलिंग की जाती है, उसमें सारी चीज़ें पूछ ली जाती है। उसके बाद यदि उन्हें कोई दिक्कत है तो वो बताते हैं, तो डॉक्टर डिसाइड करते हैं कि उन्हें किस कंडीशन में ब्लड नहीं देना चाहिए।
0: रक्त समूह कितने प्रकार के होते हैं और इनमें कौन सा रक्त है जो सबसे कम उपलब्ध होता है?
1: रक्त समूह जो है वो वैसे तो जनरली 8 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला होता है ओ पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, ए बी पॉजिटिव, और इसके अलावा नेगेटिव ग्रुप्स होते हैं, ए नेगेटिव, बी नेगेटिव, ओ नेगेटिव, ए बी नेगेटिव। सबसे रेयर जो ब्लड ग्रुप होता है वो ए बी नेगेटिव होता है। काफ़ी लोगों में वो कम पाया जाता है, मतलब अगर 1000 लोग डोनेशन करेंगे तब जाके हमें 1 या 2 ए बी नेगेटिव का डोनर उसमें मिलेगा।
0: एक बार जो रक्तदान कर चुका है वो अगली बार कितने समय बाद रक्तदान कर सकता है?
1: कोई भी स्वस्थ व्यक्ति ब्लड डोनेशन कर सकता है। आप 3 महीने में एक बार रक्तदान कर सकते हैं।
0: जो लोग रक्तदान करते हैं किसी शासकीय अस्पताल में या संस्थान में या रेडक्रॉस में, जो प्रमाण पत्र उन्हें मिलता है, उस प्रमाण पत्र के आधार पर क्या वे कभी जीवन में जरूरत पड़ने पर अपने रिश्तेदारों के लिए या स्वयं के लिए वो रक्त निःशुल्क प्राप्त कर सकते हैं?
1: जी हाँ, जो भी रक्तदाता होते हैं उनका हमारे पास रिकॉर्ड होता है, और जब भी उन्हें रक्त की आवश्यकता होती है या उनके किसी रिश्तेदार को आवश्यकता होती है तो हमारी तरफ से एक डोनर कार्ड और डोनर सर्टिफिकेट दिया जाता है। वो दिखाकर आप जो ब्लड है वो ब्लड के बदले ब्लड रहता है वो आपको मिल सकता है।
0: रेड क्रॉस अस्पताल में जो ब्लड बैंक है वो कब से कब खुलता है, और वहाँ पर यदि कोई रक्तदान करना चाहे तो?

0: वो कब कब उसकी उपलब्धता होती है?
1: रेड क्रॉस का जो ब्लड बैंक है वो 24 घंटे 24/7 ओपन है। डोनेशन की सुविधा सुबह 8 बजे से रात को 8 बजे तक रहेगी। तो जो भी व्यक्ति ब्लड डोनेशन करना चाहते हैं या जो युवा डोनेशन करना चाहते हैं वो आ सकते हैं।
0: क्या रेड क्रॉस में जो भर्ती मरीज रहते हैं उनके लिए कुछ रियायती दरों पर, कंसेशनल दर पर भी रक्त उपलब्ध होता है?
1: रक्त ऐसा है कि ब्लड के बदले ब्लड दिया जाता है, लेकिन रेड क्रॉस सोसाइटी जो है इस समय जो कैंप करते हैं हम लोग, वो सभी मरीजों के लिए, कैंसर के पेशेंटों के लिए या थैलेसीमिया के बच्चों के लिए, उनसे ना कोई एक्सचेंज लिया जाता है ना उन्हें कुछ चार्जेस देने होते हैं। थैलेसीमिया बच्चों को तो निःशुल्क ही ब्लड दिया जाता है। कैंसर पेशेंट को भी यहाँ से ब्लड दिया जाता है बिना एक्सचेंज के। जब भी किसी को ज़रूरत होती है तो कैंसर हॉस्पिटल से भी पेशेंट आते हैं। इसके अलावा रेड क्रॉस में जो मरीज हैं जिनको कभी ब्लड की आवश्यकता होती है वो टेस्टिंग अमाउंट पे करके ब्लड ले सकते हैं।
0: जो भी लोग रक्तदान करना चाहते हैं उनसे आप क्या अपील करना चाहेंगे?
1: रक्तदान करने के लिए ये अपील करेंगे कि आज का जो युवा है वो यदि आगे आएंगे रक्तदान के लिए, क्योंकि उन्हीं के कारण आने वाले समय में कई थैलेसीमिया के ऐसे बच्चे हैं जिन्हें ब्लड की आवश्यकता होती है और कई बार सर्जरी होती है जिसमें ब्लड की आवश्यकता होती है। तो युवा वर्ग, उनसे ये अपील है कि आप ब्लड डोनेशन करने आएं, साथ में अपने दो दोस्तों को भी लेकर आएं जिससे वो भी मोटिवेट हों और ब्लड डोनेशन करें।
0: अभी आप सुन रहे थे रेड क्रॉस अस्पताल के ब्लड बैंक की रक्तदान शिविर समन्वयक दीपशिखा श्रीमाली से बातचीत। श्रोताओं, रक्तदान बहुत जरूरी है, इससे आप कई लोगों का जीवन बचा सकते हैं, तो रक्तदान जरूर करें।

0: श्रोताओं, स्वामी विवेकानंद लाइब्रेरी में आज से लिटिल रीडर्स क्लब की शुरुआत होने जा रही है। इस क्लब में केवल बच्चे ही सदस्य होंगे। ये क्लब क्यों शुरू हो रहा है, क्लब में क्या गतिविधियां होंगी, आइए जानते हैं क्लब की समन्वयक तुलिका श्री से।
1: सर, हम 14 जून से लिटिल रीडर्स क्लब को लॉन्च कर रहे हैं। लिटिल रीडर्स क्लब एक ऐसा प्लेटफॉर्म होगा जहाँ पे 4 साल से 14 साल के बच्चों को एक पढ़ने का परिवेश मिलेगा। हम चाहते हैं कि बच्चे जितना जल्दी रीडिंग पिकअप करें, जितना जल्दी पढ़ें, अलग अलग बुक्स से इंट्रोड्यूस हों। इसलिए लाइब्रेरी का चिल्ड्रन सेक्शन भी हम बहुत जल्दी टर्न करते रहते हैं, चेंज करते रहते हैं बुक्स को, कि नई नई किताबें आ रही हैं, नए नए पब्लिशर्स बच्चों के बुक्स पर फोकस कर रहे हैं। बहुत सारी पिक्चर्स बुक्स होती हैं जो बच्चों को पढ़ने के लिए बहुत प्रेरित करती हैं। तो हमने सोचा है कि 4 साल में अगर बच्चों को ये सुविधा दी जाए, उनमें ये इंटरेस्ट पैदा किया जाए कि वो किताबें पढ़ें, तो जल्दी पढ़ने से ब्रेन का विकास भी बहुत जल्दी होता है, बहुत अच्छे से होता है। तो 4 साल के बच्चों से लेके 7 साल के बच्चों तक हमने एक लिटिल बर्ड्स करके ग्रुप बनाने की कोशिश करेंगे, और 7 साल से लेके 14 साल के बच्चों के लिए पेज टर्नर्स, जिसमें बुक डिस्कशंस होंगे, बच्चों के लिए पजल्स, स्पेलिंग क्विजेस, जैसे स्पेलथन होता है दूसरे देशों में, हम बहुत सारे एक्टिविटीज करते हैं, ईडियम्स, पजल्स, उसको लेके हम एक लाइब्रेरी एक्टिविटी कराने की कोशिश करेंगे कि बच्चे कम से कम स्क्रीन से जुड़े रहें। स्क्रीन से जुड़े ना रहें तो एक कम्युनिटी भी उन्हें मिले जो कि लाइब्रेरी उन्हें देगा, एक परिवेश देगा, जिससे उनका बहुत फ्रीक्वेंटली मिलना जुलना होगा ऐसे बच्चों के साथ जो उनके जैसे ही हैं। तो हमने ऐसे एक प्लेटफॉर्म की रचना करने की कोशिश की है जिसमें लाइब्रेरी में बच्चों को एक कम्युनिटी प्रदान की जाए।
0: ये जो क्लब आप बनाने जा रहे हैं, इसमें कुल बच्चों की संख्या कितनी होगी, और जो दो ग्रुप अलग अलग बनेंगे उसमें कितने कितने बच्चे होंगे, और दोनों ग्रुप दोनों समूहों का क्या अलग अलग काम होगा?
1: लाइब्रेरी में जो दो ग्रुप्स बनेंगे, तो जो छोटे बच्चों का ग्रुप है उसमें इन्वॉल्वमेंट ज्यादा होता है किसी भी मेंटर का, तो उन बच्चों को लेके पढ़ना पढ़ाना और उनको प्रेरित करना कि ये भी किताब है, इसको भी पढ़ो, इसको देखो, पिक्चर्स बुक्स को देखो, छोटे छोटे फोनिक बुक्स को देखो, ये काम में मेरा ज्यादा इन्वॉल्वमेंट रहेगा। जहां पर हमारा दूसरा ग्रुप है जो 7 से 14 साल के बच्चों का ग्रुप है, उसमें बच्चे खुद पढ़ सकते हैं, तो उनके साथ मेरा बुक डिस्कशन का काम रहेगा। हमने नई बुक्स पढ़ी, उसके कैरेक्टर्स के बारे में डिस्कशन, उनके कैरेक्टर्स के ऑल्टरनेट डिसीजंस के बारे में डिस्कशन, एक बच्चों में एम्पथी, सिंपथी की भावना, क्रिएटिविटी। हम चाहते हैं कि बच्चे सोचें किताबों के बारे में, कैरेक्टर्स के बारे में, खुद परिकल्पना करें बहुत सारे कि कैरेक्टर्स क्या कर सकते थे, ये बुक में किसी कैरेक्टर के अंदर किस टाइप का द्वंद्व चल रहा है। इन चीज़ों को सोचने के लिए बच्चे खुद भी अपने ग्रुप में आपस में बात कर सकते हैं। एक ओवरव्यू तो बिल्कुल रहेगा ही मेरा, ऊपर से बच्चे छोटे बच्चों को भी मेंटर करेंगे, तो ये एक अलग टाइप की कम्युनिटी की हम परिकल्पना कर रहे हैं जहाँ बच्चे अपने से छोटे उम्र के बच्चों को भी गाइड कर सकें।
0: ये जो लिटिल रीडर्स क्लब जो आप बनाने जा रहे हैं, ये कहाँ पर बैठेगा और इसका समय क्या रहेगा, किस समय ये, किस तरह की एक्टिविटीज से जुड़े रहेंगे?
1: सर, ये लाइब्रेरी में ही होगी, स्वामी विवेकानंद लाइब्रेरी में, और बच्चे यहाँ के चिल्ड्रंस सेक्शन में बैठेंगे। और भी लाइब्रेरी में जगह हैं जो कि हम संडे को उसको ओपन रखते हैं बच्चों की एक्टिविटीज़ के लिए, तो सारे बच्चे, जैसे अभी हमने ये क्लब को लाइब्रेरी के मेंबर्स के लिए ही ओपन किया हुआ है, तो अभी हमें एक क्लियर कट आइडिया नहीं कि कितने बच्चे होंगे दोनों ग्रुप्स में, बट हमने ये ज़रूर सोचा है कि महीने में जब हम 2 बार मिलेंगे तो हम दोनों ग्रुप्स को ज़्यादातर तो अलग अलग उनका मीटअप कराएंगे, बट कुछ मीटअप साथ में होंगे जो उनकी ग्रुप एक्टिविटी साथ में की जाएंगी। लाइब्रेरी में ही ये एक्टिविटीज़ हो पाएँ, इसको ध्यान में रखा गया है। अगर बड़ी एक्टिविटीज़ हम करेंगे तो हम और कल्चरल सेंटर्स में भी उसको एक्सपैंड करने की कोशिश करेंगे।
0: ये जो इस तरह का जो क्लब पहली बार बनाया जा रहा है, ये बच्चों के जो विकास है उसमें किस तरह से सहभागी होगा, किस तरह से उनका तीव्र विकास करने में इस क्लब के जरिए बच्चों को मदद मिलेगी?
1: सर, एक चीज़ होती है बच्चों को बोर होने देना। बोर होने देने से बच्चों में क्रिएटिविटी आती है। कई बार हम जब किताबों के साथ बैठते हैं तो 2-3 पन्ने पढ़ने के बाद हमें उसको सोचना पड़ता है, जबकि हम जब स्क्रीन देखते हैं हम इंस्टेंटली कंज्यूम करते रहते हैं बहुत सारे कंटेंट को, हम सोचते नहीं हैं। तो चीज़ें आपने हमेशा देखा होगा पढ़ने पर ज़्यादा लंबे समय तक याद रहती हैं, और अगर वीडियोज़ देखी जाएँ तो ठीक है समझ में आ जाएगा, बट बहुत लंबे समय तक वो चीज़ें याद नहीं रहती हैं आपको। तो हमारा उद्देश्य ये है कि बच्चों को ज़्यादा पढ़ने को प्रेरित किया जाए, क्योंकि उसी से वो थोड़े बोर भी होते हैं, थोड़ा सोचते भी हैं, क्रिएटिविटी भी ज़्यादा आती है, बच्चे लिखना शुरू कर देते हैं, क्राफ्ट करना शुरू कर देते हैं, वो खुद भी लिखने के लिए प्रेरित होते हैं। तो बच्चों के तीव्र विकास में तो बुक्स का सबसे बड़ा योगदान रहा है। बड़े बड़े कंट्रीज ने, आजकल अगर आप नॉर्वे वगैरह जैसे कंट्रीज का नाम लें, तो वो वापस पेपर पेन पर वापस आ रहे हैं। स्मार्ट क्लासरूम, स्मार्ट

0: टीचिंग को उन्होंने एकदम ही रिजेक्ट कर दिया है। हमें बुक्स के इम्पोर्टेंस को वापस लाना है, बच्चों को स्क्रीन से ज़्यादा दूर रखना है, उनके ब्रेन के विकास में सबसे ज़्यादा यूजफुल रहेगा, क्योंकि बहुत सारी बीमारियों का जड़ है स्क्रीन में बहुत सारा समय देना।
1: तुलिका जी, हमसे बातचीत करने और इन तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
0: थैंक यू सर, थैंक यू सो मच।
2: अभी आप सुन रहे थे विवेकानंद लाइब्रेरी में शुरू हो रहे लिटिल रीडर्स क्लब की समन्वयक तुलिका श्री से बातचीत। तो श्रोताओं, बच्चों का स्क्रीन टाइम कम करने और उनमें किताबें पढ़ने की आदत डालने के लिए इस क्लब की सहभागिता जरूरी है। इसमें बच्चे किताबें पढ़ेंगे और सीखेंगे।

0: श्रोताओं, योग, व्यायाम, प्राणायाम, मेडिटेशन हर व्यक्ति को स्वस्थ बनाए रखने के लिए जरूरी है, लेकिन बुजुर्गों को योग व्यायाम के लिए पर्याप्त सावधानी रखना जरूरी है। बुजुर्गों के लिए कौन से आसान योग हैं, उन्हें करते समय क्या सावधानी रखें, आइए जानते हैं योग विशेषज्ञ सुनीता सिंह भदौरिया से।
1: आम आदमी के लिए योग, जैसे स्वामी विवेकानंद ने कहा है कि योग मन को एकाग्र करने और जीवन को संतुलित करने का सर्वोत्तम साधन है। तो अगर व्यक्ति योग के साथ जुड़ता है, तो जैसे आप एलोपैथी की दवाइयाँ लेते हैं, आपको एक बीमारी सही होती है, लेकिन उसके साथ में दूसरी बीमारियाँ आपको गिफ्ट में मिल जाती हैं। लेकिन अगर आप किसी एक अंग के लिए योग करते हैं, उससे दूसरे अंग अपने आप स्वस्थ होते हैं। इसलिए आपको जो चीज़ फ्री में आपको स्वास्थ्य दे रही है, उसके साथ जुड़ना ज़्यादा आपके लिए लाभकारी रहेगा। तो हर व्यक्ति को योग से जुड़ना चाहिए और हर उम्र का व्यक्ति योग कर सकता है।
0: बुजुर्गों को स्वस्थ रखने में किस तरह से योग की भूमिका है, किस तरह से योग और व्यायाम उनके लिए महत्वपूर्ण है?
1: बुजुर्गों के लिए योग बहुत ही लाभकारी हो सकता है, क्योंकि इसमें उनके शरीर के जो लचीलापन है एवं संतुलन शक्ति को बढ़ाता है योग। जैसे ताड़ासन है, वृक्षासन है, सरल प्राणायाम है, जैसे सांस के अभ्यास है, इनसे न सिर्फ शरीर बढ़िया रहता है बल्कि मानसिक शांति भी मिलती है। अगर आप चाहें तो इसमें आप गहरी सांस लेने के अभ्यासों को भी जोड़ सकते हैं। बुजुर्गों के लिए ध्यान भी शामिल कर सकते हैं, क्योंकि जो वृद्धावस्था होती है उसमें अक्सर याददाश्त की कमी हो जाती है। तो आप मेडिटेशन और ध्यान के माध्यम से अपनी याददाश्त पे भी काम कर सकते हैं। इसमें जैसे आराम से बैठकर गहरी लंबी सांस लेने का अभ्यास कर सकते हैं, इससे आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल रहता है और अच्छी नींद आती है। स्वास्थ्य के लिए आप हल्की वॉक कर सकते हैं, और बुजुर्गों को चाहिए कि हल्के आहार पे जो खाना वो आराम से पचा सकते हैं, ऐसा आहार भी उनको लेना चाहिए। सुबह शाम के हिसाब से गरिष्ठ भोजन नहीं करना चाहिए, और अपनी दिनचर्या में छोटे छोटे परिवर्तन उनको करने चाहिए।
0: किस तरह की सावधानी योग करते समय या विभिन्न आसनों को करते समय बुजुर्गों को रखना चाहिए?
1: चूंकि वृद्धावस्था में शरीर अपना थोड़ा सा जटिल हो जाता है और हड्डियाँ अपनी थोड़ी से युवाओं और बच्चों से थोड़े से ज़्यादा कड़क हो जाते हैं, उनके जो जॉइंट्सों के ऑयल होते हैं, तेलीज होता है, वो सूख जाता है। तो उसमें वृद्धों को चाहिए कि सबसे पहले जैसे योग शुरू कर रहे हैं तो उनको चाहिए किसी योग गुरु के मार्गदर्शन में करें। अगर कोई सिखाने वाला मिल जाए तो उसके सामने रहकर वो योग करें। यदि कोई गंभीर बीमारी है उनको, जैसे हार्ट है या हाई ब्लड प्रेशर है, मधुमेह है,

0: अगर दवाएं चल रही हैं तो फिर डॉक्टरों की सलाह के साथ करें। और योग की शुरुआत करने के लिए सबसे पहले जो संधि योग होता है, क्योंकि बुज़ुर्गों में अक्सर आर्थराइटिस या गठिया बात की समस्याएं ज़्यादा होती हैं, तो उनको चाहिए कि सबसे पहले संधि योग से शुरुआत करें, सीधे आसनों पर ना जाएँ, क्योंकि हो सकता है उससे उनको चोट पहुँच सकती है या नुकसान पहुँच सकता है। तो पहले उनका काम ये रहता है कि आप उनके जॉइंट्स को ढीला या लूज करना है, तो उसके लिए संधि योग सबसे बेस्ट तरीका है, जिसमें आपके पंजों को गोल घुमाना, कलाई को गोल घुमाना, अपने गर्दन को आगे पीछे दाएं बाएं गोल घुमाना, ये सारी चीज़ें, कमर को आगे पीछे दाएं बाएं करना, ये सारी क्रियाएं संधि योग के अंतर्गत आती हैं। तो पहले जॉइंट्स के मूवमेंट करने हैं। इसमें ध्यान रखना है कि सर से लेकर पैर तक करें, या पैर से स्टार्ट करते हैं तो पैरों से लेकर आप सर तक कर सकते हैं, मतलब आपको जॉइंट टू जॉइंट जाके सीरियल तक पहुँचना है। तो अगर इस तरीके से वृद्ध अगर योग करते हैं तो उनके जॉइंट्स में जो वात रोग की समस्या ज़्यादा होती है बुज़ुर्गों को, तो उससे उनको निजात मिल सकती है। जब आपने ये संधि रोग का अभ्यास बहुत अच्छे से कर लेते हैं, आपके जॉइंट जब लूज़ हो गए हैं, आपके हिप जॉइंट्स हैं, नी जॉइंट्स हैं, आपके कलाई हैं, आपकी कोहनी है, आपके कंधे हैं, जो फ्रोजन शोल्डर हो जाता है, इन सब में जब आपके आराम मिल जाएँ, ये खुल जाएँ जब ये गांठें या जॉइंट्स आपके लूज़ हो जाएँ, उसके बाद फिर आप आसन भी ट्राई कर सकते हैं। तो बुज़ुर्गों को चाहिए कि सरल आसनों से आप कठिन की तरफ बढ़ें। जो सरल आसन है, जैसे पद्मासन है आपका, वज्रासन है आपका, मकर आसन है, भुजंग आसन है, ऐसे आसन जो शरीर को लचीला बनाने में मदद करते हैं, ऐसे आसनों का अभ्यास कर सकते हैं। और उसके साथ में फिर आप उनको चाहिए कि मानसिक शांति और जो आपके फेफड़ों की क्षमता बढ़ाने के लिए प्राणायाम को भी आसनों के बाद में ऐड कर सकते हैं। तो सबसे पहले बुज़ुर्गों को चाहिए कि संधि योग करें, जॉइंटों के मूवमेंट का योग करें, उसके बाद में फिर आसन करें और फिर प्राणायाम में करें। तो प्राणायाम में आपका अनुलोम विलोम कर सकते हैं, भ्रामरी प्राणायाम कर सकते हैं, जिससे याददाश्त बढ़ती है, आपके शरीर में ऑक्सीजन की पूर्ति होती है, आपके फेफड़ों की जो ऑक्सीजन लेने की क्षमता है वो बढ़ती है, ये कर सकते हैं। और फिर प्राणायाम के बाद में कुछ मुद्राएं हैं, जैसे ज्ञान मुद्रा है, चिन्ह मुद्रा है, आपका प्राण मुद्रा है, अपान वायु मुद्रा है, इनका अभ्यास कर सकते हैं, जिससे ऊर्जा उनकी जो उसको शरीर में प्रवाह का सीधा रास्ता मिले, और जिससे उनके जो मानसिक शांति है या उच्च रक्तचाप है उसमें भी उनको आराम मिलता है।
1: किस तरह के मेडिटेशन बुजुर्ग कर सकते हैं?
0: बुजुर्ग वृद्धावस्था में जैसे कि नींद नहीं आने की बीमारी या याददाश्त की कमी की बहुत समस्या होती है, इसमें जो ध्यानात्मक आसन होते हैं या ध्यान की जो विधियाँ हैं, आप हार्टफुलनेस में सीधा ध्यान करते हैं बैठ के, या फिर किसी जगह पे एक जगह पर्टिकुलर आप चुन लें, उस जगह पे प्रतिदिन उसी समय पर बैठकर आप आंखें बंद करके हल्का म्यूजिक चला सकते हैं, या फिर आंखें बंद करके अपनी सांसों पर ध्यान देने का अभ्यास कर सकते हैं। धीरे धीरे इसको बढ़ाया जा सकता है। इस तरीके से मेडिटेशन अगर करते हैं आप सुबह अपने योग अभ्यास करने के बाद में, कम से कम 15 से 20 मिनट 30 मिनट तक आप मेडिटेशन करते हैं, और रात को सोने से पहले आप 10 से 15 या 20 मिनट तक अगर बुज़ुर्ग मेडिटेशन करते हैं, तो उनको बहुत अच्छी नींद आती है और उनको मानसिक शांति भी मिलती है, जिससे कि उनकी याददाश्त में भी सुधार होता है।
1: वृद्धावस्था में अक्सर बुजुर्गों के साथ ये दिक्कत होती है कि कभी वो बाथरूम में फिसल कर गिर जाते हैं या कभी घर के आंगन में वो फिसल जाते हैं, इससे उनके शरीर में चोट पहुंच जाती है। तो ऐसे वृद्ध जो इस तरह से चोटिल हो चुके हैं, उन्हें किस तरह के आसन करने की ज़रूरत है या किस तरह के योग व्यायाम करने की ज़रूरत है?
0: अब जिन बुज़ुर्गों को जैसे चोटिल हो गए हैं, तो उनको चाहिए कि डॉक्टर या योग गुरु की देखरेख में सिर्फ संधि योग करना है, आसन नहीं करने। लेकिन जिनको अभी चोट नहीं लगी है, जो अभी फिसले नहीं हैं, या जिनके अभी शरीर स्वस्थ है लेकिन बात की समस्या है या जोड़ों में दर्द है, तो ऐसे जो बुज़ुर्ग हैं तो वो लोग अपने लिए संतुलन वाले जो आसन है, जैसे बैलेंस बनाने वाले आसन है, ताड़ासन है, इसका अभ्यास कर सकते।
1: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे नमस्कार भोपाल, और इसके साथ ही आज के नमस्कार भोपाल को यहीं समेटने की दीजिए अनुमति। नमस्कार।
2: आकाशवाणी भोपाल से अभी आप सुन रहे थे दैनिक सूचना परक कार्यक्रम नमस्कार भोपाल। सुबह के 8 बजने को है समाचार प्रभात, आप सुनेंगे आकाशवाणी दिल्ली से।
3: घर खर्च के पैसे दो हस्बैंड जी,
4: ये राशन के 15,000, सब्जियों के 2,000
3: और लाइट बिल के,
4: अब 0 रुपए कैसे दूं?
3: ओहो, भूल ही गई थी, अब तो सोलर पैनल लग गए हैं ना, तो जो 4,000 बचे हैं उससे शॉपिंग हो जाए।
5: पक्का। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नीस में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ बातचीत करेंगे। दोनों नेता भारत इनोवेट्स कार्यक्रम का उद्घाटन भी करेंगे। इसरो प्रमुख वी नारायणन ने कहा, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन चंद्रमा पर 200 दिन तक काम करने में सक्षम लैंडर विकसित कर रहा है। मौसम विभाग ने कहा, दक्षिण पश्चिम मानसून के अगले 2-3 दिन में कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और दक्षिण छत्तीसगढ़ पहुंचने की संभावना। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का दावा, ईरान के साथ युद्ध समाप्त करने के समझौते पर आज हस्ताक्षर होंगे। इसके बाद हॉर्मुज जलडमरू मध्य सबके लिए खोल दिया जाएगा। भारत ने धर्मशाला में वर्षा से बाधित पहले एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में अफगानिस्तान को 7 विकेट से हराया और ICC महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में आज शाम बर्मिंघम में भारत का मुकाबला पाकिस्तान से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस और स्लोवाकिया की यात्रा के पहले चरण में फ्रांस के नीस शहर पहुंच गए हैं। श्री मोदी G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के अलावा फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि नीस पहुंचने पर प्रधानमंत्री का भव्य स्वागत किया गया।
1: नीस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भारतीय समुदाय के लोगों ने भव्य स्वागत किया। प्रधानमंत्री के स्वागत में फ्रांसीसी और इतालवी कलाकारों ने कथक, ओडिसी और भरतनाट्यम जैसे शास्त्रीय नृत्य प्रस्तुत किए। आज दोपहर प्रधानमंत्री मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों संयुक्त रूप से इनोवेशन और स्टार्टअप इकोसिस्टम को प्रदर्शित करने वाले प्लेटफॉर्म भारत इनोवेट्स लॉन्च करेंगे। भारत फ्रांस इनोवेशन वर्ष के दौरान आयोजित इस कार्यक्रम में 120 से ज्यादा भारतीय स्टार्टअप के साथ साथ वैश्विक निवेशक, CEO और टेक्नोलॉजी लीडर्स हिस्सा लेंगे। इसके अतिरिक्त दोनों नेता टेक्नोलॉजी, रक्षा, इनोवेशन और रणनीतिक मामलों जैसे क्षेत्रों में सहयोग के लिए द्विपक्षीय वार्ता भी करेंगे। नीस फ्रांस से शैलेश मेनन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से श्रीराम शर्मा।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने नीस के प्रवासी भारतीयों का आभार व्यक्त किया है। श्री मोदी ने उनके स्वागत को अविस्मरणीय बताया। फ्रांस के बाद प्रधानमंत्री स्लोवाकिया जाएंगे और वहां के शीर्ष नेतृत्व के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। स्लोवाकिया में भारत की राजदूत अपूर्वा श्रीवास्तव ने आकाशवाणी को बताया कि प्रधानमंत्री की यात्रा से दोनों देशों के संबंधों को नई दिशा मिलेगी।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो ये स्लोवाकिया के लिए यात्रा है, ये बहुत ही ऐतिहासिक यात्रा है, क्योंकि यह किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली यात्रा होगी। तो इसलिए हम सभी लोग काफी उत्साहित हैं इस यात्रा को लेकर। हमें पूरी उम्मीद है कि इससे न केवल राजनीतिक संबंध प्रगाढ़ होंगे, बल्कि आर्थिक, रक्षा और पीपल टू पीपल रिलेशंस को भी बहुत अधिक बढ़ावा मिलेगा।
0: भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो लूनर लैंडर को चंद्रमा पर कड़ाके की ठंड से बचाने के लिए परमाणु ऊर्जा विभाग के साथ मिलकर उन्नत कृत्रिम तापन प्रणाली विकसित करेगा। इसरो प्रमुख वी नारायणन ने बेंगलुरु में वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद तथा स्टार्टअप उद्यमिता सम्मेलन में कहा कि सौर ऊर्जा से संचालित चंद्रयान 3 का विक्रम लैंडर ने चंद्रमा पर केवल 14 दिन तक सक्रिय रहा। अब इसरो परमाणु ऊर्जा विभाग के साथ ऐसा लैंडर तैयार कर रहा है जो चंद्रमा पर 200 दिन तक सक्रिय रहेगा। इस लैंडर में प्रतिकूल मौसम में काम करने वाले कृत्रिम हीटर लगे होंगे। श्री नारायण ने बताया कि इसरो और CSIR ने तकनीकी सहयोग के 40 क्षेत्रों की पहचान की है। इनमें से 17 को पहले चरण में कार्यान्वयन की स्वीकृति मिल चुकी है। ऐसी ही अनुसंधान साझेदारी विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के साथ भी की जा रही है। केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने हिमाचल प्रदेश में डाक विभाग की ड्रोन आधारित डाक सेवा शुरू करने की घोषणा की है। ये सेवा राज्य में मंडी के प्रधान डाकघर और रेहरधर शाखा के बीच शुरू की गई है। मंडी प्रधान डाकघर से रेहरधर लगभग 12 किलोमीटर दूर है। ड्रोन सेवा से 2 घंटे से अधिक का समय घटकर केवल 7 मिनट रह जाएगा। संचार मंत्रालय ने बताया कि विभाग अगले 2-3 महीने में हिमाचल प्रदेश और असम में लगभग 150 स्थानों पर ड्रोन आधारित डाक सेवा शुरू करेगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारी सोशल मीडिया हैंडल X @AIR News Hindi को फॉलो कर सकते हैं।

0: अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 वर्ष में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांत से देश में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। आकाशवाणी समाचार इस अवसर पर विशेष श्रृंखला प्रसारित कर रहा है। आज हम नागरिकों के जीवन में सुगमता लाने के सरकार के कार्यों पर जानकारी देंगे।
4: पिछले 12 वर्षों में किए गए सुधारों ने देश में विश्वास की नई नींव रखी है। चाहे वह सुधार जीएसटी, फेसलेस टैक्स व्यवस्था या डिजिटल इंडिया से जुड़ा हो, हर पहल ने नागरिकों को यह एहसास कराया है कि वे भी राष्ट्र निर्माण में भागीदार हैं। केंद्रीय बजट 2025-26 में आयकर स्लैब और कर दरों में किए गए व्यापक बदलाव से सभी करदाताओं को लाभ मिला है। नई कर व्यवस्था के तहत 12 लाख रुपए तक की वार्षिक आय पर कोई आयकर नहीं देना होता है। कर प्रणाली में किए गए सुधारों की वजह से आयकर रिटर्न दाखिल करने वालों की संख्या वित्त वर्ष 2022 में 6.9 करोड़ से बढ़कर वित्त वर्ष 2025 में 9.2 करोड़ हो गई है। नई पीढ़ी के जीएसटी ने कर व्यवस्था को सरल बनाया है। अप्रैल 2026 में जीएसटी संग्रह 2,42,000 करोड़ रुपए के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया, जो अब तक का सबसे अधिक है। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में फिल्म निर्माता और वितरक समीर दीक्षित ने कहा कि जीएसटी नरेंद्र मोदी सरकार के सबसे बड़े नीतिगत फैसलों में से एक है।
5: जीएसटी को हमारे देश में लागू हुए अब 10 साल के आसपास हो गए हैं और हमने एक बहुत बड़ा इस दिशा में प्रगति की है।
4: नरेंद्र मोदी सरकार ने शासन और नीतियों में तकनीक का व्यापक उपयोग किया है। केवल 22 महीनों में 5G सेवाएं देश के लगभग सभी जिलों तक पहुंच चुकी है। इंटरनेट डेटा की कीमत में 97% से अधिक की कमी आई है। भारत नेट योजना के तहत 7,22,000 किलोमीटर ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछाई जा चुकी है। भारत 6G तकनीक के क्षेत्र में वैश्विक नेतृत्व की ओर तेजी से बढ़ रहा है। लक्ष्य है कि 6G से जुड़े वैश्विक पेटेंट में भारत की हिस्सेदारी लगभग 10% हो। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में महेंद्र तिवारी ने कहा कि डिजिटल इंडिया दूर दराज के क्षेत्रों में रहने वाले लोगों और समाज के अंतिम पायदान पर खड़े नागरिकों के जीवन में सकारात्मक बदलाव ला रहा है।
6: डिजिटल इंडिया इज नो मोर अ कॉन्सेप्ट।
7: डिजिटल इंडिया अब सिर्फ एक सोच नहीं रह गया है, बल्कि ये एक यात्रा है। हम हर दिन आगे बढ़ रहे हैं और दुनिया को ये साबित कर रहे हैं कि भारत को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। डिजिटल हाईवे किसी भी अर्थव्यवस्था की रीढ़ होते हैं, खासकर हमारे जैसे देशों के लिए।
4: पिछले 12 वर्षों में नरेंद्र मोदी सरकार ने देश के विकास के सपनों को बड़े पैमाने पर साकार करने का प्रयास किया है और लोक कल्याणकारी योजनाओं का लाभ हर व्यक्ति तक पहुंचाने पर जोर दिया है। ईज ऑफ लिविंग अब केवल एक नारा नहीं बल्कि सरकार के कामकाज का मूल मंत्र बन चुका है। सुपर्णा सैकिया के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
3: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ युद्ध समाप्त करने के समझौते पर आज हस्ताक्षर होने का दावा किया है। उन्होंने कहा कि समझौता होने के तुरंत बाद हॉर्मुज जलडमरू मध्य सबके लिए खुल जाएगा। श्री ट्रंप ने आशा व्यक्त की कि वार्ता सफल रहेगी, यदि ऐसा नहीं होता है तो अंतिम विकल्प भी उपलब्ध है।
8: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रस्तावित समझौते की तुलना 2015 की संयुक्त कार्य योजना से भी की। उन्होंने कहा कि उनके प्रस्तावित समझौते से ईरान के परमाणु हथियारों पर पूरी तरह अंकुश लगेगा। उन्होंने दावा किया कि ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर प्रभावी रोक लगाई गई है और शेष परमाणु सामग्री बाद में नष्ट कर दी जाएगी। उधर ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बागई ने कहा कि तुरंत किसी समझौते पर हस्ताक्षर की उम्मीद नहीं है। उन्होंने कहा कि यह समझौता आज नहीं होगा, हो सकता है कि अगले कुछ दिनों में ऐसा संभव हो। ईरान के लोक प्रसारक इस्लामी रिपब्लिक ऑफ ईरान ब्रॉडकास्टिंग के अनुसार श्री बागई ने दूसरे पक्ष की विसंगति के कारण जारी वार्ता प्रक्रिया से तुरंत कोई उम्मीद जाहिर नहीं की। समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
3: ईरान ने दिवंगत सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह अली खमनेई के अंतिम संस्कार का कार्यक्रम घोषित कर दिया है। खमनेई के अंतिम संस्कार के विधि विधान

0: 4 और 5 जुलाई को तेहरान के इमाम खुमैनी इबादत स्थल पर होंगे। इसके बाद 6 तारीख को तेहरान और 7 तारीख को पवित्र शहर कौम में विधि विधानों के बाद उन्हें 9 जुलाई को मशहद के इमाम रजा स्थल में दफनाया जाएगा। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में पहले एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में भारत ने अफगानिस्तान को 7 विकेट से हरा दिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए अफगानिस्तान की टीम 24 ओवर और 5 गेंद में केवल 194 रन पर सिमट गई। जवाब में भारत ने 22 ओवर और 5 गेंद में ही 195 रन का लक्ष्य हासिल कर लिया। इससे पहले लगातार वर्षा के कारण मैच 25-25 ओवर का कर दिया गया। 3 मैचों की श्रृंखला का दूसरा मैच 17 जून को लखनऊ में खेला जाएगा। आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप में आज भारत का सामना पाकिस्तान से होगा। मैच बर्मिंघम के एजबेस्टन में भारतीय समय के अनुसार शाम 7 बजे से शुरू होगा। भारत पाकिस्तान के साथ अब तक हुए 16 में से 13 मैच जीत चुका है। मौसम विभाग ने आज पूर्वोत्तर क्षेत्र, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, केरलम, माहे, ओडिशा, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल के कुछ हिस्सों में तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग के अनुसार अगले 2-3 दिन में दक्षिण पश्चिम मॉनसून के कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और दक्षिण छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में पहुँचने की संभावना है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
1: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक फ्लैगशिप इनिशिएटिव भारत इनोवेट्स 2026, जिसमें हेल्थ केयर और AI से लेकर एग्रीकल्चर और सेमीकंडक्टर्स तक 13 सेक्टर्स के 120 स्टार्टअप्स 14 से 16 जून तक नीस फ्रांस में अपनी इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरियल क्षमताओं का प्रदर्शन करेंगे। भारत इनोवेट्स 2026, भारत में निर्मित, विश्व के लिए तैयार।
0: और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फ्रांस और स्लोवाकिया की यात्रा की खबर सभी अखबारों में प्रमुखता से है। जनसत्ता की सुर्खी है, फ्रांस पहुंचे मोदी, G7 में ट्रंप से भी मिलेंगे। पत्र के अनुसार वैश्विक दक्षिण की आकांक्षाओं को आवाज देगा भारत। लोकसत्ता ने प्रधानमंत्री के हवाले से लिखा है, युवा शक्ति भारत के भविष्य को दिशा दे रही, युवाओं की उपलब्धियां विकसित भारत के निर्माण में मजबूत नींव बन रही। नवभारत टाइम्स का शीर्षक है, पहली बार IMA से पास आउट 9 महिला कैडेट। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा, इतिहास में मील का पत्थर, 5 महिला कैडेट्स वायुसेना में भी। दैनिक जागरण की सुर्खी है, अब ICBM मिसाइलों को भी मार गिराएगा भारत, बना 5वां देश। नेवल एंटीशिप मिसाइल का भी पहला सफल परीक्षण। पंजाब केसरी के अनुसार सीमावर्ती जिलों में डेमोग्राफी बदलाव पर सरकार सख्त। गृहमंत्री अमित शाह ने उच्च स्तरीय समिति को जनसांख्यिकी बदलावों का अध्ययन करने का निर्देश दिया। सियासी तूफान शीर्षक से दैनिक भास्कर ने लिखा है, रात 2 बजे अभिषेक बनर्जी के घर छापा, पुलिस बोली 4 घंटे खड़े रहे। पंजाब केसरी ने असले तृणमूल का सवाल देते हुए लिखा है, अपने आप ये अजूबा है कि 4 मई को विधानसभा चुनाव हारने के बाद तृणमूल कांग्रेस के 80 में से 60 विधायकों ने अलग गुट बना लिया और विधानसभा अध्यक्ष ने अलग गुट को मान्यता भी दे दी। देशबंधु की सुर्खी है, गंभीर आर्थिक और ऊर्जा संकट से जूझ रहा पाकिस्तान, असीम मुनीर की नीतियों से हो रहा नुकसान, इस्लामाबाद में यौन उत्पीड़न और अपहरण के मामले बढ़े।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नीस में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों से बातचीत करेंगे। दोनों नेता भारत इनोवेट्स कार्यक्रम का उद्घाटन भी करेंगे। इसरो प्रमुख वी नारायणन ने कहा, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन चंद्रमा पर 200 दिन तक काम करने में सक्षम लैंडर विकसित कर रहा है। मौसम विभाग ने कहा, दक्षिण पश्चिम मॉनसून के अगले 2-3 दिन में कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और दक्षिण छत्तीसगढ़ पहुंचने की संभावना। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का दावा, ईरान के साथ युद्ध समाप्त होने के समझौते पर आज हस्ताक्षर होंगे। और भारत ने धर्मशाला में वर्षा से बाधित पहले एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में अफगानिस्तान को 7 विकेट से हराया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम शगुन चोपड़ा। The headlines. Prime Minister Narendra Modi to hold talks with French President Emmanuel Macron and jointly inaugurate Bharat Innovates event in Nice today. इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइज

सुरमई सवेरा कार्यक्रम में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। श्रोताओं, रविवार की अलसाई सी सुबह है आज। अलार्म की नहीं, आराम की जरूरत है। जी हाँ, हाथ में चाय की प्याली हो, खिड़की से आती ठंडी ठंडी हवा हो और साथ में हो आपका रेडियो सेट जिसमें बज रहे हो आपके पसंदीदा नगमे जो सुनकर आप तरोताज़ा हो जाएं। तो आइए इस दिन की शुरुआत करते हैं इस प्यारे से नगमे के साथ।

श्रोताओं, मनपसंद गीत हो, चाय की प्याली हो और आपका पसंदीदा गीत जब बज रहा हो तो ऐसा लगता है जैसे यही जो पल है सबसे सुंदर है। संडे यानी थोड़ा सा मी टाइम, थोड़ा सा सुकून वाला दिन, आराम से बैठकर हर चीज़ की प्लानिंग करने का दिन, घर वालों के साथ ढेर सारी बातें करने का दिन, घूमने जाने का प्लान बनाने का दिन, अगले पूरे सप्ताह की भी प्लानिंग आज ही के दिन तो हम सब करते हैं। तो भाई, आज का दिन जो है वो बहुत ख़ास है, तो इसे आप भी ख़ास तरीके से बिताइए, कुछ गाइए, गुनगुनाइए, अपनों के साथ खिलखिलाइए और इन्जॉय कीजिए सुरमई सवेरा।

भी हुई हो, लेकिन हमारे भोपाल में जो बारिश हुई है उसके बाद मौसम थोड़ा बदल गया है। थोड़ी उमस हो गई है, गर्मी है, लेकिन जब हवा चलती है तो वो मन को सुकून देती है। जो आज की सुबह थी वो तो बिल्कुल खुशनुमा करने वाली थी। तो आप भी ध्यान दीजिए कि आपके आसपास मौसम कैसे बदल रहा है। लेकिन इस बीच हम सबको करना क्या चाहिए? करना ये चाहिए कि हमें अपना और अपने अपनों का ख़ास ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि जो मौसम के तेवर हैं ना, वो बदल रहे हैं और ये हमारी तबीयत पर असर डाल सकते हैं। तो थोड़ा ख्याल रखिएगा तबीयत का।

0: हेलो
1: राजेश जी, मैं पुलिस थाने से बोल रहा हूँ।
0: फिर से
2: आप डिजिटल अरेस्ट में हो, दूसरे कमरे में जाइए, अकेले। आपके पार्सल में ड्रग्स मिले हैं, लंबे जाएंगे।
3: 10 लाख दीजिए, बच जाएंगे।
0: सर इतने कहाँ से?
3: एक लिंक भेजा है, अभी प्रोसेसिंग के लिए
2: 2 लाख भेजिए, बाकी बाद में।
0: सर 2 लाख
4: क्या हुआ पापा?
0: बेटा ये कह रहे हैं कि मेरे पार्सल में से ड्रग्स मिले हैं।
2: अरे
0: काट दिया।
4: पैनिक मत कीजिए पापा, डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता है, ये सब फ्रॉड है।
0: फ्रॉड?
4: पुलिस, बैंक, RBI इत्यादि के नाम से आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें, उन्हें कोई पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें। अगर समझदारी नहीं दिखाओगे
0: तो पैसे गवाओगे।
5: RBI कहता है,
6: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
7: सुरमई सवेरा आप सुन रहे हैं आकाशवाणी भोपाल से। श्रोताओं, कल शाम जो थी वो थोड़ी भीगी भीगी थी, शहर में बारिश हुई, हो सकता है कुछ शहरों में ना

श्रोताओं, ज़रा सोचिए कि दिन भर हम कितनी सारी बातें सुनते हैं, कहते हैं, कितनी खबरें देखते हैं और बहुत सारी चीज़ें हमारे मन मस्तिष्क में चलती रहती हैं। लेकिन जब मन को अच्छे विचार देने की बात आती है, और जो विचार हैं वो हमारे मन की खुराक भी कहे जाते हैं, आप जानते ही हैं, तो ये जो चीज़ है वो हमें कब करना चाहिए कि हमारा मन जो है सकारात्मक बातों से भरे। भाई, इसके लिए आपको करना ये होगा कि आप सेल्फ स्टडी करिए, कुछ ऐसा रोज़ पढ़िए, कुछ ऐसा सीखिए जिससे मन जो है वो सकारात्मकता की ओर बढ़े। हो सकता है किसी का कोट आपको बहुत पसंद आए, वो आप उसके बारे में अगर सोचते हैं, उसके बारे में अगर आप बात करते हैं, फिर देखिए कैसे आपकी एक थिंक प्रोसेस जो है वो अलग ही तरीके से चलती है, सकारात्मक हो जाती है, आपका मन जो है वो मजबूत हो जाता है। तो हम सबको स्वाध्याय यानी सेल्फ स्टडी करनी चाहिए दोस्तों। ये हमारे विचार ही नहीं बदलते, ये हमारे व्यक्तित्व को गढ़ते हैं, हमारे चरित्र का निर्माण करते हैं। तो आज संडे का दिन है, एक पन्ना ही सही किसी अच्छी सी किताब का निकालिए, पढ़िए, उसका मनन कीजिए और उसके बारे में अपने दोस्तों से, अपने परिवार से चर्चा भी कीजिए कि भाई आज आपने कितनी सुंदर बातें

0: पापा, कॉलेज की फीस ज्यादा है।
1: बेटा,
2: याद है बोनस के कुछ पैसे हमने दूसरे खाते में रखे थे?
1: 2 साल से खाते में कोई लेन देन नहीं हुआ है, शायद इनऑपरेटिव हो गया होगा।
3: तो अब बैंक जाके या वीडियो केवाईसी से केवाईसी अपडेट कराओ, खाता होगा एक्टिव, एकदम फ्री। चलो,
0: कहाँ
3: एडमिशन कराने? खाता हुआ एक्टिव।
4: आरबीआई कहता है
5: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

सुरमई सवेरा कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से। श्रोताओं, स्वामी विवेकानंद के विचार हम सबको प्रेरित करते हैं। उन्होंने कहा था, उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक तुम्हें तुम्हारा लक्ष्य ना मिल जाए। कितनी सुंदर बात है ना कि जब हम कुछ सोचते हैं उसे करते हैं तो हमें आगे बढ़ते रहना चाहिए तब तक जब तक हमें अपनी मंजिल मिल ना जाए। इसके लिए हम सबको आगे बढ़ने के लिए मोटिवेशन की ज़रूरत है, हमें काम करते रहने की ज़रूरत है। दुनिया वाले तो कुछ भी कहेंगे, आपका जो काम है उसे आपको ही पूरा करना है ना।

0: श्रोताओं, आकाशवाणी पर सुरमई सवेरा का सफर जारी रहेगा इस अंतराल के बाद भी।
1: कभी हंसाकर, कभी रुलाकर, कभी कहानी बनकर तो कभी कविता बनकर, कभी कोई तराना तो कभी जिंदगी नामा, कभी खबरें हमारी जिंदगी में रंग भरे, मन की बात, जन जन की बात, 1936 से आकाशवाणी आपके साथ।
2: मैं विनय उपाध्याय। आकाशवाणी की यात्रा के 9 दशक पूरे हो रहे हैं। ये सूचना निश्चित रूप से हम जैसे लोगों के लिए बहुत ही खुशी की सूचना है। हम भी आकाशवाणी की इस यात्रा में एक आवाज के रूप में हम सफर रहे हैं। कहते हैं कि नदियों का गोमुख बहुत छोटा होता है। एक छोटी सी झील के रूप में कोई नदी निकलती है अपने अमृत कुंड से और अपनी यात्रा में अनेक कूल किनारों को तय करते हुए एक समंदर में जाकर मिल जाती है। आकाशवाणी के साथ भी ऐसा ही है। दरअसल आवाजों का एक भरा पूरा घर ही
0: ये आकाशवाणी भोपाल है। अब समय है इस घंटे की खास खबरों का।
3: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस और स्लोवाकिया के 2 देशों की यात्रा के पहले चरण में फ्रांस के नीस शहर पहुंच गए हैं। G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के अलावा श्री मोदी फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ द्विपक्षीय वार्ता भी करेंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज सागर जिले के केसली में राज्य स्तरीय कार्यक्रम में लाडली बहना योजना की 37वीं किस्त अंतरित करेंगे, जिसके तहत 1,25,00,000 बहनों के खातों में 1,835 करोड़ रुपए अंतरित किए जाएंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बेहतर नीति निर्माण के लिए बेहतर जनभागीदारी पर जोर देते हुए कहा है कि समान नागरिक संहिता के संबंध में नीति निर्माण जनसामान्य के सुझावों के आधार पर ही किया जाएगा। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कल भोपाल में कहा कि नीट की 21 जून को होने वाली पुनर्परीक्षा पारदर्शी तरीके से संपन्न कराई जाएगी। प्रदेश के 30 जिलों में नीट परीक्षा के लिए 283 केंद्र बनाए गए हैं। सर्वाधिक 57 केंद्र इंदौर में बनाए गए हैं। मध्य प्रदेश राज्य बॉक्सिंग अकादमी भोपाल की प्रतिभावान मुक्केबाज खिलाड़ी माही लामा का चयन चीन में आयोजित होने वाले वर्ल्ड कप ऑफ बॉक्सिंग 2026 के लिए भारतीय टीम में किया गया है। महिलामा 60 किलोग्राम भार वर्ग में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगी। ICC महिला T20 विश्व कप में आज भारत अपने अभियान की शुरुआत पाकिस्तान के साथ मैच से करेगा। मैच बर्मिंघम के एजबेस्टन में भारतीय समय के अनुसार शाम 7 बजे से शुरू होगा। और मौसम विभाग ने प्रदेश में 15 से 18 जून के बीच मानसून के प्रवेश की संभावना जताई है। इससे पहले प्रदेश भर में प्री मानसून गतिविधियां तेज बनी हुई हैं। कई जिलों में बारिश, तेज आंधी और ओलावृष्टि का दौर जारी है। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
0: ये आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। एक बार फिर लौटते हैं सुरमई सवेरा के सफर की ओर। श्रोताओं, किसी ने क्या खूब कहा है कि संगीत वो जादू है जो बिना छुए ही मन को झनकृत कर देता है।

कुछ तो बता जिंदगी, लेकिन जिंदगी दोस्तों कहाँ कुछ बताती है। हमें अपने सवालों के जवाब आगे बढ़कर खुद खोजने पड़ते हैं, और उसके लिए हमें करना ये होता है कि जो समय है उसे खुल कर जिएं, खिल कर जिएं, और जो परिस्थिति आपके सामने आए पूरे मन से उससे आप निपटें, उससे आप डील करें। किस तरह की समस्याएं आ रही हैं, किस तरह के सवाल आपसे ज़िंदगी पूछ रही है, अगर आपने अच्छे से होमवर्क किया है, यानी आपने जीवन को पढ़ा है, आपने हर स्थिति को भांपा है, उसमें अपने तर्क लगाए हैं कभी मन से कभी दिमाग से, तभी आप आगे समझते हैं कि ज़िंदगी आपसे आखिर पूछ क्या रही है। क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि हम सबको खुश करने के लिए हाँ कर देते हैं और वो काम हम कर नहीं पाते, फिर ऐसे में हम परेशान होते हैं। तो आपको ये ध्यान देना चाहिए कि कब हमें हाँ कहना है और कब हमें अपनी लिमिटेशंस का ध्यान रखते हुए उस काम के लिए ना भी करना है। अक्सर ऐसा होता है कि जब आप हाँ करते हैं तो अब आप सबकी गुड लिस्ट में आ जाते हैं, लेकिन जैसे ही आपने कुछ काम करने से मना किया तो आपके अपने ही

आपसे रूठने लग जाते हैं, नाराज होते हैं, लेकिन इनसे हमें परेशान नहीं होना चाहिए। हमें करना ये चाहिए कि भाई अपनी परिस्थिति तो उन्हें बताएं कि हाँ, हम ये काम अब कर सकते हैं और अब हम ये काम नहीं कर सकते हैं।

श्रोताओं, चलते चलते बस हम यही कहेंगे कि हम तो दरिया हैं, हमें अपना हुनर मालूम है, चल पड़ेंगे जिस तरफ रास्ता बन जाएगा। जी हाँ, अगर आप हिम्मती हैं तो आप जिस तरफ चलेंगे आप अपनी मंजिल तक पहुंच ही जाएंगे, आपको अपनी मंजिल मिल ही जाएगी, बस ज़रूरत है तो खुद पर भरोसा रखने की। चलिए अब आपको ले चलते हैं कार्यक्रम के अंतिम गीत की ओर।

इसी गीत के साथ सुरमई सवेरा कार्यक्रम अब संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए सुनिए सुगम लोक संगीत कार्यक्रम। आज के इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे हैं अभिलाषा मिश्रा के गाए बघेली लोकगीत। तो आइए लोकगीत कार्यक्रम की शुरुआत में आपको सुनवाते हैं ये सोहर।

लोक संगीत कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से, और आज हम आपको सुनवा रहे हैं अभिलाषा मिश्रा के गाए बघेली लोकगीत। लीजिए सुनिए ये हिंडोली।

अभिलाषा मिश्रा के गाए इसी बघेली लोकगीत के साथ लोक संगीत कार्यक्रम अब संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से बोल रहे हैं। अब समय है कार्यक्रम सिंध्या जी सुरहाण का।

अभिनी के मुंजी सिक भरी नमस्ते साथियों अज 14 जून एक खास डी आहे विश्व रक्तदाता दिवस रत जो को भी कृत्रिम विकल्प न आहे हादसन ऑपरेशन या वरी थैलेसेमिया जी बीमारी में मरीजन जी जान बचाण लाए इंसान जे रत जी घुर्ज रहंदी आहे रक्तदाता दिवस मल्हाइण जो मकसद सुरक्षित रत जी उपलब्धता बाबत सुजागी पैदा करण ए पाण मुरादो रत डियण वारन जा थोरा मञण आहे हिन डीह जी चूंड माहिर साइंसदान कार्ल लैंडस्टेनर जे जन्म जे डीह जे मान में कई वई आहे जिन ब्लड ग्रुप्स जी खोज कई हुई दोस्तों कुछ माण्हुनि जे मन में इहा भ्रांति या वहम वेठल आहे त रत डियण सां शरीर में कमज़ोरी अची वेंदी पर इहा ॻाल्हि बिल्कुलु बि सही न आहे हिकु तंदुरुस्त माण्हू हर 3 महीने में सलाईअ सां रतदान करे सघे थो पाण सच त इहो आहे त रत ॾियण सां शरीर में नयूं रत जूं कोठड़ियूं बणिजनि थियूं ऐं दिलि जी बीमारियुनि जो ख़तरो बि घटिजे थो तव्हांजो ॾिनल हिकु यूनिट रत बि माण्हुनि जी जान बचाए सघे थो त अचो हिन ॾींहं ते पाण मुरादो रत ॾियण जी पह कयूं छो त ही रत कंहिंजी ज़िंदगी बणिजी सघे थो हाणे कार्यक्रम में वक़्तु आहे तव्हांजे मनपसंदि गीत संगीत जो अचो त मज़ो था माणियूं मास्टर चंदर ऐं साथियुनि जी आवाज़ में हिन सुहिणे कलाम जो

0: दोस्तों, कार्यक्रम में हाणे वक्त आहे काव्य पाठ जो। आकाशवाणी भोपाल में अॼु असां नींढ ॾिनी आहे कवियत्री अनीता लाला जी खे, त अचो गॾिजी मज़ो था माणियूं अनीता जी जी कुझु बहितरीन रचनाउनि जो।
1: जय झूलेलाल। मुंहिंजी पहिरीं रचना आहे नाज़ुक रिश्ता। जंहिंखे बि छुई ॾिसो सोई भॻल टुटल आहे, नओं हुजे या पुराणो अॼु रिश्तो ॾाढो कोमल आहे। जंहिंखे बि छुई ॾिठो सोई भॻल टुटल आहे, नओं हुजे या पुराणो अॼु रिश्तो ॾाढो कोमल आहे। ॾिसण में त सभु माण्हू लॻनि था मुकमल ॿाहिरियां, पर अंदरऊं अलाए छा आहे, हॾ हॾ में सूर भरियल आहे। नओं हुजे या पुराणो अॼु रिश्तो ॾाढो कोमल आहे। सुविधाऊं पैसनि सां वरितियूं, रुतबो समाज में आहे। गाॾियूं बिल्डिंगूं सभु आहिनि, पर बूथ सभिनी जो लथल आहे। नओं हुजे या पुराणो अॼु रिश्तो ॾाढो कोमल आहे। नज़रियूं पया चुराइनि, गॾिजी बि नथा खाइनि। नज़रियूं पया चुराइनि, गॾिजी बि नथा खाइनि। ही क्रॉकरियूं, हे बासण सभु असां ते खिलनि था। नओं हुजे या पुराणो अॼु रिश्तो ॾाढो कोमल आहे। मानीअ जो मोल कोन्हे, मानीअ जो मोल कोन्हे। बाज़ारि खाधनि सां भरियल आहे, बस मोबाइल हुजे सॼो ॾींहुं, इते ई त ज़िंदगी रुकियल आहे। सुहिणा हुया उहे ॾींहं, सोच बि सुहिणी हुई। अॼु छा खाराईंदी अमां, सीरो खाइण जो दिलि आहे। सुहिणा हुआ उहे ॾींहं, सोच बि सुहिणी हुई। अॼु छा खाराईंदी अमां, सीरो खाइण जी दिलि आहे। हू ॾींहुं वया उॾामी, पेट सभिनी जो भरियल आहे। साईं जी मेहर हुजे, बाक़ी त सभु ॼण वयल आहे। कंहिंखे धीउनि जी चिंता, कंहिंखे धीउनि जी चिंता। को पुटनि सां रुठल आहे, कंहिंजे कुल्हे ते रोऊं, कंहिंजे कुल्हे ते रोऊं। जीवन जॾहिं छलियल आहे, नओं हुजे या पुराणो अॼु रिश्तो ॾाढो कोमल आहे। हिकिड़ी हास्य रचना। एयरपोर्ट वारो मूंखे इहो ॿुधायो, पैसेंजर तव्हांखे छो नथो भाए। भॼंदे टुकंदे टैक्सिन में वेही, ॿ कलाक पहिरियों पाण खे पहुचाए। पर पैसेंजर तव्हांखे छो न

0: रेल गाॾी सुहिणी, माण्हू बि सुठा, कूली बि आहिनि, चांहि वारा बि मिठा, सामान बि गॾु आ, खाधो बि गॾु आ, हर को माण्हू रेल में मौज थो मनाए, पर एयरपोर्ट वारनि खे माण्हू नथो भाए। घर सां वैब चैक इन था कयूं, एयरपोर्ट ते चैक इन, वरी सामान स्कैनिंग, वरी सिक्योरिटी चैक इन, वरी सामान स्कैनिंग ऐं सिक्योरिटी चैक इन। पैसेंजर वीचारो चैक इन जे चकर में कॾहिं बेल्ट पर्स कढी जूता तो लाहे, पैसेंजर तव्हांखे छो नथो भाए। एयर होस्टेस तव्हांजी कुझु नओं न सिखी, ऑक्सीजन ऐं कुर्सीअ जी पेटी उनखे लॻी मिठी, ऑक्सीजन ऐं कुर्सीअ जी पेटी उनखे लॻी मिठी। अड़े कुझु त नओं सेखारियो, पाण खे सुधारियो, अॼु एआई जो ज़मानो किथे वेठो आहे, एयरपोर्ट वारनि खे पैसेंजर नथो भाए। आख़िर में बि त ड्रिजी ड्रिजी लहूं था, सामान मिलंदो सॼो इहो ई सोचूं था, सामान जो सिस्टम, बेल्टनि जो सिस्टम, नंबरनि सां तव्हां छो नथो हलाए, पैसेंजर तव्हांखे छो नथो भाए। छा ॿुधायां यारो, मुंहिंजी ही पेती सभिनी खां आख़िर में इठलाए वेठी, सभिनी खां आख़िर में इठलाए वेठी। मुंहिंजा घर वारा घूरनि मूंखे था, को बि पंहिंजा सूर भला कंहिंखे ॿुधाए, एयरपोर्ट वारनि खे पैसेंजर नथो भाए। मुंहिंजी अॻिली रचना, असांजा सभई कम ऑनलाइन हली विया, गीत जे रूप में पेश थी कयां। असांजी महिनतुनि जा कम मशीननि ॾे हली विया, असांजी महिनतुनि जा कम मशीननि ॾे हली विया, असांजा सभई सुठा कम ऑनलाइन हली विया, ऑनलाइन हली विया, माण्हुनि जो मोल घटिजी विया, असांजा सभई सुठा कम ऑनलाइन हली विया। बिजलीअ जा बिल बि, पाणीअ जा बिल बि, बिजलीअ जा बिल बि, पाणीअ जा बिल बि, तरह तरह जा टैक्स घर वेठे भरिजी विया, असांजा सभई सुठा कम ऑनलाइन हली विया। बुहारी असांजी रोबोट थो पाए, कपिड़ा मशीनुनि में हर को सुकाए, बासणनि जा कम डिश वॉशर खणी विया, बासणनि जा कम डिश वॉशर खणी विया, असांजा महिनतुनि जा कम हे मशीन ॾे विया। घर जो किरानो ऑनलाइन घुरायूं, कपिड़ा लटा बूट शूट सभु घर वेठा आणियूं, माउ जी जॻहि ते, हा माउ जी जॻहि ते ज़ोमेटो टोमेटो खणी विया, असांजा सभई सुठा कम ऑनलाइन हली विया। ड्राफ्टिंग ऐं चिठियूं एआई थो ठाहे, अरे डॉक्टरनि जा कम बि एआई ॿुधाए, तरह तरह जूं टिकटूं मोबाइल थो कराए, तरह तरह जूं टिकटूं मोबाइल थो कराए। लाइन में बीहण जो आनंद फिटी वियो आहे, भाॼियूं वठण जो आनंद फिटी वियो आहे, असांजा सभई सुठा कम ऑनलाइन हली विया। ॿार चवनि पेरेंट्स वक़्तु था विञायो, ॿार चवनि पेरेंट्स वक़्तु था विञायो, असां चवूं तव्हां सिहत था गवायो, अहिड़ी ई बहसुनि में, अहिड़ी ई बहसुनि में परिवार फिटी विया, असांजा सभई सुठा कम ऑनलाइन हली विया।
1: महिरबानी अनीता जी हिन सुहिणी पेशकश लाइ, मूंखे पूरो विश्वास आहे त तव्हांजी रचनाऊं असांजे श्रोताउनि खे सोचण लाइ मजबूर ज़रूरु कंदियूं। दोस्तों, तव्हां

सभिनी पढ़ियो ऐं ॿुधो ई हूंदो त हाणोकी भारत सरकार खे देश जी सेवा कंदे 12 साल गुज़री विया आहिनि। इन टाणे समाज जे हर तबिके लाइ ऐं हर खेत्र में कम कया विया आहिनि। 80 करोड़ खां वधीक आबादीअ लाइ मुफ़्त राशन मुहैया कराइणु हुजे या शौचालय जी सुविधा ॾियारे जीवन सवलो करण जो कमु हुजे, स्वास्थ्य जे खेत्र में आयुष्मान भारत ऐं जन औषधि केंद्र जहिड़ा कम, अटल टिंकरिंग लैब ज़रिए युवाउनि खे नवां वझ ॾियारण जहिड़ा कम, हारियुनि लाइ फसल बीमा, किसान क्रेडिट कार्ड जहिड़ियूं सुविधाऊं, मेट्रो नेटवर्क, वंदे भारत ट्रेनूं, अटल सेतु, चिनाब रेल ब्रिज जहिड़े इंफ्रास्ट्रक्चर ज़रिए राष्ट्र निर्माण या आत्मनिर्भर भारत जी संकल्पना, ही सभु गुज़िरियल 12 सालनि जो हासिलु आहे। कुल मिलाए चई सघिजे थो त ही 12 साल विश्वास, विकास ऐं जन कल्याण जा साल रहिया आहिनि। दोस्तों, इन्हीअ सां गॾु ई अॼु असां तव्हांखे ॼाण ॾियण था चाहियूं प्रधानमंत्री जे 15 सूत्रीय कार्यक्रम जी, जंहिंजो लक्ष्य आहे 6 अधिसूचित अल्पसंख्यक समुदाय जे आर्थिक नज़रिए कमज़ोर तबिके ताईं सरकारी योजनाउनि जो फ़ाइदो हिकु सरियो पहुचाइण। ही कार्यक्रम हिकु जतन आहे अल्पसंख्यकनि खे शिक्षा, रोज़गार, स्वास्थ्य, सामाजिक न्याय जहिड़े खेत्रनि में सशक्त ठाहिण जो। इन्हीअ जे तहत कोशिश रहे थी त सभिनी सरकारी योजनाउनि जीअं त छात्रवृत्ति योजना, समग्र शिक्षा अभियान, प्रधानमंत्री आवास योजना, आयुष्मान भारत वग़ैरह जो कुल बजट जो हिकु हिसो अल्पसंख्यकनि ताईं पहुचाइण लाइ निर्धारित ज़रूर करे सघिजे। साल 2006 खां हलंदड़ ही कार्यक्रम अल्पसंख्यक मंत्रालय जी निगरानी में रहंदो आहे। पोइते रहिजल तबिके खे मुख्य धारा सां जोड़ण ही हिन कार्यक्रम जो उद्यम आहे। ऐं दोस्तों, इन ज़रूरी ॼाण खां पोइ अचो त हलंदे हलंदे कार्यक्रम में ॿुधूं था कला हज़ारी, कमला केसवानी ऐं गुरदास मल जी आवाज़ में अर्जुन हासिद पारां लिखियलु गीत।

दोस्तों, इन गीत सां गडी असांजे अॼु जे कार्यक्रम जो वक़्तु बि पूरो थो थिए। उमेदु आहे त तव्हांखे कार्यक्रम ज़रूरु वणियो हूंदो। पंहिंजा वीचार ऐं पंहिंजा राया असां ताईं ज़रूरु पहुचाईंदा आकाशवाणी भोपाल जे फेसबुक पेज ज़रिए। हाणे पंहिंजी रेडियो साथी चित्रा चेलानी खे ॾींदा इजाज़त। तव्हां सभई स्वस्थ रहो, मस्त रहो ऐं सिंधी ॻाल्हाईंदा रहो। वरी गॾिजिबो, सभ जो भलो।

अभी आप सुन रहे थे सिंधी कार्यक्रम सिंधिया जी सुरहाण। ये प्रसारण आपकी सेवा में आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से किया जा रहा था। हमारा अगला प्रसारण बस कुछ ही पलों में होगा।

0: ये आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। हमारा अगला प्रसारण बस कुछ ही पलों में होगा।
1: आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है राजगढ़ जिले की चिट्ठी। आलेख है कमल खस का, वाचन स्वर है अभिषेक कटियार का। राजगढ़ जिले में वर्षों से रेल सेवा की प्रतीक्षा कर रहे कुरावर और आसपास के क्षेत्रवासियों के लिए गुरुवार का दिन नई उम्मीद लेकर आया। पश्चिम मध्य रेलवे के भोपाल मंडल के डीआरएम पंकज त्यागी ने विशेष निरीक्षण ट्रेन से कुरावर श्यामपुर रेलखंड का निरीक्षण कर ट्रैक सुरक्षा व्यवस्थाओं और निर्माण कार्यों की प्रगति का जायजा लिया। निरीक्षण के बाद उन्होंने संकेत दिए कि यदि शेष कार्य समय पर पूरे हो गए तो जनवरी 2027 से भोपाल कोटा रेल कनेक्टिविटी शुरू हो सकती है। उन्होंने कहा कि 31 दिसंबर 2026 तक सभी लंबित कार्य पूरे होने की संभावना है। निरीक्षण के लिए पहुंची विशेष डीजल इंजन युक्त ट्रेन को देखने के लिए कुरावर रेलवे स्टेशन पर लोगों की भारी भीड़ भी उमड़ पड़ी। नगर और आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों से बड़ी संख्या में लोग स्टेशन पहुंचे। पूरे दिन स्टेशन परिसर में उत्सव जैसा माहौल रहा। कुछ दिन पहले रेलवे अधिकारियों ने भोपाल रामगंज मंडी रेल मार्ग में घटोली से लेकर राजगढ़ तक के रेल मार्ग का निरीक्षण कर मंजूरी दी, जिसके बाद जुलाई माह के प्रथम सप्ताह में कोटा से राजगढ़ तक रेल सुविधा शुरू होने जा रही है। भोपाल कोटा रेल संपर्क से यात्रियों को तेज, सुरक्षित और किफायती यात्रा की सुविधा मिलेगी। वहीं व्यापार, कृषि और रोजगार के क्षेत्र में भी नए अवसर खुलेंगे। मौसम की अगर बात करें तो

0: जिले में प्री मानसून गतिविधियां तेज होने लगी हैं। मानसून की संभावित दस्तक से पहले आसमान में काले बादल मंडराने लगे हैं और बीच बीच में आंधी तूफान का दौर भी देखने को मिल रहा है। उधर मानसून के आगमन से पहले जिले के किसान खरीफ फसलों की तैयारी में जुट गए हैं। किसान खेतों में जुताई, बखरनी और अन्य कृषि कार्यों को अंतिम रूप देने में लगे हैं। वहीं सहकारी समितियों और कृषि केंद्रों पर खाद बीज की मांग भी बढ़ने लगी है। इस बार मौसम विभाग औसत से कम बारिश का अनुमान लगा रहा है, जिसके चलते इस बार खरीफ फसलों की पैदावार पर असर पड़ने की संभावना है, जिससे किसान अपनी फसलों के रकबे में परिवर्तन कर सकते हैं। इसी अनुमान के हिसाब से कृषि विभाग ने भी फसलों की बोवनी के लक्ष्य में रकबे में परिवर्तन किया है। इस बार सोयाबीन के रकबे का लक्ष्य कम किया गया है तो मक्का, उड़द और तिल का रकबा बढ़ाया गया है। पिछले खरीफ सीजन की अगर बात करें तो जिले में 2,05,251 हेक्टेयर में मक्के की बोवनी की गई थी, जबकि इस सीजन में इसका लक्ष्य बढ़ाकर 3,08,800 हेक्टेयर का रखा गया है। जिले में राज्य महिला आयोग की सदस्य साधना सप्तक ने बीते दिनों सिविल अस्पताल ब्यावरा का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने अस्पताल के विभिन्न विभागों का जायजा लेकर मरीजों को उपलब्ध कराई जा रही स्वास्थ्य सेवाओं और सुविधाओं की जानकारी प्राप्त की। जिले में भोपाल संभागायुक्त संजीव सिंह ने भ्रमण के दौरान जल संरक्षण, सिंचाई व्यवस्था और ग्रामीण विकास से जुड़े कार्यों का विस्तार से निरीक्षण बीते दिनों किया। इस दौरान कमिश्नर ने मोहनपुरा और कुंडालिया सिंचाई की परियोजनाओं की समीक्षा भी की। मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के तहत बीते दिनों ब्यावरा रेलवे स्टेशन से अयोध्या धाम के लिए विशेष ट्रेन के माध्यम से 200 यात्रियों को रवाना किया गया। पहली बार ब्यावरा से अयोध्या तक एसी ट्रेन की व्यवस्था की गई। कलेक्टर डॉक्टर गिरीश कुमार मिश्रा ने बीते बुधवार को खिलचीपुर, जीरापुर और माचलपुर क्षेत्र की विभिन्न प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने खाद वितरण व्यवस्थाओं का जायजा लिया और ई टोकन प्रणाली के प्रभावी क्रियान्वयन की समीक्षा की। शासकीय आईटीआई राजगढ़ में 16 जून को युवा संगम रोजगार मेले का आयोजन किया जाएगा। इच्छुक आवेदक जिनकी न्यूनतम योग्यता 10वीं से स्नातक तथा आईटीआई उत्तीर्ण है और आयु 18 से 40 वर्ष के बीच है, वे इस युवा संगम कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं। जिले में एडिप योजना और राष्ट्रीय वयोश्री योजना के अंतर्गत वरिष्ठ नागरिक 60 वर्ष या उससे अधिक आयु तथा दिव्यांगजनों को एल्मिको तथा भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण केंद्र उज्जैन के माध्यम से स्वास्थ्य परीक्षण, चिन्हांकन और उपकरण वितरण शिविरों का आयोजन विभिन्न तिथियों को किया जाएगा। केंद्र सरकार के सेवा, सुशासन एवं गरीब कल्याण के 12 गौरवशाली वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित विशेष जनसंपर्क अभियान के तहत प्रदेश सरकार के राज्य मंत्री, स्वतंत्र प्रभार मछुआ कल्याण एवं मत्स्य विभाग नारायण सिंह पवार और सांसद रोडमल नागर ने ब्यावरा विधानसभा के सुठालिया मंडल क्षेत्र में पहुंचकर नागरिकों, वरिष्ठजनों और प्रबुद्धजनों का सम्मान कर उनसे संवाद किया। वहीं अधिक मास में विभिन्न स्थानों पर विशेष धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन जिले में किया जा रहा है। भैंसवा माता धाम पर 1.25 करोड़ शिवलिंग का निर्माण कराया गया तथा जिले में अलग अलग जगहों पर विशेष यज्ञ व भागवत कथा के आयोजन किए जा रहे हैं। राजगढ़ जिले की चिट्ठी में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।
1: अभी आप सुन रहे थे राजगढ़ जिले की चिट्ठी। आलेख था कमल खसका, वाचन स्वर अभिषेक कटियार का था। ये प्रसारण आपकी सेवा में आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से किया जा रहा था। कृपया हमारे अगले प्रसारण की प्रतीक्षा कीजिए। ये आकाशवाणी भोपाल है। प्रस्तुत है सामुदायिक गान शिक्षण पाठ। कन्नड़ गीत की रचना की है बी आर गीता ने।

0: अच्छा बच्चों, सब लोग आ गए हैं ना?
1: आ गए हैं।
0: आप किस स्कूल में पढ़ते हैं?
1: मारुति संगीता पाठशाला।
0: मारुति संगीता पाठशाला के बच्चे हैं आप लोग?
1: हाँ।
0: तो आज हम एक नया गाना सिखाएं।
1: हाँ?
0: किसने लिखा है मालूम है? दोड्ड रंगे गौड़ा। किसने लिखा है ये गाना?
1: दोड्ड रंगे गौड़ा।
0: तो आप गाना सीखने के लिए तैयार हैं?
1: हाँ तैयार है।
0: इस गाने का शीर्षक है कडल हक्की गलू। क्या है?
1: कडल हक्की गलू।
0: तो पहले क्या करना, इस गाने को लिख लेना है ना?
1: हाँ।
0: तो बाद में हम गा सकते हैं, नहीं तो नहीं गा सकते है ना?
1: हाँ, हाँ।
0: तो पहले क्या करना, पेन पेंसिल पेपर सब उठा के अपने आगे रख लेना है।
1: हाँ।
0: रख लिया है?
1: हाँ।
0: अच्छा, तो मैं डिक्टेट करती हूँ, आप
1: हाँ।
0: सब लिख लीजिए।
1: हाँ? हाँ।
0: हाडू तिहवो हारू तिहवो
1: हाडू तिहवो हारू तिहवो
0: कडल करेय खग कुला
1: कडल करेय खग कुला
0: यनी तो मुगिला
1: यनी तो मुगिला
0: उद्द अगला
1: उद्द अगला
0: जी
1: की दानी तू
0: बांदड़ा
1: बांदड़ा।
0: अच्छा, तो एक पहला स्टैंजा है।
1: हाँ?
0: आगे का स्टैंजा है बान लोक नगुव नाका
1: बान लोक नगुव नाका
0: हारो हक्की पालीगे
1: हारो हक्की पालीगे
0: रेक्के बीसी धैर्य सूसी
1: रेक्के बीसी धैर्य सूसी
0: चुक्की मुट्टो हम्मीगे
1: चुक्की मुट्टो हम्मीगे।
0: लिख लिया?
1: हाँ।
0: सब लोग लिख लिया?
1: हाँ।
0: अच्छा, तो अगला स्टैंजा दूर दूर हारी हारी
1: दूर दूर हारी हारी
0: व्योम कानुआ बगे
1: व्योम कानुआ बगे

0: कर्नाटक संगीत में ये चक्रवाक राग होता है और हिंदुस्तानी में इस राग को कहते हैं आहिर भैरव। इसका ताल है कर्नाटक संगीत में चतुरस्र जाति एक ताल तीसर नड़े। इस ताल को हिंदुस्तानी में कहते हैं दादरा। तो अब भैया विश्वनाथ नागपुर जी भी यहाँ आए हैं, वे तबला बजाने के लिए तैयार होके बैठे हैं। तबला बजा के दिखाते हैं ना।
1: धा दिन्ना।
0: अब आप लोगों को मालूम हो गया ना यह गाना कौन सी राग पर आधारित है। अब दीदी आपको सिखाती है ये गाना।

हाँ, दूसरा अंतरा का धुन कैसा है ये मालूम हो गया, मगर जो स्वर आते हैं वो नहीं मालूम हुआ है ना। तो गीता दीदी स्वर को भी सिखाती हैं।

प्यारे सिवान

अब ये आखिर का अंतर जो है ना वो पहले अंतर था ना बान लोक नगुना का उसी के जैसे ही है। अच्छा तो गाते हैं।

0: अभी आप सुन रहे थे सामुदायिक गान शिक्षण पाठ। आज आपने सुना कन्नड़ गीत जिसकी रचना की थी बीआर गीता ने। ये प्रसारण आपकी सेवा में आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से किया जा रहा था।
1: सुनिए एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे आकाशवाणी भोपाल पर।
2: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
3: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

0: सदी हो तुम, या यूं कहें वक्त की रफ्तार हो। कच्ची यादों से उम्मीदों के चिराग जगमगाने तक, यूं ही चलते चलते अचानक कुछ याद आ जाने तक, हर कदम पर रहे हो साथ साथ। मनोरंजन, समाज और इतिहास तुम्हारी जुबान से ही तो सुना है हमने। सदा बहार हो तुम, बेमिसाल हो तुम, देश की आवाज हो तुम।
1: आकाशवाणी
2: बरसात के सुहाने मौसम में जगह जगह गड्ढों में भरने लगता है गंदा पानी, कीचड़ गंदगी का फैल जाता है साम्राज्य, भिन भिन आती हैं मक्खियाँ, पनपने लगते हैं मच्छर, मौसमी बीमारियाँ देने लगती हैं दस्तक।
3: दिल करे हाए, हाए। कोई ये बताए क्या होगा?
4: हमें कुछ नहीं होगा अगर हम सभी अपने घर और आसपास सफाई रखें, गड्ढों में पानी न जमा होने दें, मच्छरदानी का प्रयोग करें, पानी की शुद्धता का ध्यान रखें, ताज़ा हल्का भोजन करें, खुले में रखें, कटे फल और खाद्य पदार्थ न खाएं,
2: और
4: फिर लें आनंद इस मौसम का।
5: महात्मा गांधी ने कहा, हिंदी राष्ट्रीयता के मूल को सींचती है और उसे दृढ़ करती है। देश का कोई भी सच्चा प्रेमी हिंदी का तिरस्कार नहीं कर सकता। दुनिया से कह दो, गांधी अंग्रेजी नहीं जानता।
6: ये आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। पेश है फिल्म संगीत। कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे हैं हम आपके दिल में रहते हैं फिल्म का वो गीत, जिसे आवाज़ दी है उदित नारायण और अलका याग्निक ने। समीर के बोल हैं, संगीत अनु मलिक का है।

अब आपको सुनवा रहे हैं राम लक्ष्मण के संगीत निर्देशन में असद भोपाली का लिखा नगमा, आवाज़ SP बालसुब्रमण्यम की है। फिल्म का नाम है मैंने प्यार किया।

अब आपको सुनवा रहे हैं कुछ कुछ होता है फिल्म का वो गीत जिसे आवाज दी है उदित नारायण और अलका याग्निक ने। समीर के बोल हैं, संगीत जतिन ललित का है।

कुमार सानू की आवाज़ में आपको सुनवा रहे हैं प्यार तो होना ही था फिल्म का वो गीत, जिसे संगीत से सजाया है जतिन ललित ने, गीत लिखा है विनोद मेहरा ने।

और फिल्म संगीत कार्यक्रम के अंत में आपको सुनवा रहे हैं दिल तो पागल है फिल्म का वो गीत, जिसे आवाज़ दी है लता मंगेशकर और उदित नारायण ने। आनंद बख्शी के बोल हैं, संगीत उत्तम सिंह का है।

0: में बहनों के खातों में 1,835 करोड़ रुपए जमा करेंगे। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने विश्व रक्तदाता दिवस पर लोगों से स्वैच्छिक रक्तदान की अपील करते हुए सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि रक्तदान किसी व्यक्ति को नया जीवन देने का सर्वाधिक प्रभावी और पावन अवसर है। केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने दूरस्थ और दुर्गम क्षेत्रों में तेज संपर्क पर जोर देते हुए अगले 2 से 3 महीने में हिमाचल और असम में लगभग 150 स्थानों पर ड्रोन आधारित डाक सेवा शुरू करने की घोषणा की है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान इसरो लूनर लैंडर को चंद्रमा पर कड़ाके की ठंड से बचाने के लिए परमाणु ऊर्जा विभाग के साथ मिलकर उन्नत कृत्रिम तापन प्रणाली विकसित करेगा। राज्य बॉक्सिंग अकादमी भोपाल की मुक्केबाज माही लामा का चयन चीन में आयोजित होने वाले वर्ल्ड कप ऑफ बॉक्सिंग 2026 के लिए भारतीय टीम में किया गया है। फीफा वर्ल्ड कप 2026 में स्कॉटलैंड ने 28 साल बाद विश्व कप में जीत दर्ज करते हुए हैती को 1-0 से हरा दिया। वहीं आज ग्रुप ई में जर्मनी का सामना कुरासाओ से भारतीय समय अनुसार रात 10:30 बजे होगा। और मौसम विभाग ने प्रदेश में 15 से 18 जून के बीच मानसून के प्रवेश की संभावना जताई है। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
1: ये आकाशवाणी भोपाल है, कृपया हमारे अगले प्रसारण की प्रतीक्षा कीजिए।
2: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। पेश है फोन इन कार्यक्रम फोन करें गीत सुने। सभी सुनने वालों को आपके रेडियो मित्र दिनेश कुमार का प्यार भरा नमस्कार। आइए जानते हैं आज हमारे पहले कॉलर कौन बनने वाले हैं। हेलो।
3: हाँ सर जी, नमस्ते।
2: नमस्ते नमस्ते, कौन बोल रहे हैं?
3: हाँ सर, ध्रुवराम साहू बात कर रहा हूँ, कन्या बालाघाट मध्य प्रदेश से।
2: स्वागत है आपका कार्यक्रम फोन करें गीत सुने में। तो ध्रुवराम साहू जी, क्या करते हैं आप?
3: सर अभी तो खेती बाड़ी काम चालू है सर।
2: क्या बो दिया अभी खेती में?
3: बुआई नहीं की है सर, अभी तैयारी है
2: जी।
3: ग्रीष्मकालीन जुताई करवा दिए हैं
2: जी।
3: बस अब धान की थरहा रखना है सर खरीद के लिए।
2: धान बोएंगे? कहाँ से हैं आप?
3: बालाघाट से सर।
2: अच्छा हाँ, बालाघाट में तो धान की खेती बहुत ज्यादा होती है, हमें पता है अच्छे से।
3: घाट का बीसा ब्लॉक है सर, वहाँ गाँव है हमारा कनिया।
2: तो आज क्या सुनना चाहेंगे आप?
3: फिल्म का नाम है सर तहलका, और गीत के बोले दिलवालों का डोला दिलदार।
2: कुछ कहना चाहेंगे इसके अलावा?
3: सर अपन क्या किसानों को कहना चाहूंगा, जैविक खेती करें, ज्यादातर रासायनिक खाद का इस्तेमाल कम करें।
2: आपने जो अभी खेत की तैयारी कर रखी है, ये कैसे खेत हैं? जैविक हैं या फिर?
3: जैविक खेत है सर, जैविक। अपन जो गोबर कंपोस्ट खाद है ना, उसी का इस्तेमाल करते हैं
2: जी।
3: जी सर, जो रासायनिक खाद है डीपी यूरिया वगैरह, उसको कम बहुत कम इस्तेमाल करते हैं।
2: चलिए, कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। गीत आ रहा है आपके रेडियो सेट में।

0: हेलो
1: हेलो, आकाशवाणी मध्य प्रदेश फोन करें। गीत सुने।
0: जी सर, नमस्ते। मैं
1: नमस्ते।
0: ग्राम उलझान बोलिया, गेंदालाल परिहार।
1: हाँ गेंदालाल जी, बोलिए, कहाँ से बोल रहे हैं आप?
0: ग्राम उलझावन जिला सीहोर।
1: जी आज क्या सुनना चाहेंगे आप?
0: सर जी, जानी दुश्मन फिल्म गाना है
1: जानी दुश्मन, कौन सा गाना?
0: जी, इसके गाना है सारे रिश्ते नाते मैं तोड़ के आ गई।
1: यही गाना सुनने की कोई खास वजह?
0: नहीं सर, मनोरंजन के लिए सुनते हैं गाना।
1: नहीं, मनोरंजन के लिए तो हम सुनते ही हैं। कई बार कुछ गानों के पीछे कुछ मैसेज होता है, हम उसके लिए भी सुनते हैं कि हम ये सुनना चाहते हैं, इस तरह की चीज सुनना चाहते हैं, है ना। और करते क्या हैं आप गेंदालाल जी?
0: शहर में सिलाई काम है।
1: सिलाई का काम है, और सिलाई का काम करते करते आप गीतों का आनंद भी लेते रहते हैं, है ना। इसीलिए कह रहे हैं कि मनोरंजन के लिए सुन रहे हैं हम तो, है ना।
0: जी सर, ये भी चलता रहता है मोबाइल।
1: बिल्कुल।

0: फोन करेंगी सुने आकाशवाणी मध्य प्रदेश।
1: हेलो सर।
0: हेलो,
1: नमस्ते।
0: नमस्ते नमस्ते
1: जी सर, हम सतना से बोल रहे
0: हैं। अपना नाम बताएंगे?
1: रमेश कोटवानी।
0: रमेश कोटवानी जी का बहुत बहुत स्वागत है।
1: गाना हमको वो वाला सुनना है सर।
0: कौन सा?
1: अब्दुल्ला का।
0: अब्दुल्ला कौन सा गीत?
1: खुदा तेरे हर है खुदा वाला गाना।
0: ए खुदा तेरा हर फैसला,
1: हर फैसला मंजूर है।
0: बहुत बढ़िया गीत है। ये गीत सुनने की कोई खास वजह है?
1: मैं यार सर खास वजह नहीं, पुराने सुनने वाले हैं 40 साल।
0: जी जी जी, ये मैसेज है इस गाने में, क्योंकि
1: बचपन से सुनते, जब रेडियो की दुकान थी छोटा सा लेके घूमते रहते थे।
0: रेडियो चीज ही ऐसी है, देखिए क्या होता है कि रेडियो सुनने से हम जो काम कर रहे हैं वो काम करते करते भी रेडियो सुन सकते हैं। हमारे काम का भी हर्ज कोई नहीं होता है ना। तो बहुत बढ़िया लगा आपसे बात करके, और गीत आ रहा है आपका आपके रेडियो सेट पर।

0: आकाशवाणी मध्य प्रदेश कार्यक्रम फोन करेंगी, सुने
1: जी सर। नमस्कार।
0: नमस्कार
1: जी सर, मैं ग्राम परसेठा जिला फतेहपुर उत्तर प्रदेश यानी यमुना बेल्ट के किनारे से सर मैं बेटा सिंह यादव बातचीत कर रहा हूँ।
0: बेटा सिंह यादव जी,
1: जी सर
0: स्वागत है कार्यक्रम में आपका।
1: जी सर बहुत धन्यवाद।
0: तो आज क्या सुनना चाहेंगे आप?
1: कौन सर बोल रहे हैं सर आप?
0: मैं दिनेश कुमार बोल रहा हूँ, आपसे पहले बात हो चुकी है एक बार मेरी।
1: दिनेश भैया आपसे ही बातचीत हुई थी हमें, तो सर जो गर्व फिल्म का सुनना चाहते हैं, हम तुमको निगाहों में इस तरह छुपा लेंगे।
0: करते क्या है आप बेटा सिंह जी?
1: जी सर वैसे खेती किसानी के काम करता हूँ और किराने की दुकान जो भी है जो बंद रही है तो उसको खोलने के विचार किए हम।
0: तो चलिए मतलब खेती किसानी में अभी अभी क्या बोया है आपने खेत में?
1: अभी तो सर जो भी है धान की जो भी है ना वही बुवाई चालू किए हैं और उसके बाद में भी थोड़ा बारिश हो जाएगी तो उसको लगवाई चालू कर देंगे।
0: तो बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। गीत आ रहा है आपका आपके रेडियो से।

0: फोन करेगी सुने आकाशवाणी मध्य प्रदेश।
1: जी नमस्कार सर।
0: नमस्कार, आप कौन बोल रहे हैं?
1: जी मैं तहसील सेंधवा मध्य प्रदेश से देवीदास वाड़ीले बोल रहा हूँ सर।
0: सेंधवा मध्य प्रदेश से देवीदास?
1: हाँ, तहसील सेंधवा मध्य प्रदेश से देवीदास वाड़ीले।
0: वाड़ीले, तो कब बात हुई थी, इसके पहले कब फोन लगाया था आपने?
1: जी सर आज 10 दिन हुए।
0: बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब हमारे श्रोता बड़े जागरूक हो गए हैं और हम ये देख रहे हैं कि बहुत जल्दी जल्दी कॉल हम आप लोगों के नहीं आते हैं, अब 8-10 दिन बाद ही आप लोग लगाते हैं।
1: तो 8-10 दिन बाद कॉल लगाया सर, वो जो नियम का पालन कर रहे हैं।
0: जी जी जी, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो क्या सुनना चाहेंगे देवीदास जी आज?
1: बता रहा हूँ
0: जी,
1: गायकर
0: के
1: और गीत के बोले, अच्छा चलता हूँ दुआओं में याद रखना।
0: अच्छा चलता हूँ दुआओं में
1: याद रखना।
0: अच्छा, यही गाना सुनने की कोई खास वजह है, कुछ मैसेज है, किसी को कहना चाह रहे हैं?
1: अच्छी लगती है और गाना भी बढ़िया है।
0: आवाज अच्छी लगती है और गाना भी बढ़िया है, निश्चित ही गाना बहुत बहुत सुंदर है। तो गीत आ रहा है आपके रेडियो सेट पर, गीत का आनंद लीजिए। अच्छा।

0: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण कार्यक्रम है, फोन करें गीत सुने।
1: हेलो
0: हेलो,
1: नमस्ते सर।
0: नमस्ते नमस्ते, हमारी किससे बात हो रही है?
1: मेरा नाम महर्षि गर्ग है।
0: ठीक है महर्षि जी, क्या सुनना चाहेंगी आप?
1: मेरी जंग फिल्म का।
0: कहाँ से हैं पहले ये बताइए ना।
1: श्रीनगर जिला महोबा।
0: गीत के बोल बताएंगे?
1: हर कदम एक नई जंग है।
0: बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो क्या आप समझती है ऐसा कि जिंदगी हर कदम एक नई जंग है? अच्छा, क्या करती हैं आप?
1: सर मैं लड़का हूँ।
0: अच्छा आप लड़का है, तो महर्षि आपका नाम है ना? तो क्या करते हैं महर्षि जी आप?
1: पढ़ते हैं।
0: पढ़ते हैं कौन सी क्लास में?
1: फिफ्थ क्लास में।
0: फिफ्थ क्लास में, तो सिक्स क्लास में। तो जिंदगी एक जंग है कैसे मानते हैं आप?
1: जिंदगी हर कदम एक जंग है, नई

0: अच्छा, आपको अच्छा लगता है गाना, है ना?
1: हाँ
0: ठीक है, तो गीत गीत आ रहा है आपके रेडियो सेट पर। और कौन कौन है आपके घर में?
1: पापा मम्मी भैया बहन,
0: अच्छा, पापा क्या करते हैं आपके? किराने
1: दुकान है किराना की।
0: की। और आप सिक्स
1: हाँ
0: क्लास में पढ़ते हैं, और बाकी जो बहन हैं और भैया हैं वो क्या करते हैं?
1: भैया की जनरल स्टोर है।
0: भैया की जनरल। अच्छा, भैया बड़े हैं आपसे?
1: हाँ
0: और जो दीदी है कौन
1: दीदी पढ़ती है एमएससी
0: सी क्लास में?
1: कर
0: एमएससी कर रही है, मतलब आप सबसे छोटे हैं।
1: रही।
0: अच्छा, और मेरी जंग फिल्म का गीत सुनना चाहते हैं, तो गीत आ रहा है आपके रेडियो सेट पर। गीत का आनंद लीजिए, आपकी पसंद का गीत हम जरूर सुनवाते हैं, है?

0: आकाशवाणी मध्य प्रदेश कार्यक्रम फोन करें की सुने। हेलो,
1: हाँ नमस्कार सर।
0: नमस्कार नमस्कार, किससे बात हो रही है हमारी?
1: मैं राजूलाल मेहर, गांव भीलवाड़ा, जिला झालावाड़ से बोल रहा हूँ।
0: राजस्थान से बोल रहे हैं आप? तो क्या करते हैं आप राजूलाल मेहर जी?
1: वैसे मैं कारीगरी का काम करता हूँ, मकान भी बनाता हूँ और अच्छा। खेती बाड़ी भी करता हूँ।
0: जब आपके पास खेती बाड़ी का काम नहीं होता होगा उस टाइम में आप कारीगरी का काम करते होंगे?
1: हाँ हाँ।
0: तो कारीगरी में क्या कारीगरी करते हैं आप?
1: मकान बनाने का।
0: मकान में कुछ ऐसा स्पेशल राजस्थान की बड़ी क्या है कि कुछ कलाकृतियों में बड़ी विशेषज्ञता है, तो आप किस तरीके से मकान बनाते हैं? सामान्य या कुछ स्पेशल?
1: सामान्य बना देते हैं हम तो। जैसे हमारे यहाँ झालावाड़ जिले में कोटा स्टोन की खाने हैं।
0: अच्छा।
1: हाँ, बहुत फेमस है यहाँ झालावाड़ की।
0: जी जी,
1: कोटा स्टोन की फैन।
0: तो आज क्या सुनना चाहेंगे राजूलाल जी आप?
1: तो मुझे सुना है इंतहा हो गई इंतजार की।
0: इंतहा हो गई इंतजार की
1: जी।
0: कौन सी फिल्म का गीत है ये?
1: शायद शराबी का।
0: जी जी जी, इसी गीत को सुनने की कोई खास वजह?
1: और वैसे फिल्म देखी थी मैंने, यार एक बार और सुन ले।
0: बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो एक बार आपने सुनने की इच्छा की है तो सुना रहे हैं आपका ये मनपसंद गीत, तो गीत का आनंद लीजिए। गीत आ रहा है आपके रेडियो सेट पर।

0: हेलो नमस्ते।
1: नमस्ते नमस्ते, अब बताइए।
0: नमस्ते, मैं जगदीश चौहान फिल्टर मुखर्जी नगर इंदौर से बोल रहा हूँ। मुझे गाना सुनना है।
1: कौन सा?
0: राजा और रंग का। माँ तू कितनी अच्छी है।
1: राजा और रंग का?
0: राजा और रंग का।
1: माँ तू कितनी अच्छी है।
0: हाँ,
1: तो यही गीत सुनने की कोई खास वजह है? राजा और रंग फिल्म का माँ तू गीत तो बहुत ही अच्छा है ना?
0: हाँ,
1: तो
0: माँ
1: क्यों?
0: से बहुत प्यार करते हैं सर।
1: माँ से बहुत प्यार करते हैं। माँ भी आपसे निश्चित ही बहुत प्यार करती होंगी।
0: जी जी जी बहुत चाहती मेरी माँ भी में।
1: बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो क्या होता है कि माँ का जो प्यार होता है ना,
0: जी
1: वो शायद दुनिया में सबसे अलग होता है। एक निस्वार्थ प्रेम
0: है।
1: होता है, और इसीलिए हर बच्चा, चाहे मैं हूँ, आप हो या

0: कोई भी हो, वो माँ से इसीलिए जुड़ा होता है क्योंकि वो निस्वार्थ प्रेम मिलता है उसको वहां पर।
1: सही बात है, माँ से जुड़ा हुआ सब,
0: माँ से जुड़ा हुआ है और माँ से ही हम हैं। गीत आपने बहुत ही अच्छा पसंद किया है, गीत आ रहा है आपका आपके रेडियो सेट पर, तो कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।

0: इसी गीत के साथ फोन करें, गीत सुने, कार्यक्रम संपन्न होता है। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। समय है इस घंटे की खास खबरों का।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G7 शिखर सम्मेलन से पहले आज फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे और भारत के स्टार्टअप्स तथा नवाचार प्रणाली को वैश्विक निवेशकों से जोड़ने वाले कार्यक्रम भारत इनोवेट्स का उद्घाटन करेंगे। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने विश्व रक्तदाता दिवस पर लोगों से रक्तदान की अपील करते हुए कहा है कि रक्तदान किसी व्यक्ति को नया जीवन देने का सर्वाधिक प्रभावी और पावन अवसर है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने पांडुलिपि संरक्षण अभियान के लिए पांडुलिपि धारकों के साथ संवाद स्थापित कर उन्हें अभियान से जोड़ने के लिए जिला स्तर पर गतिविधियां संचालित करने के निर्देश दिए हैं। प्रदेश में 10,24,571 पांडुलिपियां होने का अनुमान है। केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अगले 2 से 3 महीने में हिमाचल और असम में लगभग 150 स्थानों पर ड्रोन आधारित डाक सेवा शुरू करने की घोषणा की है। खेल और युवा कल्याण मंत्री विश्वास सारंग ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सेवा, सुशासन और विकास के स्वर्णिम 12 वर्ष पूर्ण होने पर कल भोपाल में विद्यार्थियों से संवाद में इस दौरान हासिल की गई उपलब्धियों की जानकारी दी। सीहोर के शासकीय आरके कृषि कॉलेज में सोयाबीन की उत्पादकता बढ़ाने के संदर्भ में कल किसानों को नई वैज्ञानिक तकनीकें और उन्नत प्रजातियों की जानकारी दी गई। फीफा विश्व कप 2026 में आज ग्रुप ई में जर्मनी का सामना कुरासाओ से भारतीय समय के अनुसार रात 10:30 बजे होगा और ICC महिला T20 विश्व कप में आज भारत और पाकिस्तान के बीच एजबेस्टन में भारतीय समय के अनुसार शाम 7 बजे से मैच खेला जाएगा। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
0: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। प्रस्तुत है फरमाइशी पत्रों पर आधारित फिल्मी गीतों का कार्यक्रम आपकी फरमाइश। कार्यक्रम के सुनने वालों को हमारा नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत। श्रोतों, कार्यक्रम में पहला पत्र हमने शामिल किया है। भोपाल से ये पत्र हमें मिला है। पत्र लिखने वाली हैं कुसुम कीर, ज्योति वर्मा, अर्जुन वर्मा, अंश, परी, मिष्टी और लक्ष्मी। ये सुनना चाहते हैं आराधना फिल्म का वो गीत जिसे आवाज दी है किशोर कुमार ने, आनंद बख्शी की रचना है, संगीत है SD बर्मन का। तो आइए इनके साथ हम भी सुनते हैं आराधना फिल्म का ये गीत।

और अब आपको सुनवाने जा रहे हैं फकीरा फिल्म का वो गीत जिसे आवाज़ दी है लता मंगेशकर ने, गीत और संगीत है रविंद्र जैन का। पसंद आप सब श्रोताओं की। डॉक्टर संस्कृति कुल्हारे, वैदेही, सौम्या, रेवती, अंशिता और इनके मित्रों ने पत्र लिखा है कोलार रोड भोपाल से। गौतम नगर नांदेड़ से ये गीत सुनना चाहते हैं प्रभाकर जोंदले और आरती जोंदले। तो आइए सुनते हैं इन सबकी पसंद पर फकीरा फिल्म का ये गीत।

राम तेरी गंगा मैली, इस फिल्म का गीत हम आपको सुनवाने जा रहे हैं। लता मंगेशकर और सुरेश वाडकर की आवाज़ है, गीत और संगीत रविंद्र जैन का। पसंद आप सब श्रोताओं की है। दतरिंगी से भागवत वर्मा, लेवई से गुलाब दास मानिकपुरी, रिंगनी से दिनेश वर्मा, लच्छनपुर से विश्वनाथ साहू, मावली सिंगारपुर से सालिक पुजारी इस गीत को सुनना चाहते हैं। भोपाल से हमें पत्र मिला है जूही, शुभी, श्रुति, भारती, दक्ष और मनीष वर्मा का। तो आइए सुनते हैं राम तेरी गंगा मैली फिल्म का ये गीत।

अब आपको सुनवा रहे हैं चितचोर फिल्म का वो गीत जिसे आवाज़ दी है येसुदास और हेमलता ने। गीत और संगीत रविंद्र जैन का है। पसंद आप सब श्रोताओं की। अमित, निहारिका, शिवपाल, अनामिका, अवंतिका, शिवालिका, पारस मणि, पंजाब राव निम्बालकर और संदीप पाटिल ये गीत सुनना चाहते हैं। ये पत्र हमें इन्होंने लिख भेजा है सारणी ज़िला बैतूल से। इसी गीत को सुनना चाह रही हैं सुमन, दिव्यानी, दिव्य, निक्की और इनके परिवार के सदस्य। ये पत्र जबलपुर से हमें मिला है। राग रोली और प्रशांत दुबे ने भोपाल से इस गीत को सुनना चाहा है।

आपकी फरमाइश कार्यक्रम के अंत में आपको सुनवा रहे हैं मिलन फिल्म का वो गीत जिसे आवाज़ दी है लता मंगेशकर और मुकेश ने। आनंद बख्शी के बोल हैं, संगीत हैं लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का। पसंद आप सब श्रोताओं की है। जीशान वारसी इस गीत को सुनना चाहते हैं बरेली से। अयूब खान, इरम गुड़िया, शोएब, नावेद, इन्होंने हमें मुरादाबाद से पत्र लिख भेजा है। इसी गीत को सुनना चाहते हैं बंडा सागर के श्रोता कृष्णा, जिया, मोना, रश्मि, संध्या, दीपिका और प्रियंका। औरंगाबाद के कुछ श्रोताओं का भी पत्र हमें मिला है। राजेश साबले पाटिल, शीतल, राजदीप, राशि और इनके परिवार के सदस्य, इन्होंने ये पत्र हमें लिखा है औरंगाबाद से। तो आइए सुनते हैं मिलन फिल्म का ये नगमा।

0: मिलन फिल्म के इसी गीत के साथ आपकी फरमाइश कार्यक्रम अब संपन्न होता है। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। हमारा अगला प्रसारण इस छोटे से अंतराल के बाद।
1: सुनिए NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे आकाशवाणी भोपाल पर।
2: आकाशवाणी का साकार हुआ सपना, जन जन सब गाएं मिल मधुर।

0: पहुंचाएं हम जन जन तक, सपनों को दें हम आकार।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
3: मैं डॉक्टर अजय सिंह। आकाशवाणी 9 दशकों से भारत की आवाज रही है, जिसने हमारे समृद्ध देश की विरासत को सजोने और प्रचारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इस ऐतिहासिक उत्सव का हिस्सा बनना और इसकी विरासत में योगदान देना मेरे लिए एक गर्व की बात है। आकाशवाणी को 90 गौरवपूर्ण वर्षों की पूर्णता पर हार्दिक बधाई।

0: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लीजिए सुनिए कार्यक्रम संग्रहालय से। इस कार्यक्रम में इन दिनों आप सुन रहे हैं श्रृंखला जंग लगी तलवार। आज सुनिए इसकी 9वीं कड़ी।
1: सुप्रसिद्ध लेखिका और उपन्यासकार इंदिरा गोस्वामी का असमिया साहित्य में विशेष स्थान है। प्रस्तुत है इंदिरा गोस्वामी द्वारा लिखित और साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित असमिया उपन्यास ममारे धारो तलोवाल पर आधारित धारावाहिक जंग लगी तलवार। इस धारावाहिक के प्रस्तुतकर्ता और निर्देशक हैं रेडियम वीडियोमैटिक्स दिल्ली के वेद शर्मा। रेडियो रूपांतर किया है राजीव और सुधांशु ने। अब तक आपने सुना, नशा करते करते शिबू को कुछ ज्यादा ही चढ़ जाती है और वो बेहोश हो जाता है। नारायणी लिचू को नशा करवाने के लिए कोसती है। होश में आने पर शिबू नारायणी से माफी मांगते हुए फिर ऐसा न करने की शपथ लेता है। शंभू और भृगु हड़ताल से फैल रही भुखमरी पर करुण चर्चा करते हैं और बेरोजगारी को देश के लिए कोढ़ बताते हैं। ठाकुर साहब लिचू को फेंकने के लिए जो कबाड़ देते हैं उनमें से उसे एक बोतल मिलती है। लिचू और शिबू मिलकर नशा करते हैं। तब शिबू कहता है कि वो औरत से डरने वाला आदमी नहीं है। यशवंत बलबीर स्वामी से हड़ताल को लेकर बहस करता है और लोकल लीडर शास्त्री जी से मिलवाने के लिए कहता है। दोनों शास्त्री जी से मिलने जाते हैं। शास्त्री उनसे फंड का इंतजाम करने के लिए कंपनी का स्टील सीमेंट लोहा आदि बेचने के लिए कहता है। यशवंत ध्यान दिलाता है कि कंपनी ने इन सामानों को बेचने के लिए कोटेशन मंगवाए हैं। शास्त्री कोटेशन देने वाले व्यापारियों को पीट पीट कर भगा देने के लिए कहता है। ये सुनकर यशवंत और बलबीर स्वामी चौंक जाते हैं। अब

0: का
1: अब तुम्हारी यूनियन क्या कर रही है रामू बामू?
2: हुजूर, सुनने में आया है कि यशवंत और बलबीर स्वामी शास्त्री जी से मिलने गए थे।
1: अच्छा, तो शास्त्री जी ने क्या कहा?
3: सरकार शास्त्री

0: 1975 में यूनियन और कंपनी के बीच हुए समझौते को इमरजेंसी के दौरान जबरदस्ती हुआ समझौता साबित करना चाहते हैं।
1: हाँ सरकार,
0: सुनना है वो कोई सबूत भी पेश करने वाले हैं सरकार।
1: अगर ऐसा हो गया माई बाप तो कंपनी कई साई के पानी में।
2: नहीं नहीं नहीं, हम ऐसा नहीं होने देंगे रामू बाबू, हम ऐसा किसी भी हालत में नहीं होने देंगे।
0: आप क्या करने की सोच रहे हैं?
2: अभी ये राज की बात है, इसे राज ही रहने दो, जब समय आएगा तो तुम भी जान जाओगे।
1: ठीक कह रहे सरकार। ठाकुर साहब की जय हो,
0: जय हो।
1: आप तो जो भी कदम उठाएंगे कंपनी के हित में ही उठाएंगे सरकार।
2: क्यों भाई रामू बामू, सुना है कि यूनियन के साथ तुम दोनों की कोई गुप्त सभा हुई थी।
0: सरकार आपने बिल्कुल ठीक सुना है सरकार।
2: तो क्या यूनियन ने तुम दोनों को कोई खास काम सौंपा है?
1: हाँ हुजूर, कंपनी ने पुराना सामान बेचने के लिए कोटेशन मंगाए हैं ना, तो अब कोटेशन देने वाले व्यापारियों का यहाँ आना जाना शुरू हो जाए।
2: तुम लोग क्या करोगे?
1: पूरा इंतजाम है साहब, साई नदी गवाह रहेगी और हम मशीनों के पुराने बचे हुए टुकड़े और पुर्जों को खरीदने वाले व्यापारियों को मारपीट के बगल।
2: क्या तुम लोग कंपनी के खिलाफ कदम उठाओगे?
0: अरे नहीं नहीं सरकार, भला हमारी क्या वजह, क्यों क्यों क्यों रामू, जो हम कंपनी की मुखालफत करें।
1: अरे नहीं सरकार, जरा सोचिए, अगर हम व्यापारियों को मार पीट कर भगा दे तो क्या होगा?
0: क्या होगा?
1: यहाँ पर हिंसा फैलेगी।
0: हाँ सरकार, हड़ताल करने वालों पर हिंसा फैलाने का आरोप लगेगा।
1: हाँ सरकार, और पुलिस वालों की संख्या दोगुनी हो जाएगी।
0: हाँ सरकार, हड़ताल को गैर कानूनी घोषित कर दिया जाएगा।
1: और इसी में तो कंपनी का फायदा
0: फायदा है सरकार।
2: अरे हाँ, ऐसा तो मैंने सोचा ही नहीं था। तुम दोनों बहुत बहादुर, बुद्धिमान भी हो। ये लो अपनी बोतल, विलायती है।
1: ठाकुर साहब की जय हो।
2: बस बस बस, तुम लोग इसी तरह यूनियन की खबर मुझ तक पहुंचाते रहना, बस तुम्हें इसी तरह बोतल मिलती रहे।
3: देखा बलबीर स्वामी, शास्त्री जी की बात मानने का क्या नतीजा निकला?
4: यशवंत, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। पिटने वाले व्यापारियों ने हड़तालियों के खिलाफ कंप्लेंट लिखा दी है, चारों ओर पुलिस ही पुलिस नजर आ रही है।
3: अरे पुलिस ने हमारे कुछ साथियों को गिरफ्तार भी कर लिया है, अब क्या होगा बलबीर? अरे कब तक हम मुख्यालय से मदद के इंतजार में बैठे रहेंगे? अब हमें ही कुछ करना होगा।
4: हम गिरफ्तार हुए साथियों को छुड़ाने के लिए जुलूस निकालेंगे, कंपनी के दफ्तर पर प्रदर्शन करेंगे।
3: लेकिन प्रदर्शन करने के लिए हमारे पास फंड कहाँ है बलबीर?
4: तो मजदूरों से चंदा इकट्ठा करो।
3: वाह वाह बलबीर स्वामी वाह, हमारे मजदूर भाई भूखे पेट रहकर भी आप लोगों पर विश्वास करके हड़ताल को जारी रखे हुए हैं, और एक तुम हो जो मजदूरों की खाल तक उधेड़ लेना चाहते हो। जानते हो कल क्या हुआ?
4: क्या हुआ?
3: अरे हमारे दो मजदूर किसानों से गेहूं मांगने गए तो किसानों ने उन्हें मार मार कर अधमरा कर दिया। बेचारे टूटी कमर लेकर सरकारी अस्पताल में पड़े हुए हैं।
4: ये कैसे हो सकता है? किसान तो हम मजदूरों के साथ हैं। तुम्हारे सामने ही तो सबने मजदूर किसान एकता जिंदाबाद के नारे लगाए थे ना।
3: बलबीर, सुना है कि ठाकुर साहब ने किसानों के मुखिया को खरीद लिया है।
4: ओह तो ये बात है, इसका मतलब पानी अब सिर से ऊपर बहने लगा है।
3: अब तुम ही बताओ बलबीर कि हम लोग क्या करें? अगर मजदूरों पर ऐसे ही दमन चक्र चलता रहा तो हड़ताल तो बीच में ही टूट जाएगी।
4: अरे कंपनी का मकसद भी तो यही है कि हड़ताल टूट जाए।
3: क्या?
4: मगर हम ऐसा किसी कीमत पर नहीं होने देंगे। हम अपनी आखिरी सांस तक लड़ेंगे और कंपनी की ईंट से ईंट बजा देंगे।
3: तुम्हारा चरित्र मैं आज तक नहीं समझ पाया बलबीर स्वामी।
4: तुम कहना क्या चाहते हो यशवंत?
3: अरे कभी तो मुझे लगता है कि तुम शास्त्री जी के साथ मिलकर हम मजदूरों के साथ छल कर रहे हो, और कभी लगता है कि तुम सच्चे मन से हमारे साथ हो।
4: देखो यशवंत, सच बात तो यह है कि ताकत के बिना कोई लड़ाई नहीं जीती जा सकती, और वो ताकत शास्त्री जी के पास है। उनकी लखनऊ से लेकर दिल्ली तक जान पहचान है। ऐसे में उनकी ताकत का मजदूरों के हित में इस्तेमाल करने के लिए उनकी चापलूसी करनी पड़ती है, वरना हकीकत तो यह है कि मैं तन मन धन से मजदूरों के साथ

0: हूं।
1: अच्छा, तो फिर मेरी एक बात मानोगे?
0: जरूर।
1: बलबीर, क्यों ना मुख्यालय से आने वाले प्रतिनिधियों का इंतजार करने की जगह हम अपना प्रतिनिधि मुख्यालय भेजें?
0: विचार तो तुम्हारा अच्छा है।
1: तो फिर विलंब क्या है? अब क्या शास्त्री जी से सलाह लेना चाहते हो?
0: नहीं, हमारे पास बिल्कुल समय नहीं है। हाँ, एक सुझाव और है मेरे पास।
1: सुझाव? कैसा सुझाव, जरा मुझे भी बताओ।
0: हम थोड़ा बहुत चंदा इकट्ठा करके कंपनी के दफ्तर पर बेमियादी धरना देंगे, और जब तक कंपनी के अधिकारी हमसे बात नहीं करते तब तक हम वहां से नहीं हटेंगे।
1: हाँ, बलबीर, मैं तुम्हारी बात से सहमत हूँ। चलो अधूरी तैयारियों को पूरा करें।
0: हाँ चलो, ये चलो आप।
2: नारायणी काकी, राम राम काकी।
3: राम राम।
2: कहाँ से आ रही हो?
3: अरे नारायणी, तेरे पास कुछ खाने को है? हमारे पेट में 3 दिन

0: ऐसा सुझाव जरा मुझे भी बताओ।
1: हम थोड़ा बहुत चंदा इकट्ठा करके कंपनी के दफ्तर पर बेमियादी धरना देंगे और जब तक कंपनी के अधिकारी हमसे बात नहीं करते तब तक हम वहां से नहीं हटेंगे।
0: बलबीर मैं तुम्हारी बात से सहमत हूँ, चलो अधूरी तैयारियों को पूरा करें।
1: हाँ चलो ये चलो आप।
2: नारायणी काकी, राम राम काकी।
3: राम राम,
2: कहाँ से आ रही हो?
3: अरे नारायणी, तेरे पास कुछ खाने को है? हमारे पेट में 3 दिन से अन्न का एक दाना नहीं गया।
2: काकी क्या बताऊं, मैं खुद 3 दिन से भूखी हूँ और मेरा मुन्ना भी खालिस पानी पर जिंदा है।
3: अरे हम तो पहले ही कह रहे थे कि इस हड़ताल से कुछ होने वाला नहीं है। अरे हमारी बात किसी ने नहीं मानी।
2: लेकिन काकी तुम खलासी लंगर की तरफ से कैसे आ रही हो?
3: अरे गई तो थी 2 रोटी का इंतजाम करने, रोटियां तो नहीं मिली, लेकिन हाँ यूनियन की सच्चाई का पता लग गया।
2: यूनियन की सच्चाई? मैं समझी नहीं काकी।
3: हम मजदूर लोगन के खून पसीना की गाड़ी कमाई यूनियन के नेता दारू में उड़ा रहे हैं। अब तक बैठे हैं खलासी लंगर में वो दोनों गद्दार।
2: क्या?

0: भाई वाह वाह बलबीर भाई वाह।
1: कालू भाई ये ले एक पैग और ले।
0: अरे वाह वाह वाह एक पैग और। भाई वाह पीने पिलाने का तो मजा ही कुछ और है। देखो भाई बलबीर हड़ताल करें मजदूर, चंदा दे मजदूर, भूखे मरे मजदूर और चंदे के पैसे से मौज मस्ती करे हम यानी के यूनियन के नेता।
1: धीरे बोल धीरे। कालू अगर किसी ने सुन लिया तो गजब हो जाएगा।
0: अरे बलबीर भाई तुम यूनियन के अध्यक्ष हो।
1: हाँ।
0: और मैं
1: सेक्रेटरी।
0: सेक्रेटरी शास्त्री जी का हाथ भी तो हमारे सर पर है। देखो भैया जब सैया भय कोतवाल तो फिर डर काहे का।
1: लेकिन कालू डरना सीख, डरना सीख। किसी से भले ही मत डर लेकिन लेकिन यशवंत से तुझे डरना चाहिए।
0: यशवंत? अरे कौन यशवंत? हो वो दलित नेता।
1: हाँ बिल्कुल वही।
0: अरे छोड़ यार बलबीर उस मच्छर से क्या डरना। हाँ
1: अरे यार कालू मत भूल कि एक मच्छर से मलेरिया की महामारी हो जाती है।
0: ओह
1: और ये महामारी इंसान को मौत के आगोश में पहुंचा कर ही पीछा छोड़ती है।
0: यार बलबीर
1: हाँ
0: मुझे आज तक समझ में नहीं आया कि तुम मुझसे इतना डरते क्यों हो।
1: हाँ।
0: देख बलबीर उसे तो जब कहे ना तब उसे मसल कर रख दो।
1: अरे हाँ। अरे कालू मत भूल कि साई के 4000 मजदूर उसके एक इशारे पर जान देने के लिए तैयार रहते हैं। और वो भी मजदूरों के लिए मरने मारने पर तैयार रहता है। अगर अगर वो हमारे हाथ से निकल गया तो हमारी इस मौज मस्ती पर हमेशा हमेशा के लिए विराम लग जाएगा। शास्त्री जी की नाराजगी झेलनी पड़ेगी सो अलग।
0: भाई बलबीर मुझे तो लगता है कि ये शास्त्री जी कोई कोई बड़ी गेम खेल रहे।

0: हैं यार।
1: अरे अब हमसे क्या, अब भाई हम तो ठहरे छोटे नेता, और वैसे भी शास्त्री जी ने यूनियन के एक भी पैसे को हाथ नहीं लगाया है। सबका सब पैसा हमारे पास है।
0: अच्छा,
1: फिर हमें उनके बड़े गेम से क्या लेना देना।
0: अरे अरे ठीक कहते हो भाई। अच्छा भाई बलबीर, इसी बात पर एक पैग और हो जाएगा।
1: अभी लो।

0: यशवंत बाबू, यशवंत बाबू।
1: अरे नारायणी, तुम मेरे घर में? अब आओ, अंदर आ जाओ।
0: नहीं, क्षमा चाहती हूँ यशवंत बाबू,

0: तो मैं ही बाहर आता हूँ।
1: हाँ कहो नारायणी, कैसे आना हुआ?
2: आजकल यूनियन में क्या चल रहा है मैं सब जानती हूँ। क्या यही सब करवाने के लिए मजदूरों की हड़ताल करवाई थी?
0: ये तुम क्या कह रही हो नारायणी? अब मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा।
2: अब समझ में क्यों आएगा? यूनियन के नेता हमारे चंदे पर गुलछरे जोड़ा रहे हैं। कम से कम मैं आपको तो ऐसा नहीं समझती थी, लेकिन आप भी ऐसे ही निकले।
0: देखो नारायणी, पहेलियां ना बुझाओ, जो कुछ कहना है साफ साफ कहो।
2: पहले सुना था कि आपने यूनियन के पैसे से अपने लिए नया खादी का कुर्ता पजामा खरीदा है, तब मैंने विश्वास नहीं किया।
0: ये तुम क्या कह रही हो नारायणी?
2: लेकिन जब पता चला कि यूनियन के नेता यूनियन का पैसा खलासी लंगर में दारू में उड़ा रहे हैं, तो जाकर एहसास हुआ कि उस समय मैं गलत थी। लेकिन अब मेरी आंखें खुल गई हैं।
0: नहीं, ये झूठ है, ये झूठ है नारायणी।
2: चिल्लाओ मत यशवंत बाबू, चिल्लाने से सच झूठ में नहीं बदल सकता।
0: तुम्हें कैसे समझाऊं, मेरी बात का यकीन करो नारायणी, यकीन करो मेरी बात का। तुम्हें जरूर कोई गलत फहमी हुई है।
2: गलत फहमी? यशवंत बाबू, गलत फहमी में तो साई के सारे मजदूर आज तक जी रहे हैं। जिसे अपना मसीहा समझा, जिस पर इतना विश्वास किया, उसी इंसान ने विश्वासघात किया।
0: नारायणी,
2: लेकिन मैं चुप नहीं बैठूंगी, चीख चीख कर सबको बता दूंगी। फिर देखना जिन मजदूरों के साथ तुम लोगों ने छल किया है, वही मजदूर तुम सबको साई के बालू में जिंदा गाड़ देंगे।
0: होश में आओ नारायणी, मेरी बात का तुम यकीन क्यों नहीं करती? अच्छा एक बात बताओ, तुम यूनियन के किस नेता की बात कर रही हो जो यूनियन का पैसा दारूबाजी में उड़ा रहा है?
2: बलबीर स्वामी और कालूराम।
0: क्या, बलबीर स्वामी और कालूराम?
3: भाई बाबू,
4: बोल रहा हूँ,
3: आजकल तो हमारी पांचों उंगलियां घी में है और सिर कड़ाई में।
4: तू सच कह रहा है रे, एक कंपनी की पुरानी मशीनों के कल पुर्जे और दूसरी चीजों को चुरा चुरा कर हम बेच रहे हैं।
3: और हमें इनके अच्छे पैसे भी मिल रहे हैं।
4: और जब कंपनी के अधिकारियों को इस चोरी का पता चलेगा
3: तो उनका शक सीधे हड़ताली मजदूरों पर जाएगा।
4: रामू, तूने कुछ सुना?
3: नहीं भैया बाबू, अगर तूने सुना है तो मुझे भी बता दे।
4: हाँ सुनाता हूँ। वो क्या है कि रोज शाम अंधेरा होने के बाद कोई औरत ठाकुर साहब के पास जाती है।
3: औरत? अरे क्या बात करता है।
4: अरे 16 आने, सच कह रहा हूँ भैया, 16 आने सच।
3: लेकिन तुझे कैसे पता?
4: अरे मैंने स्वयं कई बार ठाकुर साहब के घर से एक औरत की परछाई को आते जाते देखा है।
3: अच्छा, लेकिन ये औरत हो कौन सकती है भैया बाबू?
4: अरे रामू, यही तो पता लगाना है।
3: तो ठीक है, आज रात हम ठाकुर साहब के घर के सामने वाले सागवान के पेड़ पर बैठकर निगरानी करेंगे। अरे पता तो

0: चले कि वो चरित्रहीन औरत है कौन।
1: हाँ, तूने बिल्कुल ठीक कहा।
0: हाँ, तो चलो पेड़
1: पे आज रात मिलते हैं सागवान के पेड़ पे।
0: हाँ, तो मैं कह रहा हूँ।
2: कंपनी के अधिकारियों के अड़ियल रवैये के कारण हड़ताल लंबी खिंचती जा रही है। हमारे मजदूर हताश और निराश नहीं है। कंपनी के पास रुपए पैसे हैं, लेकिन हमारे पास हौसला है। हौसला बनाए रखो, जीत हमारी होगी। हमारा बेमियादी धरना तब तक जारी रहेगा जब तक कंपनी के अधिकारी हमसे बात करने के लिए तैयार नहीं होते।
3: आवाज दो,
4: अमेठ है।
3: आवाज दो,
4: अमेठ है।
2: शांत भाइयों शांत, हमारे बीच कंपनी का आदमी आया है, शायद वो हमसे कुछ कहना चाहता है।
5: सुनिए, ठाकुर साहब यूनियन के नेताओं से मिलना चाहते हैं।
2: साथियों, ठाकुर साहब ने यूनियन के नेताओं को बातचीत के लिए बुलाया है। लगता है कंपनी हमारे आगे झुक गई है, हमारी मांगे मानने के लिए तैयार हो गई है। शांत साथियों, शांत। यूनियन की ओर से मेरे साथ कालूराम और यशवंत ठाकुर साहब से मिलने जा रहे हैं। तब तक आप लोग शांतिपूर्वक यहीं पर बैठ जाइए। आओ यशवंत।
6: चलो आओ कालूराम।
7: हाँ बताइए ठाकुर साहब, तो क्या फैसला हुआ था?
8: देखिए, कंपनी के अधिकारियों की बैठक में ये अहम फैसला लिया गया है कि हम 60 मजदूरों को परमानेंट करने के लिए तैयार।
9: क्या, सिर्फ 60?
7: 2000 दिहाड़ी मजदूरों में से सिर्फ 60? ठाकुर साहब,
9: सिर्फ 60?
8: हाँ भाई, सिर्फ 60, इससे ज्यादा हमारे लिए संभव नहीं है।
10: ठीक है, ये प्रस्ताव हमें लिखित रूप में दे दीजिए।
8: ये भी संभव नहीं है।
10: क्यों?
8: कंपनी लिखकर नहीं दे सकती।
9: कमाल है, ये क्या हिमाकत है? कंपनी अपना ही फैसला लिखकर देने में क्यों आनाकानी कर रही है?
8: देखिए, समझने की कोशिश करिए, कंपनी के पास हजारों विभाग हैं, इस तरह लिखकर देना बहुत मुश्किल काम है।
7: देखिए ठाकुर साहब, इस तरह तो फैसला हो नहीं सकता।
9: नहीं हो सकता।
8: तो ठीक है, करो हड़ताल, 1 साल 2 साल तक हड़ताल करते रहो, आखिर में हम ये केस सरकार के हवाले कर देंगे।
7: क्या है?
10: चलो भाइयों, हमारी हड़ताल जारी रहेगी।
7: हाँ।
10: कंपनी को यूनियन के सामने झुकना होगा।
7: हाँ,
10: झुकना होगा कंपनी को यूनियन के सामने। यशवंत कालू, चलो यहाँ से।
7: आओ,
10: चलो,
7: आओ, आओ, भाई,
10: चलो, चलो यहाँ से।
7: मेरे ख्याल से हम लोगों को ठाकुर साहब की बात मान लेनी चाहिए।
9: अरे यशवंत, तू अभी नरम बांस है। अरे यही उम्र है कि तुम पके बांस की तरह अपने आप को ढाल सकते हो।
7: यशवंत भाई,
11: यशवंत भाई।
7: हाँ,
11: जरा इधर तो आना।
7: अब क्या बात है लीचू?
11: भयानक दिन आएगा यशवंत भाई, बहुत ही भयानक दिन। तुम लोगों को नदी की बालू में जिंदा दफना देंगे लोग।
7: क्या क्या कहा लीचू?
9: क्या हुआ रामू? क्या?
12: अरे भैया बाबू, चींटियों और मच्छरों ने काट काट के सारा शरीर लाल कर दिया। दर्द के मारे बुरा हाल है भैया।
9: वैसे एक बात बताओ रामू, यूनियन ने भी अच्छा काम दिया है कि निगरानी करो कि कोई औरत कंपनी के किसी दलाल के पास तो नहीं जाती है।
12: और अगर जाती है तो उसे पकड़ कर मार मार कर हड्डियां तोड़ देने का भी आदेश है।
9: और दारू की बोतल भी नहीं देंगे यूनियन वाले, कहते हैं कि ये हमारा फर्ज है।
12: अरे दारू तो हमें ठाकुर साहब से मिली जाती है, और ठाकुर साहब का ही आदेश है कि हम दोनों यूनियन से मिलते रहे।
9: हाँ?
12: ताकि उन्हें हमारे जरिए यूनियन की गतिविधियों की जानकारी मिलती रहे।
9: हाँ? हमें मच्छरों से कटवा कर औरतों की रखवाली पर लगा दिया, खुद नाक बजा बजा कर सोते रहते।
12: अरे भैया बामू, कहीं वो औरत पार्वती तो नहीं?

0: अरे वही भृगु की बहन।
1: वो सुना है कि वो लोगों को खराब कर रही है।
0: अब तो तेरा मतलब है कि ठाकुर साहब के पास पार्वती ही आती होगी।
1: अरे क्यों नहीं आ सकती वो?
0: अब हाँ आ तो सकती है। आज उसे घसीट कर साई के बालू तक ले जाऊंगा।
1: साई के बालू तक ले जाऊंगा? अरे कैसे ले जाएगा?
0: अरे कैसे का क्या मतलब?
1: चार और बंदूकधारी पुलिस बहरे पर है।
0: अरे साई के उस पार तक मुंशीगंज में आने वाली सड़क पर भी पुलिस वालों ने कब्जा कर रखा है भैया।
1: रामू भाई, एक दिन साई के बालू के पास पार्वती को अकेले पाकर उसका हाथ पकड़ना चाहा था। तुरंत सती सावित्री बन गई भाई, गाली देने लगी। अगर आज हाथ लग गई ना तो रामू भैया मैं उसे छोड़ूंगा नहीं।
0: मैं भी नहीं
1: लेकिन उसे साईं की बालू पर लेकर नहीं जाऊंगा। क्या पता यूनियन वालों ने बालू में गोला बारूद रखा हो।
0: क्या हुआ
1: रामू? उधर देखो, उधर वो झाड़ी की तरफ, वो बसाने वाली बबूल की झाड़ी हिल रही है।
0: हिल रही है, शायद वो आ रही है। अरे दम साधे बैठा रहे, चुप, बिल्कुल चुप, शोर नहीं कर रहा। जैसे ही वो पेड़ के नीचे आएगी, एक साथ हम इस पर कूद पड़ेंगे।
1: हाँ,
2: जान पहचान ली, तो मुझे भागना होगा, नहीं तो मार भी पड़ेगी और इज्जत भी जाएगी।
0: भैया बाबू, ये तो पार्वती नहीं बल्कि नारायणी है।
1: रामू वो देख, उधर पोटली गिरी पड़ी है। देख तो, पोटली
0: देखता
1: हूँ। देख इसमें क्या है? क्या है पता?
0: कुछ पैसे और सूखी रोटियां है बाबू।
1: सुन तेरा पैसे जेब में डाल ले, रोटी इसके हवाले कर दे।
0: ले चल,
2: लौटा मेरे पैसे, लौटा मेरे पैसे, मैं कहती हूँ मेरे पैसे वापस कर।
0: अरे चल नारायणी, तू भी ऐसा काम करती है? चल,
2: सुना नहीं जानवर की औलाद, लौटा मेरे पैसे।
0: चल आगे आगे बढ़। चल
1: नारायणी, ज्यादा हल्ला करेगी तो मार मार कर हड्डी तोड़ दूंगा तेरी। अरे हम सफाई कर्मचारियों की इज्जत, अरे तूने तो मिट्टी में मिला दी।
2: मेरा पति बीमार है, बच्चा दूध के लिए तरस रहा है, 5 दिन से भूखी हूँ मैं। क्या कभी किसी ने एक पैसा देकर मेरी मदद की? नहीं की ना। अब हड़ताल के नाम पर अनके दाने भी छीन रहा है। मैं कहती हूँ चुपचाप मेरे पैसे लौटा दे।
0: चुप रह,
2: मेरे पैसे। चुप, सुना नहीं, दे मेरे पैसे।
1: अरे नहीं देते, अरे करते क्या तेरे को पुलिस के हवाले? सारी जिंदगी जेल में सकती रहेगी।
0: समझ ले,
2: मेरी मर्जी, मैं चाहे अपने शरीर बेच कर पैसा कमाऊ, तुझे क्या? मैं कहती हूँ लौटा मेरे पैसे।
0: शरीर पे
3: कौन है रात के इस अंधेरे में?
0: भैया भाग ले, भाग ले।
3: देखो तो सही
0: बाबू, भाग ले।
3: नारायणी तुम इस वक्त?
4: संग्रहालय से, इसके अंतर्गत अभी आपने जंग लगी तलवार की 9वीं कड़ी का प्रसारण सुना। ये प्रसारण आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश से। इस समय 12:58 हुए हैं। अब प्रस्तुत है इस घंटे की खास खबरें।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G7 शिखर सम्मेलन से पहले आज फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे तथा भारत के स्टार्टअप्स और नवाचार प्रणाली को वैश्विक निवेशकों से जोड़ने वाले कार्यक्रम भारत इनोवेट्स का उद्घाटन करेंगे। आयुष मंत्रालय ने 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से पहले आयोजित कार्यक्रमों के तहत आज सुबह वैश्विक ऑनलाइन योग सत्र का आयोजन किया। 130 से अधिक देशों ने इस कार्यक्रम में भागीदारी की। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने विश्व रक्तदाता दिवस पर लोगों से रक्तदान की अपील करते हुए कहा कि रक्तदान किसी व्यक्ति को नया जीवन देने का सर्वाधिक प्रभावी और पावन अवसर है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज सागर जिले के केसली में लाडली बहना योजना के तहत 1,25,00,000 महिलाओं के खातों में 1,835 करोड़ रुपये जमा करेंगे। संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अगले 2 से 3 महीने में हिमाचल और असम में 150 जगहों पर ड्रोन आधारित डाक सेवा शुरू करने की घोषणा की है। खेल और युवा कल्याण मंत्री विश्वास सारंग ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सेवा, सुशासन और विकास के स्वर्णिम 12 वर्ष पूर्ण होने पर कल भोपाल में एक संवाद में उपलब्धियों की जानकारी दी। सीहोर के शासकीय RAK कृषि कॉलेज में सोयाबीन की उत्पादकता बढ़ाने के संबंध में कल किसानों को नई वैज्ञानिक तकनीकें और उन्नत प्रजातियों की जानकारी दी गई। ICC महिला T20 विश्व कप में आज भारत और पाकिस्तान के बीच एजबेस्टन में भारतीय समयानुसार शाम 7 बजे से मैच होगा और फीफा विश्व कप 2026 में आज ग्रुप ई में जर्मनी का सामना कुरासाओ से भारतीय समयानुसार रात 10:30 बजे होगा। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
1: इस वक्त आप जुड़े हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश के संग। एक बज चुके हैं, अब प्रस्तुत है महिला सभा। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के शिवपुरी केंद्र का योगदान है।

महिला सभा सुन रही सभी बहनों को आपकी कार्यक्रम सखी वंदना अग्रवाल का प्यार भरा नमस्कार। बहनों, आज के महिला सभा अंक में शामिल है कुछ महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा, गीत संगीत और खाना खजाना में आम पापड़ और करारी कुल्फी की विधि। बहनों, कार्यक्रम की शुरुआत में बात करते हैं रक्तदान महादान। रक्त मानव जीवन का आधार है। दुर्घटनाओं, बड़े ऑपरेशनों, कैंसर, थैलेसीमिया, एनीमिया तथा अन्य गंभीर बीमारियों से पीड़ित मरीजों को समय समय पर रक्त की आवश्यकता पड़ती है। ऐसी परिस्थितियों में रक्तदान किसी व्यक्ति के लिए जीवन और मृत्यु के बीच का अंतर बन सकता है। विज्ञान ने आज अनेक क्षेत्रों में प्रगति कर ली है, लेकिन रक्त का कृत्रिम निर्माण अभी तक संभव नहीं हो पाया है। इसलिए रक्त की आवश्यकता केवल मानव द्वारा किए गए रक्तदान से ही पूरी की जा सकती है। बहनों, रक्तदान केवल एक सामाजिक सेवा नहीं बल्कि मानवता की सच्ची मिसाल है। जब कोई व्यक्ति रक्तदान करता है तो वह किसी अनजान व्यक्ति के जीवन में आशा की किरण बन जाता है। एक यूनिट रक्त कई लोगों के उपचार में उपयोगी सिद्ध हो सकता है। यही कारण है कि रक्तदान को महादान कहा गया है। सखियों, इस विषय पर आज हम इसलिए चर्चा कर रहे हैं क्योंकि आज यानी 14 जून को प्रत्येक वर्ष रक्तदाता दिवस मनाया जाता है। विश्व रक्तदाता दिवस उन सभी स्वैच्छिक रक्तदाताओं के प्रति सम्मान और कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए समर्पित है जो बिना किसी स्वार्थ के दूसरों का जीवन बचाने के लिए रक्तदान करते हैं। कई लोगों के मन में यह भ्रांति होती है कि रक्तदान करने से शरीर कमजोर हो जाता है, जबकि चिकित्सकों के

अनुसार एक स्वस्थ व्यक्ति सुरक्षित रूप से रक्तदान कर सकता है और कुछ ही समय में शरीर उस रक्त की भरपाई कर लेता है। रक्तदान करने से पहले स्वास्थ्य की जांच भी की जाती है, जिससे व्यक्ति को अपने स्वास्थ्य की जानकारी मिलती है। यदि प्रत्येक स्वस्थ नागरिक अपने जीवन में कम से कम एक बार रक्तदान करने का संकल्प ले ले तो रक्त की कमी की समस्या काफी हद तक दूर हो सकती है। मानवता की सेवा से बढ़कर कोई धर्म नहीं है। किसी जरूरतमंद को जीवन दान देने का अवसर हर किसी को नहीं मिलता, लेकिन रक्तदान करके हम यह पुण्य कार्य आसानी से कर सकते हैं। बहनों, इस अवसर पर हम सभी यह संकल्प लें, जीवन में कम से कम एक बार रक्तदान अवश्य करेंगे। आपका एक छोटा सा प्रयास किसी की पूरी दुनिया रोशन कर सकता है। सखियों, कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और चर्चा करते हैं एक बहुत ही संवेदनशील विषय पर। बुजुर्ग हमारे परिवार और समाज की अमूल्य धरोहर हैं। वे अनुभव, ज्ञान और संस्कारों का अनमोल खजाना अपने भीतर समेटे हुए होते हैं। उन्होंने अपने जीवन के सुनहरे वर्ष परिवार, समाज और देश के निर्माण में लगाए हैं। उनके त्याग, परिश्रम और संघर्ष के कारण ही आज हम एक सुरक्षित और सुखद जीवन जी पा रहे हैं। इसलिए उनका सम्मान करना केवल हमारा कर्तव्य ही नहीं, बल्कि हमारी संस्कृति का महत्वपूर्ण हिस्सा भी है। दुर्भाग्यवश आज के बदलते सामाजिक परिवेश में अनेक बुजुर्ग उपेक्षा, अकेलेपन और दुर्व्यवहार का सामना कर रहे हैं। कई बार उन्हें शारीरिक, मानसिक, आर्थिक और भावनात्मक प्रताड़ना झेलनी पड़ती है। कुछ बुजुर्गों को परिवार में पर्याप्त सम्मान नहीं मिलता, उनकी बातों को अनसुना कर दिया जाता है या उन्हें बोझ समझ लिया जाता है। यह स्थिति अत्यंत चिंताजनक है। बहनों, प्रत्येक वर्ष 15 जून को विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस मनाया जाता है। इसका उद्देश्य समाज में बुजुर्गों के प्रति सम्मान, संवेदनशीलता और सुरक्षा की भावना को बढ़ावा देना तथा उनके साथ होने वाले दुर्व्यवहार के प्रति लोगों को जागरूक करना है। बुजुर्ग दुर्व्यवहार केवल किसी व्यक्ति के साथ अन्याय नहीं है, बल्कि हमारे सामाजिक मूल्यों और मानवीय संवेदनाओं पर भी प्रश्नचिन्ह है। जिस समाज में बुजुर्गों का सम्मान नहीं होता, वह समाज अपनी जड़ों से कटने लगता है। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि आज जो युवा है वे भी एक दिन बुजुर्ग बनेंगे। इसलिए हमें ऐसा वातावरण बनाना चाहिए जहाँ पर बुजुर्ग सम्मान, सुरक्षा और आत्मसम्मान के साथ अपना जीवन जी सकें। बुजुर्गों का सम्मान करें, उनके अनुभवों का मान करें। जो आज हमारे मार्गदर्शक हैं, उनके प्रति प्रेम और सम्मान का भाव रखें। यह हम सबको समझने की आवश्यकता है।

बहनों चर्चा में आगे बढ़ते हुए बात करते हैं अपने प्यारे परिवार की। परिवार जीवन की वह पाठशाला है जहां प्रेम, त्याग, सहयोग, जिम्मेदारी और जीवन जीने की कला सीखी जाती है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और परिवार उसके जीवन की सबसे महत्वपूर्ण इकाई है। परिवार केवल रक्त संबंधों का समूह नहीं बल्कि भावनाओं, संस्कारों, विश्वास और सहयोग का आधार है। परिवार ही वह स्थान है जहां व्यक्ति जन्म लेता है, बड़ा होता है और जीवन के हर उतार चढ़ाव में सहारा पाता है। परिवार हमें जीवन जीने की कला सिखाता है। माता पिता हमें अनुशासन, परिश्रम और ईमानदारी का पाठ पढ़ाते हैं। दादा दादी और नाना नानी अपने अनुभवों के माध्यम से जीवन की अनमोल सीख देते हैं। परिवार के बीच रहकर हम दूसरों का सम्मान करना, कठिन परिस्थितियों में धैर्य बनाए रखना

ना और मिलजुल कर आगे बढ़ना सीखते हैं। बहनों, आज जब अनेक लोग रोज़गार के लिए दूसरे शहरों में रहते हैं, तब वह अपने परिवार की आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखकर आर्थिक मदद भेजते हैं, उसे हम प्रेषण कहते हैं। इसके महत्व को ध्यान में रखते हुए प्रतिवर्ष 16 जून को अंतर्राष्ट्रीय पारिवारिक प्रेषण दिवस मनाया जाता है। इन पैसों से बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाएं, घर की आवश्यकताएं पूरी होती हैं। हालांकि आर्थिक सहायता महत्वपूर्ण है, लेकिन परिवार का वास्तविक आधार केवल धन नहीं बल्कि प्रेम, संवाद और भावनात्मक जुड़ाव है। परिवार के सदस्यों के बीच नियमित बातचीत, एक दूसरे की भावनाओं को समझना और समय समय पर साथ बिताए गए पल रिश्तों को मजबूत बनाते हैं। तकनीक के इस युग में दूर रहकर भी परिवार के साथ जुड़े रहना पहले से कहीं अधिक आसान हो गया है। बहनों, परिवार जीवन का आधार है, खुशियों का सुंदर संसार है, तो कोशिश करें कि अपने परिवार के साथ ज़्यादा से ज़्यादा समय बिताएं, रिश्तों को सहेजें, पारिवारिक मूल्यों को आगे बढ़ाएं और प्रेम, सम्मान तथा सहयोग से भरे एक सुखी परिवार का निर्माण करें, क्योंकि परिवार के संग ही जीवन जीने की कला पूर्ण होती है और जीवन को सही दिशा मिलती है। सखियों, अब कुछ बात स्वस्थ जीवन और स्वच्छ पर्यावरण की। आज के आधुनिक और व्यस्त जीवन में स्वास्थ्य तथा पर्यावरण दोनों के प्रति जागरूक रहना अत्यंत आवश्यक है। इन दोनों के साथ हम उसकी बात करेंगे जिस पर आप हमें सुन रहे हैं। जी हाँ, वो है हमारा प्यारा रेडियो। रेडियो सुनिए, साइकिल चलाइए और पेड़ लगाइए। एक ऐसा संदेश है जो हमें ज्ञान, स्वास्थ्य और पर्यावरण संरक्षण तीनों के महत्व को एक साथ समझाता है। यदि हम इन तीनों बातों को अपने जीवन में अपनाएं, तो न केवल हमारा जीवन बेहतर बनेगा बल्कि समाज और प्रकृति को भी इसका लाभ मिलेगा। बहनों, रेडियो संचार का एक सशक्त माध्यम है। यह केवल मनोरंजन का साधन नहीं बल्कि ज्ञान, सूचना और जागरूकता का भी महत्वपूर्ण स्रोत है। रेडियो के माध्यम से हमें समाचार, शैक्षिक कार्यक्रम, कृषि संबंधी जानकारी, स्वास्थ्य संबंधी सलाह और विभिन्न सामाजिक विषयों पर उपयोगी जानकारियां प्राप्त होती हैं। रेडियो सुनने से हमारी जानकारी बढ़ती है और हम देश दुनिया की गतिविधियों से जुड़े रहते हैं। सखियों, हमने बात की रेडियो की, अब बात करते हैं साइकिल। साइकिल चलाना स्वास्थ्य के लिए अत्यंत लाभकारी है। नियमित रूप से साइकिल चलाने से शरीर स्वस्थ और सक्रिय रहता है। इसके साथ ही साइकिल एक पर्यावरण अनुकूलन वाहन भी है, क्योंकि इससे किसी प्रकार का धुआं या प्रदूषण नहीं होता। यदि छोटी छोटी दूरियों के लिए हम साइकिल का उपयोग करें तो ईंधन की बचत भी होगी और प्रदूषण में भी कमी आएगी। पेड़ पौधे पृथ्वी के जीवनदाता हैं, वे हमें शुद्ध ऑक्सीजन प्रदान करते हैं, वातावरण को संतुलित रखते हैं और धरती को हरा भरा बनाते हैं। वर्तमान समय में बढ़ता प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन मानवता के सामने बड़ी चुनौतियां हैं। इन समस्याओं का समाधान वृक्षारोपण और पर्यावरण संरक्षण में निहित है। प्रत्येक व्यक्ति यदि वर्ष में कम से कम एक पौधा लगाए और उसकी देखभाल करे, तो पर्यावरण संरक्षण की दिशा में बड़ा परिवर्तन लाया जा सकता है। सखियों, रेडियो हमें जागरूक बनाता है, साइकिल हमें स्वस्थ बनाती है और पेड़ पौधे हमारी धरती को सुरक्षित बनाते हैं। तो ये तीनों मिलकर एक बेहतर भविष्य की नींव रखते हैं। तो हम सबको कोशिश करनी है कि इन तीनों बातों पे हम अमल करें।

सखियों बातें तो बहुत हो गई, अब चलते हैं खाना खजाना की तरफ। गर्मी के मौसम में आता है फलों का राजा आम। आम से कई तरह के व्यंजन बनाए जाते हैं। आज हम आपके लिए लाए हैं आम पापड़ बनाने की विधि। तो नोट कीजिए आम पापड़ में लगने वाली सामग्री। हमें चाहिए पके हुए आम 1 किलो, चीनी 200 से 250 ग्राम, काला नमक आधा छोटा चम्मच, इलायची पाउडर आधा छोटा चम्मच, थोड़ा सा हमें घी चाहिए थाली या ट्रे को चिकना करने के लिए। आम पापड़ बनाने के लिए सबसे पहले आमों को अच्छे से धोकर उन्हें आप छील लें और उनका पल्प निकाल लें। अब इस पल्प को मिक्सर में एकदम चिकना पीसकर तैयार कर लें और अब एक भारी तले की कढ़ाई में आम का पल्प डालें और मध्यम आंच पर पकाना शुरू करें। अब आप इसमें चीनी मिला लें। लगातार मिश्रण को चलाती रहें ताकि वो तली में चिपके नहीं। जब मिश्रण गाढ़ा होने लगे तब इसमें आप काला नमक और इलायची पाउडर मिला लें। लगभग 15-20 मिनट पकाने के बाद मिश्रण गाढ़ा हो जाएगा और अब एक बड़ी थाली या ट्रे में हल्का सा घी लगा लें, उसको चिकना कर लें। तैयार मिश्रण को थाली में पतली और एक समान परत में फैला लें। इसको आप 2 से 3 दिन तेज धूप में सुखाएं। रात में इसको अंदर रख दें। पूरी तरह से सूख जाने पर आम पापड़ को मनचाहे आकार में काट लें या रोल बना लें। लीजिए, खट्टा मीठा आम पापड़ बनकर तैयार है। यह आम का स्वाद लंबे समय तक संजो कर रखने का एक बेहतरीन तरीका है। सखियों, ये तो बात हुई आम पापड़ की, अब चलते हैं गर्मियों में ठंडी ठंडी करारी कुल्फी खाने की। जी हाँ, गर्मियों में ठंडी ठंडी करारी कुल्फी खाने का मज़ा ही अलग होता है। यह कुल्फी बाजार जैसी गाढ़ी मलाईदार और स्वादिष्ट बनती है। तो नोट कीजिए कुल्फी बनाने के लिए हमें जो सामग्री चाहिए। हमें चाहिए दूध 1 लीटर, चीनी आधा कप, मिल्क पाउडर 3 बड़े चम्मच, मलाई आधा कप, इलायची पाउडर आधा छोटा चम्मच, कटे हुए पिस्ता 2 चम्मच। कुल्फी बनाने के लिए एक भारी तले के बर्तन में दूध को उबाल लें। दूध को मध्यम आंच पर लगातार चलाते हुए लगभग आधा होने तक पकाएं। अब इसमें मिल्क पाउडर मिला लें और साथ ही चीनी डाल दें और इसको 5 से 7 मिनट तक पकाएं। अब इसके अंदर मलाई, इलायची पाउडर और साथ ही कटे हुए पिस्ता भी डाल दें। अब गैस बंद करें और मिश्रण को ठंडा होने दें। अब कुल्फी के सांचों में इस मिश्रण को भर दें। 8 से 10 घंटे फ्रीजर में जमने के लिए रख दें। लीजिए, स्वाद में लाजवाब मलाईदार और करारी कुल्फी बनकर तैयार है। तो आप बहनों, इन गर्मी में ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिए और अब अपनी कार्यक्रम सखी वंदना को दें अनुमति। नमस्कार।

0: महिला सभा का प्रसारण अभी आपने सुना। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के शिवपुरी केंद्र का योगदान था। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। हमारा अगला कार्यक्रम कुछ ही पलों में।
1: नमस्कार, मैं राजीव वर्मा स्वच्छता ही सेवा अभियान से जुड़ा हुआ हूं और आप सभी से गुजारिश करता हूं, प्रार्थना करता हूं कि आप भी इससे जुड़ें और अपने कार्यालय, घर, कॉलोनी, मोहल्लों को स्वच्छ रखें। धन्यवाद। जय हिंद।
2: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी।

0: कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: सुनिए NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे आकाशवाणी भोपाल पर।
3: वरिष्ठ कवि और संस्कृति कर्मी श्री प्रेम शंकर शुक्ल।
4: 90 वर्ष पूरे करने के उपलक्ष्य में मैं आकाशवाणी को अपनी शुभकामनाएं देता हूं। आकाशवाणी दरअसल भारत की आवाज है। भारत की धड़कनों को हम सब के बीच आकाशवाणी ने दूर दुनिया तक पहुंचाया है। मैं बहुत मंगल कामनाएं देता हूं। आगे की यात्रा उसकी बहुत सुखद, सुमंगलकारी और उसी तरह से भारत भावना से ओतप्रोत रहे।
2: सूचना हो, समाचार हो या हो सुरताल, सबकी पहली पसंद आकाशवाणी।

0: पहुंचाएं हम जन जन तक, सपनों को दें हम आकार। आकाशवाणी।
1: ये प्रसारण आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश से। 1:30 हुए हैं, ये समय है लोक संगीत के कार्यक्रम का। और इस कार्यक्रम में अब आप सुनने जा रहे हैं आकाशवाणी शिवपुरी केंद्र की ये प्रस्तुति। कलाकार हैं प्रकाश चंद झा और साथी।

और लोक संगीत के कार्यक्रम में आप सुने ये दादरा। कलाकार एक बार फिर प्रकाश चंद्र झा और साथी।

और इसी दादरा के साथ लोक संगीत का ये कार्यक्रम अब संपन्न हुआ। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के शिवपुरी केंद्र का योगदान था। 1:45 हुए हैं, ये समय है सुगम संगीत के कार्यक्रम का। और इस कार्यक्रम में अब हम आपको सुनवा रहे हैं घनश्याम वासवानी की गाई हुई कुछ गज़लें। ये कार्यक्रम भी आकाशवाणी के शिवपुरी केंद्र की प्रस्तुति है।

0: घनश्याम वासवानी की गाई हुई इसी गज़ल के साथ सुगम संगीत का ये कार्यक्रम अब संपन्न हुआ। ये प्रस्तुति थी आकाशवाणी शिवपुरी की। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। हमारा अगला कार्यक्रम इस अंतराल के उस पार।
1: कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत एक, आकाशवाणी से विज्ञापन के अंदाज अनेक।
2: अपनी बात को आसाम से गुजरात तक पहुंचाने की हो बात, आकाशवाणी से बेहतर भला कौन देगा आपका साथ।
1: देश के कोने कोने में विज्ञापन बजा, अपनी बनाओ पहचान। केंद्रीय विक्रय एकांश मुंबई ने यह राह बनाई आसान।
2: देश के सबसे बड़े नेटवर्क आकाशवाणी पर विज्ञापन प्रसारित करने के लिए ऑल इंडिया रेडियो की सिंगल विंडो बुकिंग CSU मुंबई से संपर्क करें।
1: हमारा फोन नंबर है 2202407 या 2288 6016 और STD कोड 022।
2: आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा मेल आईडी है csumumbai@gmail.com।
3: मैं विनय उपाध्याय। आकाशवाणी की यात्रा के 9 दशक पूरे हो रहे हैं। ये सूचना निश्चित रूप से हम जैसे लोगों के लिए बहुत ही खुशी की सूचना है। हम भी आकाशवाणी की इस यात्रा में एक आवाज के रूप में हम सफर रहे हैं। कहते हैं कि नदियों का गोमुख बहुत छोटा होता है। एक छोटी सी झील के रूप में कोई नदी निकलती है अपने अमृत कुंड से और अपनी यात्रा में अनेक कूल किनारों को तय करते हुए एक समंदर में जाकर मिल जाती है। आकाशवाणी के साथ भी ऐसा ही है। दरअसल आवाजों का एक भरा पूरा घर ही आकाशवाणी है। और कितनी सारी आवाजें, वो आवाजें जो भरोसा बनकर आकाशवाणी के स्टूडियो से श्रोताओं तक पहुंचती रही है। श्रोता और आकाशवाणी के बीच में दरअसल एक विश्वास तैर कर इन 90 वर्षों में जाता रहा है। आकाशवाणी के इस अवधि को पूरा करने के अवसर पर मैं अपनी आंतरिक शुभकामनाएं व्यक्त करता हूं और उम्मीद करता हूं कि जिस निहित उद्देश्य को लेकर सूचना, शिक्षा और मनोरंजन, इन 3 पदों को साथ में लेकर आकाशवाणी

0: पंचमणि ने जो अपनी यात्रा शुरू की थी वो नए उत्कर्ष पर पहुंचे। सभी आकाशवाणी से जुड़े साथियों और श्रोताओं को एक बार फिर हार्दिक बधाई, हार्दिक शुभकामनाएं।
1: कुछ लोग सोचते हैं योग के लिए फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए, लेकिन फ्लेक्सिबिलिटी तो सोच में होनी चाहिए ना, ना कोई बंधन ना कोई बॉडी टाइप। बचपन हो या पचपन, व्हीलचेयर हो या वर्क फ्रॉम होम, योग सबका हक है।
2: योग जीवन से जब जुड़ता है, एक सहज क्रिया बन जाता है, तो वो प्रतिपल उसका बेनिफिट देता रहता है।
1: आइए इस 21 जून हम सब हिस्सा बने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का और करें स्ट्रेच एंड चिल योग के साथ।
3: ये प्रसारण आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश से। अब हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म संगीत कार्यक्रम का पहला नगमा, ये रहा

ये गीत आपने सुना कमलेश अवस्थी अनवर सुमन कल्याणपुर और साथियों के स्वरों में। आनंद बख्शी ने इस गीत को शब्द दिए थे और धुन बनाई थी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। और अब हम आपको सुनवा रहे हैं।

0: और इसी नगमे के साथ फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अब ख़त्म हुआ। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। 2:10 होने को हैं, थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।
1: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं नवनीत चौबे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नीस में आज फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों के साथ भारत इनोवेट्स के उद्घाटन कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। भारत फ्रांस नवाचार वर्ष के तहत आयोजित इस कार्यक्रम में 120 से अधिक भारतीय स्टार्टअप, वैश्विक निवेशक, प्रौद्योगिकी क्षेत्र के अग्रणी लोग और उद्यमी भाग ले रहे हैं। इस दौरान भारत के तेजी से बढ़ते नवाचार तंत्र को प्रदर्शित किया जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति मैक्रों भारत फ्रांस विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी में हुई प्रगति की समीक्षा और प्रमुख क्षेत्रीय तथा वैश्विक मुद्दों पर चर्चा के लिए द्विपक्षीय वार्ता भी करेंगे। पेश है एक रिपोर्ट।
2: कार्यक्रम में नवाचार, उद्यमिता और उभरती हुई प्रौद्योगिकियों के क्षेत्र में भारत की बढ़ती ताकत को प्रदर्शित किया जाएगा। इसके बाद दोनों नेता भारत फ्रांस विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी में हुई प्रगति की समीक्षा और प्रौद्योगिकी, व्यापार तथा रक्षा जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के तरीकों पर द्विपक्षीय बातचीत करेंगे। राष्ट्रपति मैक्रों द्वारा आयोजित भोज के बाद प्रधानमंत्री मोदी अपनी यात्रा के अगले चरण में स्लोवाकिया रवाना होंगे। शैलेश मेनन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से विशाल शर्मा।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पिछले 12 वर्षों में देश में स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर और किफायती बनाने के लिए कई कदम उठाए गए हैं। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में उन्होंने कहा कि आयुष्मान भारत योजना के जरिए गरीब और ज़रूरतमंद लोगों को इलाज की सुविधा मिल रही है, वहीं जन औषधि केंद्रों पर सस्ती दवाएँ उपलब्ध कराई जा रही हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि स्टेंट और घुटने के प्रत्यारोपण की कीमतें कम होने से मरीजों को लाभ हुआ है, साथ ही मेडिकल कॉलेजों और सीटों की संख्या बढ़ने से डॉक्टर बनने के अवसर भी बढ़े हैं। अब से कुछ देर बाद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव सागर जिले के कसेली में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम में लाडली बहना योजना की 37वीं किस्त लाडली बहनों के खातों में अंतरित करेंगे। 1,25,00,000 बहनों के खातों में 1,835 करोड़ रुपये जमा होंगे। साथ ही देवरी विधानसभा को लगभग 190 करोड़ रुपये की लागत के 53 विकास कार्यों की सौगात भी दी जाएगी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज भोपाल में सिंगल क्लिक के माध्यम से लगभग 900 इकाइयों को प्रोत्साहन स्वरूप 350 करोड़ रुपए से अधिक की राशि का वितरण किया। इस दौरान उद्यमियों को भू आवंटन पत्र, स्टार्टअप नीति अंतर्गत स्वीकृत विभिन्न लाभ और मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना के तहत युवाओं को हितलाभ भी वितरित किए गए। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने प्रदेश के विभिन्न जिलों से आए एमएसएमई उद्यमियों और स्टार्टअप प्रतिनिधियों से सीधा संवाद भी किया। कार्यक्रम को सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री चैतन्य काश्यप ने भी संबोधित किया। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज विदिशा के ग्राम बरखेड़ी जेतु में कृषि विज्ञान केंद्र के भूमि पूजन एवं खेत बचाओ अभियान में कार्यक्रम में शामिल हुए। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री श्री चौहान ने कहा कि विदिशा की पावन धरती पर कृषि विज्ञान केंद्र का शिलान्यास किसानों के लिए नई संभावनाओं का द्वार खोलने वाला है। अब बात मौसम की। मौसम विभाग ने प्रदेश में 15 से 18 जून के बीच मानसून के प्रवेश की संभावना जताई है। इससे पहले प्रदेश भर में प्री मानसून गतिविधियां तेज बनी हुई है। कई जिलों में बारिश, तेज आंधी और ओलावृष्टि का दौर जारी है। मौसम विभाग ने आज भिंड, दतिया, छतरपुर, पन्ना और सागर जिलों में तेज आंधी और बारिश का अलर्ट जारी किया है। इसके अलावा भी प्रदेश में व्यापक रूप से तेज हवाएं चलने का अनुमान जाहिर किया गया है। ICC महिला T20 विश्व कप में आज भारत अपने अभियान की शुरुआत पाकिस्तान के साथ मैच से करेगा। मैच बर्मिंघम के एजबेस्टन में भारतीय समयानुसार शाम 7 बजे से शुरू होगा। महिला T20 अंतर्राष्ट्रीय मैचों में भारत अब तक पाकिस्तान के साथ हुए 16 में से 13 मुकाबले जीत चुका है। अब समाचार संक्षेप में।

0: शिवपुरी जिले में कल भारत विकास परिषद शाखा द्वारा महिला हिंसा निवारण और जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। खंडवा में आगामी पर्वों को शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण वातावरण में संपन्न कराने के लिए समितियों के साथ पुलिस ने बैठक की। आगरमालवा में कल आयोजित वर्चुअल कार्यशाला अनुगुंज में दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 मीडिएशन और विधिक सहायता के बारे में जानकारी दी गई। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए शाम 7:10 पर। नमस्कार।
1: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। 2:15 होने को हैं। अब दोपहर समाचार आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित किए जाएंगे। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।
2: नमस्कार। आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दो यूरोपीय देशों की यात्रा के पहले चरण की शुरुआत फ्रांस के नीस शहर से की। श्री मोदी अब से कुछ देर में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ भारत इनोवेट्स का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ द्विपक्षीय वार्ता में भारत फ्रांस विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी में प्रगति की समीक्षा करेंगे। झारखंड में कल से बिजली गिरने की घटनाओं में 7 लोगों की मौत। दक्षिण पश्चिम मानसून अगले 2-3 दिनों में कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और दक्षिण छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में आगे बढ़ेगा। 5,000 से अधिक भरतनाट्यम कलाकारों ने कोलंबो में सामूहिक प्रस्तुति देकर गिनीज विश्व रिकॉर्ड बनाया। और आईसीसी महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में भारत आज शाम बर्मिंघम में पाकिस्तान के साथ अपना पहला मैच खेलेगा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दो यूरोपीय देशों की यात्रा के पहले चरण में फ्रांस के नीस पहुंचे। यहां उन्होंने कई कार्यक्रमों में भाग लिया। नीस पहुंचने पर प्रधानमंत्री का भव्य स्वागत किया गया। प्रधानमंत्री मोदी ने स्वागत को अविस्मरणीय बताया। श्री मोदी अब से कुछ ही देर में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ नीस में भारत इनोवेट्स का उद्घाटन करेंगे। भारत फ्रांस नवाचार वर्ष के अंतर्गत आयोजित इस कार्यक्रम में 120 से अधिक भारतीय स्टार्टअप, वैश्विक निवेशक, प्रौद्योगिकी क्षेत्र के अग्रणी लोग और उद्यमी जुटेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति मैक्रों भारत फ्रांस विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी में हुई प्रगति की समीक्षा करेंगे।
3: कार्यक्रम में नवाचार, उद्यमिता और उभरती हुई प्रौद्योगिकियों के क्षेत्र में भारत की बढ़ती ताकत को प्रदर्शित किया जाएगा। इसके बाद दोनों नेता भारत फ्रांस विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी में हुई प्रगति की समीक्षा और प्रौद्योगिकी, व्यापार तथा रक्षा जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के तरीकों पर द्विपक्षीय बातचीत करेंगे। राष्ट्रपति मैक्रों द्वारा आयोजित भोज के बाद प्रधानमंत्री मोदी अपनी यात्रा के अगले चरण में स्लोवाकिया रवाना होंगे। शैलेश मेनन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से विशाल शर्मा।
2: हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज शाम स्लोवाकिया की राजधानी ब्रातिस्लावा में पारंपरिक स्लोवाक शैली में स्वागत किया जाएगा।
4: ब्रातिस्लावा पहुंचने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पारंपरिक तरीके से ब्रेड और नमक देकर स्वागत किया जाएगा। स्लोवाक संस्कृति के अनुसार मेहमानों और खास लोगों का स्वागत ब्रेड और नमक के साथ किया जाता है। ब्रेड को खुशहाली जबकि नमक को अहमियत, दोस्ती और सुरक्षा का प्रतीक माना जाता है। स्लोवाकिया के बच्चों का एक मशहूर लोक कला समूह प्रधानमंत्री के स्वागत में पारंपरिक स्लोवाक नृत्य प्रस्तुत करेगा। लुचनिका एंसेम्बल द्वारा वंदे मातरम की प्रस्तुति स्वागत समारोह का मुख्य आकर्षण होगी। समिति की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अर्जुन शर्मा।
2: स्लोवाकिया में भारत की राजदूत अपूर्वा श्रीवास्तव ने आकाशवाणी को बताया कि प्रधानमंत्री की यात्रा से दोनों देशों के संबंधों को नई दिशा मिलेगी। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछले एक दशक में देश के स्वास्थ्य क्षेत्र में व्यापक बदलाव आया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री गडकरी ने कहा कि आयुष

आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत करोड़ों लोगों को कैशलेस स्वास्थ्य सुविधा मिल रही है। इस योजना का दायरा अब वरिष्ठ नागरिकों तक भी बढ़ाया गया है। उन्होंने कहा कि जन औषधि केंद्रों के माध्यम से सस्ती दरों पर गुणवत्तापूर्ण दवाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत आज दुनिया की कई सबसे बड़ी स्वास्थ्य योजनाओं का सफलतापूर्वक संचालन कर रहा है। स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने कहा है कि पिछले 12 वर्षों में देश की स्वास्थ्य सेवाओं में बड़ा सुधार हुआ है। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में श्री नड्डा ने कहा कि आयुष्मान भारत योजना, आयुष्मान आरोग्य मंदिर और अन्य डिजिटल स्वास्थ्य सेवाओं के जरिए अधिक लोगों तक इलाज की सुविधा पहुँच रही है। अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने एक दैनिक समाचार पत्र को दिए साक्षात्कार में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सबका साथ सबका विकास की भावना के साथ विकास का लाभ समाज के हर वर्ग तक पहुंचा है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि कर्नाटक को यूपीए सरकार के समय की तुलना में केंद्रीय करों के हिस्से के रूप में 5 गुना अधिक धनराशि मिली है। बेंगलुरु में विकसित भारत संकल्प समावेश कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि कर्नाटक को केंद्र से लगभग 4 लाख करोड़ रुपए कर हिस्सेदारी के रूप में मिले हैं। उन्होंने राज्य सरकार के इस आरोप को भी खारिज किया है कि कर्नाटक को केंद्र से पर्याप्त सहायता नहीं मिल रही है। सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्री जीतन राम मांझी और बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी कल बिहार के गयाजी जिले के खिजरसराय में नए प्रौद्योगिकी केंद्र की आधारशिला रखेंगे। ये केंद्र दक्षिण बिहार और मगध क्षेत्र में 170 करोड़ रुपए के निवेश से स्थापित किया जाएगा। मंत्रालय ने कहा कि केंद्र सरकार का लक्ष्य प्रतिवर्ष 7,000 युवाओं को प्रशिक्षण देना और रोजगार सेवाओं के माध्यम से प्रतिवर्ष 1,000 से अधिक उद्यमियों को सहायता प्रदान करना है। सरकार ने जाने माने अर्थशास्त्री प्रोफेसर अलख एन शर्मा को श्रम सांख्यिकी पर बनी उच्च स्तरीय तकनीकी विशेषज्ञ समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया है। ये समिति देश में रोजगार और श्रम बाजार से जुड़े आंकड़ों की समीक्षा करके अधिक सटीक, विस्तृत तथा समय पर उपलब्ध कराने के उपाय सुझाएगी। समिति भारत के बदलते श्रम बाजार का भी अध्ययन करेगी। प्रोफेसर शर्मा वर्तमान में मानव विकास संस्थान के निदेशक हैं। पश्चिम बंगाल में अपराध जांच विभाग सीआईडी तृणमूल कांग्रेस विधायकों के हस्ताक्षर जालसाजी मामले में पार्टी सांसद अभिषेक बंदोपाध्याय से पूछताछ कर रही है। अभिषेक आज कोलकाता में सीआईडी मुख्यालय भवानी पहुंचे। कलकत्ता उच्च न्यायालय के आदेश पर सीआईडी इस मामले की जांच कर रही है। आरोप है कि राज्य विधानसभा चुनाव के बाद विपक्ष के नेता के चयन के लिए अभिषेक बंदोपाध्याय ने तृणमूल कांग्रेस के नवनिर्वाचित विधायकों के हस्ताक्षरों में जालसाजी की। झारखंड में पिछले 24 घंटों में बिजली गिरने की अलग अलग घटनाओं में 7 लोगों की मौत हो गई है। इनमें 3 महिलाएं और 1 बच्चा शामिल है। पुलिस ने बताया है कि मृतकों में 2 लोग रांची और 2 गढ़वा जिले के हैं। संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने हिमाचल प्रदेश में डाक विभाग की ड्रोन आधारित डाक सेवा शुरू करने की घोषणा की। ये सेवा राज्य में मंडी जिले के प्रधान डाकघर और रेहरधर शाखा के बीच शुरू की गई है। मंडी प्रधान डाकघर से रेहरधर लगभग 12 किलोमीटर दूर है। ड्रोन सेवा से 2 घंटे से अधिक का समय घटकर मात्र 7 मिनट हो जाएगा। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन लूनर लैंडर को चंद्रमा पर कड़ाके की ठंड से बचाने के लिए परमाणु ऊर्जा विभाग के साथ उन्नत कृत्रिम तापन प्रणाली विकसित करेगा। इसरो प्रमुख वी नारायणन ने बेंगलुरु में कहा कि सौर ऊर्जा से संचालित चंद्रयान 3 का विक्रम लैंडर चंद्रमा पर केवल 14 दिन तक सक्रिय रहा। इस लैंडर में प्रतिकूल मौसम में काम करने वाले कृत्रिम हीटर लगे होंगे। आयुष मंत्रालय ने आज YouTube पर आयोजित एक लाइव योग सत्र के जरिए नया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। इस ऑनलाइन योग कार्यक्रम में 4,35,000 से अधिक लोगों ने भाग लिया। आयुष मंत्री प्रताप राव जाधव ने कहा कि ये उपलब्धि दुनिया भर में योग की बढ़ती लोकप्रियता को दर्शाती है। उन्होंने लोगों से योग को अपनी दैनिक दिनचर्या का हिस्सा बनाने की अपील की। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का मुख्य कार्यक्रम 21 जून को कोलकाता में आयोजित किया जाएगा।
इस वर्ष योग दिवस की थीम है स्वस्थ

0: आयु के लिए योग। श्रीलंका के कोलंबो में आज 5000 से अधिक कलाकारों ने भरतनाट्यम की सामूहिक प्रस्तुति देकर ऐतिहासिक सांस्कृतिक उपलब्धि हासिल की है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: कोलंबो के गोल्फेस ग्रीन में आज इतिहास रचा गया। 5000 से अधिक भरतनाट्यम कलाकारों ने एक साथ प्रस्तुति देकर दुनिया की सबसे बड़ी भरतनाट्यम नृत्य कक्षा का एक नया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड स्थापित किया। रंग, लय और परंपरा के अद्भुत संगम ने पूरे वातावरण को सांस्कृतिक उत्सव में बदल दिया। महीनों की तैयारी के बाद साकार हुए इस ऐतिहासिक आयोजन ने भारतीय शास्त्रीय नृत्य की वैश्विक लोकप्रियता को नई ऊंचाई दी है। इस उपलब्धि के लिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड का प्रमाण पत्र भारतीय उच्चायुक्त संतोष झा ने कलाकारों और आयोजकों का प्रतिनिधित्व करते हुए प्राप्त किया। भारत और श्रीलंका के सांस्कृतिक संबंधों को और सशक्त बनाने वाला ये आयोजन कला और विरासत की एक अविस्मरणीय मिसाल बन गया है। अहमद मोइन फारूकी, आकाशवाणी समाचार, कोलंबो।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। अमेरिका में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान के साथ जारी विवाद को समाप्त करने के लिए एक समझौते पर आज हस्ताक्षर किए जा सकते हैं। उन्होंने कहा कि इसके बाद हॉर्मूज जल डमरू मध्य सभी देशों के लिए खुला रहेगा। राष्ट्रपति ट्रंप ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि यह समझौता दोनों देशों के संबंधों को बेहतर बनाने की दिशा में बड़ा कदम होगा। उन्होंने दावा किया है कि ईरान अब परमाणु हथियार नहीं चाहता। हालांकि ईरान ने आज समझौते पर हस्ताक्षर होने की खबरों की पुष्टि नहीं की है। ईरानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बाकाई ने कहा है कि अगर कोई समझौता होता भी है तो वो आगे की बातचीत के लिए केवल प्रारंभिक ढांचा होगा। इस बीच ईरान के कई शहरों में लोगों ने अमेरिका के साथ प्रस्तावित शांति समझौते के विरोध में प्रदर्शन किया। ओडिशा में 3 दिवसीय फसल उत्सव राजा आज पहली राजा उत्सव के साथ शुरू हुआ। ये महोत्सव मानसून और उड़िया महीने आषाढ़ के आगमन का प्रतीक है।
2: राज्य के सबसे पसंदीदा सांस्कृतिक त्योहार का नाम रजस्वला से आया है, जो इस मान्यता को दर्शाता है कि महिलाओं की तरह धरती भी आराम और नई ऊर्जा पाने के दौर से गुजरती है। उड़ीसा के हर घर में त्योहार के खास पकवाने जैसे पोड़ पीठा, आरिसा पीठा, चकोली पीठा और मसूर रजा पान की खुशबू फैली हुई है। रजा नारित्व और प्रकृति तथा जीवन को बनाए रखने वाली उसकी प्रक्रियाओं के प्रति उड़ीसा के गहरे सम्मान का एक अनोखा उत्सव है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इस अवसर पर देशवासियों, विशेष रूप से ओडिशा वासियों को हार्दिक शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कहा कि ये त्योहार प्रकृति और समाज के गहरे जुड़ाव को दर्शाता है। मौसम विभाग ने अगले 2 से 3 दिनों में दक्षिण पश्चिम मानसून के कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और दक्षिण छत्तीसगढ़ के कुछ और हिस्सों में आगे बढ़ने का अनुमान व्यक्त किया है। आज पूर्वोत्तर क्षेत्र, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, केरलम, माहे, ओडिशा, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कारैक्काल के कुछ हिस्सों में भारी बारिश हो सकती है। मध्य प्रदेश, तेलंगाना और पश्चिमी राजस्थान में कल तक तेज आंधी तूफान की संभावना है। महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में आज लू चलने का अनुमान है। स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने विश्व रक्तदाता दिवस पर लोगों से स्वैच्छिक रक्तदान की अपील की है। श्री नड्डा ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि रक्तदान किसी व्यक्ति को नया जीवन देने का सर्वाधिक प्रभावी और पावन अवसर है। आईसीसी महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में आज भारत अपने पहले मैच में पाकिस्तान के साथ खेलेगा। ग्रुप ए का ये मैच बर्मिंघम के एस्बेस्टन में भारतीय समयानुसार शाम 7 बजे से शुरू होगा। महिला T20 अंतर्राष्ट्रीय मैचों में भारत अब तक पाकिस्तान को 16 में से 13 मुकाबलों में हरा चुका है। और फीफा विश्व कप के ग्रुप डी के अपने पहले मैच में ऑस्ट्रेलिया ने तुर्की को 2-0 से हरा दिया है। ऑस्ट्रेलिया के नेस्टोरी इरनकुंडा और कॉनर मेटकॉफ ने 1-1 गोल दागा। अमेरिका के न्यूजर्सी में ग्रुप सी के मैच में आज स्कॉटलैंड ने 28 वर्ष बाद हैती को 1-0 से हरा दिया है। इसी ग्रुप में 5 बार के चैंपियन ब्राजील और मोरक्को के बीच

0: मैच 1-1 से बराबरी पर रहा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दो यूरोपीय देशों की यात्रा के पहले चरण की शुरुआत फ्रांस के नीस शहर से की। श्री मोदी अब से कुछ देर में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ भारत इनोवेट्स का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ द्विपक्षीय वार्ता में भारत फ्रांस विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी में हुई प्रगति की समीक्षा करेंगे। झारखंड में कल से बिजली गिरने की घटनाओं में 7 लोगों की मौत। दक्षिण पश्चिम मानसून अगले 2-3 दिनों में कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और दक्षिण छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में आगे बढ़ेगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण है। आप सुनिए बच्चों का कार्यक्रम। यह कार्यक्रम आकाशवाणी के इंदौर केंद्र का योगदान है।
2: बच्चों जय हिंद।
3: जय हिंद।
2: बच्चों आ गया है रविवार, यानी खुशी, मस्ती और धमाल का दिन। जी हाँ बच्चों, मैं हूँ आपकी सुषमा दीदी, लेकर आई हूँ आज आपके लिए हंसी, सीख और मनोरंजन से सजा हुआ आपका अपना कार्यक्रम बाल सभा। बच्चों इस कार्यक्रम में हम मिलते हैं नन्हे नन्हे सितारों से, जिनकी मुस्कुराहट में सुनहरे भविष्य की चमक होती है और जिनके सपनों में होती है एक नए भारत की तस्वीर। तो नए दोस्तों से भी मुलाकात होगी बच्चों, पर पहले ये बताइए कि आप सभी कैसे हैं? इन गर्मी की छुट्टियों में मजे कर रहे हो ना? अरे अरे, गर्मी की छुट्टियां वही ना जो बस अभी अभी खत्म होने वाली है और नया शैक्षणिक सत्र शुरू होने वाला है ना? पर क्या करें बच्चों, छुट्टियां है ना तो खत्म तो होगी ही, है ना? पर एक बात तो है बच्चों, समर वेकेशन होता बड़ा ही कमाल का है। आप में से बहुत सारे बच्चों ने नानी और दादी के घर की सैर की होगी, उनसे ढेर सारे किस्से और कहानियां सुनी होगी। तो कुछ बच्चों ने अपनी स्किल्स को सुधारा होगा, समर कैंप ज्वाइन किया होगा, तो कुछ बच्चों ने स्कूल से मिले हुए प्रोजेक्ट और होमवर्क पूरा करने में समय बिताया होगा। सही कहा ना बच्चों? आज भी कार्यक्रम में हम हमारे दोस्तों से यही जानेंगे, लेकिन पहले बच्चों आपको बता दूं कि आज 14 जून है, जो वर्ल्ड ब्लड डोनर डे के रूप में मनाया जाता है। क्या आपने कभी सोचा है बच्चों, हमारे जीवन में रक्त यानी खून कितना महत्वपूर्ण होता है? जब किसी व्यक्ति की दुर्घटना हो जाए या फिर कोई गंभीर बीमारी हो या किसी को ऑपरेशन के दौरान ब्लड की जरूरत हो, तब रक्तदान किसी के लिए जीवन दान बन सकता है। इस दिन यानी 14 जून को वर्ल्ड ब्लड डोनर डे मनाया जाता है ताकि हम उन सभी रक्तदाताओं को धन्यवाद दे सके जो निस्वार्थ भाव से दूसरों की जान बचाने के लिए रक्तदान करते हैं। हालांकि आप बच्चे अभी रक्तदान नहीं कर सकते हैं, लेकिन आप इसके महत्व को समझ सकते हैं और अपने परिवार और अपने आसपास के लोगों को इसके लिए जागरूक भी कर सकते हैं, क्योंकि आप बच्चे ही तो कल के जिम्मेदार नागरिक बनेंगे, है ना? बच्चों कार्यक्रम में आज मिलेंगे कुछ नए दोस्तों से, लेकिन उसके पहले क्यों ना सुनते हैं ये बहुत ही प्यारा सा गीत।

0: गीत सुन लिया। बच्चों, गीत के पहले जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि कुछ नए दोस्तों से मिलेंगे, तो चलिए मिलते हैं अपने दोस्तों से। सबसे पहले अपना नाम बताइए।
1: नमस्ते दीदी, मेरा नाम महती तन्मय वैष्णव है और मैं पीएमसी केंद्रीय विद्यालय क्रमांक 1 इंदौर प्रथम पाली में 10वीं कक्षा की छात्रा हूँ। पता है दीदी, अभी तो हमारा समर वेकेशन चल रहा है।
0: अरे वाह, अभी भी आपका समर वेकेशन चल रहा है। तो महती, ये बताओ कि स्कूल कब से शुरू होने वाले हैं आपके?
1: हमारी स्कूल वेकेशन के बाद 22 जून से खुलेगी दीदी।
0: अच्छा, 22 जून से आपके स्कूल शुरू होने वाले हैं। ये बताओ महती कि इन गर्मी की छुट्टियों में आपने क्या क्या किया, कुछ नया सीखा आपने?
1: दीदी, वैसे छुट्टियों में कुछ नया तो नहीं सीखा, परंतु मुझे लिखने की जो रुचि है उसमें थोड़ा विकास करके कुछ नई कविताएं जरूर लिखी है। और तो और दीदी, इन छुट्टियों में मैंने पहली बार छोटे छोटे गद्य लिखने से एक कदम आगे बढ़ाते हुए श्री वाल्मीकि रामायण से प्रेरणा लेकर एक कहानी लिखी।
0: क्या बात है, वाल्मीकि रामायण से प्रभावित होकर आपने कहानी लिखी है, तो हमारे दोस्तों को भी उसके बारे में कुछ बताओ महती।
1: जी दीदी, इस कहानी का शीर्षक है रक्षाबंधन त्रेता युग का। इसमें मैंने घटनाक्रम पूर्णतः श्री वाल्मीकि रामायण से लिया है, पर अपनी इमेजिनेशन का भी यूज किया है। इसके माध्यम से मैंने श्री राम जी तथा उनके तीनों अनुजों के एक दूसरे के प्रति अधिक भ्रातृ प्रेम के लिए मेरी श्रद्धा को शब्द दिए हैं। साथ ही साथ रक्षाबंधन की विधि का भी इस कहानी में मैंने बड़ा क्रिएटिव यूज किया है। जैसे जब जब भी भाइयों पर संकट आता तो उनको अपने रक्षा सूत्र के ढीले पड़ जाने से मानो एक आभास हो जाता। बाल्यावस्था, गुरुकुल के दिन, विवाह के पश्चात वनवास, युद्ध, अयोध्या पुनरागमन, देवी सीता परित्याग व भूमि प्रवेश और अंत में भाइयों की सरयू जल समाधि, इन सब में मैंने उन चारों भाइयों तथा रक्षाबंधन को मुख्य विषय बनाकर यह कहानी लिखी है।
0: क्या बात है महती, वैसे सुनने में ही बहुत अच्छा लग रहा है। हमें इंतजार होगा आपकी इस कहानी का। लेकिन पहले मुझे ये बताओ कि इन गर्मी की छुट्टियों में कहीं बाहर घूमने गए थे या नहीं, या फिर बस कविताओं को, कहानी को लिखने में ही समय बिताया?
1: हाँ दीदी, छुट्टियों में मैं मेरे नाना नानी के घर गई थी। वहाँ हम सब ने खूब मजे किए। और अब जब स्कूल शुरू होने वाला है तो 10th क्लास में मेहनत करने के लिए एनर्जी पूरी फुल है। मेरा मानना है कि बोर्ड क्लास के स्टूडेंट्स को प्रेशर और डर के साथ नहीं, पर फोकस और कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ाई करनी चाहिए। आखिर बोर्ड्स एक वार्षिक परीक्षा ही तो है। मुझे 10वीं कक्षा में आने पर कैसा महसूस हो रहा है, मैंने उस पर एक कविता लिखी है। क्या मैं आपको वो सुना सकती?

0: बिल्कुल बिल्कुल सुना सकती हूँ महती। अब आप 10वीं में पहुंच गई हो, नई नई क्लास है, नया सब कुछ है, बोर्ड्स की परीक्षाएं हैं। इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए बच्चे अक्सर 10वीं की बोर्ड्स परीक्षाओं से डर जाते हैं, लेकिन आपने उसके ऊपर कविता लिखी है तो बिल्कुल हम सुनना चाहेंगे, सुनाओ जरा।
1: इस कविता का शीर्षक है देखो अब आगे 10वीं में। यह कविता कुछ इस प्रकार है। छोड़ दिया जब जन्म स्थली को और पहुंची अपनी कर्म स्थली को, थी मैं केवल पहली में, देखो अब आगे 10वीं में। जन्मी केवल 15 वर्ष विगत हूँ, तौर तरीकों से बस थोड़ी ही अवगत हूँ।

0: यह कविता कुछ इस प्रकार है। छोड़ दिया जब जन्म स्थली को और पहुंची अपनी कर्म स्थली को, थी मैं केवल पहली में, देखो अब आगे दसवीं में, जन्मी केवल 15 वर्ष विगत हूँ, तौर तरीकों से बस थोड़ी ही अवगत हूँ, छिपा है बचपना अभी भी मन में, देखो अब आगे दसवीं में, कोमल थे जो झुंझुना थामने वाले हाथ, कठोर बने वही कलम चलाने वाले हाथ, कहां 10 माह की नवजात थी मैं माँ की गोद में, देखो अब आगे दसवीं में, काल चक्र से ज्यों ज्यों आयु मेरी बढ़ती गई, दसवीं के भैया दीदी प्रति इज्जत भी बढ़ती गई, पर अब देखने वालों से दिखने वालों की हो श्रेणी में, देखो अब आगे दसवीं में, कहानियों की दुनिया और चित्र बड़े चित भावन से सम्मुख विविध विषयों के लगने लगे हैं वामन से, हुई गजब की वृद्धि मेरे मन मस्तिष्क में, देखो अब आगे दसवीं में, आते ही बज गया है परिणाम की आकांक्षाओं का डंका, हो जाती है मन में मेरे कभी घनी सी शंका, पर डरना क्या जब मेहनत निश्चय और अपनों का साथ है मेरे जीवन में, देखो अब आगे दसवीं में। आशा करती हूँ कि यह कविता आपको अच्छी लगी होगी।
1: क्या बात है, बहुत सुंदर कविता आपने लिखी महती, और हम सबको सुनकर बहुत अच्छा लगा कि जो दसवीं का बहुत सारा प्रेशर होता है बच्चों के दिलो दिमाग पर, लेकिन आप इस मानसिकता के साथ दसवीं कक्षा में प्रवेश कर रही हैं, जहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है और बहुत सारी जिज्ञासा है, ये सुनकर हमें बहुत अच्छा लगा। बच्चों आपको कैसा लगा? अच्छा लगा ना, तो तालियां तो बनती है ना। महती कविता तो आपने बहुत अच्छी लिखी है और सुनाई भी बहुत ही बढ़िया अंदाज में है। अब हमें ये बताओ महती कि इन गर्मी की छुट्टियों में समर असाइनमेंट मिले थे आपको?
0: जी बिल्कुल दीदी, समर असाइनमेंट्स तो मिले ही थे और मैंने कंप्लीट कर लिए।
1: ये तो बहुत अच्छी बात है कि आपने पूरे भी कर लिए। बहुत अच्छा लगा महती आपसे बात करके और आपकी कविताओं को सुनकर। अब मिलते हैं एक और हमारे नन्हे सितारे से, तो अपना नाम बताइए।
2: दीदी मेरा नाम आशुतोष तिवारी है और मैं 10th क्लास में पढ़ता हूँ।
1: आशुतोष, तो आशुतोष आपके स्कूल कब से शुरू होने वाले हैं?
2: दीदी मेरे स्कूल 16 जून को स्टार्ट होने वाले हैं।
1: अच्छा, मुझे ये बताओ आशुतोष, आपको इन गर्मी की छुट्टियों में कुछ असाइनमेंट मिले या नहीं?
2: दीदी मुझे इन गर्मी की छुट्टी में बहुत सारे असाइनमेंट्स मिले थे और मैंने अपना दिमाग लगा के स्टार्टिंग में ही सारे असाइनमेंट्स पूरे कर लिए, जिससे मैं बाकी की पूरी गर्मी की छुट्टी में आराम से रह सकूं, खेल सकूं।
1: तो असाइनमेंट ही पूरा करते रहे या कहीं बाहर घूमने भी गए थे आशुतोष?
2: दीदी इन गर्मियों की छुट्टी में हम बाहर घूमने गए थे और मुझे बहुत मजा आया और मैंने तो डांस भी सीखा है।
1: क्या बात है, डांस भी सीखा? भाई वो तो हमें देखना ही होगा, मगर पहले ये बताओ आज अपने दोस्तों को क्या सुनाने वाले हो?
2: दीदी मैं अब आपको एक कविता सुनाता हूँ जो हम सभी बच्चों की मन के भाव बताती है।
1: सुनाओ।
2: गर्मी की छुट्टियां बीत गई, मस्ती वाली घड़ियां बीत गई, नानी का घर आमों का स्वाद अब बन गए हैं मीठी याद, सुबह सुबह अब उठना होगा, स्कूल का बस्ता उठाना होगा, दोस्तों से फिर मिलना है, नई कक्षा में खेलना है, थोड़ी खुशी थोड़ा है गम, छुट्टियों की यादें हैं संग, खेल कूद अब कम हो जाएंगे, होमवर्क फिर से आ जाएंगे, नई किताबें नए सपने, सीखेंगे हम अब कितने अपने, मेहनत करके आगे बढ़ेंगे, ज्ञान के दीपक फिर जलेंगे, छुट्टियों को कहें अलविदा, स्कूल को कहें नमस्कार, खुश होकर हम कदम बढ़ाएं, उज्जवल हो अपना संसार।
1: कविता तो आपने सुनाई आशुतोष, मगर ऐसा लग रहा है कि स्कूल खुलने से आप थोड़े कम खुश हैं, तो खुशी हो रही है या नहीं आपको?
2: दीदी अच्छा तो लग रहा है थोड़ा कि अब नए वापस से दोस्त मिलेंगे और नए दोस्त भी बनेंगे और पुराने दोस्त वापस मिलेंगे जो 2 महीने से नहीं मिले थे, पर बुरा भी लग रहा है कि अब लेट उठने को नहीं मिलेगा, स्कूल वापस स्टार्ट होंगे तो वापस सुबह जल्दी उठना पड़ेगा मुझे और फिर से वही भाग दौड़ शुरू हो जाएगी, फिर पढ़ाई करनी पड़ेगी, फिर एग्जाम देने पड़ेंगे, इसलिए मिली जुली सी फीलिंग्स है, अच्छा भी लग रहा है पर ज्यादा बुरा लग रहा है, और मेरे हिसाब से सबको ही बुरा लगता होगा जब गर्मी की छुट्टियां खत्म होती होंगी।
1: ये बात तो आपने बिल्कुल सही कही कि गर्मी की छुट्टियां जैसे ही खत्म होती है ना, तो सारे बच्चों को बुरा लगता है, खुशी तो होती है कि हम फिर से वापस स्कूल जाएंगे, अपने पुराने नए दोस्तों से मिलेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं वो फिर

से दादी नानी का घर, घूमना, देर तक सोना, ये सब कुछ हमें याद आता है। लेकिन कहते हैं ना, जिंदगी जो है वो चलने का नाम है, और समय जो है कभी किसी के लिए रुकता नहीं है, तो हमें भी समय के साथ ही चलना पड़ता है। तो अच्छा है कि नया सत्र फिर से शुरू होने वाला है, ताकि आप अगली कक्षा में जल्दी से पहुंचे, जल्दी जल्दी परीक्षाएं दे और फिर अगली कक्षा में पहुंचे, है ना? तो ढेर सारी आप सबको शुभकामनाएं नई नई कक्षाओं में पहुंचने के लिए और फिर से स्कूल शुरू होने के लिए। अभी यहाँ पर थोड़ी देर रुकते हैं, दोस्तों से मिलेंगे, मगर क्यों ना पहले सुन लेते हैं एक और बहुत प्यारा सा गीत।

0: अच्छा बच्चों, अब हमारे साथ है एक और प्यारी सी दोस्त, तो चलो उनका नाम जानते हैं।
1: नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रकृति चौहान है और मैं कक्षा 9वीं में पढ़ती हूँ।
0: अच्छा, तो प्रकृति ये बताओ आज क्या बताने वाली हो दोस्तों को?
1: आज मैं आप सबको एक बहुत महत्वपूर्ण दिन के बारे में बताना चाहती हूँ। क्या आप जानते हैं कि हर साल 14 जून को कौन सा विशेष दिवस मनाया जाता है? दोस्तों 14 जून को विश्व रक्तदाता दिवस मनाया जाता है। दोस्तों हमारे शरीर में बहने वाला रक्त यानी खून हमारे जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है।

0: रक्त हमारे शरीर के हर हिस्से तक ऑक्सीजन और पोषण पहुंचाता है, लेकिन कभी कभी दुर्घटना, बीमारी या ऑपरेशन के समय लोगों को अतिरिक्त रक्त की आवश्यकता पड़ जाती है। ऐसे समय में रक्तदान किसी के लिए जीवनदान बन जाता है। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि रक्त यानी ब्लड किसी फैक्ट्री में नहीं बनाया जा सकता, इसे केवल एक स्वस्थ व्यक्ति ही स्वेच्छा से दान कर सकता है। इसलिए रक्तदान करने वाले लोग वास्तव में किसी की जान बचाने में मदद करते हैं। विश्व रक्तदाता दिवस मनाने का उद्देश्य लोगों को रक्तदान के प्रति जागरूक करना और रक्तदाताओं का सम्मान करना है। इस दिन उन सभी लोगों को धन्यवाद दिया जाता है जो निस्वार्थ भाव से रक्तदान करते हैं। दोस्तों, हम बच्चे अभी रक्तदान नहीं कर सकते क्योंकि इसके लिए एक निश्चित आयु और स्वास्थ्य संबंधी नियम होते हैं, लेकिन हम इसके महत्व को समझ सकते हैं और अपने परिवार तथा आसपास के लोगों को इसके बारे में बता सकते हैं। सोचिए, यदि किसी अस्पताल में कोई मरीज रक्त की कमी से जूझ रहा हो और समय पर उसे रक्त मिल जाए तो उसकी जान बच सकती है। उस मरीज और उसके परिवार के लिए वह रक्तदाता किसी फरिश्ते से कम नहीं होता। रक्तदान के बारे में एक और अच्छी बात यह है कि स्वस्थ व्यक्ति के लिए रक्तदान सुरक्षित माना जाता है और कुछ समय बाद शरीर फिर से आवश्यक रक्त कोशिकाएं बनाने लगता है। दोस्तों, हमें बचपन से ही दूसरों की सहायता करने की भावना विकसित करनी चाहिए। मदद केवल पैसे से नहीं होती बल्कि जागरूकता फैलाकर और अच्छे संदेश देकर भी की जा सकती है। तो दोस्तों, आज विश्व रक्तदाता दिवस पर हम यह संकल्प लें कि हम हमेशा मानवता, सेवा और सहयोग की भावना को अपने जीवन में अपनाएंगे और जब हम बड़े होंगे तब समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को भी समझेंगे। धन्यवाद।
1: बहुत अच्छी बात हमें प्रकृति ने बताई दोस्तों कि जब हम किसी को रक्तदान करते हैं ना, तो न केवल जीवन दान मिलता है बल्कि हमें भी अच्छा करने की सीख मिलती है, अच्छा करने की खुशी मिलती है। तो इस तरह के अच्छे अच्छे काम जब आप करते हैं या किसी और को प्रेरित करते हैं तो वो काम आपके जीवन को हमेशा सही राह दिखाते हैं। तो बहुत अच्छी बात हमें प्रकृति ने बताई। अब हमारे साथ एक और प्यारी सी नन्ही सी दोस्त है, तो चलो उनसे भी कुछ सुन ले।
2: मेरा नाम है तनिशी भावसार और मैं कक्षा दूसरी में पढ़ती हूँ। दीदी, मैं आपको एक कविता सुनाती हूँ।
1: अरे वाह तनिशी, आप दूसरी कक्षा में पढ़ती हो और हमें एक कविता सुनाने वाली हो, तो सुनाओ कविता।
2: मेरा बंदर मस्त कलंदर, पल में बाहर पल में अंदर, मेरा घोड़ा बड़ा निगोड़ा, कभी न पीता पानी थोड़ा, मेरी बिल्ली बोले म्याऊं म्याऊं म्याऊं म्याऊं म्याऊं, दूध मलाई चट कर जाऊं, मेरा बाजा करे तगाजा, पर लिख लो तो बनोगे राजा, मेरा तोता पंख भिगोता, राम राम रट के खुश होता, मेरा हाथी सबका साथी, लेकिन उसकी सूंड डराती, मेरी गुड़िया जादू की पुड़िया, रूप बदल बन जाती बुड़िया, मेरा डामी रंग बदामी, पाव उठाकर करे सलामी। थैंक यू।
1: बहुत अच्छी कविता हमें तनिशी ने सुनाई, बहुत प्यारी कविता।
3: मेरा नाम समृद्धि नागर है, मैं कक्षा थर्ड में पढ़ती हूँ।
1: अच्छा समृद्धि, मुझे ये बताओ आपके स्कूल कब से खुलने वाले हैं?
3: मेरे स्कूल 16 जून से शुरू होने वाले हैं।
1: और ये बताओ इन गर्मी की छुट्टियों में आपने क्या सीखा?
3: जी हाँ, मैं छुट्टियों में डांस सीखे है।
1: अच्छा, आपने डांस सीखा है, और जो गर्मी की छुट्टियों में मिलने वाला समर असाइनमेंट होता है आपने पूरा कर लिया?
3: जी हाँ, मैंने अपना असाइनमेंट पूरे कर लिए।
1: तो इन छुट्टियों में मजे आए आपको?
3: जी हाँ, मुझे छुट्टियों में बहुत बहुत ज्यादा मजे आए।
1: तो स्कूल शुरू होने वाले हैं तो खुशी है या नहीं आपको?
3: जी हाँ, मेरे स्कूल शुरू होने वाले, उस चीज की मेरे को बहुत बहुत ज्यादा खुशी है।
1: खुशी है, खुशी होनी चाहिए, है ना? तो क्या सुनाओगी आज?
3: मैंने छुट्टियों में कविता सीखी है,
1: तो सुनाओ हमें।
3: ऊपर नीचे दाएं बाएं, हवा चली साए साए, मुन्नी को चीर कर चल गई है पैर पर, हाथ नहीं आऊंगी दूर में हो जाऊंगी, मुन्नी बोली हंसकर, हवा रानी बस कर, अगर तुझे मैं लाऊंगी फुग्गे में ले जाऊंगी। थैंक यू।
1: क्या बात है, बहुत अच्छी कविता।

0: पके पेड़ पर पका पपीता, पका पेड़ या पका पपीता, पके पेड़ को पकड़े पिंकू, पिंकू पकड़े पका पपीता, बोलो।
1: पके पेड़ पर पका पपीता, पकड़ा पिंकी पपी का कपड़ा।
0: कपड़ा?

0: बच्चों आप सभी जानते हैं कि जून का महीना चल रहा है, गर्मी अभी भी अपने पूरे जोरों पर है और हम सब बेसब्री से बारिश का इंतजार कर रहे हैं। ऐसे में एक सवाल है कि क्या आपने कभी सोचा है बच्चों कि इस गर्मी में पेड़ पौधों और पक्षियों का क्या हाल होता होगा? सोचा है बच्चों, जिस तरह से हमें ठंडी हवा, छांव और पानी की ज़रूरत होती है ना, उसी तरह से प्रकृति को भी हमारी थोड़ी सी मदद की ज़रूरत होती है। तो क्यों ना हम इस बार बारिश आने से पहले हम एक संकल्प लें एक पौधा लगाने का, और साथ ही साथ अपने घर की छत, बालकनी या फिर आंगन में पक्षियों के लिए दाना पानी रखने का। बच्चों याद रखिए, एक पौधा धरती को हरा भरा बनाता है। तो बच्चों बारिश से पहले पौधा रोपण की तैयारी करनी है, आप अपने स्तर पर कहीं ना कहीं अपने घर के आंगन में या फिर अपने पास के बगीचे में छोटे छोटे पौधे रोपित करिए, ताकि जब बारिश का पानी उन पर गिरे ना, तो वो पौधे धीरे धीरे बढ़ने लगे और एक दिन बड़े होकर छांव दे, फल दे और खूब सारी बारिश दे। तो बच्चों आज के कार्यक्रम में बस इतना ही, अगले कार्यक्रम में आपसे होगी फिर मुलाकात। तब तक के लिए सुषमा दीदी का टाटा बाय बाय और जय हिंद।
1: जय हिंद।
2: बच्चों का कार्यक्रम अभी आपने सुना, ये कार्यक्रम आकाशवाणी के इंदौर केंद्र का योगदान था। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। अब प्रस्तुत है इस घंटे की खास खबरें।
3: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नीस में फ्रांस के राष्ट्रपति एमेन

0: मैनुएल मैंक्रो के साथ भारत इनोवेट्स का उद्घाटन किया। भारत फ्रांस नवाचार वर्ष के तहत आयोजित इस कार्यक्रम में 120 से अधिक भारतीय स्टार्टअप, वैश्विक निवेशक, प्रौद्योगिकी क्षेत्र के अग्रणी लोग और उद्यमी भाग ले रहे हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज भोपाल में सिंगल क्लिक के माध्यम से लगभग 900 इकाइयों को प्रोत्साहन स्वरूप 350 करोड़ रुपए से अधिक की राशि का वितरण किया। इस दौरान मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना के तहत युवाओं को हितलाभ भी वितरित किए गए। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव सागर जिले के केसली में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम में लाडली बहना योजना की किस्त जारी करेंगे। 37वीं किस्त के रूप में 1,25,00,000 से अधिक लाडली बहनाओं के खातों में 1,835 करोड़ रुपए से अधिक की राशि अंतरित की जाएगी। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज विदिशा जिले में कृषि विज्ञान केंद्र के भूमि पूजन एवं खेत बचाओ अभियान कार्यक्रम में शामिल हुए। केंद्रीय मंत्री श्री चौहान ने कहा कि विदिशा की पावन धरती पर कृषि विज्ञान केंद्र का शिलान्यास किसानों के लिए नई संभावनाओं का द्वार खोलने वाला है। मौसम विभाग ने प्रदेश में 15 से 18 जून के बीच मॉनसून के प्रवेश की संभावना जताई है। इससे पहले देशभर में प्री मॉनसून गतिविधियां तेज बनी हुई है। मौसम विभाग ने आज कुछ जिलों में तेज आंधी और बारिश का अलर्ट जारी किया है। और ICC महिला T20 विश्व कप में आज भारतीय टीम अपने अभियान के शुरुआती मैच में पाकिस्तान से भिड़ेगी। यह मुकाबला शाम 7 बजे से होगा। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
1: यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण है। मीडियम वेब पर हमारी ये सभा संपन्न हो उससे पहले हम आपको जानकारी दे दें हमारी सांध्यकालीन सभा के कुछ प्रमुख कार्यक्रमों की। युवा दोस्तों के कार्यक्रम युववाणी का प्रसारण आप सुन सकते हैं शाम 5:02 पर। यह कार्यक्रम आकाशवाणी के शिवपुरी केंद्र का योगदान होगा। ICC महिला T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2026 के अंतर्गत भारत और पाकिस्तान के मध्य बर्मिंघम में खेले जा रहे महिला T20 क्रिकेट मैच का आंखों देखा हाल आप सुन सकते हैं शाम 6:30 से। और इस बीच आप सुनेंगे समाचार सेवा प्रभाग आकाशवाणी द्वारा विशेष श्रृंखला सरकार के 12 वर्ष सशक्त भारत, इसे आप सुनेंगे रात्रि 8 बजे से। और इसके पश्चात पुनः ICC महिला T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2026 के अंतर्गत भारत और पाकिस्तान के मध्य खेले जा रहे महिला T20 क्रिकेट मैच का आंखों देखा हाल मैच के समापन तक आप सुन सकते हैं। ये थी उन कार्यक्रमों की जानकारी जिन्हें आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश के प्रसारण में सुनेंगे। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। हमारा अगला कार्यक्रम कुछ ही पलों में। ये आकाशवाणी भोपाल है। मीडियम वेव पर अब हमारी ये सभा संपन्न होती है। DTH पर इस बीच प्रसारण जारी रहेगा। आप सभी को हमारा नमस्कार। DTH के ऑडियो चैनल पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी भोपाल का प्रसारण। अब प्रस्तुत है लोक संगीत का कार्यक्रम। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के शिवपुरी केंद्र का योगदान है। कलाकार हैं प्रकाश चंद्र झा और साथी।

और इसी दादरा के साथ लोक संगीत का ये कार्यक्रम अब संपन्न हुआ। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के शिवपुरी केंद्र का योगदान था। अब हुआ है समय सुगम संगीत के कार्यक्रम का, और इसमें अब आप सुनेंगे घनश्याम वासवानी की गाई हुई चंद गज़लें। कार्यक्रम का आगाज़ इस गज़ल से

और इसी गज़ल के साथ सुगम संगीत का ये कार्यक्रम अब ख़त्म हुआ। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी भोपाल का प्रसारण। 3:30 होने

मोहम्मद रफ़ी, लता मंगेशकर की आवाज़ में। अभी आपने सुनी ये कव्वाली जिसे हमने लिया था लैला मजनू फिल्म से। मदन मोहन की तर्ज थी और शब्दकार थे साहिर लुधियानवी।

ये खूबसूरत गीत हमने लिया था हेरा फेरी फिल्म से, जिसे आवाज़ दी थी महेंद्र कपूर और किशोर कुमार ने। कल्याण जी आनंद जी ने इस गीत की धुन बनाई थी और इंदिवर ने बोल दिए थे।

अब आ रहा है इंदु जैन का लिखा हुआ वो गीत जिसकी तर्ज बनाई है राजकमल ने। हेमंती शुक्ला और यीशुदास ने इसे स्वर दिए हैं और फिल्म का नाम है चश्मे बद्दूर।

और अब इस कार्यक्रम के आखिर में आप सुनने जा रहे हैं रज़िया सुल्तान फिल्म का वो गीत जिसे गाया है कब्बन मिर्ज़ा ने। निदा फाजली ने इस गीत को शब्द दिए हैं और संगीतकार हैं खयाम।

0: और इसी खूबसूरत नगमे के साथ चित्रपट संगीत का ये कार्यक्रम अब ख़त्म हुआ। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी भोपाल का प्रसारण DTHA ऑडियो चैनल पर। इस समय 3:58 हुए हैं। पेश है इस घंटे की ख़ास खबरें।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नीस में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों के साथ भारत इनोवेट्स का उद्घाटन किया। भारत फ्रांस नवाचार वर्ष के तहत आयोजित इस कार्यक्रम में 120 से अधिक भारतीय स्टार्टअप, वैश्विक निवेशक, प्रौद्योगिकी क्षेत्र के अग्रणी लोग और उद्यमी भाग ले रहे हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव सागर जिले के केसली में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम के दौरान लाडली बहनाओं के खाते में योजना की 37वीं किस्त जारी की। प्रदेश की 1,25,00,000 से अधिक लाडली बहनाओं के खातों में 1,835 करोड़ रुपये से अधिक की राशि सिंगल क्लिक के माध्यम से अंतरित की गई। आयुष मंत्रालय ने आज YouTube पर आयोजित एक लाइव योग सत्र के जरिए नया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। इस ऑनलाइन योग कार्यक्रम में 4,35,000 से अधिक लोगों ने भाग लिया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मुख्य कार्यक्रम 21 जून को कोलकाता में आयोजित किया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने विश्व रक्तदाता दिवस के अवसर पर कहा कि सभी रक्तदाता सच्चे अर्थों में मानवता के रक्षक और ईश्वर के प्रतिनिधि हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने विश्व रक्तदाता दिवस पर प्रदेशवासियों से रक्तदान जैसे पुण्य कर्म के लिए संकल्पित होने का आह्वान किया है। मौसम विभाग ने प्रदेश में 15 से 18 जून के बीच मानसून के प्रवेश की संभावना जताई है। इससे पहले प्रदेश भर में प्री मानसून गतिविधियाँ तेज बनी हुई है। मौसम विभाग ने आज कुछ ज़िलों में तेज आंधी और बारिश का अलर्ट जारी किया है। और ICC महिला T20 विश्व कप में आज भारतीय टीम अपने अभियान के पहले मुकाबले में पाकिस्तान से भिड़ेगी। यह मैच बर्मिंघम में शाम 7 बजे से होगा। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
0: DTHA के ऑडियो चैनल पर उस समय आप सुन रहे हैं आकाशवाणी भोपाल का प्रसारण।

जय झूलेलाल। सिंधुत जी सुरहाण में हाजिर आया तव्हांजी रेडियो साथी मां चित्रा चेलानी। तव्हां सभिनी खे मुंहिंजी सिक भरी नमस्ते। साथियों, अॼु 14 जून हिकु ख़ासि ॾींहुं आहे, विश्व रक्तदाता दिवस। रत जंहिंजो को बि कृत्रिम विकल्प न आहे। हादसनि, ऑपरेशन या वरी थैलेसेमिया जी बीमारीअ में मरीज़नि जी जान बचाइण लाइ इंसान जे रत जी घुर्ज रहंदी आहे। रक्तदाता दिवस मल्हाइण जो मक़सदु सुरक्षित रत जी उपलब्धता बाबति सुजाॻी पैदा करणु ऐं पाण मुरादो रत ॾियण वारनि जा थोरा मञणु आहे। हिन ॾींहं जी चूंड माहिर साइंसदान कार्ल लैंडस्टेनर जे जनम जे ॾींहं जे मान में कई वई आहे, जिन ब्लड ग्रुप्स जी खोज कई हुई। दोस्तो, कुझु माण्हुनि जे मन में इहा भ्रांति या वहम वेठल आहे त रत ॾियण सां शरीर में कमज़ोरी अची वेंदी, पर इहा ॻाल्हि बिल्कुलु बि सही न आहे। हिकु तंदुरुस्त माण्हू हर 3 महीने में सलाईअ सां रतदान करे सघे थो। पाण सच त इहो आहे त रत ॾियण सां शरीर में नयूं रत जूं कोठड़ियूं बणिजनि थियूं ऐं दिलि जी बीमारियुनि जो ख़तरो बि घटिजे थो। तव्हांजो ॾिनल हिकु यूनिट रत बि माण्हुनि जी जान बचाए सघे थो। त अचो हिन ॾींहं ते पाण मुरादो रत ॾियण जी पह कयूं, छो त ही रत कंहिंजी ज़िंदगी बणिजी सघे थो। हाणे कार्यक्रम में वक़्तु आहे तव्हांजे मनपसंदि गीत संगीत जो। अचो त मज़ो था माणियूं मास्टर चंदर ऐं साथियुनि जी आवाज़ में हिन सुहिणे कलाम जो।

दोस्तों, सुभद्रा कुमारी चौहान जी ही सिट्टू खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी, आखिर कह न बुद्धियों हुंदियों। 18 जून रानी लक्ष्मीबाई बलिदान दिवस करे मल्हायो वेंदो आहे। वाराणसी में ॼायल मणिकर्णिका तांबे, जंहिंखे अॻिते हली रानी लक्ष्मीबाई सॾायो वियो, सां मार्शल आर्ट, निशानेबाज़ी ऐं घुड़सवारी में माहिर हुई। 1842 में संदसि संगु झांसी जे महाराजा गंगाधर राव सां थियो। गंगाधर राव जे गुज़ारे वञण खां पोइ अंग्रेज़नि जी हड़प नीति जी ख़िलाफ़त कंदे रानी लक्ष्मीबाई ललकार कई ऐं चयाईं त मां पंहिंजी झांसी कंहिं बि हाल में न ॾींदसि। 18 जून 1858 में ग्वालियर जे पासे कोटा जी सराय में बहादुरीअ सां अंग्रेज़नि जो सामनो कंदे रानी लक्ष्मीबाई पंहिंजी मातृभूमिअ लाइ बलिदान ॾिनो। हीउ ॾींहुं अलवतनी, बहादुरी ऐं नारी सशक्तिकरण जी मिसाल पेश करे थो। रानी लक्ष्मीबाई जो ही बलिदान भारतीय स्वतंत्रता संग्राम जी

तवारीख में सदा ही अमर रहंदो। हाणे कार्यक्रम में अचो त ॿुधूं था कला हज़ारी, कमला केसवानी ऐं गुरदास मल जी आवाज़ में गोवर्धन भारती पारां लिखियलु हीउ गीतु।

0: दोस्तों, कार्यक्रम में हाणे वक्त आहे काव्य पाठ जो। आकाशवाणी भोपाल में अॼु असां नींढ ॾिनी आहे कवियत्री अनीता लाला जी खे, त अचो गॾिजी मज़ो था माणियूं अनीता जी जी कुझु बहितरीन रचनाउनि जो।
1: जय झूलेलाल। मुंहिंजी पहिरीं रचना आहे नाजुक रिश्ता। जंहिंखे बि छुई ॾिसो सोई भॻल टुटल आहे, नओ हुजे या पुराणो अॼु रिश्तो ॾाढो कोमल आहे। जंहिंखे बि छुई ॾिठो सोई भॻल टुटल आहे, नओ हुजे या पुराणो अॼु रिश्तो ॾाढो कोमल आहे। ॾिसण में त सभु माण्हू लॻनि था मुकमल ॿाहिरियां, पर अंदरऊं अलाए छा आहे, हॾ हॾ में सूर भरियल आहे। नओ हुजे या पुराणो अॼु रिश्तो ॾाढो कोमल आहे। सुविधाऊं पैसनि सां वरितियूं, रुतबो समाज में आहे। गाॾियूं बिल्डिंगूं सभु आहिनि, पर बूथ सभिनी जो लथल आहे। नओ हुजे या पुराणो अॼु रिश्तो ॾाढो कोमल आहे। नज़रूं पया चुराइनि, गॾिजी बि नथा खाइनि। नज़रूं पया चुराइनि, गॾिजी बि नथा खाइनि। ही क्रॉकरियूं, हे बासण सभु असां ते खिलनि था। नओ हुजे या पुराणो अॼु रिश्तो ॾाढो

उमल आ। मानिए जो मोल कोने, मानिए जो मोल कोने, बाजार खादन सा भरियल आ, बस मोबाइल हुजे सजो डी, इते ही त जिंदगी रुकियल आ। सुहिणा हुआ उहे डी, सोच भी सुहिणी हुई, अज छा खाराईंदी अम्मा, सीरो खाइण जो दिल आ। सुहिणा हुआ उहे डी, सोच भी सुहिणी हुई, अज छा खाराईंदी अम्मा, सीरो खाइण जी दिल आ। हू डी वया उडामी, पेट सभनी जो भरियल आ, साईं जी मेहर हुजे, बाकी त सब ॼण वयल आ। कंहिंखे धीउनि जी चिंता, कंहिंखे धीउनि जी चिंता, को पुटनि सां रुठल आ, कंहिंजे कुल्हे ते रोऊं, कंहिंजे कुल्हे ते रोऊं, जीवन जॾहिं छलियल आ, नओ हुजे या पुराणो, अॼु रिश्तो ॾाढो कोमल आ। हिकिड़ी हास्य रचना, एयरपोर्ट वारो मुखे इहो ॿुधायो, पैसेंजर तव्हांखे छो नथो भाए, भॼंदे टुकंदे टैक्सियुनि में वेही, ॿ कलाक पहिरियों पाण खे पहुचाए, पर पैसेंजर तव्हांखे छो नथो भाए। रेलगाॾी सुहिणी, माण्हू बि सुठा, कूली बि आहिनि, चांहि वारा बि मिठा, सामान बि गॾु आ, खाधो बि गॾु आ, हर को माण्हू रेल में मौज थो मनाए, पर एयरपोर्ट वारनि खे माण्हू नथो भाए। घर सां वैब चैक इन था कयूं, एयरपोर्ट ते चैक इन, वरी सामान स्कैनिंग, वरी सिक्योरिटी चैक इन, वरी सामान स्कैनिंग ऐं सिक्योरिटी चैक इन, पैसेंजर वीचारो चैक इन जे चकर में, कॾहिं बेल्ट पर्स कढी जूता तो लाहे, पैसेंजर तव्हांखे छो नथो भाए। एयर होस्टेस तव्हांजी कुझु नओं न सिखी, ऑक्सीजन ऐं कुर्सीअ जी पेटी उनखे लॻी मीठी, ऑक्सीजन ऐं कुर्सीअ जी पेटी उनखे लॻी मीठी, अड़े कुझु त नओं सेखारियो, पाण खे सुधारियो, अॼु एआई जो ज़मानो किथे वेठो आहे, एयरपोर्ट वारनि खे पैसेंजर नथो भाए। आख़िर में बि त ड्रिजी ड्रिजी लहूं था, सामान मिलंदो सॼो इहो ई सोचूं था, सामान जो सिस्टम, बेल्टनि जो सिस्टम, नंबरनि सां तव्हां छो नथो हलाए, पैसेंजर तव्हांखे छो नथो भाए। छा ॿुधायां यारो, मुंहिंजी ही पेती, सभिनी खां आख़िर में इठलाए वेठी, सभिनी खां आख़िर में इठलाए वेठी, मुंहिंजा घर वारा घूरन मूंखे ता, को बि पंहिंजा सूर भला कंहिंखे ॿुधाए, एयरपोर्ट वारनि खे पैसेंजर नथो भाए। मुझे अगली रचना, असांजा सभई कम ऑनलाइन हली विया, गीत जे रूप में पेश थी कयां। असांजी महिनतुनि जा कम मशीननि ॾे हली विया, असांजी महिनतुनि जा कम मशीननि ॾे हली विया, असांजा सभई सुठा कम ऑनलाइन हली विया, ऑनलाइन हली विया, माण्हुनि जो मोल घटिजी विया, असांजा सभई सुठा कम ऑनलाइन हली विया। बिजलीअ जा बिल बि, पाणीअ जा बिल बि, बिजलीअ जा बिल बि, पाणीअ जा बिल बि, तरह तरह जा टैक्स घर वेठे भरिजी विया, असांजा सभई सुठा कम ऑनलाइन हली विया। ॿुहारी असांजी रोबोट थो पाए, कपड़ा मशीनुनि में हर को सुकाए, बासणनि जा कम डिश वॉशर खणी विया,
बासणनि जा कम ॾिस।

0: चे वॉशर खणी विया असांजा महिनतुनि जा कम हे मशीन ॾे विया। घर जो किरानो ऑनलाइन घुरायूं, कपिड़ा लटा बूट शूट सभु घर वेठा आणियूं। माउ जी जॻह ते, हा माउ जी जॻह ते ज़ोमेटो टोमेटो खणी विया असांजा सभई सुठा कम ऑनलाइन हली विया। ड्राफ्टिंग ऐं चिठियूं एआई थो ठाहे, अरे डॉक्टरनि जा कम बि एआई ॿुधाए। तरह तरह जी टिकटूं मोबाइल थो कराए, तरह तरह जूं टिकटूं मोबाइल थो कराए। लाइन में बीहण जो आनंद फिटी वियो आहे, भाॼियूं वठण जो आनंद फिटी वियो आहे। असांजा सभई सुठा कम ऑनलाइन हली विया। ॿार चवनि पेरेंट्स वक़्तु था विञायो, ॿार चवनि पेरेंट्स वक़्तु था विञायो। असां चवूं तव्हां सिहत था गवायो। अहिड़ी ई बहसुनि में, अहिड़ी ई बहसुनि में परिवार फिटी विया। असांजा सुभई सुठा कम ऑनलाइन हली विया।
1: महिरबानी अनीता जी हिन सुहिणी पेशकश लाइ। मूंखे पूरो विश्वास आहे त तव्हांजी रचनाऊं असांजे श्रोताउनि खे सोचण लाइ मजबूर ज़रूरु कंदियूं। दोस्तो, तव्हां सभिनी पढ़ियो ऐं ॿुधो ई हूंदो त हाणोकी भारत सरकार खे देश जी सेवा कंदे 12 साल गुज़री विया आहिनि। इन टाणे समाज जे हर तबिके लाइ ऐं हर खेत्र में कम कया विया आहिनि। 80 करोड़ खां वधीक आबादीअ लाइ मुफ़्त राशन मुहैया कराइणु हुजे या शौचालय जी सुविधा ॾियारे जीवन सवलो करण जो कमु हुजे, स्वास्थ्य जे खेत्र में आयुष्मान भारत ऐं जन औषधि केंद्र जहिड़ा कम, अटल टिंकरिंग लैब ज़रिए युवाउनि खे नवां वझ ॾियारण जहिड़ा कम, हारियुनि लाइ फसल बीमा, किसान क्रेडिट कार्ड जहिड़ियूं सुविधाऊं, मेट्रो नेटवर्क, वंदे भारत ट्रेनूं, अटल सेतु, चिनाब रेल ब्रिज जहिड़े इंफ्रास्ट्रक्चर ज़रिए राष्ट्र निर्माण या आत्मनिर्भर भारत जी संकल्पना, ही सभु गुज़िरियल 12 सालनि जो हासिलु आहे। कुल मिलाए चई सघिजे थो त ही 12 साल विश्वास, विकास ऐं जन कल्याण जा साल रहिया आहिनि। दोस्तो, इन्हे सां गॾु ई अॼु असां तव्हांखे ॼाण ॾियण था चाहियूं प्रधानमंत्री जे 15 सूत्रीय कार्यक्रम जी, जंहिंजो लक्ष्य आहे 6 अधिसूचित अल्पसंख्यक समुदाय जे आर्थिक नज़रिए कमज़ोर तबिके ताईं सरकारी योजनाउनि जो फ़ाइदो हिकु सरियो पहुचाइणु। हीउ कार्यक्रम हिकु जतन आहे अल्पसंख्यकनि खे शिक्षा, रोज़गार, स्वास्थ्य, सामाजिक न्याय जहिड़े खेत्रनि में सशक्त ठाहिण जो। इन्हे जे तहत कोशिश रहे थी त सभिनी सरकारी योजनाउनि जीअं त छात्रवृत्ति योजना, समग्र शिक्षा अभियान, प्रधानमंत्री आवास योजना, आयुष्मान भारत वग़ैरह जो कुल बजट जो हिकु हिसो अल्पसंख्यकनि ताईं पहुचाइण लाइ निर्धारित ज़रूरु करे सघिजे। साल 2006 खां हलंदड़ हीउ कार्यक्रम अल्पसंख्यक मंत्रालय जी निगरानी में रहंदो आहे। पोइते रहिजल तबिके खे मुख्य धारा सां जोड़ण ई हिन कार्यक्रम जो उद्यम आहे। ऐं दोस्तो, इन ज़रूरी ॼाण खां पोइ अचो त हलंदे हलंदे कार्यक्रम में ॿुधूं था कला हज़ारी, कमला केसवानी ऐं गुरदास मल जी आवाज़ में अर्जुन हासिद पारां लिखियलु गीतु।

दोस्तों, इन गीत सां गॾु ई असांजे अॼु जे कार्यक्रम जो वक़्तु बि पूरो थो थिए। उमेदु आहे त तव्हांखे कार्यक्रम ज़रूरु वणियो हूंदो। पंहिंजा वीचार ऐं पंहिंजा राया असां ताईं ज़रूरु पहुचाईंदा आकाशवाणी भोपाल जे फेसबुक पेज ज़रिए। हाणे पंहिंजी रेडियो साथी चित्रा चेलानी खे ॾींदा इजाज़त। तव्हां सभई स्वस्थ रहो, मस्त रहो ऐं सिंधी ॻाल्हाईंदा रहो। वरी गॾिजिबो, सभ जो भलो।

0: और अब हम आपको सुनवा रहे हैं संग्रहालय से के अंतर्गत जंग लगी तलवार की 9वीं कड़ी।
1: सुप्रसिद्ध लेखिका और उपन्यासकार इंदिरा गोस्वामी का असमिया साहित्य में विशेष स्थान है। प्रस्तुत है इंदिरा गोस्वामी द्वारा लिखित और साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित असमिया उपन्यास ममारे धारो तलोवाल पर आधारित धारावाहिक

रंग लगी तलवार इस धारावाहिक के प्रस्तुतकर्ता और निर्देशक हैं रेडियम वीडियोमैटिक्स दिल्ली के वेद शर्मा। रेडियो रूपांतर किया है राजीव और सुधांशु ने। अब तक आपने सुना, नशा करते करते शिबू को कुछ ज्यादा ही चढ़ जाती है और वो बेहोश हो जाता है। नारायणी लिचू को नशा करवाने के लिए कोसती है। होश में आने पर शिबू नारायणी से माफी मांगते हुए फिर ऐसा न करने की शपथ लेता है। शंभू और भृगु हड़ताल से फैल रही भुखमरी पर करुण चर्चा करते हैं और बेरोजगारी को देश के लिए कोढ़ बताते हैं। ठाकुर साहब लिचू को फेंकने के लिए जो कबाड़ देते हैं उनमें से उसे एक बोतल मिलती है। लिचू और शिबू मिलकर नशा करते हैं। तब शिबू कहता है कि वो औरत से डरने वाला आदमी नहीं है। यशवंत बलबीर स्वामी से हड़ताल को लेकर बहस करता है और लोकल लीडर शास्त्री जी से मिलवाने के लिए कहता है। दोनों शास्त्री जी से मिलने जाते हैं। शास्त्री उनसे फंड का इंतजाम करने के लिए कंपनी का स्टील, सीमेंट, लोहा आदि बेचने के लिए कहता है। यशवंत ध्यान दिलाता है कि कंपनी ने इन सामानों को बेचने के लिए कोटेशन मंगवाए हैं। शास्त्री कोटेशन देने वाले व्यापारियों को पीट पीट कर भगा देने के लिए कहता है। ये सुनकर यशवंत और बलबीर स्वामी चौंक जाते हैं। अब आगे।

0: अब तुम्हारी यूनियन क्या कर रही है रामू बाबू?
1: हुजूर, सुनने में आया है कि यशवंत और बलबीर स्वामी शास्त्री जी से मिलने गए थे।
0: अच्छा, तो शास्त्री जी ने क्या कहा?
2: सरकार, शास्त्री जी सन 1975 में यूनियन और कंपनी के बीच हुए समझौते को इमरजेंसी के दौरान जबरदस्ती हुआ समझौता साबित करना चाहते हैं।
1: हाँ सरकार,
2: सुनना है वो कोई सबूत भी पेश करने वाले हैं सरकार।
1: अगर ऐसा हो गया माई बाप तो कंपनी कहीं साई के पानी में।
0: नहीं नहीं नहीं, हम ऐसा नहीं होने देंगे रामू बामू, हम ऐसा किसी भी हालत में नहीं होने देंगे।
2: आप क्या करने की सोच रहे हैं?
0: अभी ये राज की बात है, इसे राज ही रहने दो, जब समय आएगा तो तुम भी जान जाओगे।
1: ठीक कह रहे सरकार, ठाकुर साहब की जय हो,
2: जय हो।
1: आप तो जो भी कदम उठाएंगे कंपनी के हित में ही उठाएंगे सरकार।
0: क्यों भाई रामू बामू, सुना है कि यूनियन के साथ तुम दोनों की कोई गुप्त सभा हुई थी।
2: सरकार, आपने बिल्कुल ठीक सुना है सरकार।
0: तो क्या यूनियन ने तुम दोनों को कोई खास काम सौंपा है?
1: हाँ हुजूर, कंपनी ने पुराना सामान बेचने के लिए कोटेशन मंगाए हैं ना, तो अब कोटेशन देने वाले व्यापारियों का यहाँ आना जाना शुरू हो जाए।
2: हाँ सरकार।
0: तुम लोग क्या करोगे?
1: पूरा इंतजाम है साहब, साई नदी गवाह रहेगी और हम मशीनों के पुराने बचे हुए टुकड़े और पुर्जों को खरीदने वाले व्यापारियों को मार पीट के भगा देंगे।
0: क्या तुम लोग कंपनी के खिलाफ कदम उठाओगे?
2: अरे नहीं नहीं सरकार, भला हमारी क्या वजह, क्यों क्यों क्यों रामू, जो हम कंपनी की मुखालफत करें।
1: अरे नहीं सरकार, जरा सोचिए, अगर हम व्यापारियों को मार पीट कर भगा दे तो क्या होगा?
2: क्या होगा?
1: यहाँ पर हिंसा फैलेगी।
2: हाँ सरकार, हड़ताल करने वालों पर हिंसा फैलाने का आरोप लगेगा।
1: हाँ सरकार, और पुलिस वालों की संख्या दोगुनी हो जाएगी।
2: हाँ सरकार, हड़ताल को गैर कानूनी घोषित कर दिया जाएगा।
1: और इसी में तो कंपनी का फायदा
2: फायदा ही फायदा है सरकार।
0: अरे हाँ, ऐसा तो मैंने सोचा ही नहीं था। तुम दोनों बहुत बहादुर, बुद्धिमान भी हो।
1: सरकार की मेहरबानी।
0: ये लो अपनी बोतल, विलायती है।
1: ठाकुर साहब की जय हो।
0: बस बस बस, तुम लोग इसी तरह यूनियन की खबर मुझ तक पहुंचाते रहना, बस तुम्हें इसी तरह बोतल मिलती रहे।
3: देखा बलबीर स्वामी, शास्त्री जी की बात मानने का क्या नतीजा निकला?
4: यशवंत, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। पिटने वाले व्यापारियों ने हड़तालियों के खिलाफ कंप्लेंट लिखा दी है।

0: चारों ओर पुलिस ही पुलिस नजर आ रही है।
1: अरे पुलिस ने हमारे कुछ साथियों को गिरफ्तार भी कर लिया है, अब क्या होगा बलबीर? अरे कब तक हम मुख्यालय से मदद के इंतजार में बैठे रहेंगे? अब हमें ही कुछ करना होगा।
0: हम गिरफ्तार हुए साथियों को छुड़ाने के लिए जुलूस निकालेंगे, कंपनी के दफ्तर पर प्रदर्शन करेंगे।
1: लेकिन प्रदर्शन करने के लिए हमारे पास फंड कहाँ है बलबीर?
0: तो मजदूरों से चंदा इकट्ठा करो।
1: वाह वाह बलबीर स्वामी वाह, हमारे मजदूर भाई भूखे पेट रहकर भी आप लोगों पर विश्वास करके हड़ताल को जारी रखे हुए हैं, और एक तुम हो जो मजदूरों की खाल तक उधेड़ लेना चाहते हो। जानते हो कल क्या हुआ?
0: क्या हुआ?
1: अरे हमारे दो मजदूर किसानों से गेहूं मांगने गए तो किसानों ने उन्हें मार मार कर अधमरा कर दिया। बेचारे टूटी कमर लेकर सरकारी अस्पताल में पड़े हुए हैं।
0: ये कैसे हो सकता है? किसान तो हम मजदूरों के साथ हैं। तुम्हारे सामने ही तो सबने मजदूर किसान एकता जिंदाबाद के नारे लगाए थे ना।
1: बलबीर सुना है कि ठाकुर साहब ने किसानों के मुखिया को खरीद लिया है।
0: ओह तो ये बात है, इसका मतलब पानी अब सिर से ऊपर बहने लगा है।
1: अब तुम ही बताओ बलबीर कि हम लोग क्या करें? अगर मजदूरों पर ऐसे ही दमन चक्र चलता रहा तो हड़ताल तो बीच में ही टूट जाएगी।
0: अरे कंपनी का मकसद भी तो यही है कि हड़ताल टूट जाए।
1: क्या?
0: मगर हम ऐसा किसी कीमत पर नहीं होने देंगे। हम अपनी आखिरी सांस तक लड़ेंगे और कंपनी की ईंट से ईंट बजा देंगे।
1: तुम्हारा चरित्र मैं आज तक नहीं समझ पाया बलबीर स्वामी।
0: तुम कहना क्या चाहते हो यशवंत?
1: अरे कभी तो मुझे लगता है कि तुम शास्त्री जी के साथ मिलकर हम मजदूरों के साथ छल कर रहे हो, और कभी लगता है कि तुम सच्चे मन से हमारे साथ हो।
0: देखो यशवंत, सच बात तो यह है कि ताकत के बिना कोई लड़ाई नहीं जीती जा सकती, और वो ताकत शास्त्री जी के पास है। उनकी लखनऊ से लेकर दिल्ली तक जान पहचान है। ऐसे में उनकी ताकत का मजदूरों के हित में इस्तेमाल करने के लिए उनकी चापलूसी करनी पड़ती है, वरना हकीकत तो यह है कि मैं तन मन धन से मजदूरों के साथ हूं।
1: अच्छा तो फिर मेरी एक बात मानोगे?
0: जरूर।
1: बलबीर क्यों ना मुख्यालय से आने वाले प्रतिनिधियों का इंतजार करने की जगह हम अपना प्रतिनिधि मुख्यालय भेजें?
0: विचार तो तुम्हारा अच्छा है।
1: तो फिर विलंब क्या है? अब क्या शास्त्री जी से सलाह लेना चाहते हो?
0: नहीं, हमारे पास बिल्कुल समय नहीं है। हाँ एक सुझाव और है मेरे पास।
1: सुझाव? कैसा सुझाव, जरा मुझे भी बताओ।
0: हम थोड़ा बहुत चंदा इकट्ठा करके कंपनी के दफ्तर पर बेमियादी धरना देंगे, और जब तक कंपनी के अधिकारी हमसे बात नहीं करते तब तक हम वहां से नहीं हटेंगे।
1: हाँ बलबीर मैं तुम्हारी बात से सहमत हूँ, चलो अधूरी तैयारियों को पूरा करें।
0: हाँ चलो ये चलो आप।
2: नारायणी काकी, राम राम काकी।
3: राम राम।
2: कहाँ से आ रही हो?
3: अरे नारायणी तेरे पास कुछ खाने को है? हमारे पेट में 3 दिन से अन्न का एक दाना नहीं गया।
2: काकी क्या बताऊं, मैं खुद 3 दिन से भूखी हूँ, और मेरा मुन्ना भी खालिस पानी पर जिंदा है।
3: अरे हम तो पहले ही कह रहे थे कि इस हड़ताल से कुछ होने वाला नहीं है। अरे हमारी बात किसी ने नहीं मानी।
2: लेकिन काकी तुम खलासी लंगर की तरफ से कैसे आ रही हो?
3: अरे गई तो थी 2 रोटी का इंतजाम करने, रोटियां तो नहीं मिली, लेकिन हाँ यूनियन की सच्चाई का पता लग गया।
2: यूनियन की सच्चाई? मैं समझी नहीं काकी।
3: हम मजदूर लोगन के खून पसीना की गाड़ी कमाई यूनियन के नेता दारू में उड़ा रहे हैं। अब तक बैठे हैं खलासी लंगर में वो दोनों गद्दार।
2: क्या?

0: भाई वाह वाह बलबीर भाई वाह।
1: कालू भाई ये ले एक पैग और ले।
0: अरे वाह वाह वाह एक पैग और भाई वाह। पीने पिलाने का

0: तो मजा ही कुछ और है। देखो भाई बलबीर, हड़ताल करें मजदूर, चंदा दे मजदूर, भूखे मरे मजदूर, और चंदे के पैसे से मौज मस्ती करे हम यानी के यूनियन के नेता।
1: धीरे बोल धीरे कालू, अगर किसी ने सुन लिया तो गजब हो जाएगा।
0: अरे बलबीर भाई, तुम यूनियन के अध्यक्ष हो।
1: हाँ।
0: और मैं
1: सेक्रेटरी।
0: सेक्रेटरी शास्त्री जी का हाथ भी तो हमारे सर

0: कालू अगर किसी ने सुन लिया तो गजब हो जाएगा।
1: अरे बलबीर भाई तुम यूनियन के अध्यक्ष हो।
0: हाँ।
1: और मैं
0: सेक्रेटरी।
1: शास्त्री जी का हाथ भी तो हमारे सर पर है। देखो भैया, जब सैया भय कोतवाल तो फिर डर काहे का।
0: लेकिन कालू, डरना सीख। किसी से भले ही मत डर, लेकिन यशवंत से तुझे डरना चाहिए।
1: यशवंत? अरे कौन यशवंत? हो, वो दलित नेता?
0: हाँ, बिल्कुल वही।
1: अरे छोड़ यार बलबीर, उस मच्छर से क्या डरना। हाँ
0: अरे यार कालू, मत भूल कि एक मच्छर से मलेरिया की महामारी हो जाती है। और ये महामारी इंसान को मौत के आगोश में पहुंचा कर ही पीछा छोड़ती है।
1: यार बलबीर,
0: हाँ।
1: मुझे आज तक समझ में नहीं आया कि तुम मुझसे इतना डरते क्यों हो। हाँ। देख बलबीर, उसे तो जब कहे ना तब उसे मसल कर रख दो।
0: अरे हाँ। अरे कालू, मत भूल कि साई के 4000 मजदूर उसके एक इशारे पर जान देने के लिए तैयार रहते हैं। और वो भी मजदूरों के लिए मरने मारने पर तैयार रहता है। अगर वो हमारे हाथ से निकल गया तो हमारी इस मौज मस्ती पर हमेशा हमेशा के लिए विराम लग जाएगा। शास्त्री जी की नाराजगी झेलनी पड़ेगी, सो अलग।
1: भाई बलबीर, मुझे तो लगता है कि ये शास्त्री जी कोई बड़ी गेम खेल रहे हैं यार।
0: अरे हमसे क्या, अब भाई हम तो ठहरे छोटे नेता। और वैसे भी शास्त्री जी ने यूनियन के एक भी पैसे को हाथ नहीं लगाया है। सबका सब पैसा हमारे पास है।
1: अच्छा,
0: फिर हमें उनके बड़े गेम से क्या लेना देना।
1: अरे अरे ठीक कहते हो भाई। अच्छा भाई बलबीर, इसी बात पर एक पे गौर हो जाए।
0: अभी लो।
1: अच्छा भाई।

0: यशवंत बाबू, यशवंत बाबू।
1: अरे नारायणी, तुम मेरे घर में? अब आओ, अंदर आ जाओ।
0: नहीं, क्षमा चाहती हूँ यशवंत बाबू,

0: गलत फहमी में तो साई के सारे मजदूर आज तक जी रहे हैं। जिसे अपना मसीहा समझा, जिस पर इतना विश्वास किया, उसी इंसान ने विश्वासघात किया।
1: नारायणी,
0: लेकिन मैं चुप नहीं बैठूंगी, चीख चीख कर सबको बता दूंगी। फिर देखना, जिन मजदूरों के साथ तुम लोगों ने छल किया है, वही मजदूर तुम सबको साई के बालू में जिंदा गाड़ देंगे।
1: होश में आओ नारायणी, मेरी बात का तुम यकीन क्यों नहीं करती? अच्छा एक बात बताओ, तुम यूनियन के किस नेता की बात कर रही हो जो यूनियन का पैसा दारूबाजी में उड़ा रहा है?
0: बलबीर स्वामी और कालूराम।
1: क्या, बलबीर स्वामी और कालूराम?
2: भाई बाबू,
3: बोल रहा हूँ,
2: आजकल तो हमारी पांचों उंगलियां घी में है और सिर कड़ाई में।
3: तू सच कह रहा है रे, एक कंपनी की पुरानी मशीनों के कल पुर्जे और दूसरी चीजों को चुरा चुरा कर हम बेच रहे हैं
2: और हमें इनके अच्छे पैसे भी मिल रहे हैं।
3: और जब कंपनी के अधिकारियों को इस चोरी का पता चलेगा
2: तो उनका शक सीधे हड़ताली मजदूरों पर जाएगा।
3: रामू, तूने कुछ सुना?
2: नहीं भैया बाबू, अगर तूने सुना है तो मुझे भी बता दे।
3: हाँ सुनाता हूँ। वो क्या है कि रोज शाम अंधेरा होने के बाद कोई औरत ठाकुर साहब के पास जाती है।
2: औरत? अरे क्या बात करता है।
3: अरे 16 आने, सच कह रहा हूँ भैया, 16 आने सच।
2: लेकिन तुझे कैसे पता?
3: अरे मैंने स्वयं कई बार ठाकुर साहब के घर से एक औरत की परछाई को आते जाते देखा है।
2: अच्छा, लेकिन ये औरत हो कौन सकती है भैया बाबू?
3: अरे रामू, यही तो पता लगाना है।
2: तो ठीक है, आज रात हम ठाकुर साहब के घर के सामने वाले सागवान के पेड़ पर बैठकर निगरानी करेंगे। अरे पता तो चले कि वो चरित्रहीन औरत है कौन।
3: तूने बिल्कुल ठीक कहा।
2: तो चलो पेड़ पे,
3: आज रात मिलते हैं सागवान के पेड़ पे।

0: आजकल यूनियन में क्या चल रहा है मैं सब जानती हूँ। क्या यही सब करवाने के लिए मजदूरों की हड़ताल करवाई थी?
1: ये तुम क्या कह रही हो नारायणी, अब मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा।
0: अब समझ में क्यों आएगा, यूनियन के नेता हमारे चंदे पर गुलछरे जोड़ा रहे हैं। कम से कम मैं आपको तो ऐसा नहीं समझती थी, लेकिन आप भी ऐसे ही निकले।
1: देखो नारायणी, पहलिया ना बुझाओ, जो कुछ कहना है साफ साफ कहो।
0: पहले सुना था कि आपने यूनियन के पैसे से अपने लिए नया खादी का कुर्ता पजामा खरीदा है, तब मैंने विश्वास नहीं किया।
1: ये तुम क्या कह रही हो नारायणी?
0: लेकिन जब पता चला कि यूनियन के नेता यूनियन का पैसा खलासी लंगर में दारू में उड़ा रहे हैं, तो जाकर एहसास हुआ कि उस समय मैं गलत थी। लेकिन अब मेरी आंखें खुल गई हैं।
1: नहीं, ये झूठ है, ये झूठ है नारायणी।
0: चिल्लाओ मत यशवंत बाबू, चिल्लाने से सच झूठ में नहीं बदल सकता।
1: तुम्हें कैसे समझाऊं, मेरी बात का यकीन करो नारायणी, यकीन करो मेरी बात का, तुम्हें जरूर कोई गलत फहमी हुई है।
0: गलत फहमी?

0: साथियों, कंपनी के अधिकारियों के अड़ियल रवैये के कारण हड़ताल लंबी खिंचती जा रही है। हमारे मजदूर हताश और निराश नहीं है। कंपनी के पास रुपए पैसे हैं, लेकिन हमारे पास हौसला है। हौसला बनाए रखो, जीत हमारी होगी। हमारा बेमियादी धरना तब तक जारी रहेगा जब तक कंपनी के अधिकारी हमसे बात करने के लिए तैयार नहीं होते।
1: आवाज दो, आवाज दो।
0: शांत भाइयों, शांत। हमारे बीच कंपनी का आदमी आया है, शायद वो हमसे कुछ कहना चाहता है।
2: सुनिए, ठाकुर साहब यूनियन के नेताओं से मिलना चाहते हैं।
0: साथियों, ठाकुर साहब ने यूनियन के नेताओं को बातचीत के लिए बुलाया है। लगता है कंपनी हमारे आगे झुक गई है, हमारी मांगे मानने के लिए तैयार हो गई है। शांत साथियों, शांत। यूनियन की ओर से मेरे साथ कालूराम और यशवंत ठाकुर साहब से मिलने जा रहे हैं। तब तक आप लोग शांतिपूर्वक यहीं पर बैठ जाइए। आओ यशवंत।
3: चलो बलवीर, आओ कालूराम।
4: हाँ बताइए ठाकुर साहब, क्या फैसला हुआ था?
5: देखिए, कंपनी के अधिकारियों की बैठक में ये अहम फैसला लिया गया है कि हम 60 मजदूरों को परमानेंट करने के लिए तैयार।
6: क्या? सिर्फ 60?
4: 2000 दिहाड़ी मजदूरों में से सिर्फ 60? ठाकुर साहब,
6: सिर्फ 60?
5: हाँ भाई, सिर्फ 60। इससे ज्यादा हमारे लिए संभव नहीं है।
7: ठीक है, ये प्रस्ताव हमें लिखित रूप में दे दीजिए।
5: ये भी संभव नहीं है।
7: क्यों?
5: कंपनी लिखकर नहीं दे सकती।
6: कमाल है, ये क्या हिमाकत है? कंपनी अपना ही फैसला लिखकर देने में क्यों आनाकानी कर रही है?
5: देखिए, समझने की कोशिश करिए, कंपनी के पास हजारों विभाग हैं, इस तरह लिखकर देना बहुत मुश्किल काम है।
4: देखिए ठाकुर साहब, इस तरह तो फैसला हो नहीं सकता।
6: नहीं हो सकता।
5: तो ठीक है, करो हड़ताल, एक साल दो साल तक हड़ताल करते रहो।

0: आखिर में हम ये केस सरकार के हवाले कर देंगे।
1: क्या
2: ये? चलो भाइयों, हमारी हड़ताल जारी रहेगी। कंपनी को यूनियन के सामने झुकना होगा। झुकना होगा कंपनी को यूनियन के सामने। यशवंत कालू, चलो यहाँ से।
3: मेरे ख्याल से हम लोगों को ठाकुर साहब की बात मान लेनी चाहिए।
4: अरे यशवंत, तू अभी नरम बांस है। अरे यही उम्र है कि तुम पके बांस की तरह अपने आप को ढाल सकते हो।
5: यशवंत भाई, यशवंत भाई,
3: हाँ
5: जरा इधर तो आना।
3: अब क्या बात है लीचू?
5: भयानक दिन आएगा यशवंत भाई, बहुत ही भयानक दिन। तुम लोगों को नदी की बालू में जिंदा दफना देंगे लोग।
3: क्या क्या कहा लीचू?
6: क्या हुआ रामू? क्या?
7: अरे भैया बाबू, चींटियों और मच्छरों ने काट काट के सारा शरीर लाल कर दिया। दर्द के मारे बुरा हाल है भैया।
6: वैसे एक बात बताओ रामू, यूनियन ने भी अच्छा काम दिया है कि निगरानी करो कि कोई औरत कंपनी के किसी दलाल के पास तो नहीं जाती है।
7: और अगर जाती है तो उसे पकड़ कर मार मार कर हड्डियां तोड़ देने का भी आदेश है।
6: और दारू की बोतल भी नहीं देंगे यूनियन वाले, कहते हैं कि ये हमारा फर्ज है।
7: अरे दारू तो हमें ठाकुर साहब से मिली जाती है, और ठाकुर साहब का ही आदेश है कि हम दोनों यूनियन से मिलते रहे, ताकि उन्हें हमारे जरिए यूनियन की गतिविधियों की जानकारी मिलती रहे।
6: हमें मच्छरों से कटवा कर औरतों की रखवाली पर लगा दिया, खुद नाक बजा बजा कर सोते रहते।
7: अरे भैया बामू, कहीं वो औरत पार्वती तो नहीं? अरे वही भृगु की बहन।
6: वो सुना है कि वो लोगों को खराब कर रही है।
7: तो तेरा मतलब है कि ठाकुर साहब के पास पार्वती ही आती होगी?
6: अरे क्यों नहीं आ सकती वो?
7: अब हवा आ तो सकती है, आज उसे घसीट कर साई के बालू तक ले जाऊंगा।
6: साई के बालू तक ले जाऊंगा? अरे कैसे ले जाएगा?
7: अरे कैसे का क्या मतलब?
6: पुलिस की सीटी सुनी तो
7: नहीं?
6: अरे देखो नहीं, चार और बंदूकधारी पुलिस बहरे पर है।
7: अरे साई के उस पार तक मुंशीगंज में आने वाली सड़क पर भी पुलिस वालों ने कब्जा कर रखा है भैया।
6: रामू रामू भाई, एक दिन साई के बालू के पास पार्वती को अकेले पाकर उसका हाथ पकड़ना चाहा था, तुरंत सती सावित्री बन गई भाई, गाली देने लगी। अगर आज हाथ लग गई ना तो रामू भैया मैं उसे छोड़ूंगा नहीं।
7: मैं भी नहीं
6: लेकिन उसे साईं की बालू पर लेकर नहीं जाऊंगा। क्या पता यूनियन वालों ने बालू में गोला बारूद रखा हो।
7: क्या हुआ
6: रामू? उधर देखो, उधर वो झाड़ी की तरफ, वो सामने वाली बबूल की झाड़ी हिल रही है।
7: हिल रही है, शायद वो आ रही है। अरे दम साधे बैठा रहे, चुप, बिल्कुल चुप, शोर नहीं कर रहा। जैसे ही वो पेड़ के नीचे आएगी, एक साथ हम इस पर कूद पड़ेंगे।
6: हाँ,
8: से जान बचा ली, तो मुझे भागना होगा, नहीं तो मार भी पड़ेगी और इज्जत भी जाएगी।
6: तू

0: भैया बाबू, ये तो पार्वती नहीं बल्कि नारायणी है।
1: रामू वो देख, उधर पोटली गिरी पड़ी है, देख तो पोटली,
0: देख
1: देख देख इसमें क्या है, देख
0: अरे
1: क्या है, क्या बता?
0: कुछ पैसे और सूखी रोटियां है बाबू।
1: सुन चला, पैसे जेब में डाल ले, रोटी इसके हवाले कर दे,
0: ले चल।
2: लौटा मेरे पैसे, लौटा मेरे पैसे, मैं कहती हूँ मेरे पैसे वापस कर।
0: अरे चल नारायणी, तू भी ऐसा काम करती है? चल।
2: सुना नहीं जानवर की औलाद, लौटा मेरे पैसे।
0: चल आगे आगे बा, चल।
1: देख नारायणी, ज्यादा हल्ला करेगी तो मार मार कर हड्डी तोड़ दूंगा तेरी। अरे हम सफाई कर्मचारियों की इज्जत, अरे तूने तो मिट्टी में मिला दी।
2: मेरा पति बीमार है, बच्चा दूध के लिए तरस रहा है, 5 दिन से भूखी हूँ मैं। क्या कभी किसी ने एक पैसा देकर मेरी मदद की?
1: अब
2: नहीं की ना, अब हड़ताल के नाम पर अन्न के दाने भी छीन रहा है। मैं कहती हूँ चुपचाप मेरे पैसे लौटा दे।
0: चुप रह,
2: मेरे पैसे
0: चुप।
2: सुना नहीं, दे मेरे पैसे।
1: अरे नहीं देते, अरे करते क्या तेरे को पुलिस के हवाले, सारी जिंदगी जेल में सकती रहेगी।
0: समझ ले,
2: मेरी मर्जी, मैं चाहे अपने शरीर बेच कर पैसा कमाऊं, तुझे क्या? मैं कहती हूँ लौटा मेरे
0: पैसे। शरीर
3: कौन है रात के इस अंधेरे में?
0: भैया भाग ले, भाग,
3: देखो तो सही।
0: बाबू भाग ले।
4: नारायणी तुम इस वक्त?

0: अभी आप सुन रहे थे धारावाहिक जंग लगी तलवार। भाग लेने वाले कलाकार थे वीना होरा, दीपा रॉय, गीता वर्मा, श्याम अरोड़ा, केदारनाथ, मोहनलाल, दिनेश वर्मा, रजनीश शर्मा, कमल साथी, राजेश आहूजा, वीपी कालरा, उमेश श्रीवास्तव, सुरेंद्र सागर, बनवारी झोल, मंगत राम और संदीप। ध्वनि मुद्रण किया था रविंदर सिंह राजावत, एसपी राठौर और भगत सिंह ने। प्रस्तुति सहायक थे समीर झा।
1: संग्रहालय से क्रम के अंतर्गत अभी आपने सुना जंग लगी तलवार धारावाहिक का 9वां भाग। डीटीएच के ऑडियो चैनल पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी भोपाल के कार्यक्रम। कृपया अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा कीजिए।

0: मीडियम वेव 188 किलोमीटर्स यानी 1593 किलोहर्ट्ज़, साथ ही डीटीएच के ऑडियो चैनल और न्यूज़ ऑन एआईआर एप्लीकेशन पर आकाशवाणी का ये भोपाल केंद्र है। शाम के 5 बजने को हैं, मीडियम वेव पर अब हमारा प्रसारण आरंभ होता है। कृपया अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा कीजिए। आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, लीजिए सुनिए इस घंटे की खास खबरें।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस और स्लोवाकिया की 6 दिन की यात्रा पर हैं। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने आज नीस में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो के साथ भारत इनोवेट्स का उद्घाटन किया। भारत फ्रांस नवाचार वर्ष के तहत आयोजित इस कार्यक्रम में 120 से अधिक भारतीय स्टार्टअप, वैश्विक निवेशक, प्रौद्योगिकी क्षेत्र के अग्रणी लोग और उद्यमी भाग ले रहे हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन

0: यादव ने आज सागर जिले के केसली में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना अंतर्गत प्रदेश की 1,25,00,000 बहनों के खातों में 1,835 करोड़ रुपए की राशि सिंगल क्लिक के माध्यम से अंतरित की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने देवरी विधानसभा को लगभग 151 करोड़ रुपए के लागत के 53 विकास कार्यों की सौगात भी दी। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने कहा है कि प्रदेश में 24,00,000 से अधिक एमएसएमई इकाइयां कार्यरत है, इनमें से 4,41,000 से अधिक इकाइयां महिलाएं संचालित कर रही है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2047 तक 1 करोड़ पंजीकृत एमएसएमई इकाइयां स्थापित करने का लक्ष्य है। इनके माध्यम से 2 करोड़ से ज़्यादा लोगों को रोजगार मिलेगा। प्रदेश के 30 जिलों में 21 जून को होने वाली नीट की पुनर्परीक्षा के लिए 283 केंद्र बनाए गए हैं। सर्वाधिक 57 केंद्र इंदौर में हैं। राज्य बॉक्सिंग अकादमी भोपाल की प्रतिभावान मुक्केबाज माही लामा का चयन चीन में आयोजित होने वाली वर्ल्ड कप ऑफ बॉक्सिंग 2026 के लिए भारतीय टीम में हुआ है। और आईसीसी महिला T20 विश्व कप में आज भारतीय टीम अपने अभियान के पहले मुकाबले में पाकिस्तान से भिड़ेगी। यह मैच बर्मिंघम में शाम 7 बजे से खेला जाएगा। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
1: हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं। युवाजन सुने कार्यक्रम युववाणी, योगदान हमारे शिवपुरी केंद्र का है।

नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके दैनिक कार्यक्रम युववाणी में। मैं हूं आपकी दोस्त शिवानी राठौर। दोस्तों, क्रम आज की बात में हमारा चर्चा का विषय रहेगा विश्व रक्तदाता दिवस। साथ ही हमारा दूसरा विषय है जल को व्यर्थ न बहाएं, करें संरक्षित। दोस्तों, क्रम वार्ता में हम आपको वार्ता सुनवाएंगे विषय आधुनिक परिवेश में योग का महत्व। वार्ताकार है कनक श्रीवास्तव। साथ ही दोस्तों, क्रम जीवन आलोक में हम चर्चा करेंगे संकीर्ण मानसिकता हमारे विकास में बाधक है विषय पर, और आपका मनोरंजन कराएंगे कुछ खूबसूरत गीतों के साथ। दोस्तों, हम चर्चा कर रहे हैं विश्व रक्तदाता दिवस पर। साथियों, विश्व रक्तदाता दिवस प्रत्येक वर्ष 14 जून को मनाया जाता है। इस दिन का उद्देश्य लोगों को स्वैच्छिक रक्तदान के प्रति जागरूक करना तथा रक्तदाताओं के अमूल्य योगदान का सम्मान करना है। रक्त मानव जीवन का आधार है और इसका कोई कृत्रिम विकल्प उपलब्ध नहीं है, इसलिए रक्तदान को महादान कहा जाता है। दोस्तों, विश्व रक्तदाता दिवस मनाने की शुरुआत वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन द्वारा की गई थी। यह दिन महान वैज्ञानिक कार्ल लैंडस्टीनर की जयंती के अवसर में मनाया जाता है। उन्होंने रक्त समूहों की खोज की थी, जिसके लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार भी मिला। दोस्तों, इस दिवस को मनाने का मुख्य उद्देश्य सुरक्षित रक्त की उपलब्धता सुनिश्चित करना तथा अधिक से अधिक लोगों को नियमित रूप से रक्तदान करने के लिए प्रेरित करना है। दोस्तों, रक्तदान एक ऐसा कार्य है जिससे किसी व्यक्ति का जीवन बचाया जा सकता है। अस्पतालों में प्रतिदिन हजारों यूनिट रक्त की आवश्यकता होती है। कई बार रक्त की कमी के कारण मरीजों की स्थिति गंभीर हो जाती है। यदि समाज में अधिक लोग स्वेच्छा से रक्तदान करें तो इस समस्या को काफी हद तक दूर किया जा सकता है। दोस्तों, एक स्वस्थ व्यक्ति सामान्यतः कुछ महीने के अंतराल पर रक्तदान कर सकता है। रक्तदान से शरीर पर कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ता, बल्कि शरीर नया रक्त बनाने की प्रक्रिया को सक्रिय करता है। इससे रक्तदाताओं के स्वास्थ्य की नियमित जाँच भी हो पाती है। साथियों, समाज में रक्तदान को लेकर अनेक भ्रांतियां फैली हुई हैं। कुछ लोग सोचते हैं कि रक्तदान करने से कमजोरी आ जाती है या फिर स्वास्थ्य खराब हो जाता है। वास्तव में चिकित्सकीय मानकों के अनुसार किया गया रक्तदान पूरी तरह सुरक्षित होता है। डॉक्टरों की देखरेख में रक्तदान करने से किसी प्रकार का खतरा नहीं होता, इसलिए लोगों को इन भ्रांतियों से बाहर निकलकर रक्तदान के लिए आगे आना चाहिए। साथियों, विश्व रक्तदाता दिवस के अवसर पर विभिन्न स्थानों पर रक्तदान शिविर, रैलियां, संगोष्ठियां और जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। विद्यालय, महाविद्यालयों और सामाजिक संस्थानों के द्वारा भी लोगों को रक्तदान के महत्व के बारे में जानकारी दी जाती है।

जाती है। युवाओं की भागीदारी इस अभियान को और अधिक सफल बना सकती है। दोस्तों, विश्व रक्तदाता दिवस मानवता, सेवा और परोपकार की भावना को बढ़ावा देने वाला महत्वपूर्ण दिवस है। रक्तदान एक ऐसा पुण्य कार्य है जो किसी व्यक्ति को नया जीवन दे सकता है। हमें इस दिवस के महत्व को समझते हुए स्वयं रक्तदान करना चाहिए तथा दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित करना चाहिए। सच ही कहा गया है कि रक्तदान महादान है। यह न केवल किसी जरूरतमंद की सहायता करता है बल्कि समाज में सहयोग और मानवता की भावना को भी मजबूत बनाता है। इसलिए दोस्तों, प्रत्येक स्वस्थ नागरिक को नियमित रूप से रक्तदान कर मानव जीवन की रक्षा में अपना अहम योगदान देना चाहिए। आइए साथियों, अब चलते हैं फिल्म संगीत की दुनिया में और सुनते हैं प्यारा सा ये गीत।

दोस्तों अभी सुन रहे थे आप ये गीत। अब समय हुआ है क्रम आज की बात में हमारे अगले विषय जल को व्यर्थ न बहाएं करें संरक्षित पर चर्चा करने का। दोस्तों जल प्रकृति का अमूल्य उपहार है। पृथ्वी पर जीवन का अस्तित्व जल के बिना संभव नहीं है। मनुष्य पशु पक्षी पेड़ पौधे तथा जीवित प्राणी जल पर निर्भर हैं। इसलिए जल को जीवन का आधार कहा जाता है। साथियों आज बढ़ती जनसंख्या औद्योगिकीकरण और जल के अत्यधिक दुरुपयोग के कारण जल संकट एक गंभीर समस्या बनता जा रहा है। ऐसे में जल को व्यर्थ बहाने की बजाय

0: उसका संरक्षण करना आज के समय की सबसे बड़ी मांग है। साथियों, जल हमारे दैनिक जीवन की मूलभूत आवश्यकता है। इसका उपयोग पीने, भोजन बनाने, स्नान करने, खेती करने तथा विभिन्न उद्योगों में होता है। कृषि उत्पादन पूरी तरह जल पर निर्भर करता है। यदि जल की उपलब्धता कम हो तो खाद्यान्न उत्पादन भी प्रभावित होगा। इसके अलावा स्वच्छ जल अच्छे स्वास्थ्य के लिए भी आवश्यक है। इसलिए जल का महत्व किसी भी अन्य प्राकृतिक संसाधन से कम नहीं है। साथियों, वर्तमान समय में विश्व के अनेक देश जल संकट का सामना कर रहे हैं। भूजल स्तर लगातार नीचे जा रहा है। नदियां, तालाब, झीलें सूखती जा रही हैं। ऐसे में आवश्यकता है कि हम सभी जल के महत्व को समझें और उसे संरक्षित करें। दोस्तों, जल संरक्षण के लिए हमें कई महत्वपूर्ण कदम उठाने चाहिए। सबसे पहले हमें पानी का उपयोग आवश्यकता के अनुसार ही करना चाहिए। नल को खुला न छोड़ें और रिसाव वाले नलों को तुरंत उनकी मरम्मत करवाएं। दोस्तों, वर्षा जल संचयन को हमें बढ़ावा देना चाहिए ताकि वर्षा का पानी भविष्य के लिए सुरक्षित रखा जा सके। कृषि क्षेत्र में टपक सिंचाई, स्प्रिंकल जैसी आधुनिक तकनीकों का उपयोग करना चाहिए जिससे पानी की बचत हो सके। उद्योगों में जल पुनर्चक्रण की व्यवस्था अपनानी चाहिए। साथ ही नदियों, तालाबों और अन्य जल स्रोतों को स्वच्छ रखने के लिए सामूहिक प्रयास आवश्यक है। साथियों, जल संरक्षण केवल सरकार की जिम्मेदारी नहीं है बल्कि प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य भी है। विद्यालयों, महाविद्यालयों और सामाजिक संस्थानों के माध्यम से लोगों को जल संरक्षण के प्रति जागरूक किया जाना चाहिए। बच्चों को बचपन से ही पानी बचाने की आदत सिखानी चाहिए। जब समाज का प्रत्येक व्यक्ति इस दिशा में अपना योगदान देगा तभी जल संरक्षण का लक्ष्य सफल हो सकेगा। साथियों, जल प्रकृति की अनमोल धरोहर है। इसके बिना जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती। इसलिए हमें जल को व्यर्थ नहीं बहाना चाहिए, उसके संरक्षण के लिए हर संभव प्रयास करना चाहिए। आज की छोटी छोटी बचत भविष्य की बड़ी आवश्यकताओं को पूरा कर सकती है। यदि हम अभी से जल संरक्षण के प्रति सजग हो जाएं, तो आने वाली पीढ़ियों के लिए पर्याप्त जल उपलब्ध कराया जा सकता है। दोस्तों, हमें संकल्प लेना चाहिए कि जल है तो कल है और जल की प्रत्येक बूंद का सम्मान करते हुए उसका संरक्षण हम करेंगे। साथियों, अब समय हुआ है क्रम वार्ता में आपको विषय आधुनिक परिवेश में योग का महत्व पर वार्ता सुनवाने का। वार्ताकार है कनक श्रीवास्तव।
1: दोस्तों, आइए हम आधुनिक परिवेश में योग का महत्व इस विषय पर चर्चा करें। इससे पहले हम योग क्या है इसको समझ लेते हैं। योग का सामान्य अर्थ होता है जोड़, अर्थात जुड़ना। व्यक्तिगत चेतना को सार्वभौमिक चेतना से जोड़ता है योग। योग ऐसा ज्ञान है जो मन और शरीर के बीच सामंजस्य स्थापित करता है। प्राचीन काल में योग को अपनाने वालों को योगी कहा जाता था। जो योग मार्ग पर चलते हुए पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त कर मुक्त अवस्था को प्राप्त करते थे, इसी अवस्था को मुक्ति या मोक्ष कहा जाता है। योग विद्या अति प्राचीन है। भगवान शिव को योग विद्या का आदि गुरु माना जाता है। सप्तऋषि के द्वारा योग को आगे बढ़ाया गया। कालांतर में महर्षि पतंजलि ने योग सूत्रों की रचना की। योग दर्शन के प्रवर्तक महर्षि पतंजलि हैं। उन्होंने योग के 8 अंग बताए, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान एवं समाधि। योग कई प्रकार का है, जैसे कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, क्रिया योग आदि। मित्रों, अलग अलग संप्रदायों, परंपराओं, दर्शनों, धर्मों एवं गुरु शिष्य परंपराओं के चलते योग का मार्ग प्रशस्त हुआ। इनमें ध्यान योग, मंत्र योग, लय योग, राजयोग, जैन योग, बौद्ध योग, कुंडलिनी योग, हठ योग, पतंजल योग आदि सम्मिलित हैं। मित्रों, आधुनिक समय में योग को मुख्य रूप से स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए, बीमारियों का इलाज करने के लिए अपनाया जा रहा है। इस दिशा में अनेक अनेक व्यक्ति, संस्थाएं प्रयासरत हैं। उन्होंने उल्लेखनीय कार्य किए हैं और लगातार कर रहे हैं। बीमारियों से बचाव के लिए एवं उपचार के लिए लगातार अनुसंधान किए जा रहे हैं। योग का प्रचार प्रसार दिनों दिन बढ़ता ही जा रहा है। लोगों में जागरूकता आ रही है क्योंकि वर्तमान समय में योग एक अनिवार्य आवश्यकता समझ में आ रही है। उसका कारण है कि आज व्यक्तियों को स्वस्थ रहना एक चुनौती लग रहा है। लगभग 80% लोग किसी बीमारी की चपेट में हैं। कोई ना कोई दवा ले रहा है क्योंकि जीवन शैली

आज स्वास्थ्य के अनुकूलन नहीं है, खान पान जहरीला हो गया है, अनाज सब्जी फल सभी में कीटनाशक का जहर मिला हुआ है, यहाँ तक कि हवा और पानी जैसे प्रमुख चीजें भी शुद्ध नहीं रह गई हैं। इसी प्रकार कई प्रदूषण के चलते हवा दूषित हो गई है और जल प्रदूषित हो गया है, अतः स्वस्थ रहना बड़ा ही चुनौतीपूर्ण हो गया है। ऐसे में अब लग रहा है कि रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाना अनिवार्य हो गया है और इसके लिए सर्वोत्तम साधन है योग। योग का नियमित अभ्यास करने से, योग को अपनी दिनचर्या में शामिल करने से हम अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ा सकते हैं और स्वस्थ रह सकते हैं। आज आवश्यकता है कि जगह जगह स्कूलों में, पार्कों में, मैदानों में, संस्थानों में योग शिविर लगाए जाएँ और लोगों को प्रोत्साहित एवं लाभान्वित किया जाए। इस दिशा में सरकार तो प्रयास कर ही रही है, परंतु ये जागरूकता प्रत्येक नागरिक में होनी चाहिए। समाज, संस्थाएं सभी एकजुट होकर योग का प्रचार प्रसार करें और अपना योगदान दें, तभी हम निरोग रह सकते हैं और आने वाली पीढ़ी को विरासत में उत्तम स्वास्थ्य प्रदान करने की विद्या एवं योग विद्या हम उन्हें दे सकते हैं। हमारी सरकार ने, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने योग को बढ़ावा देने के लिए उल्लेखनीय कार्य किए हैं। 27 सितंबर 2014 को संयुक्त राष्ट्र महासभा UNGA के 69वें सत्र के दौरान माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने उद्बोधन में कहा, योग प्राचीन भारतीय परंपरा एवं संस्कृति की अमूल्य देन है। योग अभ्यास शरीर एवं मन, विचार एवं कर्म, आत्मसंयम एवं पूर्णता की एक आत्मकता तथा मानव एवं प्रकृति के बीच सामंजस्य स्थापित करता है तथा ये स्वास्थ्य एवं कल्याण का पूर्णतावाही दृष्टिकोण है। योग केवल व्यायाम नहीं बल्कि स्वयं के साथ, विश्व और प्रकृति के साथ एक तत्व खोजने का भाव है। योग हमारी जीवन शैली में परिवर्तन लाकर हमारे अंदर जागरूकता उत्पन्न करता है तथा प्राकृतिक परिवर्तनों से शरीर में होने वाले बदलावों को सहन करने में सहायक हो सकता है। उद्बोधन देकर माननीय प्रधानमंत्री जी ने विश्व समुदाय से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा, आइए हम सब मिलकर योग को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में स्वीकार करने की दिशा में कार्य करें। परिणाम स्वरूप 11 दिसंबर 2014 को संयुक्त राष्ट्र महासभा के 193 सदस्यों ने अपने सह समर्थक देशों के साथ 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने का संकल्प सर्वसम्मति से अनुमोदित किया और तभी से पूरे विश्व में 21 जून को योग दिवस मनाया जाने लगा। मित्रों, योग का अभ्यास सही विधि से और नियमित रूप से करना चाहिए। अभ्यास करने से पूर्व कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि आसपास का वातावरण साफ रखें, शरीर और मन को शुद्ध रखें। योग अभ्यास शांत वातावरण में आराम के साथ शरीर एवं मन को शिथिल करके करना चाहिए। योग अभ्यास खाली पेट अथवा अल्प आहार लेकर ही करना चाहिए। योग अभ्यास मल मूत्र विसर्जन के पश्चात ही करें। अभ्यास करने के लिए चटाई, दरी या कंबल अथवा योग मैट का उपयोग करना चाहिए। आरामदायक वस्त्र पहनकर योग अभ्यास करें ताकि शरीर की गतिविधि आसानी से हो सके। थकावट, बीमारी, जल्दबाजी या तनाव की स्थिति में योग ना करें। यदि कोई पुराना रोग है, BP या हार्ट समस्या है, तो चिकित्सक या योग विशेषज्ञ से परामर्श लें। गर्भावस्था एवं मासिक धर्म के समय योग विशेषज्ञ से सलाह के बाद ही योग अभ्यास करें। अभ्यास के समय कुछ और बातों का भी ध्यान रखना चाहिए। योग अभ्यास आरामदायक स्थिति में श्वास प्रश्वास की सजगता के साथ धीरे धीरे प्रारंभ करना चाहिए। योग अभ्यास के दौरान श्वास को रोकना नहीं चाहिए जब तक कि ऐसा करने को कहा नहीं जाए। श्वास प्रश्वास हमेशा नासिका से ही लें जब तक कि विशेष रूप से कहा ना जाए। शरीर में किसी प्रकार का झटका प्रदान ना करें। अपनी शक्ति सामर्थ्य के अनुसार ही योग करना चाहिए। किसी भी प्रकार की जोर जबरदस्ती ना करें। अच्छे परिणाम आने के लिए कुछ समय लगता ही है, इसलिए लगातार नियमित अभ्यास करते रहें। हर आसन को सीमाएं एवं निर्देश अनुसार ही करें। योग सत्र का प्रारंभ प्रार्थना से करें और समापन शांति पाठ से करें। इससे मस्तिष्क एवं मन को शांति का वातावरण मिलता है। अभ्यास के बाद 20 मिनट के बाद ही स्नान करें और 20 मिनट के बाद ही आहार लें। तुरंत
ना लें, शाकाहारी भोजन ही श्रेयस्कर है। अब हम ये देखते हैं कि योग किस प्रकार सहायता कर सकता है। मित्रों, योग सभी

0: प्रकार के बंधनों से मुक्ति प्रदान करने का साधन है। वर्तमान समय में हुए चिकित्सा शोधों ने योग से होने वाले कई शारीरिक और मानसिक लाभों के रहस्य प्रकट किए हैं। यही नहीं, लाखों लोग अभ्यासियों के अनुभवों को आधार पर इस बात की पुष्टि की जा सकती है कि योग कई प्रकार से हमें लाभान्वित करता है। योग में शारीरिक स्वास्थ्य, स्नायु तंत्र, कंकाल तंत्र को सुचारू रूप से कार्य करने और हृदय तथा नाड़ियों के स्वास्थ्य के लिए हितकार अभ्यास है। मधुमेह, श्वसन संबंधी विकार, उच्च रक्तचाप, निम्न रक्तचाप और जीवन शैली संबंधी कई प्रकार की समस्याओं से बचाव होता है। योग अवसाद, थकान, चिंता संबंधी विकारों और तनावों को दूर करने में सहायक है। योग अभ्यास से एकाग्रता बढ़ती है, विचारों की स्पष्टता और मनोबल बढ़ता है, स्मृति बढ़ती है, पूरे शरीर और मस्तिष्क को पर्याप्त आराम देते हुए तरोताजा करता है। ध्यान से हम आत्म अनुभूति करते हैं। संक्षेप में हम कह सकते हैं कि योग शरीर एवं मन के निर्माण की एक ऐसी प्रक्रिया है जो समृद्ध और परिपूर्ण जीवन की उन्नति का मार्ग है।
1: दोस्तों, अभी सुन रहे थे आप वार्ता विषय आधुनिक परिवेश में योग का महत्व पर। वार्ताकार थी कनक श्रीवास्तव। साथियों, अब समय हुआ है फिल्म संगीत की दुनिया में जाने का। आइए सुनते हैं एक और प्यारा सा गीत।

दोस्तों अभी सुन रहे थे आप ये गीत। अब समय हुआ है क्रम जीवनालोक में हमारे आज के विषय संकीर्ण मानसिकता हमारे विकास में बाधक है पर चर्चा करने का। दोस्तों मनुष्य का विकास उसके विचारों पर निर्भर करता है। जिस व्यक्ति की सोच व्यापक सकारात्मक और प्रगतिशील होती है वह जीवन में निरंतर आगे बढ़ता है। इसके विपरीत संकीर्ण मानसिकता वाले व्यक्ति के विकास में बाधा आती है। संकीर्ण मानसिकता का अर्थ है सीमित दृष्टिकोण रखना, दूसरों के विचारों का सम्मान न करना तथा जाति धर्म भाषा क्षेत्र या व्यक्तिगत स्वार्थ के आधार पर भेदभाव करना। ऐसी सोच न केवल व्यक्ति के विकास में बाधक बनती है बल्कि समाज और राष्ट्र की प्रगति को भी प्रभावित करती है। दोस्तों संकीर्ण मानसिकता वह स्थिति है जिसमें व्यक्ति केवल अपने हितों और विचारों को ही महत्व देता है। वह नए विचारों को स्वीकार करने से बचता है तथा दूसरों की भावनाओं और दृष्टिकोण को समझने का प्रयास नहीं करता। ऐसे लोग परिवर्तन का विरोध करते हैं और अपने पूर्वाग्रहों में बंधे रहते हैं। परिणाम के स्वरूप उनका व्यक्तित्व पूर्ण रूप से विकसित नहीं हो पाता। दोस्तों संकीर्ण सोच व्यक्ति की सीखने और आगे बढ़ने की क्षमता को कम कर देती है। जो व्यक्ति केवल अपनी ही बात को सही मानता है वह नए अनुभवों और ज्ञान से वंचित रह जाता है। सफलता प्राप्त करने के लिए खुली सोच सहनशीलता और नई परिस्थितियों के अनुसार स्वयं को ढालने की क्षमता आवश्यक होती है। संकीर्ण मानसिकता इन गुणों के विकास में बाधा उत्पन्न करती है। इससे व्यक्ति आत्मविश्वास और रचनात्मकता को भी खो सकता है। दोस्तों संकीर्ण मानसिकता समाज में भेदभाव असहिष्णुता और संघर्ष को जन्म देती है। समाज का विकास तभी संभव है जब लोग मिलजुल कर कार्य करें तथा एक दूसरे का सम्मान करें। संकीर्ण सोच सद्भाव को नष्ट करती है और प्रगति के मार्ग में रुकावट बनती है। ऐसे में आवश्यक है कि संकीर्ण सोच को न रखा जाए। किसी भी राष्ट्र की उन्नति उनके नागरिकों की सोच पर निर्भर करती है। इसलिए राष्ट्र के निर्माण में संकीर्ण मानसिकता का त्याग आवश्यक है। साथियों संकीर्ण मानसिकता से दूर रहने के लिए सबसे प्रभावी माध्यम है शिक्षा। शिक्षा व्यक्ति को सही और गलत में अंतर समझने की क्षमता प्रदान करती है तथा उसके विचारों को व्यापक बनाती है। इसके अलावा हमें विभिन्न संस्कृतियों परंपराओं और विचारों का सम्मान करना चाहिए। परिवार और विद्यालय बच्चों में मानवता समानता और भाईचारे के संस्कार विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। दोस्तों संकीर्ण मानसिकता व्यक्ति समाज और राष्ट्र तीनों के विकास में एक बड़ी बाधा बन जाती है। यह हमारी सोच को सीमित कर देती है और प्रगति के अवसरों को कम कर देती है। आज के आधुनिक और वैश्विक युग में सफलता के लिए व्यापक दृष्टिकोण सहनशीलता और सकारात्मक सोच आवश्यक है। इसलिए हमें संकीर्ण विचारों का त्याग कर उदार प्रगतिशील मानसिकता अपनानी चाहिए। दोस्तों अब समय हुआ है आप विदा लेने का। दीजिए आपकी दोस्त शिवानी राठौर को अनुमति। नमस्कार।

0: अभी युववाणी कार्यक्रम प्रसारित किया गया, योगदान हमारे शिवपुरी केंद्र का था। हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं, समय है अंतराल का।
1: पापा, कॉलेज की फीस ज्यादा है।
2: बेटा,
3: याद है बोनस के कुछ पैसे हमने दूसरे खाते में रखे थे?
2: 2 साल से खाते में कोई लेन देन नहीं हुआ है, शायद इनऑपरेटिव हो गया होगा।
4: तो अब बैंक जाके या वीडियो केवाईसी से केवाईसी अपडेट कराओ, खाता होगा एक्टिव, एकदम फ्री।
2: चलो,
1: कहाँ
2: एडमिशन कराने?
4: खाता हुआ एक्टिव,
5: RBI कहता है।
6: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
7: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया

0: कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: हेलो
3: राजेश जी, मैं पुलिस थाने से बोल रहा हूँ।
2: फिर से
4: आप डिजिटल अरेस्ट में हो, दूसरे कमरे में जाइए अकेले। आपके पार्सल में ड्रग्स मिले हैं, लंबे जाएंगे।
5: 10 लाख दीजिए, बच जाएंगे।
2: सर इतने कहाँ से?
5: एक लिंक भेजा है, अभी प्रोसेसिंग के लिए 2 लाख भेजिए, बाकी बाद में।
2: 2 लाख
6: क्या हुआ पापा?
2: बेटा ये कह रहे हैं कि मेरे पार्सल में से ड्रग्स मिले हैं।
4: अरे
2: काट दिया।
6: पैनिक मत कीजिए पापा, डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता है, ये सब फ्रॉड है।
2: फ्रॉड?
6: पुलिस, बैंक, RBI इत्यादि के नाम से आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें, उन्हें कोई पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें। अगर समझदारी नहीं दिखाओगे
2: तो पैसे गवाओगे।
7: RBI कहता है,
8: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
9: आकाशवाणी का साकार हुआ सपना, जन जन सब गाएं मिल मधुर गा।

अंतराल के बाद आपका पुनः स्वागत है। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश। लीजिए सुनिए फिल्म संगीत। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं मोहम्मद रफ़ी के गाए गीत से। कालीघटा फिल्म के लिए इस गीत को लिखा आनंद बख्शी ने और संगीतकार हैं लक्ष्मीकांत प्यारेलाल।

तुमको मेरी कसम, इस फिल्म का गीत अब हम आपको सुनवाने जा रहे हैं। नीति मोहन और अब्दुल शेख की आवाज़ें, श्वेता बोथरा की शब्द रचना और प्रतीक वालिया का संगीत।

अगला गीत कुणाल गांजावाला की आवाज़ में है। प्रवीण भारद्वाज ने गीत लिखा है और रैन फिल्म के लिए इसे संगीत दिया है सतीश अजय ने।

कार्यक्रम का आखिरी गीत घातक फिल्म से अलका याग्निक, शंकर महादेवन और अनु मलिक की आवाज़ें, राहत इंदौरी की शब्द रचना है और संगीतकार हैं अनु मलिक।

0: फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अब समाप्त हुआ। हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं, समय है अंतराल का।
1: मैं विनय उपाध्याय। आकाशवाणी की यात्रा के 9 दशक पूरे हो रहे हैं। ये सूचना निश्चित रूप से हम जैसे लोगों के लिए बहुत ही खुशी की सूचना है। हम भी आकाशवाणी की इस यात्रा में एक आवाज के रूप में हम सफर रहे हैं। कहते हैं कि नदियों का गोमुख बहुत छोटा होता है। एक छोटी सी झील के रूप में कोई नदी निकलती है अपने अमृत कुंड से और अपनी यात्रा में अनेक कूल किनारों को तय करते हुए एक समंदर में जाकर मिल जाती है। आकाशवाणी के साथ भी ऐसा ही है। दरअसल आवाजों का एक भरा पूरा घर ही आकाशवाणी है। और कितनी सारी आवाजें, वो आवाजें जो भरोसा बनकर आकाशवाणी के स्टूडियो से श्रोताओं तक पहुंचती रही है। श्रोता और आकाशवाणी के बीच में दरअसल एक विश्वास तैर कर इन 90 वर्षों में जाता रहा है। आकाशवाणी के इस अवधि को पूरा करने के अवसर पर मैं अपनी आंतरिक शुभकामनाएं व्यक्त करता हूं और उम्मीद करता हूं कि जिस निहित उद्देश्य को लेकर सूचना, शिक्षा और मनोरंजन, इन तीन पदों को साथ में लेकर आकाशवाणी ने जो अपनी यात्रा शुरू की थी वो नए उत्कर्ष पर पहुंचे। सभी आकाशवाणी से जुड़े साथियों और श्रोताओं को एक बार फिर हार्दिक बधाई।

0: हार्दिक शुभकामनाएं।
1: आकाशवाणी का साकार हुआ सपना, जन जन सब गाएं मिल मधुर गान।

0: पहुंचाएं हम जन जन तक, सपनों को दें हम आकार।
1: नमस्कार, मैं राजीव वर्मा स्वच्छता ही सेवा अभियान से जुड़ा हुआ हूं और आप सभी से गुजारिश करता हूं, प्रार्थना करता हूं कि आप भी इससे जुड़ें और अपने कार्यालय, घर, कॉलोनी, मोहल्लों को स्वच्छ रखें। धन्यवाद। जय हिंद।
2: सुनिए NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे आकाशवाणी भोपाल पर।
3: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन, कहानी नहीं बदली स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते
4: आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, सुनते हैं इस घंटे की खास खबरें।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने आज नीस में भारत इनोवेट्स कार्यक्रम का संयुक्त रूप से उद्घाटन किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने भारत और फ्रांस के मजबूत संबंधों का उल्लेख भारत फ्रांस साझेदारी को ऐसा स्थायी संबंध बताया जो आपसी विश्वास, साझा मूल्यों और भविष्य के लिए एक समान दृष्टिकोण पर आधारित है। वहीं फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने कहा कि दुनिया भारत को न केवल अपार प्रतिभाओं से संपन्न देश के रूप में देख रही है बल्कि नवाचार के देश और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में एक क्रांतिकारी शक्ति के रूप में भी देख रही है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज सागर जिले में आयोजित समारोह में लाडली बहना योजना की 37वीं किस्त जारी की। राज्य भर की 125 करोड़ से अधिक महिला लाभार्थियों के खातों में 1,835 करोड़ रुपये से अधिक की राशि अंतरित की गई। आयुष मंत्रालय ने आज YouTube पर आयोजित एक लाइव योग सत्र के जरिए नया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। इस ऑनलाइन योग कार्यक्रम में 4,35,000 से अधिक लोगों ने भाग लिया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का मुख्य कार्यक्रम 21 जून को कोलकाता में आयोजित किया जाएगा। प्रदेश में सक्रिय टर्फ लाइन और अन्य मौसमी सिस्टम के प्रभाव से अगले 4 दिनों तक आंधी, बारिश और गरज चमक का दौर बना रहने की संभावना है। मौसम विभाग ने खुले स्थानों, पेड़ों और बिजली के खंभों से दूर रहने की सलाह दी है। और ICC महिला T20 विश्व कप में आज भारतीय टीम अपने अभियान के पहले मुकाबले में पाकिस्तान से भिड़ेगी। यह मैच बर्मिंघम में शाम 7 बजे से खेला जाएगा। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
1: यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। सुनते हैं फिल्म संगीत। कार्यक्रम की शुरुआत में सुनिए स्लमडॉग मिलेनियर फिल्म का गीत। आवाजें हैं सुखविंदर सिंह, तन्वी शाह, महालक्ष्मी अय्यर और विजय प्रकाश की। शब्द रचना गुलजार की है, संगीतकार AR रहमान।

अगला गीत महालक्ष्मी अय्यर की आवाज़ में है। निदा फाजली ने गीत लिखा है और सुर फिल्म के लिए इसे संगीत दिया है MM करीम ने।

हेलो ब्रदर। इस फिल्म का गीत सोनू निगम, कमाल खान और जसविंदर नरूला की आवाज़ में अब हम आपको सुनवा रहे हैं। फैज़ अनबर के लिखे गीत को संगीत दिया है साजिद वाजिद ने।

कार्यक्रम के आखिर में सुनते हैं ब्रदर्स फिल्म का गीत, विशाल ददलानी की आवाज़ में। अमिताभ भट्टाचार्य की शब्द रचना है और संगीतकार हैं अजय अतुल।

0: इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अब समाप्त हुआ। यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे आईसीसी महिला T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2026 के अंतर्गत भारत और पाकिस्तान के बीच बर्मिंघम में खेले जाने वाले महिला T20 क्रिकेट मैच का आंखों देखा हाल, जो दिल्ली से रिले किया जाएगा।
1: रेखा झरोखा के अंतर्गत अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे हमारा अगला कार्यक्रम संध्या रंजन। 6:45 पर सुनिए संगीत सरिता श्रृंखला गजतत वाद्य। कलाकार हैं डॉक्टर प्रकाश महाडिक, भाग 3, प्रस्तुति चारूबाला खरे। विशेष जयमाला में आज सैनिकों की शौर्य गाथा आप सुनेंगे 7:00। आज आप सुनेंगे महावीर चक्र दीवान रंजीत राय लेफ्टिनेंट कर्नल की शौर्य गाथा, प्रस्तुति है तेजश्री कामले। 7:45 पर इंद्रधनुष में सुनिए साज और आवाज। रात्रि 8:00 हवा महल में सुनिए नाटिका कागज के जेवर। लेखक हैं अभिलाष, निर्देशन पुरुषोत्तम थारवेकर। चित्रलोक का समय रहेगा रात्रि 8:15 पर। रात्रि 9:00 सुनिए आपके लिए। आज के फनकार आप सुनेंगे रात्रि 9:30 पर। कार्यक्रम केंद्रित है अभिनेता भारत भूषण पर, प्रस्तुतकर्ता रमेश गोखले। रात्रि 10:00 सुनिए छाया गीत, आलेख और स्वर यूनुस खान का, प्रस्तुतकर्ता राघवेन नेगी। और रात्रि 10:30 पर ढलती जाए रात। ये थे आज प्रसारित होने

वाले कार्यक्रम। आइए अब आपको बता दें कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा। कल सुबह 6:05 पर सुनिए वंदनवार, सुबह 6:30 और शाम 6:30 पर सुनिए कार्यक्रम विवरण झरोखा में। रामचरित मानस आप सुनेंगे 6:35 पर। कल प्रसारित होगा भाग 220। सुबह 6:45 पर सुनिए संगीत सरिता श्रृंखला गजतत वाद्य। कलाकार हैं डॉक्टर प्रकाश महाडिक, भाग 4, प्रस्तुति चारूबाला खरे। इस कार्यक्रम को आप फिर से सुन सकेंगे शाम 6:45 पर। भूले बिसरे गीत आप सुनेंगे सुबह 7:00। 7:30 पर सुनिए हम है राही प्यार के। सुबह 8:15 और दोपहर 2:00 सुनिए त्रिवेणी, लेखक जयंत पात्रीकर, प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। सुबह 8:30 पर चित्रलोक सुनवाएंगे। आज के फनकार आप सुनेंगे 9:30 पर। कार्यक्रम केंद्रित है अभिनेत्री गायिका सुरैया पर, प्रस्तुतकर्ता शकील बख्शी। सुबह 10:00 पिटारा में सुनिए उजाले उनकी यादों के। इसमें सुनिए कवि प्रदीप की सुपुत्री एवं चित्रकार बितुल प्रदीप से मंदाकिनी जोशी की बातचीत का तीसरा भाग, प्रस्तुति अनुश्री पाठक। रंग तरंग आप सुनेंगे सुबह 11:00 और रात्रि 11:00। यादों की महफिल सजेगी दोपहर 12:05 पर। दोपहर 1:00 होगा कार्यक्रम सुरीला सफर। सदाबहार नगमे आप सुनेंगे दोपहर 2:30 पर। दोपहर 3:00 कार्यक्रम होगा सखी सहेली। कल के आकर्षण है विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस। कथा सुधा में सुनिए आभूषण भाग 3, सोशल मीडिया के वाद विवाद समय की बर्बादी, प्रादेशिक व्यंजन उत्तर प्रदेश का मक्खन मलइयो बेडमी पूड़ी। प्रस्तुत करता है अनुश्री पाठक। दोपहर 4:00 सेहतनामा में सुनिए जीवन शैली और योग, योग शिक्षक शारदा अग्रवाल से राजेंद्र त्रिपाठी की बातचीत, प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान। छह गीत का समय रहेगा शाम 5:00। 5:30 पर आप सुनेंगे तराने नए पुराने। शाम 6:35 पर कार्यक्रम होगा संध्या रंजन। शाम 7:00 जयमाला का प्रसारण होगा। 7:45 पर सुनिए इंद्रधनुष के अंतर्गत एक ही फिल्म से। कल की फिल्म है तेरे घर के सामने। हवा महल का समय रहेगा रात्रि 8:00। कल हवा महल में सुनिए झलकी नीम हकीम, लेखक राजकुमार वाल्टर, निर्देशन गोपाल सक्सेना। चित्रलोक आप सुनेंगे रात्रि 8:15 पर। रात्रि 9:00 सुनिए आपके लिए। रात्रि 9:30 पर सुनिए आज के फनकार। कार्यक्रम केंद्रित है अभिनेत्री गायिका सुरैया पर। छह गीत का समय रहेगा रात्रि 10:00 आलेख कौशल जयंत पात्रीकर का, प्रस्तुतकर्ता राघवेन नेगी। और रात्रि 10:30 पर सुनिए ढलती जाए रात। ये थी रूपरेखा आज के शेष और कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की झरोखा के अंतर्गत।

अभी आपने बाहुबली द कंक्लूजन फिल्म में मधुश्री की आवाज़ को सुना। गीत मनोज मुंतशिर का था, संगीत एमएम करीम का। आइए अब सुनते हैं अमित त्रिवेदी की आवाज़ में केदारनाथ फिल्म का गाना। गीत अमिताभ भट्टाचार्य का है, संगीत अमित त्रिवेदी का।

0: गज तत्व वाद्य प्रस्तुत है गज वाद्यों पर आधारित इस श्रृंखला की अगली कड़ी। कलाकार हैं डॉक्टर प्रकाश महाडिक।
1: सारंगी सुमधुर और समृद्ध साज है। यह एक ऐसा वाद्य है जो लोक संगीत और शास्त्रीय संगीत दोनों में ही प्रचलित है। पहले हम लोक संगीत में प्रचलित सारंगियों पर विचार करेंगे। भारत के लोक वाद्यों में सारंगी परिवार के वाद्य हैं सारंग, राजस्थान का सारिंदा, कमायचा, मध्य प्रदेश का चिकारा, बिहार का बनाम आदि विशेष गज वाद्य हैं। भारतीय लोक संगीत में गज से बजाई जाने वाली सिंधी सारंगी, जोगिया सारंगी, धानी सारंगी, गुजराथन सारंगी और अलाबू सारंगी प्रचलित होने की जानकारी मिलती है। सिंधी सारंगी सिंध प्रदेश में प्रचलित रही। वैसे लंगा जाति के लोग इसका वादन करते हैं। नाम से गुजरातन सारंगी भले ही गुजरात का लोकवाद्य प्रतीत होता हो, किंतु इसे राजस्थान के लंगा जाति के गायक अपने साथ संगत हेतु अधिक उपयोग में लाते हैं। जोगिया सारंगी संज्ञा इसलिए दी कि जोगियों द्वारा इसका प्रयोग किया जाता रहा। अलाबू सारंगी का प्रयोग विशेषकर जैसलमेर

क्षेत्र में अधिक होता है। मंजनिया जाति के लोग अलाबू सारंगी बजाते हैं। इन सभी सारंगियों में सामान्यतः मुख्य दो लोहे के तार, दो तांत के तार और 9, 11 अथवा 17 तरबे लगाई जाती है। भारत की लोक परंपराओं में प्रचलित सिंधी, जोगिया, अलाबू, धानी और गुजरातन सारंगी के आकार, प्रकार, बनावट और तारों की संख्या में और इन्हें मिलाने की पद्धति में बहुत कुछ समानता दिखाई देती है। ये सभी सारंगियाँ गज से बजाई जाती है। विशेष अंचल में तथा विशेष जाति के लोगों द्वारा इसे प्रयुक्त किए जाने के कारण सारंगी के साथ इसका नाम जुड़ गया। सारंगी विशेषकर उत्तर भारत के राजस्थान, गुजरात, कश्मीर आदि भागों में प्रचलित है। सामान्यतः ये लोकगीतों के साथ संगत हेतु उपयोग में लाई जाती है। इसे खड़े रहकर और बैठकर दोनों ही प्रकार से बजाया जाता है। कुछ लोग इसे विदेशी वाद्य बताते हैं, किंतु विभिन्न सारंगियों के वर्णन से यह स्पष्ट है कि सारंगी यह पूर्णतया भारतीय वाद्य है और न केवल शास्त्रीय संगीत में बल्कि लोक संगीत में भी इसकी जड़ें गहरी जमी हुई हैं। शास्त्रीय संगीत के पुरातन पद्धति के एक कलाकार हुए उस्ताद बुंदू खां। तो आइए हम इन्हीं का रिकॉर्ड किया हुआ राग भैरवी सुनते हैं। यह रिकॉर्ड सन 1948 में किया गया था।

समय के अनुसार सारंगी के टोन में भी परिवर्तन होते रहा है। अभी हमने उस्ताद बुंदू खां का सारंगी वादन सुना, अब हम उस्ताद सुल्तान खां का सारंगी वादन सुनते हैं। राग है देश। इसे सुनकर पुराने और नए सारंगी के टोन का अंतर समझ में आ जाएगा।

गजतत्वाद्य, गजवाद्यों पर आधारित इस श्रृंखला की ये कड़ी अभी आपने सुनी। कलाकार थे डॉक्टर प्रकाश महाडिक, प्रस्तुति सहायक थे जयंत श्रीवास्तव और प्रस्तुतकर्ता चारुबाला खरे। संगीत सरिता के लिए इस श्रृंखला की रिकॉर्डिंग हमें प्राप्त हुई आकाशवाणी भोपाल की सौजन्य से। अब आज का संगीत सरिता कार्यक्रम संपन्न होता है।

आप सुन रहे हैं विविध भारतीय राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन, कार्यक्रम विशेष जयमाला आप सुनेंगे बस थोड़ी देर में।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना। जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
1: घुंघरू की तरह बजता ही रहा हूं।
2: किसने कहा है? किशोरदन एक लड़का आया है कलकत्ते से, गाना सुन लो उसका, अगर तुमको ठीक लगे तो गा ले।
0: संगीतकार रविंद्र जैन।
2: किशोरदा ने कहा मैं गाना नहीं सुनूंगा, उसको बोला रिकॉर्डिंग रख लेगा। 9 बजे किशोरदा आ गए सुबह सुबह, तो मुझे गाने का मुखड़ा सुना दे। पहले मैं कहता था, अब मेरे लिए कहते हैं लोग, ये वही है कि जो बजता रहा घुंघरू की तरह।

0: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगी।
1: प्रस्तुत है विशेष जयमाला।

0: आजादी जरा याद करो कुर्बानी।
1: सुनने वाले सभी श्रोताओं को मंजरी वर्मा का प्यार भरा नमस्कार।

फौजी साथियों, हमारी भारतीय सेना और उसके वीर जाबाजों की शौर्यगाथा, उनकी बहादुरी की कहानियाँ हमें हमेशा अपने देश के प्रति अपना सर्वस्व निछावर करने को प्रेरित करती रही हैं। सरजमी हिंदुस्तान की मिट्टी में कुछ ऐसी सुगंध है कि जो यहाँ जन्मा वो अपने वतन को बेहद प्यार करने लगा। उसे गर्व होता है अपनी मातृभूमि पर और तिरंगे पर। उसकी आन बान और शान के खातिर वो अपने प्राणों की आहुति हंसते हंसते दे देता है। ऐसी मातृभूमि के बहादुर लाल अपनी जननी माँ के आंचल को छोड़ चल पड़ते हैं अपनी भारत माँ के आंचल को थामने। धन्य है ये धरा और वो माँ जिसकी कोख से ऐसे लाल जन्मे हैं।

जिंदगी में कुछ कर गुजरने की लालसा इन भारतीय सेना के वीर जवानों में लहू की तरह बहती रहती है। हर सांस में उसकी सुरक्षा और सेवा की महक फैलती रहती है। तभी तो उनके साहस को कोई भी दुश्मन सेना हिला नहीं पाती। उनके इरादे अटल पर्वतों की तरह सरहद पर युद्ध के मैदानों में स्थिर अडिग रहते हैं। जब कदम बढ़ा लेते हैं आगे तो वे कभी पीछे नहीं लौटते। लौटते हैं तो बस उनके शरीर, जब वे शहीद हो जाते हैं। आत्मा तो भारत माँ के आंचल में सुख की नींद लेने लग जाती है। धन्य है ऐसे वीर।

0: श्रोताओं, इस मैच का आगे का आंखों देखा हाल अब आप सुनेंगे 7:21 से। यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। कुछ ही पलों में प्रादेशिक समाचार होंगे।
1: घर खर्च के पैसे दो हस्बैंड जी,
2: ये राशन के 15,000, सब्जियों के 2,000
1: और लाइट बिल के
2: अब 0 रुपए कैसे दूं?
1: ओहो, भूल ही गई थी, अब तो सोलर पैनल लग गए हैं ना, तो जो 4,000 बचे हैं उससे शॉपिंग हो जाए।
2: पक्का।
3: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
4: हर घर सूर्य घर।
5: बड़ी बहू,
6: ये तुम्हारे नाम।
5: इतनी भी क्या जल्दी थी?
6: अरे और छोटी, ये तुम्हारे नाम।
5: और ये
7: मेरी गुड़िया के नाम।
8: पर दादी,
6: हाँ,
8: आपके नाम?
9: सब कुछ, मैंने बैंक, लॉकर, फिक्स डिपॉजिट सब में इन्हें ही तो नॉमिनी बनाया है। कल जब मैं ना रहूं तब पैसे मिलने में इन्हें आसानी हो।
6: शुभ शुभ बोलो।
8: क्या?
9: आरबीआई कहता है।
10: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
11: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं नवनीत चौबे। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने आज नीस में भारत इनोवेट्स कार्यक्रम का संयुक्त रूप से किया उद्घाटन। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा, प्रदेश में 24 लाख से अधिक एमएसएमई इकाइयों के माध्यम से 125 करोड़ लोगों को मिला रोजगार। मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना में 1,25,00,000 बहनों के खातों में 1,835 करोड़ रुपए किए गए ट्रांसफर और प्रदेश के अधिकांश जिलों में तेज हवाओं, गरज चमक और बारिश की संभावना। अब समाचार विस्तार से।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने आज नीस में भारत इनोवेट्स कार्यक्रम का संयुक्त रूप से उद्घाटन किया। भारत फ्रांस नवाचार वर्ष में आयोजित हो रहे इस कार्यक्रम में 120 से अधिक स्टार्टअप, प्रमुख निवेशक, प्रौद्योगिकी लीडर और दुनिया भर के शिक्षा संस्थान शामिल हैं। इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने भारत में स्टार्टअप क्रांति का जिक्र किया। श्री मोदी ने कहा कि आज भारत में 2 लाख से अधिक स्टार्टअप हैं और भारत लोकोन्मुखी नवाचार को बढ़ावा दे रहा है। उन्होंने भारत फ्रांस साझेदारी को ऐसा स्थायी संबंध बताया जो आपसी विश्वास, साझा मूल्यों और भविष्य के लिए एक समान दृष्टिकोण पर आधारित है। उन्होंने कहा कि नवाचार, प्रौद्योगिकी और भारत के युवाओं की आकांक्षाएं देश के विकास को गति देने के साथ ही भविष्य को आकार दे रही हैं।
1: आज भारत में एक स्टार्टअप रिवॉल्यूशन हो रहा है। इस रिवॉल्यूशन में भारत का नौजवान एक नए माइंडसेट के साथ मानवता के हित में समस्याओं के समाधान ढूंढ रहा है और हमारे नौजवानों के वर्ल्ड क्लास सॉल्यूशंस को ग्लोबल स्टेज पर लाने का माध्यम ही है भारत इनोवेट्स।
0: वहीं फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने कहा कि भारत इनोवेट्स भारत के नवाचार तंत्र और फ्रांस के प्रौद्योगिकी विस्तार के बीच एक सेतु का काम कर रहा है। उन्होंने सबसे लंबे समय तक भारत का प्रधानमंत्री रहने के लिए नरेंद्र मोदी को बधाई भी दी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि प्रदेश में 24 लाख से अधिक एमएसएमई इकाइयों के माध्यम से 25 करोड़ से ज़्यादा लोगों को रोजगार उपलब्ध हो रहा है। इनमें से 4,41,000 से अधिक इकाइयां महिलाएं संचालित कर रही है। आज भोपाल में समृद्ध एमएसएमई विकसित मध्य प्रदेश कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने उद्यमियों से संवाद किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा,
2: 2047 तक जो हमने पुनः लक्ष्य तय किया उसमें 1 करोड़ पंजीकृत एमएसएमई इकाई मध्य प्रदेश में बनना चाहिए। इस टारगेट से हम आगे बढ़ रहे हैं जिसके बलबूते पर 2 करोड़ से ज्यादा लोगों को रोजगार मिले। आज हमारे यहाँ स्टार्टअप की संख्या 7,400 से ज्यादा हो गई जिसमें 50% 3,400 से अधिक स्टार्टअप का नेतृत्व हमारी बहनें कर रही। मैं आपको भी बधाई देना चाहता हूँ।
0: मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने सिंगल क्लिक के माध्यम से प्रदेश के विभिन्न जिलों की 900 से अधिक एमएसएमई इकाइयों को 350 करोड़ से अधिक की प्रोत्साहन राशि वितरित की। साथ ही समस्त देवताओं का भुगतान और विशेष पैकेज के तहत भी इकाइयों को सहायता राशि प्रदान की गई। मुख्यमंत्री ने उद्यमियों को भू आवंटन पत्र, स्टार्टअप नीति 2025 और मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना के तहत भी हित लाभ प्रदान किए। कार्यक्रम में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री चैतन्य काश्यप शामिल थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पिछले 12 वर्षों में देश में स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर और किफ़ायती बनाने के लिए कई कदम उठाए गए हैं। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में उन्होंने कहा कि आयुष्मान भारत योजना के जरिए गरीब और ज़रूरतमंद लोगों को इलाज की सुविधा मिल रही है। वहीं जन औषधि केंद्रों पर सस्ती दवाएँ उपलब्ध कराई जा रही हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि स्टेंट और घुटने के प्रत्यारोपण की कीमतें कम होने से मरीजों को लाभ हुआ है। साथ ही मेडिकल कॉलेजों और सीटों की संख्या बढ़ने से डॉक्टर बनने के अवसर भी बढ़े हैं। उन्होंने कहा कि सरकार स्वस्थ भारत के निर्माण के लिए आगे भी लगातार काम करती रहेगी। अब समाचारों में वक्त है ब्रेक का।
3: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और फेसबुक, साथ ही एक्स प्लेटफॉर्म पर EIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsoneair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन EIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
0: मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज सागर जिले में आयोजित समारोह में लाडली बहना योजना की 37वीं किस्त जारी की। राज्य भर की 25 करोड़ से अधिक महिला लाभार्थियों के खातों में 1,835 करोड़ रुपए से अधिक की राशि अंतरित की गई। मुख्यमंत्री ने देवरी विधानसभा क्षेत्र में लगभग 191 करोड़ रुपए की 53 विकास परियोजनाओं का शुभारम्भ और उद्घाटन भी किया। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर कहा,
4: आज लाडली बहनाओं की राशि डालते डालते लगभग 3 वर्ष हुए हैं। जून 2023 से प्रारंभ होने वाली योजना में हमारी सरकार के द्वारा आज 1,25,17,000 से अधिक बहनों के खाते में 1,835 करोड़ रुपए की राशि उनके सिंगल क्लिक से उनके खाते में गई है। जून 2026 तक 59,588 और 93 लाख की राशि, लगभग 60,000 करोड़ की राशि ये हमने लाडली बहनाओं के खाते में डाली, जो प्रति माह 1,500 रुपया उनके खाते में जा रहा है।
0: ब्रेक के बाद समाचारों में फिर आपका स्वागत है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज विदिशा के ग्राम बेरखेड़ी जेतु में कृषि विज्ञान केंद्र के भूमि पूजन एवं खेत बचाओ अभियान के कार्यक्रम में शामिल हुए। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री श्री चौहान ने कहा कि विदिशा जिले में कृषि

ज्ञान केंद्र का शिलान्यास किसानों के लिए नई संभावनाओं का द्वार खोलने वाला है। उन्होंने कहा कि अब किसानों को मिट्टी और पौधों की वैज्ञानिक जांच, आधुनिक खेती का प्रशिक्षण, नई तकनीकों की जानकारी और विशेषज्ञ सलाह एक ही स्थान पर मिलेंगे। आयुष मंत्रालय ने आज यूट्यूब पर आयोजित एक लाइव योग सत्र के जरिए नया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। इस ऑनलाइन योग कार्यक्रम में 4,35,000 से अधिक लोगों ने भाग लिया। आयुष मंत्री प्रताप राव जाधव ने कहा कि यह उपलब्धि दुनिया भर में योग की बढ़ती लोकप्रियता को दर्शाती है। उन्होंने लोगों से योग को अपनी दैनिक दिनचर्या का हिस्सा बनाने की अपील की। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का मुख्य कार्यक्रम 21 जून को कोलकाता में आयोजित किया जाएगा। इस वर्ष योग दिवस की थीम है स्वस्थ आयु के लिए योग। प्रदेश के 19 जिलों की बाल कल्याण समिति CWC के अध्यक्षों और सदस्यों के लिए 13 दिवसीय आवासीय इंडक्शन प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। प्रशिक्षण के दौरान विषय विशेषज्ञों ने किशोर न्याय अधिनियम 2015, बाल अधिकारों, बाल संरक्षण तंत्र, पुनर्वास और बाल कल्याण समितियों की वैधानिक जिम्मेदारियों पर जानकारी दी। अब बात मौसम की। प्रदेश में सक्रिय टर्फ लाइन और अन्य मौसमी सिस्टम के प्रभाव से अगले 4 दिनों तक आंधी, बारिश और गरज चमक का दौर बना रहने की संभावना है। मौसम विभाग ने आज शिवपुरी और अशोकनगर जिलों में तेज आंधी को लेकर अलर्ट जारी किया। मौसम विभाग ने लोगों को खराब मौसम के दौरान खुले स्थानों, पेड़ों और बिजली के खंभों से दूर रहने तथा सतर्कता बरतने की सलाह दी है। यदि मौसम प्रणाली इसी तरह सक्रिय रही तो 18 जून के आसपास मध्य प्रदेश में मानसून का औपचारिक प्रवेश हो सकता है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का 18 जून को बैतूल प्रवास प्रस्तावित है। इसे देखते हुए जिले में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए गए हैं। किसी भी व्यक्ति, संस्था अथवा संगठन द्वारा ड्रोन, UAV तथा अन्य उड़ने वाले उपकरणों का संचालन प्रतिबंधित रहेगा। नर्मदापुरम जिले में अनुगुंज अभियान का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में दिव्यांगजनों के लिए संचालित विभिन्न योजनाओं की जानकारी दी गई। मंदसौर जिले में आयोजित जन कल्याण शिविरों में अब तक 3,841 आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें से 3,582 पात्र हितग्राहियों को मौके पर ही योजनाओं का लाभ दिया गया। खंडवा जिले की जनपद पंचायत हरसू द्वारा आयोजित जन शिविर में जनजाति कार्य मंत्री डॉक्टर कुंवर विजय शाह ने सहभागिता कर ग्रामीणों को शासन की विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी प्रदान की। जबलपुर के बरेला थाना क्षेत्र में कल देर शाम नेशनल हाईवे पर हुए सड़क हादसे में कार सवार 2 युवकों की मौत हो गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। और शिवपुरी जिले के दिनारा थाना क्षेत्र में सिंदौवा गांव में आज 2 बच्चों की तालाब में डूबने से मौत हो गई। इस बुलेटिन में इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए सुबह 7:10 पर। नमस्कार।

0: बहू जी, मम्मी जी, इस घर के कुछ नियम हैं। जैसे जैसे कि यहाँ कैश की परंपरा नहीं है,
1: तो लेन देन
0: वो हम डिजिटल पेमेंट करते हैं।
1: ओ,
0: जैसे UPI से।
1: अच्छा।
0: हाँ, और सुनो, एक और नियम है।
1: वो क्या है मम्मी जी?
0: तुम्हारी मुंह दिखाई भी UPI से मिलेगी।
1: आम भी ना मम्मी जी।
2: भारत करता है डिजिटल भुगतान,
3: हर लेन देन अब है आसान।
4: आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। अब सुनिए ICC महिला T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2026 के अंतर्गत भारत और पाकिस्तान के बीच बर्मिंघम में खेले जा रहे महिला T20 क्रिकेट मैच का आंखों देखा हाल, जो दिल्ली से रिले किया जा रहा है।
5: न्योछावर करने की उत्कंठा खूब बलवती रही। उन्होंने भी अपना मन इस ओर लगा लिया था, इसीलिए उन्होंने भारतीय सैन्य अकादमी देहरादून में प्रवेश लेने के लिए प्रयास किया और IMA के पहले पाठ्यक्रम में शामिल हो गए। लेफ्टिनेंट कर्नल दीवान रंजित राय एक प्रशिक्षक के रूप में स्टाफ कॉलेज में तैनात होने वाले पहले भारतीय अधिकारियों में से थे। आखिरकार उनका सपना सच हुआ और भारत में तैनात एक ब्रिटिश सेना रेजिमेंट के लिए अपनी सेवाएं देने लगे थे। बाद में उन्हें भारतीय सेना में नियुक्त किया गया। उनको 4 फरवरी सन 1942 को प्रमोशन मिला। इस तरह अप्रैल सन 1944 तक वे अस्थायी भर्ती स्टाफ में प्रमुख रहे।

फौजी साथियों, युद्ध शुरू होने से ठीक पहले उन्हें वाशिंगटन में मिलिट्री के लिए चुना गया था, लेकिन एक बेहतरीन अधिकारी के रूप में आपकी उत्कृष्ट पहचान बन चुकी थी। वे सिख रेजिमेंट के प्रथम बटालियन की गुड़गांव में कमान संभाले हुए थे। इसीलिए जैसे ही युद्ध शुरू हुआ, आपको कश्मीर के इस मिशन के लिए चुन लिया गया और उन्हें वहां भेजा गया। 27 अक्टूबर सन 1947 को लेफ्टिनेंट कर्नल दीवान रंजीत राय को श्रीनगर के ऑफिस में एयरफील्ड की सुरक्षा के तहत दिल्ली से इंडियन एयरफोर्स के द्वारा इस युद्ध क्षेत्र में भेजा गया था। साथियों, लेफ्टिनेंट कर्नल दीवान रंजीत राय के नेतृत्व में एक सिख रेजिमेंट से कुछ सैनिकों को यहां लाया गया था। इस तरह बड़ी ही कुशलता और सूझबूझ के साथ लेफ्टिनेंट कर्नल दीवान रंजीत राय अपनी छोटी पलटन के साथ तुरंत बारामूला की ओर बढ़े, जिससे उस जगह पर अपनी पकड़ बनाई जा सके। कैप्टन कमलजीत सिंह के अगुवाई में कंपनी बारामूला और डी कंपनी मेजर अर्पण सिंह के अगुवाई में श्रीनगर भेजी गई।

0: साथियों, विशेष जयमाला कार्यक्रम में समय हो चला है एक अंतराल का।
1: जब जब किसी हमलावर ने हमारी धरती के सीने पर पांव रखना चाहा, सब बच्चे सीना तान कर सामने खड़े हो गए और सीमा सुरक्षा की दीवार खड़ी हो गई।
2: विविध भारती पर हर रविवार की शाम 7 बजे होती है सैनिकों की शौर्य गाथा, कहानियां अदम्य साहस की, कहानियां देश के लिए कुर्बान हो जाने के जज्बे की। गाथा देश के जाबाज फौजियों के शौर्य की, सैनिकों की शौर्य गाथा।
1: करोड़ों हिंदुस्तानियों की भावना को शब्दों में ढालते हुए ही तो बंकिम बाबू ने कहा था, सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम शस्य श्यामलाम मातरम वंदे वंदे मातरम।
0: अंतराल के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। दुश्मन सेना भी उधर इसी इरादे से घात लगाए थी कि किस पल आक्रमण किया जाए। समय बहुत कम था, लेकिन लेफ्टिनेंट कर्नल दीवान रंजीत राय ने अपनी जान की परवाह न करते हुए बड़ी बहादुरी, अदम्य साहस और पराक्रम का परिचय देते हुए दुश्मनों का सामना करने लगे। दोनों ओर से गोलाबारी शुरू हो गई थी। दुश्मन भारी मशीन गनों और मोर्टारों द्वारा हमला कर रहे थे, लेकिन हमारी भारतीय सेना सिख रेजिमेंट के वीर योद्धा तनिक भी विचलित नहीं हुए थे, बल्कि उनके हौसले और भी बुलंद हो गए। आर पार की लड़ाई छिड़ चुकी थी, अब अंजाम कुछ भी हो युद्ध का अंत होकर ही सांस लेना है। ऐसे मजबूत इरादों के साथ लेफ्टिनेंट कर्नल दीवान रंजीत राय और उनके साथी युद्ध भूमि पर डटे हुए थे। वे दुश्मन के हमले का माकूल जवाब दे रहे थे। धरती, आकाश और युद्ध भूमि का वो इलाका जहां ये गोलाबारी हो रही थी, गोलियों के

0: फौजी साथियों, जवाबी गोलाबारी से दुश्मनों के हौसले पस्त हो चुके थे। उनको ये ज्ञात हो चुका था कि लेफ्टिनेंट कर्नल दीवान रंजीत राय और उनके सैनिकों को हटा नहीं पाएंगे। तब दुश्मनों ने खुद ही पीछे हटने में अपनी भलाई समझी और ये निर्णय लिया कि अब उन लोगों के आगे कोई बस नहीं चल सकता, लेकिन फिर भी वे बराबर गोलियों की बौछार करते जा रहे थे। लेकिन तब तक लेफ्टिनेंट कर्नल रंजीत राय को दुश्मनों की गोली लग चुकी थी। अपनी टीम की अगुवाई करते हुए 27 अक्टूबर सन 1947 को वे युद्ध भूमि में वीर गति को प्राप्त हो गए। फौजी साथियों, हालांकि नवंबर सन 1947 को बारामूला से भारतीय सेना को हमलावरों को वहां से बेदखल करवाने में 2 सप्ताह का समय लग गया था, लेकिन विजय हासिल हुई। इस विजय में भारतीय सेना के सिख रेजिमेंट ने अपना एक वीर योद्धा हमेशा के लिए खो दिया था, लेकिन उनकी शहादत व्यर्थ नहीं गई, वो एक शौर्य गाथा लिख गए। आज हम सभी के लिए प्रेरणा की वो मिसाल बन गए कि यदि जिगर में हिम्मत और हौसला, अपने देश के प्रति, अपनी मातृभूमि भारत माता के प्रति यदि है, तो हम अपना सब कुछ लुटा सकते हैं। देश की सुरक्षा सबसे पहले है, क्योंकि यदि देश सुरक्षित रहेगा तो हम सभी सुरक्षित रह सकेंगे। वो कहते हैं ना कि मरने के बाद भी जिनके नाम में जान है, ऐसे जाबाज सैनिक हमारे भारत की शान है। देश के उन वीर जवानों को हम नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं और सलाम करते हैं। फौजी साथियों, भारत सरकार द्वारा देश का दूसरा सर्वोच्च वीरता पुरस्कार महावीर चक्र सन 1947 को लेफ्टिनेंट कर्नल दीवान रंजीत राय को मरणोपरांत उनके उत्कृष्ट निर्णय लेने की और लड़ने की भावना और सर्वोच्च बलिदान के लिए प्रदान किया गया। उन्हें श्रीनगर को बचाने और अपने प्राणों की आहुति देने के लिए सदा याद किया जाएगा। इस तरह वे पहले महावीर चक्र विजेता बने।
1: ऐ मेरी जमीन, अफसोस नहीं जो तेरे लिए सौ दर्द सहे, महफूज रहे तेरी आन सदा, चाहे जान मेरी।

फौजी साथियों, आज विशेष जयमाला के अंतर्गत आपने सुनी महावीर चक्र प्राप्त लेफ्टिनेंट कर्नल दीवान रंजीत राय की शौर्य गाथा। शोध आलेख स्वर मंजरी वर्मा का, संपादन आकांक्षा सिंह, प्रस्तुतकर्ता तेज श्री काम।

फौजी साथियों, आज विशेष जयमाला के अंतर्गत आपने सुनी महावीर चक्र प्राप्त लेफ्टिनेंट कर्नल दीवान रंजीत राय की शौर्य गाथा। शोध आलेख स्वर मंजरी वर्मा का, संपादन आकांक्षा सिंह, प्रस्तुतकर्ता तेज श्री कामले। तो अब मंजरी वर्मा को दीजिए इजाजत। जय हिंद।

0: छाया गीत
1: लग जागने।
0: हिंदी फिल्म संगीत के स्वर्णिम युग की एक संगीतमय यात्रा।
2: मेरे सपने अब
0: पुराने दिनों की मनमोहक धुनों में गोता लगाएं, सुरों के पंख लगाकर आसमां में उड़ उड़ जाएं।
2: भीगी भीगी रातों में मीठी मीठी बातों में।
0: याद रहे, ये वो कैप्सूल है जो धुनों को, आवाज को और यादों को जीवंत रखता है।

ये है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। आइए अब सुनते हैं इंद्रधनुष में साज और आवाज़। इसमें आज आप सुनेंगे क्लैरिनेट यानी शहनाई पर फिल्मी धुनें। आज की फिल्में हैं प्रोफेसर और दिल एक मंदिर।

मोहम्मद रफ़ी और सुमन कल्याणपुर के गाए दिल एक मंदिर फिल्म के इस गाने के साथ ही इंद्रधनुष में साज और आवाज़ कार्यक्रम अब समाप्त होता है।

0: हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं। श्रोताओं, इस मैच का आगे का आंखों देखा हाल अब हम आपको सुनवाएंगे 8:35 से। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लीजिए सुनिए समाचार सेवा प्रभाग आकाशवाणी द्वारा प्रस्तुत विशेष श्रृंखला सरकार के 12 वर्ष सशक्त भारत।
1: ये आकाशवाणी है। 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के विशेष श्रृंखला के अंतर्गत आज सुनिए विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार डॉक्टर जितेंद्र सिंह के साथ विशेष साक्षात्कार। साक्षात्कार कर रहे हैं गौरव श्रीवास्तव।
2: नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूँ गौरव श्रीवास्तव। साइंस एंड टेक्नोलॉजी की जब भी बात होती है तो हमने देखा है कि बीते एक दशक में, या यूं कहें कि जब से मोदी सरकार आई है, बीते 12 वर्षों में लगातार इसमें प्रगति देखने को मिल रही है। और ये प्रगति इसलिए भी है क्योंकि लगातार जो अलग अलग तरीके से इसमें इनिशिएटिव्स लिए गए और लगातार जो इस पर फोकस किया गया, उससे आज जो क्रांति आई है वो बदलते दौर की एक नई तस्वीर पेश कर रही है। इन तमाम अहम पहलुओं पर हम बात करेंगे और जानेंगे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो या इसके अलावा स्पेस सेक्टर हो, इसके अलावा अगर हम रिन्यूएबल एनर्जी की बात करते हैं या क्वांटम टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, ये सब कुछ इतना बड़ा हुआ है बीते 12 वर्षों में, अभी हाल में कहां पे है और किस तरह से जो फ्यूचरिस्टिक प्लान है वो क्या कुछ कहता है, इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर जितेंद्र सिंह हमारे साथ जुड़ रहे हैं, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री हैं। सर, बहुत स्वागत आपका।
3: धन्यवाद।
2: पहला सवाल सर यही है, 12 साल और उसके बाद जो लगातार इनिशिएटिव्स लिए गए, बहुत बड़ी गति मिलती हुई नजर आई है साइंस एंड टेक्नोलॉजी को, कैसे इस सफर को देखते हैं और क्या बड़ा होने वाला है जिससे भविष्य और ज्यादा बेहतर भारत का नजर आता है?
3: जैसे कि आपने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी जी के आने के बाद जहां तक विज्ञान को लेकर के अगर हम बात करें या साइंस टेक्नोलॉजी की, तो एक पैराडाइम शिफ्ट हुआ
2: जी।
3: उसका प्रमुख बिंदु एक तो ये था कि इसको बहुत ज्यादा प्राथमिकता हासिल हुई। पहले साइंस टेक्नोलॉजी संबंधित विषयों को बहुत ज्यादा प्राथमिकताएं नहीं मिलती थी पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स की तरफ से, और प्रधानमंत्री जी स्वयं इसमें रुचि लेने लगे। दूसरा, प्राइवेट सेक्टर को इन्वॉल्व किया गया, ये समझते हुए कि अगर आज की दुनिया में हमें इससे आगे बढ़ना है तो हम साइलोज में नहीं चल सकते
2: जी।
3: और तीसरा, विज्ञान में जहां ईज ऑफ रिसर्च वो तो लाजिम अनिवार्य है, उसके साथ साथ अंततः उसका लक्ष्य है ईज ऑफ लिविंग फॉर अ सिटीजन, तो उसको सिटीजन सेंट्रिक भी बनाया गया
2: जी।
3: हमारे

0: बहुत सारे ऐसे इनिशिएटिव गत 12 वर्षों में ऐसे रहे हैं जिनका सीधा सीधा ताल्लुक नागरिक के साथ है या नागरिक के जीवन के साथ है, और जिसका परिणाम ये हुआ है कि आज मेन स्ट्रीम मीडिया, जो पहले विज्ञान संबंधी समाचारों को या गतिविधियों को बहुत ज्यादा प्राथमिकता नहीं देता था, उसमें भी जिस तरह से हमारा स्पेस की अचीवमेंट्स हुई, तो मैंने उस दिन भी कहा था कि स्पेस हैज गिवन अस स्पेस इन मेन स्ट्रीम मीडिया चंद्रयान के माध्यम से। अरोमा में जब लेवेंडर आया, अभी हाल ही में 3-4 या 2 या 3 दिन का कैंप था मुंबई
1: जी,
0: में
1: जी,
0: तो हमारे युवा लगभग 30-40 या 50 लाख का लेवेंडर तेल फरोख्त करके आए हैं, तो एक नया एवेन्यू रोजगार का आ गया। इसी प्रकार यदि हम बात करते हैं क्वांटम की, तो मीडिया का भी उससे ताल्लुक है
1: जी,
0: डिफेंस का भी ताल्लुक है, और इसलिए सबको रुचि भी आई। हमने अपने लिए 8 साल का टारगेट रखा था, उसमें से आधा हिस्सा जो हमें 4 साल तक तवक्को थी कि हम पूरा कर लेंगे, वो 3 साल में ही मुकम्मल हो गया। तो अनेकों ऐसा स्काई कास्ट जो भी इंस्टॉल किया गया है, जिसके माध्यम से जब कोहरे का मौसम होता है तो बहुत दिक्कत आती है फ्लाइट्स में
1: जी,
0: पायलट को भी दिक्कत आती है, यात्रियों को भी असुविधा होती है, तो उसमें बहुत सारी बेहतरी हो कि इस प्रकार से फॉग की प्रेडिक्शन और ज्यादा एक्यूरेट प्रिसाइज हो टाइमिंग। तो ये चूंकि नागरिकों के साथ संबंधित ये विषय है, इसी प्रकार चाहे आप हमारा गवर्नेंस का ले लीजिए, तो हमारा सीपी ग्राम मॉडल है जिसको हमने AI चैटबॉट के साथ जोड़ दिया, अभी 2 ही दिन पहले की बात है, तो उससे भी आम नागरिक, जहां एक जमाने में 2014 से पहले कुल मिला करके हमारे यहाँ सरकार में 2 लाख शिकायतें आती थी पूरे हिंदुस्तान में साल भर में, आज वही संख्या बढ़कर के 25-30 लाख हो गई, क्योंकि लोगों की रुचि बढ़ी, क्योंकि वी वर प्रॉम्प्ट, वी वर रिस्पॉन्सिव, वी आर फॉलोइंग टाइमलाइन। हमारे 95-97% जहाँ पुराने जमाने में 2-2.5 महीने लगते थे अगर जवाब आए, जवाब कई बार आता ही नहीं था, वहाँ हमने ये सुनिश्चित किया कि हर ग्रीवेंस का जवाब भी आएगा, AI ड्रिवन भी होगा, और कोई ह्यूमन बात भी करेगा उससे, और उसकी टाइमलाइन घटा करके 12-13 दिन कर दी गई, और बहुत जल्दी 1 हफ्ता हो जाएगी।
1: बिल्कुल सर, इसके अलावा भी हमने देखा है कि जब फास्ट ब्रीडर रिएक्टर, जो भी हमें हाल ही में देखा कि बहुत बड़ा कीर्तिमान और उपलब्धि हासिल करते हुए नजर आया, कितना बड़ा चैलेंज था, क्योंकि होमी बाबा ने इसकी नींव बहुत पहले रखी थी कि इसको अलग अलग फेजेस में किया जाएगा, पहला दूसरा फेज और उसके बाद तीसरे की ओर आगे बढ़ना, थोरियम क्योंकि हमारे पास बहुत ज्यादा है। ये मात्राएं किस तरह से दिखाती हैं कि भारत का जो बढ़ता हुआ कदम है वो और ज्यादा सशक्त होता हुआ नजर आ रहा है?
0: बहुत अच्छी बात कही, बल्कि मैंने उस दिन जिस दिन हमारा ये टारगेट अचीव हुआ, तो मैंने ये कहा था कि होमी बाबा ने जो स्वप्न देखा था उसकी पूर्ति मोदी जी के हाथों से हुई है। द विंडिकेशन ऑफ होमी बाबाज ड्रीम हैज हैपेंड थ्रू प्राइम मिनिस्टर मोदी। और अगर आप जरा गंभीरता से गहराई से सोचे तो समझ में आएगा कि होमी बाबा कितने दूरअंदेश व्यक्ति थे, हिंदुस्तान की परिस्थितियों को समझते हुए,
1: बिल्कुल
0: हमारे साधनों की लिमिटेशंस को समझते हुए उन्होंने हमें एक 3-स्टेज प्रोग्राम दिया। जो 3 स्टेजेस उन्होंने दी थी उसमें धीरे धीरे प्रगति हो, उस तरह से कैसे उन्होंने तय किया कि पहले स्टेज में हम प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर का इस्तेमाल करेंगे। हैवी वाटर होता है थोड़ा सा अलग किस्म का, जैसे आम पानी को आप H2O कहते हैं, हाइड्रोजन ऑक्साइड, ये होता है D2O ब्यूट्रोस ऑक्साइड, लेकिन उसमें लाभ ये रहता है कि उसमें आम यूरेनियम इस्तेमाल होता है जो आपको पहाड़ों से या कोस्टल एरिया से मिलता है, उसमें कुछ एनरिचमेंट नहीं करनी ट्रीटमेंट, तो उसको इस्तेमाल से वो यूरेनियम 239 इस तरह से,
1: उसकी मात्रा भी सर कम है,
0: मात्रा भी कम है, और उसका जो स्पेंट फ्यूल निकलता है प्लूटोनियम। तो होमी बाबा का ये तस्वुर था, ये कल्पना थी कि जब हम उसमें थोड़ी सी महारत हासिल कर लेंगे तो उस प्लूटोनियम जो वहां का स्पेंट फ्यूल निकलेगा उसी को हम दूसरी स्टेज में इस्तेमाल करेंगे। कैसे? उसको यूरेनियम 239 के साथ जोड़ के जो थोड़ा सा एनरिच्ड है
1: जी।
0: तो एनरिच्ड यूरेनियम को जब हम प्लूटोनियम के साथ जोड़ेंगे, जिसे विज्ञान की भाषा में मिक्स्ड ऑक्साइड फ्यूल भी कहा जाता है
1: जी,
0: तो उससे एक रिएक्टर के लिए एनर्जी भी इजाद होगी, और साथ ही साथ उसी रिएक्टर के बैग में हम थोरियम रख देंगे, क्योंकि हिंदुस्तान में जैसे आपने कहा कि सबसे अधिक स्टोर दुनिया का हिंदुस्तान में, ऑलमोस्ट 25% ऑफ द थोरियम इज फाउंड इन इंडिया, और मेनोजाइट हमारा मिनरल उसका एक हिस्सा है। तो उस थोरियम को जब हम बैग में रखेंगे, तो जब वो रिएक्टर का दोनों यूरेनियम और प्लूटोनियम अपना काम कर रहे होंगे एज मिक्स फ्यूल, तो प्लूटोनियम से जो उसमें से कुछ एक न्यूट्रॉन्स निकलेंगे पॉजिटिव न्यूट्रॉन, उनको ये अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा थोरियम एज ए रिजल्ट ऑफ सम सर्टेन केमिकल सीक्वल ऑफ रिएक्शंस, और इसको एक अलग किस्म के फ्यूल में कन्वर्ट करेगा जो होगा यूरेनियम 233, जो एनरिच नहीं है लेकिन है वो ईंधन ही, फ्यूल ही है। और इस तरह से थोरियम से प्राप्त हुआ, थोरियम से पैदा किया गया यूरेनियम हमें मिलेगा, जो हम तीसरी स्टेज में इस्तेमाल करेंगे। और जब हम उस स्टेज पे पहुंच जाएंगे तो दूसरों पर हमारी निर्भरता कम हो जाएगी, क्योंकि ये थोड़ी तो हमारे घर में मौजूद है। तो इस तरह से किया था। और ये जो आपने कहा अप्रैल मास में हम दूसरी स्टेज पर पहुंच गए, यहाँ प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर इजाद किया गया और इसकी धूम सारी दुनिया में है। साथ ही साथ चूंकि शांति एक्ट भी आया, वो भी प्रधानमंत्री जी के ही

0: शेप से हुआ, बिकॉज पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स के लिए जरूरत बात होती है कि न्यूक्लियर सेक्टर को खोल देना प्राइवेट प्लेयर्स के लिए, और किसी ने इसकी
1: प्राइवेट सेक्टर के लिए जब खोला गया न्यूक्लियर का सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर के लिए जब मर्ज होता हुआ नजर आ रहा है और खोला गया, ये कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी मानते हैं उन लोगों के लिए जिनके बड़े बड़े स्टार्टअप्स हैं जो इसमें कुछ करना चाहते हैं?
0: बिल्कुल, ये आपने अच्छा किया पूछा। पहली बात तो ये है कि एक बहुत क्रांतिकारी निर्णय था, बहुत कम देश ऐसे हैं दुनिया में जिन्होंने अपने न्यूक्लियर सेक्टर को प्राइवेट प्लेयर के लिए खोला है
1: जी।
0: तो इसके लिए भी जैसे मैंने कहा, इट रिक्वायर्स पॉलिटिकल विल, पॉलिटिकल करेज, पॉलिटिकल कन्विक्शन, वो मोदी जी के कारण संभव हुआ। अब जब खुल गया तो कई लोग जो शायद सिनिसिज्म की वजह से कहते हैं या आलोचना की दृष्टि से कहते हैं कि साहब अब बड़े बड़े बिजनेस हाउसेज के लिए खोला गया, ऐसा नहीं है। बल्कि जो हमने शांति एक्ट लाया है उसमें अलग अलग स्लैब्स रखी हैं। अगर आप 1000 मेगावाट का लगाना चाहे तो आपकी स्लैब कम है, बड़ा लगाना चाहे ज्यादा 100 मेगावाट का लगाएं। अब तो स्मॉल रिएक्टर्स हैं, स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स भी हैं, दूसरे स्मॉल रिएक्टर्स हैं जो 200 मेगावाट से भी कम कैपेसिटी के होते। तो ऐसा भी हो सकता है कि एक बड़ा इकोसिस्टम बनाया गया है पिछले 12 साल में, जिसको आप कंबाइन करके कुछ एक लोग अगर युवा मिल जाए, एक ग्रुप बनाए स्टार्टअप का एंड देन मैच्योर इनटू एंटरप्रेन्योरशिप। तो जैसे हमारा RDI फंड भी है, 50% सरकार की ओर से मिलता है बहुत कम इंटरेस्ट पर, तो आप एक छोटा रिएक्टर भी लगा सकते हैं। यानी दूसरे शब्दों में ये कहा जा सकता है कि शांति एक्ट के आने के बाद और प्राइवेट सेक्टर खोलने के बाद, बड़े हाउसेस तो अलग बात है, लेकिन जो छोटे छोटे ग्रुप्स हैं स्टार्टअप्स के, एंटरप्रेन्योर्स के, उनके लिए भी लाइवलीहुड, रोजगार का एक नया साधन और बड़ा ल्यूक्रेटिव साधन होगा। और आने वाले जमाने में इसकी मांग दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ये युग है, उसमें न्यूक्लियर एनर्जी का होना लाजिम रहेगा ही रहेगा।
1: बिल्कुल सर, एक सवाल और, एक बड़ी उपलब्धि जो लगातार हम देख रहे हैं कि आपके नेतृत्व में भी आगे बढ़ती हुई नजर आई है, क्वांटम टेक्नोलॉजी को लेकर, उसके नेटवर्क को लेकर। कहा तो 8 साल का एक रोड मैप तैयार किया गया था 2000 किलोमीटर का, 1000 किलोमीटर 2 साल के अंदर अंदर पूरा हो गया। क्या चैलेंजेस इसके पीछे और कैसी उपलब्धि इतनी जल्दी हासिल की गई?
0: क्वांटम मिशन हमने लॉन्च किया था सन 2023 में और 8 साल के लिए एक प्लान बनाया था। उस समय भी मैंने ये कहा था कि क्वांटम मिशन की लॉन्चिंग मात्र फिजिकल लॉन्चिंग नहीं है, इसमें एक बड़ा सिंबॉलिक मैसेज भी गया है। वो ये कि हम उन चंद एक 4-5 देशों में हैं जिनका क्वांटम मिशन है। यानी वो जमाना जाता रहा, एक दुनिया भर में ये पैगाम गया कि वो जमाना जाता रहा जब कोई इनिशिएटिव कोई और देश लेता था और फिर 10-15 बरस के बाद हम उसका अनुसरण करते, चाहे वो टेलीविजन था, चाहे वो इंटरनेट था, चाहे वो मोबाइल थे, जो अमरीका में 1950 के दशक में, यहाँ पे 1970 के दशक में पहुंचे, 80 के। अब हम बराबर चल रहे हैं तो क्वांटम में। और फिर हमने जब 8 साल का टारगेट बनाया, क्योंकि उसके 4 verticals हैं, क्वांटम कंप्यूटिंग, क्वांटम कम्युनिकेशन, क्वांटम सेंसिंग, क्वांटम मटेरियल्स, तो उसके लिए 8 साल के अलग अलग टारगेट्स बनाए गए। और जैसे आपने कहा कि सबसे महत्वपूर्ण रहता है कम्युनिकेशन, क्योंकि एनक्रिप्टेड सिक्योर, हालांकि अभी भी आपके व्हाट्सएप इनक्रिप्टेड है, लेकिन वहां ऐसा होगा कि वो संभव ही नहीं होगा उसको अनक्रिप्ट करना। डिफेंस की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, मीडिया की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण। उसमें हमने टारगेट रखा था कि हम 2000 किलोमीटर तक क्षमता विकसित करेंगे 8 वर्षों में क्वांटम कम्युनिकेशन करने की, लेकिन उसमें से आधी जो 1000 है हमने 2 या 3 सालों में कर ली
1: जी।
0: यानी हम 8 साल का टारगेट हो सकता है 8 साल से पहले ही कर लें और हम उससे आगे बढ़ जाएं।
1: बिल्कुल सर, एक सवाल और आता है कि जैसे हम बायोटेक्नोलॉजी की जब बात करते हैं, क्योंकि हमने तमाम क्षेत्रों को देखा कि किस तरह से उनमें प्रगति नजर आई, बायोटेक्नोलॉजी में जब हम उम्मीद प्रोग्राम की बात करते हैं, किस तरह से ये प्रोग्राम उन लोगों के लिए बहुत ज्यादा किफायती होगा, उनको सुविधा पहुंचाता हुआ नजर आएगा जो जेनेटिक डिजीजेस से कहीं ना कहीं 2-4 हो रहे हैं और कई बार टेस्ट भी कराते हैं लेकिन पता नहीं चलता, क्या है सर ये उम्मीद प्रोग्राम और कैसे लोगों को फायदा मिलेगा?
0: ये बात करने से पहले मैं ये थोड़ा सा स्पष्ट कर दूं कि ये इसलिए संभव हुआ कि वहां पर भी अभी कोई 2-3 साल पहले हमने बायो E3 पॉलिसी लाई, उसमें भी हमारी पहल है। बहुत चंद एक देशों में जिनकी एक डेडिकेटेड बायोटेक्नोलॉजी पॉलिसी है, बायो E3, अर्थात बायोटेक्नोलॉजी फॉर इकोनॉमी, बायोटेक्नोलॉजी फॉर एनवायरमेंट, बायोटेक्नोलॉजी फॉर एम्प्लॉयमेंट। और वो भी तभी संभव हुआ जब प्रेजेंटेशन प्रधानमंत्री जी के आगे रखी गई तो उन्होंने अपने बाकी साथियों को भी ये समझाया कि आज शायद इसका महत्व ना समझ आए लेकिन कल हम किसी देश से पीछे नहीं रहेंगे, क्योंकि ये भी दुनिया भर में अर्थशास्त्रियों का भी मानना है कि आने वाली इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन बायोटेक्नोलॉजी ड्रिवन होगी, जेनेटिक ड्रिवन होगी, रीसाइक्लिंग होगा, सिंथेटिक प्रोडक्ट्स का होगा, यानी इकोनॉमी का शिफ्ट मैन्युफैक्चरिंग से हट करके सर्कुलर की तरफ चला जाएगा, जेनेटिक्स की जाएगा। और उसमें अभी हमने पहल कर ली है। और हमारा हिंदुस्तान ऐसा है कि यहाँ पर जीन्स को ले तो बड़ी डाइवर्सिटी है
1: जी।
0: हमने उसमें भी सीक्वेंसिंग 10,000 देशवासियों की करने में हम अभी तक सफल हो चुके हैं, हमारा इनिशियल टारगेट है अबाउट 1 मिलियन। इसी प्रकार रेयर डिजीजेस, वो जेनेटिक डिजीजेस जो पैदाइश से होती हैं, कभी कभी उनके सिम्टम्स हो सकता है पैदाइश के समय या जन्म के समय जाहिर ना हो, थोड़ा आगे चल करके हो, क्योंकि इन बीमारियों की संख्या बहुत कम हो रहती है, बहुत कम, चाहे वो सिकल सेल एनीमिया है, चाहे वो नीम एंड पिक डिजीज है, इस तरह के, इसलिए इसको प्राथमिकता भी कम मिलती है।

0: थी, इसलिए इसके डायग्नोसिस की सुविधाएं भी दुर्लभ थी, इसलिए इसकी दवाई भी बहुत महंगी थी। लेकिन कोई छूट ना जाए, कोई भी नागरिक हमारे शोध से, हमारी सेवाओं से, तो इसलिए उम्मीद का कार्यक्रम शुरू किया, जिसके तहत लगभग अभी भी 3 लाख ऐसे लोग हैं जिनको इसका लाभ पहुंचा है
1: जी।
0: और उसमें हम अलग अलग चरणों में, उसमें जो रेयर जेनेटिक डिजीज हैं उनमें किस तरह से सहयोग दिया जा सके मरीज को, डायग्नोसिस कैसा हो, अर्ली डिटेक्शन हो, उसके बाद टेस्ट की क्या फैसिलिटी रहे, औषधियों की क्या रहे, उसको लेकर के
1: जी।
0: और इसी तरह से हमने बायोटेक्नोलॉजी का अगर आप देखें तो BIO3 पॉलिसी के ही तहत हिंदुस्तान का सबसे पहला एंटीबायोटिक भी हमने याद किया है। अभी तक जितने एंटीबायोटिक थे, जब पहला एंटीबायोटिक आया था सन 1948 के लगभग, पेंसिलिन उस समय पाउडर का था, तो सेकंड वर्ल्ड वॉर में उसका पाउडर थोड़ा इस्तेमाल किया गया था वुंड्स पे, तो वहां से पता चला कि साहब ये इन्फेक्शन के लिए फायदेमंद रहता है। उसके बाद इसके इंजेक्शन बने, बाद में टेबलेट बनी, तो उसको इस समय क्वीन ऑफ ड्रग्स कहा जा रहा था। लेकिन तब से लेकर के जितनी भी सक्सेसिव जनरेशन ऑफ एंटीबायोटिक्स हुई है, चाहे वो पेंसिलिन के बाद क्लोरोफेनिकॉल, स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन, जेटा, वो सारी बाहर से सॉल्ट आते हैं। यहाँ पहली बार हमने यहाँ ट्रायल किया, यहाँ सॉल्ट ट्रायल किया और प्राइवेट पार्टनर के साथ उसकी हम मार्केटिंग कर रहे हैं।
1: सर अब बात करेंगे स्पेस की, क्योंकि स्पेस में बहुत सारा काम हुआ है, गगनयान मिशन पर सबसे ज्यादा नजर है, क्या तैयारियां उसको लेकर, और बीते दिनों में जो हमने देखा, चाहे चंद्रयान मिशन हो या इसके अलावा अलग अलग जो मिशन लॉन्च किए जा रहे हैं, उसमें कितनी प्रगति मिलती हुई नजर आ रही है जो गगनयान मिशन को बहुत सक्सेसफुल बनाए।
0: मुझे लगता है कि स्पेस सेक्टर में सबसे पहला क्रांतिकारी मोड़, जैसे एटॉमिक को लेकर के आपने शांति की बात की, वो था 5 बरस पहले, जबकि जैसे मीडिया ने कहा कि प्राइम मिनिस्टर मोदी हैज अनलॉक्ड स्पेस सेक्टर, पहली बार स्पेस को प्राइवेट प्लेयर्स के लिए खोल दिया गया, क्योंकि हमारा ये मानना है कि विज्ञान, शोध, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, कमर्शलाइजेशन तभी संभव है कि आप प्राइवेट सेक्टर को पहले दिन से ही साथ लेके चले।
1: सर ये इससे भी कनेक्टेड है जो प्राइवेट रॉकेट्स भी लोग जो बना रहे हैं।
0: अब देखिए, आज से 5 साल पहले हमारा स्पेस इकोनॉमी हिंदुस्तान की कोई बहुत ज्यादा उल्लेखनीय नहीं थी, आज हमारी स्पेस इकोनॉमी लगभग $9 बिलियन और इतनी तेज रफ्तार से बढ़ रहा है कि आंकलन ये लगाया जाता है, हमारी जो प्रोजेक्शंस इंडिकेट करती हैं कि अगले 8-10 सालों में हम 5-6 गुना बढ़ करके $40-45 बिलियन हो जाएंगे, जिसका अर्थ ये हुआ कि स्पेस इकोनॉमी विल बी एन इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट ऑफ ओवरऑल इंडियन इकोनॉमी एज वी मूव टूवर्ड्स 2047। और हमारा स्पेस सेक्टर में स्टार्टअप सिंगल डिजिट हुआ करते थे, आज 400 से बढ़ गए, और एक हाल ही में शुरू हुआ स्टार्टअप हमारा यूनिकॉर्न भी हो गया पिछले ही कुछ दिन पहले। अब प्राइवेट सेक्टर में रॉकेट्स भी बनाए जा रहे हैं, लॉन्चिंग्स भी हो रही हैं, और वो इसलिए संभव हुआ है कि प्राइवेट सेक्टर का सहयोग पब्लिक सेक्टर के द्वारा हो रहा है और दोनों एक समन्वय बना करके कोलैबोरेटेड अप्रोच के साथ चल रहे हैं। और आने वाले समय में हिंदुस्तान की ये भी खासियत है, हमारे रॉकेट्स तो जा ही रहे हैं, रॉकेट से खबर हमारी बड़ी ज्यादा बनती है, जैसे चंद्रयान के लेकर के, इट्स अ वेरी फैसिनेटिंग साइट। लेकिन हिंदुस्तान की ये विशेषता है कि हमने स्पेस सेक्टर को जितना स्पेस मिशन के लिए इस्तेमाल किया है, उससे अधिक नागरिक जीवन में सुविधा लाने के लिए, ईज ऑफ लिविंग, उदाहरण के तौर पर प्रधानमंत्री मोदी जी के सुझाव पर गति शक्ति शुरू किया। गति शक्ति इज अ ग्लोबल मॉडल जो इंफ्रास्ट्रक्चर कंस्ट्रक्शन में काम आता है, उसकी मॉनिटरिंग में, उसकी टाइमलाइंस को निर्धारित तरीके से संभालने में, उसकी जो बाधाएं हैं, तो ये गति शक्ति इज अ स्टोरी। हमारा लैंड फार्म्स को लेकर के जो कार्यक्रम है, ड्रोन्स और स्पेस को लेकर के, उसमें भी हमारा स्पेस का ही काम आ रहा है। हमारे मीडिया और टेलीविजन चैनल्स तो ही हैं, तो कहने का अर्थ यह है कि हमारा स्पेस सेक्टर इज वर्चुअली इन एवरी हाउसहोल्ड, एवरी इंडियन हाउसहोल्ड टुडे। और वॉरफेयर आपने देख ही लिया ऑपरेशन सिंदूर में, उसमें दो ही विभाग थे मुख्य तौर पर, एक स्पेस सेक्टर और दूसरा न्यूक्लियर सेक्टर, तो ये सारा वॉरफेयर उससे हमारी क्षमताएं। और आज ये स्थिति है कि हमारी ब्रह्मोस मिसाइल्स हम ना केवल इंडिजिनस बना रहे हैं बल्कि इंडिजिनस को एक्सपोर्ट कर रहे हैं। हमारा डिफेंस सेक्टर अधिकतर इंपोर्ट्स पर डिपेंड करता था 2014 से पहले, 2025 में हमारा डिफेंस प्रोडक्शन 1.5 लाख करोड़ से अधिक है और हमारा एक्सपोर्ट हुआ है लगभग 23,000 करोड़ दूसरे देशों के। हमारी ब्रह्मोस मिसाइल वियतनाम में जा रही है, इंडोनेशिया जा रही है, और बहुत सारे है हमारे डिफेंस इक्विपमेंट्स यूरोपियन देशों में, फ्रांस इत्यादि में जा रहे हैं। इसी तरह से आप देखेंगे स्टार्टअप्स में, हम जब शुरू हुए तो 350-400 थे, आज हम तीसरे दर्जे पहुंच गए, लगभग 2,26,000 से अधिक
1: जी।
0: और उनके माध्यम से जो जॉब्स जनरेट हुए उनकी संख्या लगभग 24 लाख है। इसी प्रकार हम ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में हम नंबर ऑलमोस्ट 90-80 थे, अभी हम 38 आ गए, पेटेंट्स में हम नंबर 6 है दुनिया में, जो एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। और उसमें से 55% ऐसे हैं जो रिजाइडिंग इंडियन है, बाहर जाके शोध करते थे। ये बच्चे वो हैं जिन्होंने यहीं शोध किया, यहीं पले बले, और यहीं से उन्होंने पेटेंट फाइल किए। और यही कारण

0: कि आज विश्व हमें निगाह उठाकर देखता है, बड़ी तवक्को के साथ देखता है कि अब वो नहीं रहा कि वी आर नॉट देयर टू बी लेड, द वर्ल्ड लुक्स अप टू अस टू लीड। तो ये एक बहुत बड़ा हमारा भी माइंडसेट बदला है और दुनिया का नजरिया बदला हमारे प्रति।
1: भारत टेक्नोलॉजी क्योंकि क्रिएटर बन रहा है, ऐसे में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का आप कितना बड़ा योगदान मानते हैं, और तमाम क्षेत्र, चाहे हम क्वांटम की बात करें वो भी, और इसके अलावा रक्षा की हम बात कर रहे हैं वहां पर भी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में किस तरह से जो नई गति है वो देते हुए नजर आ रही है अगर साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बात करें?
0: आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो एक ऐसा टूल है
1: जी
0: जो अभी इट्स नो लॉन्गर एन ऑप्शन, इट्स अ नेसेसिटी, ये तो इस्तेमाल में होगा ही, चाहे कोई भी क्षेत्र होगा, हेल्थ होगा, कम्युनिकेशन होगा, रिसर्च होगा, लेकिन वन हैज टू बी इंटेलिजेंट इनफ टू यूज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और हमने जो कई ऐसे प्रयोग किए हैं जहां हाइब्रिड मॉडल बड़े कामयाब साबित हुए, यानी जैसे हमारा सीपी ग्राम्स है, ग्रीवेंस रिड्रेसल, उसमें हम एआई के द्वारा चैटबॉट भी रखा है, एआई के द्वारा डिस्पोजल भी होता है, लेकिन डिस्पोजल के बाद शिकायतकर्ता से बातचीत वार्तालाप एक व्यक्ति करता है, उससे उसको थोड़ा सा सेटिस्फेक्शन लेवल होता है। इसी तरह से हमने टेलीमेडिसिन में भी कुछ प्रयोग किए हैं जहां हम एक फिजिकल डॉक्टर बिठाते हैं साथ में एआई डॉक्टर। एआई का लाभ ये है कि अगर आप चिकित्सा जगत को ले लें, या जीन्स की बात कर रहे थे, तो इतने सारे जीन्स को स्क्रीन करने में हमें कई दशक लग जाएंगे, यहाँ मिनटों में बात हो जाती है। ईज ऑफ वर्किंग बहुत ज्यादा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, और जो लैंग्वेज मॉडल्स हैं, चाहे लार्ज लैंग्वेज मॉडल, स्मॉल लैंग्वेज, उसका हमने इस्तेमाल किया है, एग्रीकल्चर के लिए अलग बनाए हैं, मौसम विभाग के लिए अलग मॉडल्स बनाए हैं, वो भी चूंकि मौसम विभाग भी मेरे साथ जुड़ा हुआ है, उसमें हमने अब नव कास्ट का रखा है। नव कास्ट यानी आप घड़ी देख के 3 घंटे का प्लानिंग कर सकते हैं, अगर आपने कहीं मीटिंग पे जाना कि छतरी लेके जाएं कि ना जाएं, और हमने शुरू उसको किया जो ज्यादा रेन प्रोन एरियाज थे, जैसे मुंबई है, चेन्नई है, इसी प्रकार अब नव कास्ट के ही तर्ज पर स्काई कास्ट शुरू किया जो फॉग डिटेक्शन कर सकता है, जो एयरक्राफ्ट है उनके लिए। तो हर क्षेत्र में इस तरह से टारगेट्स रखे गए कि हम दुनिया के दूसरे देशों की बराबरी कर सके, और इस वक्त अगर दुनिया में हिंदुस्तान की साख बड़ी है तो उसमें बहुत बड़ा योगदान भारत की टेक्नोलॉजी इनोवेशंस में तरक्की का है।
1: सर, ग्रीन हाइड्रोजन की तरफ से किस तरह से आप इसको देखते हैं, और ग्रीन हाइड्रोजन की तरफ से क्या कदम उसकी ओर बढ़ाए जा रहे हैं?
0: ग्रीन हाइड्रोजन में भी हमारा मिशन है, इस सरकार ने 2023 में हमने नेशनल क्वांटम मिशन शुरू किया, 2024 में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मिशन, उसमें भी हमारे 4 अलग अलग हैं, एआई कंप्यूटिंग, एआई डेटा, AI इनोवेशन सेंटर्स, AI फ्यूचर स्किलिंग, और इसी तरह से ग्रीन हाइड्रोजन भी लगभग उसी समय में लॉन्च हुआ है। ग्रीन हाइड्रोजन में हम धीरे धीरे तरक्की कर रहे हैं, हमने बजट में भी जो घोषणा की गई थी कि हमारे 5 स्मॉल रिएक्टर्स होंगे
1: जी,
0: तो स्मॉल और स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स टिल 2033, उनमें से हमारे 3 पर काम शुरू हो चुका है, 3 में से 1 है जो हाइड्रोजन के साथ जुड़ा है। हाइड्रोजन में हमें थोड़ी सी दिक्कत यह है कि उसको स्केल अप करने में, अगर फ्रैंकली स्पीकिंग, इलेक्ट्रोलाइजर्स वगैरह जो हमारे हैं उनका शायद अभी कैपेसिटी कम है, लेकिन धीरे धीरे जैसे हम स्केल अप करेंगे तो उसकी कीमत भी घटेगी और उसकी मात्रा भी बढ़ेगी, और ये सारा एक पूल बनेगा, हाइड्रोजन सोर्स, न्यूक्लियर सोर्स, रिन्यूएबल, और रिन्यूएबल में भी विंड सोर्स, सोलर सोर्स के हम नए नए एरियाज तलाश कर रहे हैं, जैसे हमने ओशन, क्योंकि डीप ओशन मिशन भी इसी सरकार ने शुरू किया, वहां पर एक कंपोनेंट हमने ओशन एनर्जी का रखा है, यानी समुद्र के पानी के ऊपर, समुद्र के तट के ऊपर आप अगर सोलर शीट्स बिछा दे तो आपको रिन्यूएबल एनर्जी, समुद्र में चलती हुई तेज हवाओं का आप इस्तेमाल करें तो उसमें भी एनर्जी, समुद्र में जब नदी जाकर के तेज रफ्तार से जुड़ती है तो उसके बीच जो फ्रिक्शन पैदा होती है उससे भी एनर्जी, समुद्र में जब टाइड आता है खतरे का बायस तो ही है, लेकिन साथ में जैसे कहते हैं कि एवरी एडवर्सिटी इज अकंपनीड विद अ वर्च्यू, उससे भी बिजली याद होती है, तो समुद्र से भी अलग अलग रिन्यूएबल एनर्जीज, और मुझे लगता है कि सन 2047 जो हमने कहा वहाँ 100 गीगावाट तो न्यूक्लियर एनर्जी होगी, जो लगभग 10-15% पूरे हमारी जरूरत का हिस्सा बनेगी, लगभग 60-70% हमारा न्यूक्लियर एनर्जी होगी।
1: बिल्कुल सर, हमें कोई फाइनल मैसेज 12 साल और उसके बाद जो लगातार साइंस एंड टेक्नोलॉजी में काम हुआ है उसको लेकर दर्शकों तक?
0: मुझे लगता है कि 12 साल और इसके आगे हम कैसे जाएंगे, 2047 का हम लक्ष्य कैसे प्राप्त करेंगे, अक्सर चर्चा की जाती है लेकिन इसको साइंटिफिक ढंग से नहीं सोचा जाता
1: जी।
0: वो उन सेक्टर से जो पहले ना तलाशेंगे ना तराशेंगे, इधर अनएक्सप्लोर्ड और अंडर एक्सप्लोर्ड, जैसे हमारा ओशन है, भारत एक ऐसा देश है जिसका 11-12 हजार लंबा समुद्री तट है, 12-13 प्रदेश इसके तट पर बसते हैं, उसके अंदर संपत्ति ही संपत्ति है, माइंस, मिनरल, किसी ने नहीं देखा, अगर हम उसको तराश सके। हमारा दूसरा सरमाया हिमालयास, आज वहां से लेवेंडर निकल रहा है, पर्पल रेवोल्यूशन आया है, फ्लोरिकल्चर जो प्राण प्रतिष्ठा जब अयोध्या में हुआ तो उसमें जो ऑफरिंग की गई थी उसमें ट्यूलिप हमारे पालमपुर के इंस्टीट्यूट से आया, तो फ्लोरिकल्चर, तो ये जो सेक्टर्स थे जो पहले पूरी तरह स्पेस सेक्टर जिनको पूरी तरह से एक्सप्लॉयड नहीं किया गया था, अगर हम इनको पूरी तरह से एक्सप्लोर करने में कामयाब हो गए तो मुझे लगता है हमें 2047 से पहले ही उस स्तर पर पहुंच जाएंगे कि हम बड़े कॉन्फिडेंस के साथ 2047

कार्यक्रम के अंत में सुनिए अरिजीत सिंह की आवाज में हमारी अधूरी कहानी फिल्म का ये गाना। गीत रश्मि विराग ने लिखा है, संगीत जीत गांगुली का है।

0: इस गाने के साथ ही चित्रलोक कार्यक्रम अब समाप्त होता है। ये है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, थोड़ी ही देर में समाचार होंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने नीस के ऐतिहासिक विला कैरिलॉस में शिष्टमंडल स्तर की वार्ता की। दोनों देशों के बीच प्रमुख क्षेत्रों में विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी के विस्तार पर खास तौर से चर्चा। दोनों नेताओं ने भारत इनोवेट्स कार्यक्रम का संयुक्त रूप से उद्घाटन किया। भारत की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था अगले दशक में 9 अरब डॉलर से बढ़कर 45 अरब डॉलर होने की संभावना। महाराष्ट्र के सोलापुर में एक वाहन के कुएं में गिरने से 8 श्रद्धालुओं की मौत। ओमान तट के पास एक जहाज के इंजन में खराबी आने के बाद भारतीय चालक दल के सभी 14 सदस्यों को बचाया गया और भारत ने ब्रिटेन के बर्मिंघम में आईसीसी महिला T20 क्रिकेट विश्व कप के ग्रुप मैच में पाकिस्तान को 171 रन का लक्ष्य दिया। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने फ्रांस के नीस में शिष्टमंडल स्तर की वार्ता की। दोनों पक्षों के बीच रक्षा, प्रौद्योगिकी और व्यापार के क्षेत्र में विशेष वैश्विक सामरिक भागीदारी बढ़ाने पर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री मोदी के साथ राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, विदेश मंत्री एस जयशंकर, विदेश सचिव विक्रम मिश्री और अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद थे। राष्ट्रपति मैक्रों के साथ फ्रांस के यूरोप और विदेश मामलों के मंत्री जॉन नोएल बैरोट और अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। दोनों नेताओं ने आज वॉक एंड टॉक सत्र के दौरान भी चर्चा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों फ्रांस के नीस में इस समय शिष्टमंडल स्तर की वार्ता कर रहे हैं। दोनों पक्षों के बीच विशेष वैश्विक सामरिक भागीदारी को बढ़ाने पर खास तौर से चर्चा जारी है, जिसमें रक्षा, प्रौद्योगिकी और व्यापार शामिल हैं। दोनों ही नेताओं ने आज वॉक एंड टॉक सत्र के दौरान भी चर्चा की है। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने आज नीस में भारत इनोवेट्स कार्यक्रम का संयुक्त रूप से उद्घाटन किया। इसमें भारत में तेजी से बढ़ते नवाचार और स्टार्टअप परितंत्र को दर्शाया गया है। 3 दिन के इस आयोजन में भारतीय डीप टेक स्टार्टअप, नव प्रवर्तक, अनुसंधानकर्ता और वैश्विक निवेशक भी शामिल होंगे। इनमें 120 असाधारण स्टार्टअप, 20 से ज्यादा उत्कृष्टता केंद्र और 13 महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकी स्तंभ शामिल हैं। इसके अतिरिक्त इसमें दुनिया भर के 350 से ज्यादा निवेशक और पूंजीपति भी शामिल हो रहे हैं। इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत इनोवेट्स भारतीय प्रतिभा और यूरोपीय पूंजी के बीच एक सेतु के रूप में उभर रहा है, जिससे युवा नव प्रवर्तनकारियों के लिए वैश्विक विशेषज्ञता से जुड़ने के नए अवसर पैदा हो रहे हैं।
2: आज भारत में एक

0: स्टार्टअप रिवॉल्यूशन हो रहा है। इस रिवॉल्यूशन में भारत का नौजवान एक नए माइंडसेट के साथ मानवता के हित में समस्याओं के समाधान ढूंढ रहा है और हमारे नौजवानों के वर्ल्ड क्लास सॉल्यूशंस को ग्लोबल स्टेज पर लाने का माध्यम ही है भारत इनोवेट्स।
1: भारत और फ्रांस के संबंधों की मजबूती का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि व्यापार और रणनीतिक सहयोग कई देशों के बीच होता है, लेकिन कुछ ही संबंध साझा दृष्टिकोण और समान हितों से संचालित होते हैं। उन्होंने कहा कि नवाचार, प्रौद्योगिकी और भारत के युवाओं की आकांक्षाएं देश के विकास को गति दे रही हैं और भविष्य को भी आकार दे रही हैं।
0: भारत और फ्रांस का रिश्ता, इस रिश्ते में कनेक्शन भी है, कन्विक्शन भी है, इनोवेशन भी है, इंस्पिरेशन भी है, शेयर्ड वैल्यूज है, शेयर्ड विजन भी है। और इसी रिश्ते की नींव पर बीते वर्षों में हमने साथ मिलकर नई पहले शुरू की है और वैश्विक चुनौतियों के समाधान खोजने का भरसक प्रयास किया है।
1: इस अवसर पर फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने नवाचार के वैश्विक केंद्र के रूप में भारत के उभरने की प्रशंसा की।
2: 140 करोड़ लोगों की शक्ति, प्रतिभा और ज्ञान का भंडार भारत हर वर्ष 10 लाख से अधिक अभियंता तैयार करता है। अनुसंधान, नवाचार और नई प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारत आज विश्व को नई दिशा दे रहा है।
1: श्री मैक्रों ने भारत में बड़ी संख्या में इंजीनियरों की मौजूदगी की प्रशंसा की और चंद्रयान मिशन सहित भारत की अन्य असाधारण तकनीकी उपलब्धियों की भी प्रशंसा की। उन्होंने सबसे लंबे समय तक भारत का प्रधानमंत्री रहने के लिए श्री नरेंद्र मोदी को बधाई दी। श्री पीयूष गोयल ने कहा कि वैश्विक भू राजनीतिक और तकनीकी परिवर्तन के दौर में भारत एक विश्वसनीय भागीदार के रूप में उभर रहा है।
3: The world seeks trusted and reliable partners.
4: भारत दुनिया के लिए एक भरोसेमंद साझेदार है। हमारे पास युवा शक्ति, उत्कृष्ट प्रतिभा और वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा करने की अद्वितीय क्षमता है।
3: And a scale that few can match.
1: विदेश मंत्रालय इस समय संवाददाताओं को द्विपक्षीय बैठक में फैसले पर जानकारी दे रहा है।
5: जो भारत का परिप्रेक्ष्य है वो ये है कि ज्यादा से ज्यादा आगे जाते हुए, मेक इन इंडिया के कॉन्सेप्ट को आगे ले जाते हुए, हम को डेवलपमेंट, को डिजाइन, को प्रोडक्शन और को मैन्युफैक्चरिंग की दिशा में जाना चाहते हैं। और इसके चलते जितना ज्यादा प्रोडक्शन, जितना ज्यादा डिजाइन, जितनी ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग भारत में हो सके उतना अच्छा है और वो हमारी प्रेफरेंस रहेगी। तो आज की बातचीत में भी रफाल को छोड़ के और भी विषयों पे बातचीत हुई, लेकिन मैं कहूँगा एक तरह से जो अंडरलाइंग थीम था वो यही था कि जिस भी डिफेंस प्लेटफॉर्म की हम बात करें, इस एक बात को हमें बेसिस लेके आगे बढ़ना होगा कि
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रात स्लोवाकिया पहुंच रहे हैं। ये किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री की स्लोवाकिया की पहली यात्रा है। दो दिन की इस यात्रा के दौरान श्री मोदी स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी से मुलाकात करेंगे और प्रधानमंत्री रॉबर्ट फीत्सो से ब्रातिस्लावा में वार्ता करेंगे। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
6: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस यात्रा के बाद आज रात स्लोवाकिया पहुंच रहे हैं। कल सुबह उनका औपचारिक स्वागत किया जाएगा। यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी और प्रधानमंत्री रॉबर्ट फीको से मुलाकात करेंगे। स्लोवाक गणराज्य में भारतीय समुदाय भी प्रधानमंत्री की इस यात्रा को लेकर उत्साहित है। ये किसी भारतीय प्रधानमंत्री की स्लोवाकिया की पहली यात्रा है। स्लोवाकिया से एम पुलुरुथि की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं आकर्षिता सिंह।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: delhi-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा है कि भारत की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था अगले 10 सालों में 40 से 45 अरब डॉलर तक पहुंच सकती है। नई दिल्ली में संवाददाताओं से उन्होंने कहा कि यह वृद्धि नीतिगत सुधारों, बढ़ती निजी भागीदारी और तेजी से बढ़ रहे नवाचार परितंत्र को दर्शाती है। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
2: श्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि लोगों में विज्ञान और प्रौद्योगिकी की बढ़ती भागीदारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दूरदर्शी सोच का परिणाम है, जिसके अंतर्गत विज्ञान आधारित पहलों को राष्ट्रीय विकास की मुख्य धारा से जोड़ा गया है। उन्होंने कहा कि स्वच्छ भारत, डिजिटल इंडिया, डिजिटल स्वास्थ्य, गहन समुद्र मिशन और गगनयान जैसी योजनाओं ने विज्ञान तथा नवाचार को भारत की विकास यात्रा के केंद्र में ला दिया है। चंद्रयान 3 जैसे अभियान ने अंतरिक्ष विज्ञान को जन जन की रुचि का विषय बना दिया है। श्री सिंह ने कहा कि इन उपलब्धियों से स्वदेशी प्रौद्योगिकियों पर भरोसा बढ़ा है और भारत एक विश्वसनीय प्रौद्योगिकी साझेदार के रूप में उभरा है। सुपर्णा सैकिया की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से जया भारती।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 वर्ष में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांत से देश में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। आकाशवाणी समाचार इस अवसर पर एक विशेष श्रृंखला प्रसारित कर रहा है। आज हम नागरिकों के जीवन में सुगमता लाने के सरकार के कार्यों की जानकारी आपको देंगे।
3: पिछले 12 वर्षों में किए गए सुधारों ने देश में विश्वास की नई नींव रखी है। चाहे वह सुधार जीएसटी, फेसलेस टैक्स व्यवस्था या डिजिटल इंडिया से जुड़ा हो, हर पहल ने नागरिकों को यह एहसास कराया है कि वे भी राष्ट्र निर्माण में भागीदार हैं। केंद्रीय बजट 2025-26 में आयकर स्लैब और कर दरों में किए गए व्यापक बदलाव से सभी करदाताओं को लाभ मिला है। नई पीढ़ी के जीएसटी ने कर व्यवस्था को सरल बनाया है और लोगों का जीवन आसान किया है। कर ढांचा अब मुख्य रूप से 5% और 18% की दरों पर आधारित है, जिससे करदाताओं का दायरा और बढ़ा है। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में फिल्म निर्माता और वितरक समीर दीक्षित ने कहा कि जीएसटी नरेंद्र मोदी सरकार के सबसे बड़े नीतिगत फैसलों में से एक है।
4: जीएसटी को हमारे देश में लागू हुए अब 10 साल के आसपास हो गए हैं और हमने एक बहुत बड़ा इस दिशा में प्रगति की है। पहले 17 से ज्यादा टैक्स थे, एंट्री टैक्स, सर्विस टैक्स, वैट और उन सबको मिला के फिर अभी एक मेन जीएसटी बनाया है सरकार ने।
3: नरेंद्र मोदी सरकार ने शासन और नीतियों में तकनीक का व्यापक उपयोग किया है। भारत 6G तकनीक के क्षेत्र में वैश्विक नेतृत्व की ओर तेजी से बढ़ रहा है। लक्ष्य है कि 6G से जुड़े वैश्विक पेटेंट में भारत की हिस्सेदारी लगभग 10% हो। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में महेंद्र तिवारी ने कहा कि डिजिटल इंडिया दूर दराज के क्षेत्रों में रहने वाले लोगों और समाज के अंतिम पायदान पर खड़े नागरिकों के जीवन में सकारात्मक बदलाव ला रहा है।
5: डिजिटल इंडिया इज नो मोर अ कॉन्सेप्ट।
6: डिजिटल इंडिया अब सिर्फ एक सोच नहीं रह गया है, बल्कि ये एक यात्रा है। हम हर दिन आगे बढ़ रहे हैं और दुनिया को ये साबित कर रहे हैं कि भारत को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। डिजिटल हाईवे किसी भी अर्थव्यवस्था की रीढ़ होते हैं, खासकर हमारे जैसे देशों के लिए।
3: पिछले 12 वर्षों में नरेंद्र मोदी सरकार ने देश के विकास के सपनों को बड़े पैमाने पर साकार करने का प्रयास किया है और लोक कल्याणकारी योजनाओं का लाभ हर व्यक्ति तक पहुंचाने पर जोर दिया है। ईज ऑफ लिविंग अब केवल एक नारा नहीं बल्कि सरकार के कामकाज का मूल मंत्र बन चुका है। सुपर्णा सैकिया के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: महाराष्ट्र के सोलापुर जिले में आज दोपहर एक पिकअप वाहन दुर्घटना में बच्चों सहित 8 श्रद्धालुओं की मौत हो गई। यह हादसा मालचिरस तालुका में महासवाड़ पंढरपुर मार्ग पर तालुवांडी के पास हुआ। श्रद्धालु सिद्धनाथ मंदिर में पूजा अर्चना कर लौट रहे थे। इस दौरान चालक के नियंत्रण खोने से वाहन कुएं में गिर गया। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मृतकों के परिवारों को 5-5 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। ओमान स्थित भारतीय दूतावास ने बताया है कि ओमान के तट के पास भारतीय ध्वज वाली नौका विराट 1 का इंजन खराब होने से वो डूब गई। इस पर 14 भारतीय सवार थे, जिनमें से 11 भारतीयों को बचा लिया गया है, जबकि 3 अन्य को बचाने के प्रयास जारी हैं। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने मेडिकल के स्नातक पाठ्यक्रम में दाखिले के लिए दोबारा हो रही परीक्षा के प्रवेश पत्र जारी कर दिए हैं। इन्हें एनटीए की वेबसाइट neet.nta.nic.in से डाउनलोड किया जा सकता है। ये परीक्षा 21 जून को दोपहर 2 बजे

0: से होगी। ब्रिटेन के बर्मिंघम में महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप में भारत ने पाकिस्तान को 171 रन का लक्ष्य दिया है। स्मृति मंधाना ने 68 रन की पारी खेली। कप्तान हरमनप्रीत कौर ने 36 और ऋचा घोष ने बनाए 34 रन। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग कल रात 9:30 बजे पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में रोगों से बचाव और स्वस्थ जीवन के लिए योग के लाभ विषय पर एक परिचर्चा प्रसारित करेगा। योग विशेषज्ञ अनीता कौशिक और कमल किशोर परिचर्चा में भाग लेंगे। और अंत में सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने नीस के ऐतिहासिक विला कैरिलोस में शिष्टमंडल स्तर की वार्ता की। दोनों देशों के बीच प्रमुख क्षेत्रों में विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी के विस्तार पर खास तौर से चर्चा। दोनों नेताओं ने भारत इनोवेट्स कार्यक्रम का संयुक्त रूप से उद्घाटन किया। महाराष्ट्र के सोलापुर में एक वाहन के कुएं में गिरने से 8 श्रद्धालुओं की मौत। ओमान तट के पास एक जहाज के इंजन में खराबी आने के बाद भारतीय चालक दल के सभी 14 सदस्यों को बचाया गया। और भारत ने ब्रिटेन के बर्मिंघम में आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप के ग्रुप मैच में पाकिस्तान को दिया 171 रन का लक्ष्य। इसके साथ ही समाचार संध्या का अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम निशित कुमार विद द न्यूज एट 9। The headlines. Prime Minister Narendra Modi and French President Emmanuel Macron hold delegation-level talks at historic Villa Carolus at Nice, focus on expanding special global strategic partnership between two countries across key sectors. Both leaders jointly inaugurate Bharat Innovates event at Palada Expositions. India's space economy poised to grow from $9 billion to $45 billion in the next decade. In Maharashtra, 8 pilgrims die as vehicle falls in well in Solapur. All 14 Indian crew members rescued from a vessel off Oman coast after engine failure. And in cricket, India set a target of 171 runs for Pakistan in the group stage match of ICC Women's T20 World Cup in Birmingham. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi and French President Emmanuel Macron held delegation-level talks at historic Villa Carolus at Nice in France. The discussions between two sides focused on expanding the special global strategic partnership between two countries across key sectors including defense, technology and trade. Prime Minister Modi was accompanied by the National Security Advisor Ajit Doval, External Affairs Minister S. Jaishankar, Foreign Secretary Vikram Misri and senior officials. President Macron was accompanied by French Minister for Europe and Foreign Affairs, Jean-Noël Barrot, and other senior officials. The two leaders also interacted during a walk-and-talk session at Villa Carolus. Earlier, Prime Minister Modi and French President Macron jointly inaugurated Bharat Innovates event at Palada Expositions at Nice in France today. The landmark initiative showcases India's rapidly expanding innovation and startup ecosystem. The flagship event being held under the India France Year of Innovation brings together over 120 Indian startups and leading investors, technology leaders, and premier educational institutions from across the globe. It features innovations across 13 key sectors, including advanced computing, semiconductors, artificial intelligence, clean energy, and others. Speaking on the occasion, Prime Minister Modi highlighted India's startup revolution by saying that the country's youth are developing solutions for global challenges in a number of areas.
2: आज भारत में एक स्टार्टअप रिवॉल्यूशन हो रहा है। इस रिवॉल्यूशन में भारत का नौजवान एक नए माइंडसेट के साथ मानवता के हित में समस्याओं के समाधान ढूंढ रहा है और हमारे नौजवानों के वर्ल्ड क्लास सॉल्यूशंस को ग्लोबल स्टेज पर लाने का माध्यम ही है भारत इनोवेट्स।
1: Highlighting the strength of India-France ties, Mr. Modi said, while many nations engage in trade and strategic cooperation, only a few relationships are guided by a shared vision as well as common interests.
2: दुनिया में अलग-अलग देश एक दूसरे के साथ व्यापार कर

0: आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं अब्दुल वाहिद। नरेंद्र मोदी और फ्रांस के सदर एमानुएल मैक्रों ने फ्रांस के नीस में तारीखी विला केरलोस में वफ्द की सतह की बातचीत की। उन्होंने मुख्तलिफ कलीदी शोबों में दोनों मुल्कों के दरमियान खसूसी आलमी जामे शराकतदारी को तोसी देने पर तवज्जो मरकूज की। दोनों लीडरों ने पैरालिस डेस एक्सपोजिशो में भारत इन्वेस्ट का मुश्तरक तौर पर इफ्तिताह किया। भारत की खलाई मईशत अगली दहाई में मौजूदा 9 अरब डॉलर से बढ़कर तकरीबन 45 अरब डॉलर मालियत की हो जाएगी। महाराष्ट्र के सोलापुर में एक खाई में एक गाड़ी के गिरने से 8 यात्री हलाक हो गए। ओमान साहिल के करीब एक जहाज से इंजन खराब होने के बाद अमले के तमाम 14 भारतीय अफराद को बचा लिया गया है। और क्रिकेट में बर्मिंघम में आईसीसी खवातीन के T20 आलमी कप के ग्रुप मरहले के मैच में भारत ने पाकिस्तान के लिए 171 रन का जीत का निशाना रखा है। अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और फ्रांस के सदर एमानुएल मैक्रों ने फ्रांस के नीस में तारीखी विला केरलोस में वफ्द की सतह की बातचीत की। फरीकैन के दरमियान तबादले ख्याल में दोनों मुल्कों के दरमियान दिफा, टेक्नोलॉजी और तिजारत समेत कलीदी शोबों में खसूसी आलमी जामे शराकतदारी को तोसी देने पर तवज्जो मरकूज की गई। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के साथ कौमी सलामती के मुशीर अजीत डोभाल, वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर एस जयशंकर, ख़ारजा सेक्रेटरी विक्रम मिसरी और सीनियर हुक्काम मौजूद थे। सदर मैक्रों के साथ फ्रांस के यूरोप और खारिजी उमूर के वजीर जीन नोएल बेरोट और दिगर सीनियर हुक्काम थे। दोनों लीडरों ने विला केरलोस में वॉक एंड टॉक इजलास के दौरान भी बातचीत की। इससे कबल दिन में वज़ीर-ए-आज़म मोदी और फ्रांस के सदर मैक्रों ने नीस में पहले देश एक्सप्रेसियो में भारत इन्वेस्ट तकरीब का मुश्तरक तौर पर इफ्तिताह किया। 3 रोज़ा ये अहम तरीन तकरीब भारतीय डीप टेक स्टार्टअप्स, इख्तराकार, मुहक्किकीन और सरमायाकारों को आलमी इख्तराई फंड्स और फुटप्रिंट के साथ यकजा करेगी। इस मौके पर खिताब करते हुए वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने कहा कि भारत इन्वेस्ट्स भारत के टैलेंट और यूरोपीय कैपिटल के दरमियान एक पुल के तौर पर उभर रही है, जो नौजवान इख्तराकारों को आलमी महारत के साथ मुंसलिक होने के नए मौके वज़ा कर रही है। भारत के स्टार्टअप इनकलाब को उजागर करते हुए जनाब मोदी ने कहा कि मुल्क के नौजवान आलमी चैलेंजों के लिए उन शोबों में हल तैयार कर रहे हैं जो मसनूई जहानत और खलाई टेक्नोलॉजी से लेकर माहौल साजगार तवानाई, एडवांस मैन्युफैक्चरिंग और दिफाई इख्तिरा तक का अहाता करते हैं। उन्होंने वाजे किया कि आज भारत में 2 लाख से ज्यादा स्टार्टअप हैं और ये इंसानियत के लिए टेक्नोलॉजी के उसूल के जरिए इंसान मरकूज जिद्दतकारी की क्यादत के मॉडल को फरोग दे रहे हैं।
1: आज भारत में

0: एक स्टार्टअप रिवॉल्यूशन हो रहा है। इस रिवॉल्यूशन में भारत का नौजवान एक नए माइंडसेट के साथ मानवता के हित में समस्याओं के समाधान ढूंढ रहा है और हमारे नौजवानों के वर्ल्ड क्लास सॉल्यूशंस को ग्लोबल स्टेज पर लाने का माध्यम ही है भारत इनोवेट्स।
1: भारत फ्रांस ताल्लुकात की तकवियत को उजागर करते हुए वज़ीर आज़म मोदी ने कहा कि जब बहुत से मुल्क तिजारत और जामे तआवुन में मसरूफ हैं, ऐसे में चंद मुल्कों के ताल्लुकात को ही मुश्तरका विजन के साथ साथ एक जैसे मफादात की रहनुमाई हासिल है। उन्होंने भारत फ्रांस शराकत दारी को एक ऐसी फरोग पाती हुई शराकत दारी करार दिया जिसकी जड़ें बाहमी एतमाद, मुश्तरका अकदार और मुस्तकबिल के लिए एक जैसे नजरिए तक फैली हुई हैं।
0: दुनिया में अलग अलग देश एक दूसरे के साथ व्यापार करते हैं, अलग अलग देशों के बीच स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप भी होती है, लेकिन कुछ रिलेशंस ऐसे होते हैं जो शेयर्ड इंटरेस्ट के साथ साथ शेयर्ड विजन से भी ड्राइव होते हैं। भारत और फ्रांस का रिश्ता कुछ ऐसा ही है।
1: इज्तिमा से खिताब करते हुए फ्रांस के सदर मैखों ने एक आलमी इख्तराई पावर हाउस के तौर पर भारत के उभरने की सताइश की और कहा कि आज सवाल ये नहीं है कि भारत इख्तरा कर रहा है, बल्कि सवाल ये है कि भारत के साथ कौन इख्तरा कर रहा है। उन्होंने इंजीनियरिंग के टैलेंट के भारत के वसी जखीरे को उजागर किया और भारत की तकनीकी महारत के तौर पर चंद्रयान मिशन जैसी हासिल करदा मुल्क की कामयाबियों की सताइश की। सदर मैखों ने कहा कि भारत इन्वेस्ट्स भारत के अख्तराई को निज़ाम और फ्रांस के वसी तकनीकी मंजरनामे के दरमियान एक मजबूत पुल वजा करता है। उन्होंने इस पहल के पहले एडिशन की भारत से बाहर मेजबानी को फ्रांस के लिए एक एजाज करार दिया। उन्होंने वज़ीर आज़म मोदी को आज़ादी के बाद से भारत के सबसे तवील मुद्दत तक मुंतखब वज़ीर आज़म बनने पर भी मुबारकबाद दी।
2: The world seeks trusted and reliable partners.
3: भारत दुनिया के लिए एक भरोसेमंद साझेदार है। हमारे पास युवा शक्ति, उत्कृष्ट प्रतिभा और वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा करने की अद्वितीय क्षमता है।
2: And a scale that few can match.
1: वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर, सनत और कॉमर्स के वजीर पीयूष गोयल, कौमी सलामती के मुशीर अजीत डोभाल, प्रिंसिपल साइंस के मुशीर अजय कुमार सूद, इन्फोसिस के बानी नारायण मूर्ति और बहुत से सरकर्दा कारोबारी लीडर भी इस मौके पर मौजूद थे। तकरीब से खिताब करते हुए कॉमर्स और सनत के मरकजी वजीर पीयूष गोयल ने कहा कि भारत आलमी जोग्राफियाई, सियासी और तकनीकी तब्दीली के दौर में एक भरोसेमंद और काबिल एतमाद शराकतदार के तौर पर उभर रहा है। जनाब गोयल ने कहा कि इस तकरीब में शिरकत करने वाले 120 इख्तराकार भारत की सलाहियतों के सिर्फ एक हिस्से की नुमाइंदगी करते हैं। उन्होंने फ्रांस के कारोबारियों को दावत दी कि वो भारत में सरमायाकारी, डिजाइनिंग, जिद्दतकारी और मैन्युफैक्चरिंग के जरिए मकामी और आलमी मंडियों दोनों के लिए शराकतदारी को मुस्तहकम करें। वज़ीर आज़म मोदी गुज़श्ता रात फ्रांस के शहर नीस पहुंचे थे, जो फ्रांस और स्लोवाकिया के उनके 6 रोजा दौरे की शुरुआत है। अपने दौरे के दूसरे मरहले में जनाब मोदी आज रात स्लोवाकिया जाएंगे। भारत में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की काबिले बसीरत 12 साल दौरे हुकूमत में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के उसूलों से तहरीक पाकर जबरदस्त तब्दीली रोनुमा हुई है। इस दौरान हुकूमत ने गरीबों, किसानों, खवातीन और नौजवानों की फलाह बहबूद और उन्हें बाख्तियार बनाने के लिए कई अहम इकदाम किए हैं। आकाशवाणी की खबरों का शोभा एक खसूसी फीचर 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के पेश कर रहा है। आज हम मुल्क के शहरियों की जिंदगियों में आसानी पैदा करने के लिए हुकूमत के जरिए किए जाने वाले इकदाम पर तवज्जो मरकूज कर रहे हैं। पेश है एक रिपोर्ट।
4: इस्लाहात के 12 साल एतमाद के 12 साल रहे हैं। ख्वाह वो GST हो, फेसलेस टैक्स हो या फिर डिजिटल इंडिया, हर पहल ने शहरियों को यह एहसास दिलाया है कि ये भी मुल्क के मेमार रहे हैं। मरकजी बजट 2026 में आमदनी टैक्स स्लैब और शरह में जामे नजरसानी को इस तरह तैयार किया गया है कि तमाम टैक्स अदा करने वालों को फायदा पहुंचे। अगले सिलसिले की GST इस्लाहात ने टैक्स के अमल को सहल बनाया है और शहरियों की जिंदगी में आसानी पैदा की है। आकाशवाणी न्यूज के साथ बातचीत में फिल्म प्रोड्यूसर और

0: डिस्ट्रीब्यूटर समीर दीक्षित ने कहा कि जीएसटी इस्लाहात इस हुकूमत के सबसे बड़े पॉलिसी साज फैसलों में से एक है।
1: जीएसटी को हमारे देश में लागू हुए अब 10 साल के आसपास हो गए हैं और हमने एक बहुत बड़ा इस दिशा में प्रगति की है।
0: नरेंद्र मोदी हुकूमत ने डिजिटल टेक्नोलॉजी को अपनाया है और इसको सियासत और पॉलिसी साजी के मामलों में शामिल किया है। भारत 6G टेक्नोलॉजी में आलमी लीडर बनने की राह पर गामजन है। 6G से मुतालिक आलमी पैटर्न में तकरीबन 10% शराकत दारी का हदफ मुकर्रर किया गया है। आकाशवाणी न्यूज से बातचीत करते हुए इथरनेट एक्सप्रेस के CEO महेंद्र तिवारी ने कहा है कि डिजिटल इंडिया दूर दराज के इलाकों और हाशिया पर रह रहे लोगों की जिंदगियों में माविन साबित हो रहा है। गुज़श्ता 12 वर्षों में NDA हुकूमत ने शहरियों के मेयारे जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए बड़े पैमाने पर इकदाम किए हैं, जिसमें आवामी सहूलियात और आसान तर्ज जिंदगी सिर्फ एक नारा नहीं बल्कि हकीकत की शक्ल अख्तियार कर चुका है। यह हुकूमत के रहनुमा उसूलों पर कारबंद रहने के अज्म की अक्कासी करता है। दिल्ली से सुपर्णा साइकिया की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं तनवीर।
2: ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। मरकजी वजीर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने आज बताया कि भारत की खलाई मईशत अगली दहाई में मौजूदा 8 से 9 अरब डॉलर से बढ़कर तकरीबन 40 से 45 अरब डॉलर मालियत की हो जाएगी। नई दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए वजीर मौसूफ ने कहा कि ये पेशरफ्त पॉलिसी असलाहत बढ़ती हुई निजी शराकत दारी और तेजी के साथ तोसी पाते हुए अख्तराई इको निज़ाम के बायस है। डॉक्टर सिंह ने कहा कि भारत के खलाई शोबे की कायापलट तब्दीली मुल्क भर में होने वाली वसी तर तब्दीली की अक्कासी करती है, जिसमें साइंस और टेक्नोलॉजी लेबोरेटरीज से बाहर निकलकर कौमी शऊर का एक हिस्सा बन गई हैं। उन्होंने कहा कि हालिया वर्षों की इंतहाई नुमाया कामयाबियों में से एक साइंस और माशरे के दरमियान बढ़ता हुआ राबता है। पेश है एक रिपोर्ट।
3: वजीर मौसूफ ने कहा कि अवामी मुबाइसे में साइंस और टेक्नोलॉजी की बढ़ती हुई अहमियत वजीर आजम नरेंद्र मोदी के उस विजन की अक्कासी करती है, जिसके तहत उन्होंने साइंस पर मबनी इकदाम को मुसलसल कौमी धारे में शामिल किया है। उन्होंने कहा कि स्वच्छ भारत, डिजिटल इंडिया, डिजिटल हेल्थ, डीप ओशन मिशन और गगनयान जैसे प्रोग्रामों ने साइंस और इख्तरा को भारत की तरक्की के सफर के मरकज में लाने में अहम रोल अदा किया है। चंद्रयान 3 जैसे मिशन ने खलाई साइंस को वसीतर अवामी दिलचस्पी का मौजू बना दिया है, जिसके नतीजे में मुल्क भर के शहरियों में गैर मामूली बेदारी और दिलचस्पी पैदा हुई है। खला, जौहरी तवानाई और जदीद टेक्नोलॉजी जैसे अहम शोबों में भारत की बढ़ती हुई सलाहियतों ने आलमी सतह पर मुल्क की पोजीशन को मजबूत किया है। इन हुसूलियाबियों से पैदा होने वाले एतमाद ने मकामी टेक्नोलॉजी की साख्त में इजाफा किया है और भारत को एक काबिले एतमाद टेक्नोलॉजी के शराकत दार के तौर पर मुस्तहकम किया है। दिल्ली से सुपर्णा साइकिया की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं मोहम्मद शहजाद।
2: महाराष्ट्र के सोलापुर जिले में आज दोपहर पेश आए एक हादसे में बच्चों समेत 8 अकीदतमंदों की उस वक्त मौत हो गई जब उन्हें ले जाने वाली एक पिकअप गाड़ी सड़क के किनारे खाई में गिर गई। ये हादसा मलाशिरस तालुका में महासवंड पंढरपुर पर वाक़े तुंदलवाड़ी के करीब पेश आया। अकीदतमंदों का ताल्लुक पंढरपुर तालुका के रजनी गांव से है और ये सब सिद्धनाथ मंदिर में पूजा पाठ करने के बाद वापस आ रहे थे। जख्मियों को इलाज के लिए पंढरपुर मुंतकिल किया गया है। इस दौरान महाराष्ट्र के वजीर आला देवेंद्र फडणवीस ने इस अलमनाक हादसे पर दुख का इजहार किया है। इसके साथ उन्होंने महलूकीन के लवाहकीन के लिए 5-5 लाख रुपए माली मदद का ऐलान किया है। ओमान में भारतीय सिफारतखाने ने कहा है कि भारतीय परचमपरदार तिजारती जहाज विराट 1 के तमाम 14 भारतीय अमले के अफराद को बचा लिया गया है। इस जहाज के इंजन में ओमान के साहिल के करीब खराबी हो गई। सोशल मीडिया की एक पोस्ट में सिफारतखाने ने कहा कि अमले के अफराद महफूज हैं और सेहतमंद हैं। उन्हें दूसरे जहाज MV जबले अली 9 पर पहुंचा दिया गया है। सिफारतखाने ने मजीद कहा कि अमले के अफराद मुंबई के लिए रवाना किए जा रहे हैं। ओमान के शहर मस्कत में भारतीय सफारतखाने ने आज कहा कि भारतीय बाशिंदे निशांत उधनम के से मुतल्लिक ओमान के मकामी हुक्काम, बंदरगाह के हुक्काम और जहाजरानी कंपनियों के साथ फाल तौर पर ताउन कर रहा है। क्रिकेट में खवातीन के ICC T20 वर्ल्ड कप के ग्रुप ए के इफ्तिताही मैच में बर्मिंघम के एजबेस्टन में भारत ने पाकिस्तान के सामने जीत के लिए 171 रन का निशाना रखा है। अब से कुछ देर पहले तक पाकिस्तान ने 5 ओवर्स में एक गेंद में एक विकेट पर 40 रन बना लिए थे। फीफा वर्ल्ड कप 2026 में अमरीका के ह्यूस्टन में ग्रुप ई के मैच में जर्मनी का

0: मुकाबला कुरासाओ से होगा। भारतीय वक्त के मुताबिक ये मैच आज रात 10:30 बजे खेला जाएगा। डलास में ग्रुप एफ एक के मैच में दूसरा मुकाबला नीदरलैंड्स और जापान के दरमियान होगा। ये मैच भारतीय वक्त के मुताबिक देर रात 1:30 पर खेला जाएगा। ईरान ने कहा है कि उसने मुजवजा मुफाहमत नामे से मुतलिक अभी तक कोई हतमी फैसला नहीं किया है, जिसका मकसद अमरीका और इसराइल के दरमियान कशीदगी को खत्म करना है। आखिर में खास खास खबरें एक मरतबा फिर। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और फ्रांस के सदर इमानुएल मैक्रों ने फ्रांस के नीस में तारीखी विला केरलोस में वफ्द की सतह की बातचीत की। उन्होंने मुख्तलिफ कलीदी शोबों में दोनों मुल्कों के दरमियान खसूसी आलमी जाम शराकत दारी को तोसी देने पर तवज्जो मरकूज की। दोनों में इनोवेट्स का मुश्तरक तौर पर इफ्तिताह किया। भारत की खलाई मईशत अगली दहाई में मौजूदा 9 अरब डॉलर से बढ़कर तकरीबन 45 अरब डॉलर मालियत की हो जाएगी। महाराष्ट्र के सोलापुर में एक खाई में एक गाड़ी के गिरने से 8 यात्री हलाक हो गए। ओमान साहिल के करीब एक जहाज से इंजन खराब होने के बाद अमले के तमाम 14 भारतीय अफराद को बचा लिया गया है। और क्रिकेट में बर्मिंघम में आईसीसी खवातीन के T20 आलमी कप के ग्रुप मरहले के मैच में भारत ने पाकिस्तान के लिए 171 रन का जीत का निशाना रखा है। इसी के साथ खबरों का बुलेटिन खत्म हुआ।
1: आज के फनकार, ये कार्यक्रम आप सुनेंगे बस थोड़ी ही देर में।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: आज फिर जीने की तमन्ना है।
0: जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
2: चित्तौड़ उदयपुर के पास है, वहाँ शूटिंग कर रहे थे, ऊंची सी दीवार थी।
0: अभिनेत्री वहीदा रहमान,
2: और बीच में एक गैप था। लिटरली जो आप कह रहे हैं कि आज जीने की तमन्ना है, मरने का इरादा है, तो आपको ये भी नहीं फिक्र है कि आप मर जाएं तो मर जाएं। गाते गाते आप इस दीवार से जाती हूँ, जंप कर जाती हूँ। मैंने कहा गोल्डी ये क्या ज्यादती है भाई, भाग रही हूँ और जंप भी कर रही हूँ, गा भी रही हूँ, मूड भी और एक्सप्रेशन भी सही है, ये कैसे हो सकता है। खैर बड़े टेंशन में वो शॉट किया मैंने, शुक्र है गिरी नहीं।
0: ऐसी बेमिसाल कहानियां आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

बरसात की रात फिल्म की ये कव्वाली सुनकर याद आ जाता है वो जमाना जब फिल्में तो ब्लैक एंड व्हाइट होती थीं, मगर उनकी कहानियां जीवन के जज्बाती रंगों से भरपूर। और याद आता है वो कलाकार जो अपने सुदर्शन व्यक्तित्व और सीधे सरल परंतु प्रभावी अभिनय से दर्शकों के दिलों पर छा जाता था।

सन 1920 के जून महीने की 14 तारीख को मेरठ में जन्म हुआ भारत भूषण का। पिता राय बहादुर मोतीलाल सरकारी वकील थे। भारत भूषण बस 2 ही वर्ष के थे जब उनकी माता का देहावसान हुआ। मां के गुजरने के बाद बड़े भाई आर चंद्रा के साथ भारत भूषण अपने दादाजी के यहाँ अलीगढ़ चले आए।

अलीगढ़ में स्नातक की डिग्री प्राप्त करने के पश्चात भारत भूषण पिता की मर्जी के खिलाफ एक्टिंग में करियर बनाने के लिए पहले कोलकाता और बाद में मुंबई आकर बस गए। केदार शर्मा निर्देशित 1941 की फिल्म चित्रलेखा में भारत भूषण को अभिनय का पहला अवसर मिला। भारत भूषण को अभिनय का पहला अवसर तो मिला, मगर उसके बाद संघर्ष का एक लंबा दौर शुरू हुआ।

संघर्षमय जीवन का एक दशक बीता और 1952 में भारत भूषण को फिल्म मिली बैजू बावरा। इस फिल्म ने उन्हें आनन फानन सुप्रसिद्ध फिल्म सितारों की श्रेणी में लाकर रख दिया। इस फिल्म के संगीतकार नौशाद, नायिका मीना कुमारी और पार्श्व गायक मोहम्मद रफी को जितनी तारीफें मिली, उतनी ही तारीफ और शोहरत भारत भूषण को भी नसीब हुई। मानो प्रतिभा की गंगा और किस्मत की जमुना का मिलन होना था, हो गया।

0: सहारा।
1: बैजू बावरा की अपार सफलता के बाद सिलसिला चल पड़ा। एक के बाद एक फिल्में आती गईं। भारत भूषण अपने अभिनय से किरदार सजाते गए और कामयाबी की सीढ़ियां चढ़ते गए। 1952 से 1954 तक रिलीज हुई ये फिल्में हैं आनंद मठ, माँ, मिर्जा गालिब, शबाब और श्री चैतन्य महाप्रभु। श्री चैतन्य महाप्रभु इस फिल्म के लिए भारत भूषण को सर्वोत्कृष्ट अभिनेता का फिल्म फेयर पुरस्कार प्रदान किया गया। उनके समकालीन अभिनेता और निर्माता चंद्रशेखर कहा करते थे, हिंदी फिल्मों में यदि पौराणिक या ऐतिहासिक पात्र कोई सबसे अच्छा निभाते हैं तो वो है अभिनेता भारत।

0: पद्मभूषण केवल अभिनेता नहीं थे, उन्हें किताबों का बहुत शौक था। विभिन्न विषयों की किताबें वो पढ़ते रहते थे और शायद यही वजह थी कि वो बहुत अच्छे लेखक भी थे। बरसात की रात, नई उम्र की नई फसल, बसंत बहार और दूज का चांद आदि फिल्मों की कहानियां उन्हीं की लिखी हुई थीं।
1: स्वप्न झरे फूल से।

बसंत बहार, कवि कालिदास, परदेसी, रानी रूपमती, चंपाकली, गेटवे ऑफ इंडिया, फागुन, सम्राट चंद्रगुप्त, सोहनी महिवाल, सावन, अंगुलीमाल, बरसात की रात, मुड़मुड़ के न देख, घूंघट, संगीत सम्राट तानसेन, 11,000 लड़कियां, जहां आरा, तकदीर। 1950 और 1960 के दशक की इन फिल्मों में नायक की भूमिका निभाने वाले भारत भूषण उन गिने चुने अभिनेताओं में से थे जिन्हें संगीत की बहुत अच्छी समझ थी, और इसीलिए अधिकतर संगीत प्रधान फिल्मों के नायक के रूप में उनका चुनाव किया जाता। दूज का चांद इस फिल्म के वो निर्माता भी थे। उस जमाने के मशहूर गायक कलाकार मोहम्मद रफी, मन्ना डे, मुकेश और तलत महमूद के गाए ज्यादातर गीत भारत भूषण पर फिल्माए गए।

बढ़ती उम्र में भी चरित्र अभिनेता के रूप में भारत भूषण पूरे उत्साह और उमंग के साथ सक्रिय थे। 1970, 1980 और 90 के दशक की ये फिल्में थीं जय संतोषी मां, मीरा, उमराव जान, हीरो, रहगुजर, काला धंधा, गोरे लोग और अव्वल नंबर।

0: आज के फनकार अभिनेता भारत भूषण पर केंद्रित ये कार्यक्रम अभी आप सुन रहे थे। प्रस्तुति सहायक आकांक्षा सिंह, प्रस्तुतकर्ता रमेश गोखले। अब दीजिए इजाजत जयंत पात्रीकर को।
1: आज के फनकार।

सुनने वालों को यूनुस खान का नमस्कार। जब थामा था तुम्हारा हाथ तो हमने खुशियों को टांग लिया था अपने दामन में सितारों की तरह, और तुम्हारी उलझनों को अपना लिया था हमने माथे की सिलवटों और होंठों की मुस्कानों को अपना बनाया था। उसके बाद से ये साझेदारी है सांसों की, ये सफर है एक साथ चलने का। फिर क्यों उदास हो तुम?

हमने सोचा नहीं था कि आएंगे ऐसे भी मरहले कि हम नहीं रहेंगे, हम खुद के बस में नहीं रहेंगे, कि अचानक रोशन हो जाएंगे रास्ते, अचानक चमकीले हो जाएंगे सितारे, अचानक दिल में उठा करेंगी हिलोरें। ये कौन सा मकाम है, ये हमें क्या हो गया है।

ये कैसी कैफियत है दर्द और सुकून का, ये कैसा मिला जुला एहसास। अब बदलते हुए मौसम और भी सुहाने बन गए हैं, अब जिंदगी और भी सुकून भरी बन गई है।

आंखें किसका इंतजार करती बेकरार हुई जाती हैं। क्यों बेचैनी पहले से ज्यादा बढ़ गई है? क्यों हम मदहोशी की हालत में जिए जा रहे हैं आजकल?

बदलते मौसमों के साथ अचानक बदल गया दिल की दुनिया का मौसम। जहां पहले बहारें थीं, वहां अचानक वीराने हैं। मुस्कानों को झांक लिया है उदासी के कोहरे ने। अपनी खिड़की पर खड़े हम अपनी सोच में गुम हैं और गूंज रहा है सुरैया का ये नगमा।

बख्त मजमा लगाता है, खेल दिखाता है और फिर समेट कर अपना सरो सामा चल पड़ता है अगली मंजिल की तरफ। हम भोले भाले हैं जो सोचते हैं कि ये मजमा जारी रहेगा हमेशा, हमेशा गूंजते रहेंगे तराने।

0: फिल्म शमा, कैफी आजमी, गुलाम मोहम्मद।
1: ये कैसी अजब दास्तां हो गई है, छुपाते छुपाते बयां हो गई।
0: फिल्म रुस्तम सोहराब, कमर जलालाबादी, सज्जाद हुसैन।

0: फिल्म मिर्जा गालिब गुलाम मोहम्मद फिल्म अफसर पंडित नरेंद्र शर्मा सचिन देव बर्मन
1: दिल की दुनिया जो बर्बाद करके बहुत रोएंगे उनको हम याद करके
0: फिल्म दर्द शकील बदायूनी नौशाद आज का छाया गीत इतना ही इजाजत दीजिए यूनुस खान को।

0: बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है। जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
1: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है, उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए, वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पे मेहनत किया।
0: जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है, पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, संगीत सरिता, नई श्रृंखला, शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका, 1 जुलाई से सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।

0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अरुण कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने फ्रांस के नीस में शिष्टमंडल स्तर की वार्ता की। दोनों पक्षों के बीच रक्षा, प्रौद्योगिकी और व्यापार के क्षेत्र में विशेष वैश्विक सामरिक भागीदारी बढ़ाने पर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री मोदी के साथ राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, विदेश मंत्री एस जयशंकर, विदेश सचिव विक्रम मिश्री और अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे। राष्ट्रपति मैक्रों के साथ फ्रांस के यूरोप और विदेश मामलों के मंत्री जीन नोएल बैरोट और अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। दोनों नेताओं ने आज वॉक एंड टॉक सत्र के दौरान भी चर्चा की। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने आज नीस में भारत इनोवेट्स कार्यक्रम का संयुक्त रूप से उद्घाटन किया। तीन दिन तक के इस आयोजन में भारतीय डीप टेक स्टार्टअप, अनुसंधानकर्ता और वैश्विक निवेशक शामिल होंगे। इनमें 120 असाधारण स्टार्टअप, 20 से ज्यादा उत्कृष्टता केंद्र और 13 महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकीय स्तंभ शामिल हैं। इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत इनोवेट्स भारतीय प्रतिभा और यूरोपीय पूंजी के बीच एक सेतु के रूप में उभर रहा है, जिससे युवा नव प्रवर्तनकारियों के लिए वैश्विक विशेषज्ञता से जुड़ने के नए अवसर सृजित हो रहे हैं।
1: आज भारत में एक स्टार्टअप रिवॉल्यूशन हो रहा है। इस रिवॉल्यूशन में भारत का नौजवान एक नए माइंडसेट के साथ मानवता के हित में समस्याओं के समाधान ढूंढ रहा है और हमारे नौजवानों के वर्ल्ड क्लास सॉल्यूशंस को ग्लोबल स्टेज पर लाने का माध्यम ही है भारत इनोवेट्स।
0: इस अवसर पर फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने नवाचार के वैश्विक केंद्र के रूप में भारत के उभरने की प्रशंसा की। विदेश मंत्रालय ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फ्रांस यात्रा पर विशेष संवाददाता सम्मेलन का आयोजन किया। सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी की फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ द्विपक्षीय वार्ता और भारत फ्रांस विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी में प्रगति पर चर्चा की गई। सम्मेलन को विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने संबोधित किया। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा है कि भारत की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था अगले 10 सालों में 40 से 45 अरब डॉलर तक पहुंच सकती है। नई दिल्ली में संवाददाताओं से उन्होंने कहा कि ये वृद्धि नीतिगत सुधारों, बढ़ती निजी भागीदारी और तेजी से बढ़ रहे नवाचार परितंत्र को दर्शाती है। उन्होंने कहा कि ये स्वच्छ भारत, डिजिटल इंडिया, डिजिटल हेल्थ, डीप ऑपरेशन ओशन मिशन और गगनयान जैसे कार्यक्रमों ने विज्ञान और नवाचार को भारत की विकास यात्रा के केंद्र में स्थापित करने में मदद की है। महाराष्ट्र के सोलापुर जिले में आज दोपहर एक पिकअप वाहन दुर्घटना में बच्चों सहित 8 श्रद्धालुओं की मौत हो गई। ये हादसा मालचिरस तालुका में महासवाड पंडरपुर मार्ग पर तांडुलवाड़ी के पास हुआ। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने दुर्घटना पर शोक व्यक्त किया है। उन्होंने मृतकों के परिवारों को 5-5 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने मेडिकल के स्नातक पाठ्यक्रम में दाखिले के लिए दोबारा हो रही परीक्षा के प्रवेश पत्र जारी कर दिए हैं। इसे एनटीए की वेबसाइट neet.nta.nic.in से डाउनलोड किया जा सकता है। ये परीक्षा 21 जून को दोपहर 2 बजे से होनी है। ओमान स्थित भारतीय दूतावास ने बताया है कि ओमान के तट के पास भारतीय ध्वज वाली नौका विराट 1 इंजन खराब होने के कारण डूब गई। इस पर सवार सभी 14 भारतीयों को बचा लिया गया है। इसराइल ने लेबनान की राजधानी पर ईरान समर्थित समूह हिजबुल्ला के बुनियादी ढांचे को निशाना बनाकर हमला किया। इसराइल के प्रधानमंत्री बिन्यामिन नेतन्याहू के कार्यालय ने बताया कि ये हमले उत्तरी इसराइल में हिजबुल्ला के हमलों के जवाब में किए गए थे। बीते दिनों इसराइल ने बेरूत के इलाकों पर हमला किया था, जिसके जवाब में ईरान ने भी इसराइल पर हमले किए। बर्मिंगम में महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में भारत ने पाकिस्तान को 64 रन से हरा दिया है। पहले बल्लेबाजी करते हुए भारतीय टीम ने निर्धारित 20 ओवर में 6 विकेट के नुकसान पर 170 रन बनाए। जवाब में पाकिस्तान की टीम 106 रन पर सिमट गई। दीप्ति शर्मा।

0: rivals Pakistan. In reply, Pakistan were all out with 106 runs in 17 overs. Earlier, opting to bat first, India posted 174-6 in their allotted 20 overs. And that is the end of this news bulletin.
1: यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। रात्रि के 11:10 हुए हैं। हमारी आज की ये सभा अब संपन्न होती है। कल सुबह 5:55 पर आपसे फिर भेंट होगी। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। जय हिंद।